नमस्कार, सुप्रभात। FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 16वीं तिथि, तदनुसार 7 अगस्त सन 2026 सुबह के 5:55 और ठीक 40 सेकंड्स हुए हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी के उज्जैन केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को हैं। अब समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि 7 अगस्त 1905 को भारत के स्वाधीनता संग्राम के हिस्से के रूप में स्वदेशी आंदोलन का शुभारंभ किया गया था।
1: 7 अगस्त 1905 को देश की आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया, मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है।
0: श्री मोदी ने लोगों को बुनकर परिवारों और अपने हाथों से कपड़े बनाने वाले कारीगरों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया।
1: हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब परिवार, बुनकर परिवार, जो अपने हाथों से अपनी छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं, और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना।
0: 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करना होगा। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में 2 प्रकाशनार्थ रूट और मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्रों और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बेहारा चरियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी। देश ने ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वाधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की समुद्री सुरक्षा संरचना के प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में 2रे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर और भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हों। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्समायोजन अधिनियम 2025 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार यह अधिनियम कल से प्रभावी हो गया है। इस कदम का स्वागत करते हुए गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने इसे एक वायदे का पूरा होने जैसा बताया। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध रांची में विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। राजधानी रांची में 6 प्रदर्शनकारियों की भूख हड़ताल जारी है। छात्र नेताओं का दावा है कि उन्हें कल शाम तक राज्य सरकार की ओर से बातचीत का कोई नियंत्रण नहीं मिला है। विरोध प्रदर्शन का असर

0: झारखंड विधानसभा में भी देखा गया, जहां विपक्षी विधायकों ने मॉनसून सत्र के पहले दिन ही नारेबाजी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार आंदोलनकारियों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से होगा, जबकि अश्मिता चालिहा का सामना जापान की हिना केची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम।
2: ये है विविध भारती।

आज का चिंतन। आचार्य चाणक्य का कथन है, अपने दिल की बात या सफलता के राज कभी किसी को न बताएं, ये आपको कमजोर कर सकते हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षेप में विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनिए श्री रामचरित मानस गान भाग 273। सुबह 6:45 और शाम 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता कार्यक्रम। संगीत सरिता कार्यक्रम में सुनिए श्रृंखला वर्षा चौमासा, कलाकार गायिका शुभा मुद्गल, भाग 7, प्रस्तुति कांचन प्रकाश संगीत की। सात बजे से भूले बिसरे गीत, 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। आठ बजकर 15 मिनट पर सुनिए वंदे मातरम एक जय घोष, लेखक मिलिंद सबनीस, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, आज भाग 40। 8:30 पर चित्रलोक, 9:30 पर आज के फनकार। आज का आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार जे ओम प्रकाश पर, प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। 10 बजे सुबह पिटारा में हेलो फरमाइश, संवादक मंदाकिनी जोशी, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। 11 बजे रंग तरंग। 12:05 पर यादों की महफिल, 1 बजे सुरीला सफर, 2 बजे सुनिएगा वंदे मातरम।

एक जयघोष। लेखक है मिलिंद सबनीस, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। भाग 40। 2:30 पर सदाबहार नगमे। 3 बजे हेलो सहेली। 4 बजे पिटारा में सुनिए गीतों भरी कहानी। दिल की गिरह ये कहानी सुनिएगा गीतों भरी कहानी में, पिटारा के अंतर्गत। लेखिका विनीता आस्थाना, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। पांच बजे छाए गीत। 5:30 पर तराने नए पुराने। 6:35 पर संध्या रंजन। 6:45 पर संगीत सरिता। 5 साथियों का कार्यक्रम जयमाला सुनिएगा शाम 7 बजे से। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत अनमोल यादें। 7:45 इसके अंतर्गत सुनिएगा फिल्मकार पत्रकार राजीव विजयंकर से जयंत पात्रिकर की बातचीत का 6वां भाग। प्रस्तुत करता है जुबैर खान। हवा महल में रात 8 बजे नाटिका हृदय परिवर्तन। मूल कहानी ओ हेनरी, हिंदी नाट्य रूपांतर रमेश उपाध्याय, निर्देशक मधुप शर्मा। 8:15 पर चित्रलोक। 9 बजे कार्यक्रम आपके लिए। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम रात सुनेगा फिल्मकार जय ओम प्रकाश पर केंद्रित होगा प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। 10 बजे छाएगी। 10:30 पर ढलती जाए रात। और 11 बजे रंग तरंग। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। झरोखा के अंतर्गत आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है श्रीराम चरित मानस गान भाग 273।

स्त्री तथा राज्य पाकर सुग्रीव विषय भोग में ऐसा रत हुआ कि उसे अपने उद्धारकर्ता के अनुरोध की भी सुधि न रही। राम का क्षोभ देख लक्ष्मण कुपित होकर पूरी किष्किंधा नगरी को जलाकर राख कर देने को उद्यत होते हैं। हनुमान से अपनी विस्मृति की बात सुनकर सुग्रीव भयभीत हो जाते हैं। वानर सैनिकों को बुलाकर 15 दिनों की अवधि के भीतर जनक नंदिनी सीता की खोज खबर लाने का आदेश देते हैं। क्रुद्ध लक्ष्मण के सम्मुख सिर नवाकर बालीपुत्र अंगद अपने राजा की निष्क्रियता के लिए क्षमा याचना करते हैं।

0: संगीत सरिता के श्रोता मित्रों, वर्षा चौमासा श्रृंखला की आज की कड़ी में अब मैं पूछती हूँ शुभाजी से, आज वो किस राग के बारे में बात करेंगी?
1: राग का नाम तो देस है और बहुत ही सबको परिचय भी होगा इस राग से। इसका ऐसे यानी मल्हार का जैसा संबंध है वर्षा ऋतु से, वैसे तो नहीं संबंध है क्योंकि देस में आपको हर प्रकार की बंदिशें मिलेंगी, लेकिन वर्षा संबंधित साहित्य भी देस में काफी मिलता है। और मुझे लगा कि ऐसा कुछ साहित्य, ऐसा एक पद प्रस्तुत किया जाए जिसमें प्रकृति का चित्रण तो हो ही, लेकिन कुछ ऐसी बात हो जो कि जिसमें प्रकृति ही स्वयं वृंद के रूप में वर्षा मंगल मना रही हो,
0: प्रकृति स्वयं

0: वृंद के रूप में, मतलब ये जैसे वृंदगान का ही ये हो गया
1: जी। तो मतलब जी, एक पूरा ऑर्केस्ट्रा जो है वो प्रकृति जो है तैयार कर चुकी है वर्षा की बधाई देने के लिए
0: जी।
1: तो ये मुबारक नाम के कवि की रचना है और बिलग्राम जो जगह है उसके ये कवि हैं, वहाँ बहुत सारे कवि बहुत सारे साहित्यकार रहे। और मुबारक लिखते हैं कि बाजत नगारे घन, घन के नगाड़े बज रहे हैं, ताल देत नदी नारे, ताल देत नदी नारे, जो पानी लपलप करता है नदी नालों में वो भी ताल दे रहा है साथ में। झींगुरन झांझ, झींगुर जो है वो झांझ बजा रहे हैं, झींगुरन झांझ भेरी भृंगन बजाई है, और भृंग जो है वो भेरी बजा रहा है। तो अब देख ली पूजा, पूरा एक ऑर्केस्ट्रा तैयार है। बाजत नगारे घन ताल देत नदी नारे, झींगुरन झांझ भेरी भृंगन बजाई है। कोकिल अलापचारी
0: जी, तो कोकिल का काम है ही
1: अलाप करना। नीलग्रीव यानी नीलकंठ
0: पक्षी है
1: जी। नीलग्रीव नृत्यकारी, वो गर्दन चला के नृत्य करता है। कोकिल अलापचारी नीलग्रीव नृत्यकारी, पौन अर्थात पवन, पौन बीनधारी, वो बीन बजा रही है, चाटी चातक लगाई है, उसके साथ जो चाटी बज रही है वो चातक की है।
0: कितना सुंदर। हाँ,
1: कई अंतरे हैं इस पद में, लेकिन मैंने एक तीन अंतरे चुने हैं गाने के लिए। मणिमाल जुगनू, वर्षा में यदि आप पहाड़ों में देखें तो जुगनू आपको दिखेंगे बारिश के समय में
0: जी।
1: मणिमाल जुगनू मुबारक तिमिर धार, अंधकार जो है उसमें जुगनू चमक रहे हैं ऐसे जैसे कि मणि की माला हो। मणिमाल जुगनू मुबारक तिमिर धार, चौमुख चिराग चारू चपला जराई है।
0: ये जो अनुप्रास है च च च का
1: जी, बिल्कुल
0: जी, इसमें तो, श्लेष भी है
1: जी
0: और अनुप्रास भी है, यमक भी है
1: जी। और कितना देखिए, चिराग जो है वो वैसे हिंदी भाषा का शब्द नहीं लगता, लेकिन चौमुख चिराग चारू चपला जराई है, कितना बढ़िया एक जो सांझी हमारी विरासत है उसका एक छोटा सा उदाहरण है
0: जी।
1: बालम विदेश नए दुख को जन्म भयो, तो विरहनी के लिए हमेशा वर्षा ऋतु में बालम का साथ ना होना वो हमेशा दुख की,
0: और एक नया दुख है ये।
1: हाँ, और तो है ही है कि बारिश हो रही है, ये हो रहा है, सब लोग खुशी मना रहे हैं और हमारे हम क्या खुशी मनाएं। बालम विदेश नए दुख को जन्म भयो, पावस हमारे लिए विरह बढ़ाई है, उसने तो हमारे लिए बहुत ही विरह को और भी आग लगा
0: दी है, काम कर दिया है। हालांकि ये वाद्य वृंद जो है वो अपनी चरम सीमा पे चढ़ जाता है, और ऐसा ऐसा एक ध्वनि का एक समुदाय जो है वो बहुत खुशियां देता है, लेकिन विरहिणी के लिए वो कोई खुशी की बात नहीं, अलग से एक नया दुख उसने पाया है। तो शुभा जी, आपके स्वरों में भी हम इस दुख को, इस सुंदरता को महसूस करेंगे
1: जी, देश राग में और तीन ताल में
0: जी। अच्छा, आप क्या देश राग का चलन पहले सुनाएंगी?
1: जी जरूर, वैसे इसे मिश्रित करके भी बहुत सारे लोग गाते हैं, लेकिन मूल रूप इसका

0: राग देश में हमने सुनी मुबारक की रचना, बहुत ही बढ़िया सी बंदिश। बंदिश के तहत मैं दोनों रूप में सोचती हूँ कि शब्द रचना भी और संगीत रचना भी। और इसे स्वर देने वाली हमारी अतिथि कलाकार शुभा जी अभी इजाजत चाहते हैं। शुभा जी नमस्ते।
1: नमस्कार।
2: संगीत सरिता में आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। संगतकार हैं हारमोनियम पर सुधीर नायक, तबले पर संगत की अनीश प्रधान ने, ध्वन्यांकन चित्रलेखा जैन, तकनीकी सहयोग विनीता ढोलकिया। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित कार्यक्रम संगीत सरिता FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम महाकाल वंदन।

जय श्री महाकाल। सारे संसार को विष से बचाने के लिए स्वयं हलाहल को अपने कंठ में धारण करने वाले श्री नीलकंठ महादेव बड़े कृपालु हैं। आइए सुनते हैं उनके चरणों में अर्पित ये भक्ति रचना सुरेश वाटकर और अनुराधा पौडवाल के स्वर में।

श्रोताओं, इस भक्ति रचना के साथ ही आज का महाकाल वंदन अब यहीं संपन्न होता है। बाबा महाकाल की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। जय श्री महाकाल।

FM 102.5 MHz पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आकाशवाणी उज्जैन से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम आप सुन सकते हैं अब अपने मोबाइल पर भी न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से। आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें।

सुबह 7:20 पर सुनिए कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन। 8:30 पर हम आपके लिए लेकर आते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम उज्जैनी आरजे। नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स आप सुन सकेंगे सुबह 9:30 पर। सुबह 10:00 आज आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम उज्जैन दर्शन। महिला श्रोताओं के लिए कार्यक्रम महिला सभा आप सुन सकेंगे सुबह 10:30 पर। सुबह 11:10 पर सुनिए राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय भवन सांस्कृतिक केंद्र में केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा आयोजित 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह का आकाशवाणी दिल्ली से सीधा प्रसारण। दिन में 12:05 पर समय होता है यादों की महफिल का। सुरीला सफर ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दोपहर 1:00। दोपहर 2:30 पर सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। महिला श्रोताओं के लिए कार्यक्रम सखी सहेली आप सुन सकेंगे दोपहर 3:00। पिटारा में आज सुनिए गीतों भरी कहानी शाम 4:00। हमारे केंद्र की सांध्यकालीन सभा के आरंभ में सुनिए युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युववाणी।

शाम 5 बजे। श्रोताओं, आपको बता दें, आज युवाणी में होगा सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें आप फोन लगाकर अपने विचार हमारे श्रोताओं के साथ साझा कर सकते हैं। फोन लगाने के लिए हमारा फोन नंबर है 07-34-405-4191, 07-34-405-4191। शाम 6 बजे समय होता है भजन संध्या का। शाम 6:30 पर सुनिए विशेष कार्यक्रम पावस और सावन पर केंद्रित विशेष मालवी कवि गोष्ठी। सात 7:21 पर प्रसारित किया जाएगा मालवी बोली का विशेष कार्यक्रम माटेरी बात। 8 बजे सुनिए संसद समीक्षा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। सुर्खियों में ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 8:15 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। रात 8:15 पर आकाशवाणी उज्जैन से आपको फिल्म संगीत सुनवाया जाएगा और हम आपको पुनः ले चलेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र और सुनवाएंगे उर्दू समाचार 9:15 पर, खेल पत्रिका 9:30 पर और फिल्म संगीत 9:45 पर। रात 10 बजे सुनिए संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी 10:30 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। 11:10 पर आप सुनेंगे एफएम गोल्ड के कार्यक्रम जो दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाते हैं। तो ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। सुबह के 7:10 होने को हैं। कुछ ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज करेंगे जन विश्वास अभियान का शुभारंभ। प्रदेश भर में होंगे कार्यक्रम। भोपाल में चल रहे ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन के तीसरे दिन आज ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देशों के संस्कृति मंत्री होंगे शामिल। और प्रदेश में इस बार अभी तक औसत से कम बारिश हुई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 7 अगस्त 1905 को भारत के स्वाधीनता संग्राम के हिस्से के रूप में स्वदेशी आंदोलन का शुभारंभ किया गया था और समाज के हर वर्ग के लोगों ने एकजुट होकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी। प्रधानमंत्री ने लोगों को निर्धन बुनकर परिवारों और अपने हाथों से कपड़े बनाने वाले कलाकारों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने तथा इससे संबंधित वीडियो बनाने और उस वीडियो को देश विदेश में साझा करने का आग्रह भी किया ताकि भारतीय शिल्पकारों के कौशल और शिल्प को वैश्विक पहचान मिल सके।
2: हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब परिवार, बुनकर परिवार जो अपने हाथों से अपनी छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं, और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख

0: सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना।
1: 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को मनाना तथा राष्ट्र के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के लिए हथकरघा बुनकर समुदाय के योगदान को मान्यता प्रदान करना है। समारोह में बुनकरों को 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कारों सहित कुल 22 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज छिंदवाड़ा से जनविश्वास अभियान का शुभारंभ करेंगे। शासन और प्रशासन ने अभियान को सफल बनाने के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। मंत्रालय से लेकर जिले तक के सभी अधिकारी अब से प्रत्येक शुक्रवार को दफ्तर छोड़कर फील्ड में जनमानस के सामने होंगे। खंडवा जिले में अभियान के पहले दिन आज अधिकारियों का दल खालवा विकासखंड के ग्राम सुंदर देव का दौरा करेगा। वहीं अशोकनगर की जनपद पंचायत मुंगावली के ग्राम पंचायत बीड़ में शिविर का आयोजन किया जाएगा। आगरमालवा जिले में 19 शिविरों का आयोजन किया जाएगा। जनविश्वास अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में जाकर जनता से सीधा संवाद एवं जुड़ाव, शिकायतों एवं समस्याओं का 100% निराकरण करना, फील्ड की वास्तविक स्थितियों का फीडबैक प्राप्त करना और प्रशासन की पारदर्शी और संवेदनशील छवि का निर्माण करना है। धार, झाबुआ और नर्मदापुरम सहित प्रदेश के सभी जिलों में इस अभियान के तहत शिविरों का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश की राजधानी भोपाल में चल रहे ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन का आज 3रा दिन है। इसमें ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देशों के संस्कृति मंत्री शामिल हो रहे हैं। शाम को प्रमुख ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित किया जाएगा, जो भारत और भाग लेने वाले ब्रिक्स देशों के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। इससे पहले कल ब्रिक्स सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई। इस महोत्सव में ब्रिक्स सदस्य एवं शामिल देशों के कलाकारों ने अपनी पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से विभिन्न देशों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का परिचय कराया और सांस्कृतिक आदान प्रदान तथा आपसी सहयोग की भावना को सशक्त बनाया। अब समाचार में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश हरित ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे तेज गति से कार्य कर रहा है। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के उत्पादन के प्रयास निरंतर बढ़ रहे हैं। कल नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय नवकरणीय ऊर्जा सम्मेलन के सोशल मीडिया एक्स में एक पोस्ट में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश भारतीय रेलवे सहित 8 राज्यों में ऊर्जा की आपूर्ति का कार्य कर रहा है। प्रदेश आने वाले समय में स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास के क्षेत्र में देश का अग्रणी केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आगर शाजापुर नीमच सौर परियोजना में 2.14 रुपये प्रति यूनिट का रिकॉर्ड न्यूनतम सौर टैरिफ प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा के बिना विकास की कल्पना अधूरी है और ऊर्जा क्षेत्र ने मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नई गति दी है।
3: मध्य प्रदेश के अंदर हम सभी प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर के साथ साथ आज की स्थिति में 29,000 मेगावाट की क्षमता जो हमारी ऊर्जा के मामले में हमारे आने वाले कई आगे साल तक की और नए नए प्रोजेक्ट लेते हुए लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। आज के समय में ऊर्जा के बिना विकास की कल्पना भी करना मुश्किल है। हमारे अपने राज्य के अंदर एनर्जी सेक्टर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट इसी सेक्टर में हुआ।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड और टाटा स्ट्राइव के बीच 2 वर्ष की अवधि के लिए साझेदारी समझौता किया गया है। MOU पर मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की ओर से डायरेक्टर कौशल डीपी सिंह और टाटा स्ट्राइव की ओर से मुख्य कार्यपालन अधिकारी अमेया वंजारी ने हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण होम स्टे संचालकों की आय में वृद्धि करना, विश्व स्तरीय आतिथ्य मानकों के अनुरूप सेवाएं विकसित करना तथा स्थानीय स्तर पर युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर निर्मित करना है। साझेदारी के प्राथमिक हितग्राही ग्रामीण होम स्टे संचालक, स्थानीय युवा और पर्यटन सेवा प्रदाता होंगे। देश ने ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज के मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। यह परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वावधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारत के बंदरगाहों की सफलता

केवल माल ढुलाई से नहीं बल्कि उनकी मजबूत सुरक्षा से भी तय होगी। नई दिल्ली में आयोजित दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन में श्री सोनोवाल ने कहा कि देश में बढ़ते बंदरगाहों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को देखते हुए आधुनिक और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था जरूरी है। उन्होंने कहा कि बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल, बेहतर तालमेल और साइबर सुरक्षा को मजबूत करना होगा। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान चंबल, रीवा, शहडोल, भोपाल और इंदौर संभागों के जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश हुई, जबकि ग्वालियर, जबलपुर और सागर संभागों के जिलों में कहीं कहीं बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के अनुसार इस मानसून सीजन में अभी तक प्रदेश में औसत से कम बारिश दर्ज की गई है। अब तक प्रदेश में 16.3 इंच बारिश दर्ज की गई, जबकि इस अवधि तक 20 इंच बारिश होनी चाहिए थी, यानी प्रदेश में करीब 19% कम बारिश हुई है। बारिश की कमी का असर प्रदेश के 49 जिलों में देखने को मिल रहा है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिसके प्रभाव से आगामी दिनों में प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। संस्कृति विभाग के तुलसी शोध संस्थान द्वारा आयोजित समारोह में कल तुलसी मानस प्रतिष्ठान में वर्ष 2026 का युग तुलसी पंडित राम किंकर उपाध्याय राष्ट्रीय पुरस्कार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय को प्रदान किया गया। इंदौर ग्रामीण रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अनुराग ने कल झाबुआ जिले में निर्माणाधीन पुलिस अधीक्षक कार्यालय भवन का निरीक्षण किया और कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। धार जिला मुख्यालय पर भोज शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आज युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। खंडवा शासकीय आईटीआई में आयोजित युवा संगम रोजगार मेले में कल 455 युवाओं का प्राथमिक चयन कर ऑफर लेटर प्रदान किए गए और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 72 युवाओं का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। आगरमालवा जिले के तनोडिया में आज युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बैंक स्वरोजगार ऋण और योजनाओं की जानकारी देंगे और डिंडोरी कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में कल महिला जन प्रतिनिधियों की जिला स्तरीय कार्यशाला में नशा मुक्त भारत अभियान सहित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज करेंगे जनविश्वास अभियान का शुभारंभ। प्रदेश भर में आयोजित होंगे कार्यक्रम। भोपाल में चल रहे ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन में आज तीसरे दिन ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देशों के संस्कृति मंत्री होंगे शामिल और प्रदेश में इस बार अभी तक औसत से कम बारिश हुई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन।

नमस्कार, सुप्रभात। रिमझिम फुहारों के बीच खिली आज की ये खुशनुमा सुबह प्रकृति के एक नए रूप का दर्शन करा रही है। बारिश की बूंदों से धुली हरी भरी पत्तियां और मिट्टी की वो सौंधी महक मन में सकारात्मक ऊर्जा भर देती है। ऐसी सुबह हमें सिखाती है कि जीवन में हमेशा नई शुरुआत की गुंजाइश रहती है। शहरवासियों की दिनचर्या भी रफ्तार पकड़ने लगी है। हाथों में छाते लिए सुबह की सैर पर निकले लोग, कंधे पर बैग और हाथ में पानी की बॉटल लिए स्कूल बस की राह देखते बच्चे और कहीं रसोई घर से आ रही अदरक वाली चाय की वो महक इस पूरे वातावरण को खुशनुमा बना रही है। और इस खुशनुमा वातावरण में आकाशवाणी उज्जैन के कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन में मैं हूँ आपकी दोस्त रश्मि बजाज भराड़िया। आज 7 अगस्त 2026 की इस सुखद सुबह में आप सभी का आत्मीय स्वागत है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं फिल्म 20 साल बाद से ये गीत, जिसे गाया है हेमंत कुमार ने।

श्रोताओं, सुप्रभात। उज्जैन में हम बात करते हैं उज्जैन से जुड़ी हुई कुछ खास विकासात्मक खबरों की, और उसी में पहली बात यह है कि शहर के बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर एक सकारात्मक जानकारी सामने आई है। उज्जैन गरोट हाईवे पर अधूरे पड़े रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य ने अब गति पकड़ ली है। इसके लिए रेलवे की तरफ से ब्लॉक मिलना शुरू हो गया है। लगभग 2700 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए 136 किलोमीटर लंबे इस हाईवे पर आवागमन जल्द ही सुगम होने की उम्मीद है। संभावना जताई जा रही है कि दिसंबर 2026 तक इस ब्रिज का काम पूरा कर लिया जाएगा। इस ब्रिज के बन जाने से शहर के भीतरी मार्गों पर भारी वाहनों का दबाव कम होगा, साथ ही राजस्थान और दिल्ली की तरफ जाने वाले यात्रियों को एक सुगम और सुरक्षित मार्ग का विकल्प मिल सकेगा। इस खबर के साथ ही आइए सुनते हैं फिल्म गाइड से ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

श्रोताओं, सुबह के 7:30 हो चुके हैं और अब समय है सुप्रभात उज्जैन के उस भाग का जिसका नाम है समाचार पत्रों से, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं आज के समाचार पत्रों से सकारात्मक खबरें। और आज की पहली खबर है जीवन को जन्म देने वाली माँ के स्वास्थ्य की। गर्भवती माताओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 10 अगस्त को जिले भर में सुरक्षित मातृत्व शिविर लगाए जाएंगे। इसका उद्देश्य जोखिम भरी गर्भावस्था का समय पर प्रबंधन करना है। शिविर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलेंगे। माताओं की जांच, उपचार और सोनोग्राफी की मुफ्त सुविधा वहां होगी। शिविर में स्त्री रोग विशेषज्ञ भी मौजूद रहेंगी। अगली खबर है यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित। यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसी दिशा में रेलवे स्टेशन पर नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक किया गया। चलती ट्रेन में चढ़ने, ट्रैक पार करने और रील बनाने के खतरों के प्रति आगाह किया गया है। ऐसी लापरवाही जानलेवा हो सकती है। रेलवे अधिनियम के तहत ये दंडनीय अपराध भी है, जिसमें जुर्माना और जेल दोनों का प्रावधान है। तो श्रोताओं, सतर्क रहें और सुरक्षित यात्रा करें। अगली खबर खेल प्रेमियों के लिए है। राजमाता विजयराजे सिंधिया खेल परिसर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं का विकास हो रहा है। यहां लगभग 48 करोड़ रुपए की लागत से सिंथेटिक हॉकी एस्ट्रोटर्फ बनाया जा रहा है, जिसका लगभग 10% काम पूरा हो चुका है। मैदान में लगभग 800 दर्शकों के बैठने की क्षमता वाला पवेलियन भी बनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हॉकी मैदान तैयार होने से इंटरनेशनल प्रतियोगिताएं आयोजित करने का रास्ता खुलेगा। दोस्तों, प्रकृति से जुड़ाव महसूस करने वालों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि शहर में जू का निर्माण होगा। इसे सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मंजूरी मिल गई है। लगभग 210 हेक्टेयर जमीन पर ये प्रोजेक्ट 2 चरणों में पूरा होगा और यहाँ तकरीबन 300 अलग अलग प्रजातियों के जानवर लाए जाएंगे। श्रोताओं, आज उज्जैन के महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय में संस्कृति मंत्रालय के ज्ञान भारतम मिशन के सहयोग से विश्वविद्यालय में आज नए पांडुलिपि संरक्षण एवं डिजिटलीकरण केंद्र का शुभारंभ होने जा रहा है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के विश्वरूप सभागार में एक विशेष बैठक का आयोजन भी किया जा रहा है। इस बैठक में हमारी प्राचीन पांडुलिपि धरोहर को सुरक्षित रखने, नए संग्रह केंद्र स्थापित करने और पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण की कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी। अगली खबर है अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य और उनकी उच्च शिक्षा को सुगम बनाने के लिए एक जरूरी

अपडेट के बारे में। शैक्षणिक सत्र 2025-26 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति और आवास सहायता योजना का लाभ लेने के लिए MPTAAS पोर्टल को एक बार फिर से खोल दिया गया है। विद्यार्थी अब 30 सितंबर तक इस पोर्टल पर अपना आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रहे कि इसके बाद ये पोर्टल दोबारा नहीं खोला जाएगा। आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवेदकों को अपना स्कोर कार्ड और इंस्टीट्यूट एडमिशन रसीद पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। ये आर्थिक सहायता कई विद्यार्थियों को बिना किसी बाधा के अपनी पढ़ाई जारी रखने में एक बड़ा संबल प्रदान करेगी। समाचार पत्रों से सुप्रभात के इस सेगमेंट में आज के लिए बस इतना ही, और इसी के साथ आइए सुनते हैं फिल्म प्रेम रोग से सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत।

0: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
1: पानी के छींटे व्यर्थ में न उड़ाएं।
0: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
1: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
0: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
1: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
0: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
1: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
0: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
1: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
0: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
1: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
0: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
1: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
2: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे।
1: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
0: समय है पानी बचाने का,
1: पानी का मोल समझने और समझाने का।
0: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।
3: श्रोताओं, FM 102.5 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन से कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन, और मैं हूं आपकी रेडियो सखी रश्मि बजाज। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उज्जैन जिले में एक बहुत ही सार्थक पहल की गई है। उज्जैन जनपद का ग्रीन बिल्डिंग मिशन अब पूरे प्रदेश के लिए एक उदाहरण बनने जा रहा है। इस मिशन के अंतर्गत जिले की लगभग 76 ग्राम पंचायतों के भवनों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाए गए हैं। अब ये पंचायतें खुद की बनाई बिजली से रोशन होंगी। हर पंचायत भवन में लगभग 3 किलोवाट क्षमता के पैनल स्थापित किए गए हैं। इससे हर वर्ष बिजली बिल में 7 लाख रुपए तक की बड़ी बचत होने का अनुमान है। इस कदम से न केवल

आर्थिक बोझ कम होगा बल्कि हमारी ग्राम पंचायतें ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकेंगी। ये पहल प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी को भी दर्शाती है। उज्जैन के विकास की बातें अभी और भी होंगी, पर उससे पहले आइए सुनते हैं फिल्म पत्थर के सनम से ये गीत, जिसे गाया है मुकेश और लता मंगेशकर ने।

श्रोताओं, आगामी सिंहस्थ 2028 महापर्व को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस वृहद आयोजन में 30 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मेला क्षेत्र को 10 जोन और 40 सेक्टरों में बांटा जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था में लगभग 63,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। भीड़ प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग होगा, जिसमें लगभग 3,500 AI आधारित CCTV कैमरे और लगभग 416 ड्रोन शामिल रहेंगे। ये उन्नत तकनीक भगदड़ जैसी किसी भी स्थिति से पहले ही अलार्म बजाकर चेतावनी दे देगी। इन सभी उपायों से हमारा महाकुंभ पूरी तरह सुरक्षित रूप से संपन्न हो सकेगा, ऐसी आशा है। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं फिल्म बरसात से ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

श्रोताओं, सुनने में आ रहा है कि उज्जैन का प्राचीन बड़ा गणेश मंदिर इस वर्ष से एक अनूठी परंपरा का आरंभ करने जा रहा है। देश भर में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, लेकिन उज्जैन के प्राचीन गणेश मंदिर में इस साल आज़ादी का ये पर्व 11 अगस्त को मनाया जाएगा। मंदिर प्रबंधन समिति का मानना है कि अन्य भारतीय त्योहारों की तरह ही स्वतंत्रता दिवस भी अंग्रेजी कैलेंडर की जगह पंचांग की तिथि के अनुसार मनाया जाना चाहिए। 15 अगस्त 1947 को श्रावण कृष्ण चतुर्दशी थी और वैदिक पंचांग के अनुसार ये तिथि इस वर्ष 11 अगस्त को पड़ रही है। इस दिन मंदिर में कई धार्मिक और देशभक्ति के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। महाआरती, वंदे मातरम और देशभक्ति गीतों की गूंज के बीच मंदिर के शिखर पर तिरंगा फहराया जाएगा। और श्रोताओं, आज 7 अगस्त है और आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है, यानी नेशनल हैंडलूम डे। ये खास दिन हमारे देश की शानदार बुनाई परंपरा और उन लाखों मेहनतकश बुनकरों को समर्पित है जो अपने हाथों से धागों में जादू पिरोते हैं। हमें स्वदेशी को बढ़ावा देते हुए अपने स्थानीय कारीगरों के अद्भुत हुनर का सम्मान करना चाहिए। इस खबर के साथ ही आइए सुनते हैं फिल्म दिल तेरा दीवाना से ये गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने।

श्रोताओं, भारतीय साहित्य और कला जगत में एक ऐसा नाम है जो हम सबके दिलों में गहरी छाप छोड़ता है। वो नाम है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का। एक महान कवि, संवेदनशील लेखक और गहरे विचारक के रूप में उन्होंने अपनी अनमोल रचनाओं से पूरी दुनिया को प्रभावित किया। वे सिर्फ साहित्यकार ही नहीं बल्कि एक ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने इंसानियत और प्रकृति के बीच के खूबसूरत रिश्ते को बड़ी सरलता से अपने शब्दों में पिरोया। साल 1913 में उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए उन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये सर्वोच्च सम्मान पाने वाले वे पहले भारतीय ही नहीं बल्कि पहले एशियाई भी थे। उनका लिखा हमारा राष्ट्रगान जनगण मन आज भी हम सभी में देशभक्ति का संचार करता है। गुरुदेव का हमेशा से ये मानना था कि सच्ची शिक्षा वही है जो हमें जीवन और प्रकृति से गहराई से जोड़े रखे। उनके अनमोल विचार, कहानियां और कविताएं आज भी हमें प्रेम, शांति और मानवता का सच्चा पाठ पढ़ाती हैं। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें शत-शत नमन करते हैं। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, फिल्म महबूबा से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में।

श्रोताओं, सुप्रभात उज्जैन के इस अंक में आज बस इतना ही। उम्मीद है आज का अंक आपको पसंद आया होगा और आपकी सुबह को एक नई सकारात्मक सोच से भर गया होगा। फिर किसी अंक में कुछ नई जानकारियों के साथ

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं अब समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़ का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने गोवा में अनुसूचित जनजाति समुदाय को राजनीतिक आरक्षण देने से जुड़े अधिनियम की अधिसूचना जारी की। लोकसभा ने यूपीआई लेन देन पर बैंकों को शुल्क लगाने की अनुमति देने के लिए सरकार को अधिकृत करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर देशवासियों से हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने राज्य सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म आधारित नागरिकता पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की रक्षिता रामराज से। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनः समायोजन अधिनियम 2025 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है।
5: भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार यह अधिनियम 6 अगस्त 2026 से प्रभावी हो गया है। इससे राज्य की अनुसूचित जनजाति समुदायों की लंबे समय से प्रलंबित मांग पूरी हुई है और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्समायोजन तथा सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि यह अधिनियम अनुसूचित जनजाति समुदायों को लंबे समय से अपेक्षित न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डॉ. सावंत ने इस कानून को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सबका साथ सबका विकास की भावना को प्रतिबिंबित करता है। महेश सोपरेख, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
4: लोकसभा ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। इसके अंतर्गत सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान साधनों के माध्यम से किए गए भुगतानों पर शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है।
6: सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं पर मामूली शुल्क लगाना है। साथ ही बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं पीएसपी और डिजिटल भुगतान प्रणाली को संचालित करने वाली भुगतान और संरचना फर्मों के लिए एक स्थायी राजस्व मॉडल सुनिश्चित करना है। सदन द्वारा पारित संशोधन में उस मौजूदा कानून प्रावधान को हटाने का प्रयास किया गया है जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों पर व्यापारी छूट दर MDR वसूलने से रोकता है। वहीं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर NEFT के माध्यम से किए गए रियल टाइम भुगतानों पर पहले से ही ऐसा शुल्क लगता है। UPI लेन देन अब तक ऐसे शुल्कों से मुक्त रहे हैं। भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम में प्रस्तावित परिवर्तन कराधान पर व्यापक कानून का हिस्सा है जिसे मंगलवार को सदन में पेश किया गया। सदन की कार्यवाही के पहले स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर लोकसभा में विधेयक पारित किया गया। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
4: पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने देश की समुद्री सुरक्षा व्यवस्था में प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर तथा भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हों। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को ध्यान में रखकर सरकार कई अहम कदम उठा रही है।
7: देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और उसी के आधारित अगले दिनों पर हम ऐसा एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल ब्यूरो ऑफ नेशनल पोर्ट सिक्योरिटी गठन करेंगे जिससे जनता की अपेक्षा के मुताबिक हम अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभा पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 साल में हम जो तरक्की की है आज दुनिया ने देखी है। पोर्ट्स इंडस्ट्री मैरिटाइम एक्सपर्ट टुगेदर ऑन वन प्लेटफॉर्म।
4: देश ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वावधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध रांची में विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने इस मुद्दे को सुलझाने में राज्य सरकार से बातचीत करने के लिए 11 सदस्यीय दल का गठन किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में चल रहा आंदोलन एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुका है।
8: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन आज 14वें दिन भी जारी है। राजधानी रांची में 6 छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कल शाम आंदोलनरत छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से फ्लैशलाइट मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। इसके बाद रांची सदर के SDM रजत कुमार और ADM धनंजय कुमार ने धरना स्थल पहुंचकर छात्रों से मुलाकात की। छात्र नेताओं का कहना है कि कल शाम तक राज्य सरकार की ओर से वार्ता का कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला था। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बातचीत के लिए दरवाजे खुलने के बयान के बाद छात्रों ने सरकार से वार्ता के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया है। इस मुद्दे को लेकर विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन विपक्षी NDA विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन कर CBI जांच की मांग की। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि यदि 13 अगस्त तक राज्य सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो वो भी छात्रों की भूख हड़ताल में शामिल होंगे। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। इस अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। एक रिपोर्ट।
9: इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार होगा। कुल 22 बुनकरों को उनके शिल्प कला, नवाचार और भारत की हथकरघा परंपराओं को संरक्षित करने में योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। 2 प्रकाशन अर्थ और रूट तथा मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्रों और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। इस अवसर पर पारंपरिक कानी बुनाई और वॉल हैंगिंग बुनाई की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 1905 को शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 2015 में इसकी शुरुआत के बाद से शिल्प कला कौशल और देश के हथकरघा बुनकरों के समर्पण का उत्सव मनाने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों को बुनकर परिवारों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने और इससे संबंधित एक वीडियो बनाकर साझा करने का आग्रह किया।
10: मैं आज आग्रह करता हूं, 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें। उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
4: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को सीमित करने और केवल बच्चे को जन्म देने के उद्देश्य से अमेरिका जाने वाले पर्यटकों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से दो कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन अमेरिकी आव्रजन प्रणाली के दुरुपयोगों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है। एक रिपोर्ट।
11: व्हाइट हाउस के अनुसार आदेश में विदेशी नागरिकों के उन बच्चों की श्रेणियों की पहचान की गई है जो अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त ऐतिहासिक अपवादों के तहत जन्मजात नागरिकता के पात्र नहीं होंगे, जबकि दूसरा आदेश देश और गृह सुरक्षा विभागों को जन्म पर्यटन को समाप्त करने का निर्देश देता है, जिसमें विदेशी नागरिक मुख्य रूप से अपने बच्चों के लिए नागरिकता प्राप्त करने के उद्देश्य से अमरीका की यात्रा करते हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
4: मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरलम, माहे, उड़ीसा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी दिन के दौरान तेज वर्षा हो सकती है। असम में इस साल बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 97 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
12: असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार करगोलाघाट और उदालगुरी जिलों में बाढ़ से एक एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। राज्य में अब तक 480 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि हजारों लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। शिवसागर, गोलाघाट, चोरहाट और सरायदेव जैसे सर्वाधिक प्रभावित जिलों में बाढ़ की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। बाढ़ के बाद की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य शिविरों और चिकित्सा सेवाओं को तेज कर दिया है। जल जनित बीमारियों की रोकथाम और प्रभावित लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
4: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से होगा। अश्मिता चालिया का सामना जापान की हिना अकेची से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
13: धन्यवाद प्रियंका। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में लागू नहीं हो सकती क्रीमी लेयर प्रणाली। सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के हलफनामे को नवभारत टाइम्स सहित अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। मंत्रिमंडल के फैसलों पर भी अखबारों की नजर है। हिंदुस्तान ने लिखा है बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गोबरधन योजना को मंजूरी। सीएनजी और पीएनजी में क्रमिक तरीके से 5% तक बायोगैस को मिलाया जाएगा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है देश में डीप फेक कंटेंट से निपटने के लिए नए आईटी नियम लागू। अब 36 नहीं 3 घंटे में हटाना होगा एआई से बना फर्जी वीडियो। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है बीमा दावा निपटान में देरी पर 2% ब्याज के साथ दावे की रकम दी जाएगी। दावे की प्रक्रिया पारदर्शी, आसान और जवाबदेह बनाने के लिए कई अहम बदलाव किए गए। जेंजी हमारी पीढ़ी से अधिक ईमानदार, उनकी बात सुननी चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान को अमर उजाला सहित अधिकांश अखबारों ने प्रकाशित किया है। 2013 के दुष्कर्म मामले में तहलका के पूर्व संपादक तेजपाल को 10 वर्ष कैद की सजा मिलने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों ने दिया है। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है तरुण तेजपाल के प्रति नरमी बरतने का आधार नहीं है, महिला सुरक्षा के लिए जो कानून बने हैं उनका पालन होना ही चाहिए। वायुसेना की पहली महिला टॉप गन बनी भावना कंठ। राजस्थान पत्रिका ने बताया है कि स्क्वाड्रन लीडर भावना ने ग्वालियर स्थित टेक्सटिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट का प्रतिष्ठित लड़ाकू प्रशिक्षण कार्यक्रम फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा कर ये उपलब्धि हासिल की।
4: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने गोवा में अनुसूचित जनजाति समुदाय को राजनीतिक आरक्षण देने से जुड़े अधिनियम की अधिसूचना जारी की। लोकसभा ने यूपीआई लेनदेन पर बैंकों को शुल्क लगाने की अनुमति देने के लिए सरकार को अधिकृत करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर देशवासियों से हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने राज्य सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म आधारित नागरिकता पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से दो कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
14: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Centre notifies Act paving way for reservation for ST community in Goa Assembly. Lok Sabha passes bill to authorize government to permit banks to levy charges on UPI transactions. Prime Minister Narendra Modi calls upon people to celebrate National Handloom Day today, showcasing India's rich and diverse handloom heritage and promote handloom products. Protesting Jharkhand students form 11-member team to hold talks with state government. US President Donald Trump signs 2 executive orders aimed at restricting birthright citizenship and curbing birth tourism. And in badminton, Tanvi Sharma to face compatriot Rakshita Ramraj in the women's singles quarterfinal of Korea Masters in Assam today. The centers notified the implementation of the readjustment of the representation of scheduled tribes in assembly constituencies of the State of Goa Act 2025, paving the way for reservation of assembly seats for scheduled tribes in Goa. We have more details from a correspondent.
15: According to the notification published in the Gazette of India, the Act came into force from 6 August 2026, fulfilling a long-pending demand of the state's tribal communities and enabling the process of constituency readjustment and reservation. Welcoming the development, Goa Chief Minister Dr. Pramod Sawant described it as a promise fulfilled. In a social media post, he said the Act marks a decisive step towards ensuring long-overdue justice and political representation for the scheduled tribe. Dr. Sawant thanked Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah for making the legislation a reality, saying it reflects the spirit of Sabka Saath, Sabka Vikas. Mahesh Sopre, Akashwani News, Panji.
14: Lok Sabha has passed a bill to amend the Payment and Settlement Systems Act 2007, authorizing the government to permit banks and other service providers to levy charges on payments made through the Unified Payments Interface UPI and other notified electronic payment modes. The government's approach aims to levy small charge on digital payment services for consumers and small businesses while ensuring a sustainable revenue model for banks, payment service providers, PSPs, and payment infrastructure firms that drive the digital payments ecosystem. The amendment passed by the House seeks to remove the existing legal provision that prevents banks and payment service providers from charging merchant discount rate, MDR, on notified electronic payment modes. While real-time payments made through RTGS and NEFT already attract service charges, UPI transactions have so far remained exempt from such fees. Prime Minister Narendra Modi has urged every citizen to celebrate National Handloom Day today with enthusiasm and joy. Sharing a video message, Mr. Modi said,

FM 102.5 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन का प्रसारण, जिसे अब आप सुन सकते हैं अपने मोबाइल पर भी न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम उज्जैनी RJ।

नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। सावन की इस खूबसूरत और रिमझिम बारिश वाली सुबह में आप सभी का स्वागत है। प्रकृति आज पूरी तरह से हरियाली की चादर ओढ़े हुए है। हल्की हल्की फुहारों के बीच ठंडी हवाएं और सावन के झूलों पर बजते मल्हार मन को एक अलग ही सुकून दे रहे हैं। सुबह सुबह चाय की प्याली के साथ बालकनी में बैठकर इस मौसम को निहारना या फिर घर के कामों के बीच गुनगुनाना हर किसी की सुबह का यही खुशनुमा रूटीन होता है। आज की सुबह भी कुछ ऐसी ही सुरीली होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी महान शख्सियत की जिनकी मखमली और शास्त्रीय संगीत में सधी आवाज ने दशकों तक सिनेमा को एक अलग ही गहराई दी है। तो चलिए सुरों के सफर पर चलते हैं उज्जैनी आरजे के इस खास मजे हुए मंच पर आपकी अपनी दोस्त अपनी आरजे रश्मि बजाज के संग।

दोस्तों, 7 अगस्त 1955 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जन्मे महान गायक सुरेश वाडकर का आज जन्मदिन है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उनका शुरुआती जीवन कुश्ती के अखाड़ों के इर्द गिर्द बीता था। जी हाँ, सुरेश वाडकर के पिता एक मिल में काम करने के साथ साथ कुश्ती का शौक रखते थे और वे चाहते थे कि उनका बेटा भी पहलवान बने। इसी कारण बचपन में उन्हें मिट्टी के अखाड़े में पहलवानी के गुर सीखने पड़े। लेकिन कुश्ती के कड़े अनुशासन के बीच भी सुरेश वाडकर के मन में संगीत का बीज पनप रहा था। उनके पिता संगीत के भी बड़े शौकीन थे और भजन गाया करते थे। मात्र 4 साल की उम्र में जब सुरेश वाडकर ने अपनी गायकी का एक छोटा सा नमूना पेश किया तो परिवार को ये समझते देर नहीं लगी कि ये लड़का अखाड़े की मिट्टी से नहीं बल्कि सुरों की दुनिया से अपनी असली पहचान बनाएगा।

दोस्तों, सुरेश वाडकर के जीवन का सबसे बड़ा और अहम मोड़ साल 1976 में आया। उन दिनों सुर सिंगार संसद नाम की एक बहुत प्रतिष्ठित गायन प्रतियोगिता हुआ करती थी। इस प्रतियोगिता में पूरे भारत से युवा गायक हिस्सा लेने आते थे। सुरेश वाडकर ने भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में संगीतकार रविंद्र जैन, जयदेव, हृदयनाथ मंगेशकर और साथ ही पंडित शिव कुमार शर्मा जैसी भारतीय संगीत की कई महान हस्तियां शामिल थीं। सुरेश वाडकर ने वहां इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया कि उन्हें उस प्रतियोगिता का प्रतिष्ठित मदन मोहन पुरस्कार दिया गया। उनके हुनर को देखकर वहां मौजूद मशहूर संगीतकार रविंद्र जैन इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भरे मंच से ये ऐलान कर दिया कि वे इस युवा प्रतिभा को अपनी अगली फिल्म में सबसे पहला ब्रेक देंगे। ये पल सुरेश वाडकर की जिंदगी और उनके करियर की एक बहुत ही शानदार शुरुआत का प्रतीक बन गया।

0: प्रदूषित पानी पीने से हम हो सकते हैं बीमार,
1: फैल सकती है महामारी, खतरे में पड़ सकती है जिंदगी,
0: छीन सकती है खुशियाँ हमारी। इसलिए पानी के स्रोत को रखें हम साफ,
1: फैलाएं नहीं गंदगी उसके आसपास,
0: पानी को रखें हम हमेशा ढककर
1: और उसको पिएं छानकर उबालकर,
0: पीने के पानी में हम हाथ नहीं डालें,
1: लंबी डंडी वाले बर्तन से पानी निकालें।
2: पानी रे पानी,
3: पानी पानी रे पानी,
0: आओ मिलकर करें प्रयास,
1: शुद्ध पानी हो सबके पास।
4: दोस्तों, रविंद्र जैन ने अपना वादा निभाया और साल 1977 में आई राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म पहेली, और वहीं से सुरेश वाडकर को बॉलीवुड में अपना पहला बड़ा ब्रेक मिला। इस फिल्म में उन्होंने राजश्री बैनर के लिए एक बहुत ही प्यारा लोकगीत शैली का ट्रैक रिकॉर्ड किया। पहेली फिल्म से ही सुरेश वाडकर का असली संघर्ष और प्लेबैक सिंगिंग का सफ़र शुरू हुआ। पहली फिल्म मिलने के बाद भी राहें आसान नहीं थीं, लेकिन उनकी आवाज़ की सादगी और शास्त्रीय संगीत की मजबूत पकड़ ने संगीतकारों का ध्यान उनकी ओर खींचना शुरू कर दिया था। इस दौरान सुरेश वाडकर

मशहूर संगीतकार जयदेव जी के साथ एक सहायक के रूप में भी काम करते रहे। स्टूडियो में काम करते हुए उन्होंने न केवल गाना सीखा बल्कि ये भी बहुत करीब से देखा कि गानों की रिकॉर्डिंग और कंपोजिशन की पूरी तकनीकी प्रक्रिया किस तरह से काम करती है।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: FM 102.5 MHz पर आकाशवाणी उज्जैन से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम उज्जैनी आरजे, अपनी आरजे रश्मि बजाज के साथ, और हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध गायक सुरेश वाडकर के जीवन के बारे में। सुरेश वाडकर के जीवन का एक और बेहद अहम किस्सा भारतीय सिनेमा की स्वर कोकिला लता मंगेशकर से जुड़ा है। जब लता जी ने पहली बार सुरेश वाडकर की आवाज़ सुनी तो वे उनके शास्त्रीय आधार और मखमली अंदाज से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुईं। लता जी ने तुरंत उनका नाम उस दौर के सबसे सफल और मशहूर संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को सुझाया। लता मंगेशकर की सिफारिश सुरेश वाडकर के करियर के लिए एक संजीवनी साबित हुई। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उन्हें फिल्म क्रोधी में गाने का मौका दिया। ये फिल्म उनके करियर की एक टर्निंग पॉइंट बन गई। उसके बाद सुरेश वाडकर को लगातार मौके मिलने लगे और फिल्म हम पांच और प्यासा सावन जैसी फिल्मों ने उन्हें इंडस्ट्री में एक विश्वसनीय और प्रतिभाशाली गायक के रूप में पूरी तरह से स्थापित कर दिया। अब उन्हें पीछे मुड़कर देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी।

दोस्तों 80 के दशक में जब डिस्को और पॉप संगीत का दौर जोरों पर था, तब भी सुरेश वाडकर ने अपनी आवाज की शास्त्रीय गहराई और ठहराव को बरकरार रखा। राज कपूर के बैनर तले बनी फिल्म प्रेम रोग ने उन्हें कामयाबी के एक नए शिखर पर पहुंचा दिया। प्रेम रोग की सफलता के बाद सुरेश वाडकर राज कपूर के पसंदीदा गायकों में से एक बन गए। इसी कड़ी में उन्होंने बाद में फिल्म राम तेरी गंगा मैली के लिए भी अपनी आवाज़ दी। इन फिल्मों में सुरेश वाडकर की गायकी ने साबित कर दिया कि वे रोमांटिक और भावपूर्ण शैली में उस समय के सबसे बेहतरीन गायकों में से एक हैं। उनकी आवाज़ में एक ऐसा दर्द और सच्चाई थी जिसे सुनकर दर्शक सीधा किरदार से जुड़ जाते थे। इन फिल्मों ने सुरेश वाडकर को बॉलीवुड के मुख्य गायकों की कतार में सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया था।

0: रास्ता।
1: सड़क पर पैदल चलते समय रखें हम कुछ बातों का ध्यान।
2: हमेशा सड़क के किनारे बनी पटरियों पर ही चलें।
1: सड़क पार करने के पूर्व दाएं और बाएं अवश्य देख लें।
2: तेज गति से आ रहे वाहन के सामने से निकलने की भूल ना करें।
1: सड़क पार करते समय मोबाइल पर बात ना करें।
2: चौराहे पर हमेशा ज़ेब्रा क्रॉस से ही सड़क पार करें।
1: हम रहेंगे अगर सावधान, राह हो जाएगी आसान।
0: ए भाई जरा देख।

दोस्तों, कार्यक्रम उज्जैनी आरजे में आपका एक बार फिर से स्वागत है और हम बात कर रहे हैं सुरेश वाटकर जी की। दोस्तों, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और रविंद्र जैन के अलावा सुरेश वाटकर ने आरडी बर्मन और इलैया राजा जैसे दिग्गजों के साथ भी काम किया। फिल्म मासूम और सदमा जैसी कल्ट क्लासिक फिल्मों में सुरेश वाटकर की आवाज़ ने संगीत को एक अलग ही स्तर पर पहुँचा दिया। गुलजार साहब की लेखनी और आरडी बर्मन के संगीत से सजे फिल्म मासूम के ट्रैक आज भी संगीत प्रेमियों के लिए एक धरोहर हैं। वहीं इलैया राजा के संगीत निर्देशन में फिल्म सदमा में सुरेश वाटकर की गायकी ने दर्शकों की आंखों में आंसू ला दिए थे। इसके अलावा उन्होंने गिरीश कर्नाड की फिल्म उत्सव में भी अपनी शास्त्रीय गायकी का बेहतरीन नमूना पेश किया। सुरेश वाटकर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वे हर संगीतकार की शैली के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं, फिर चाहे वह भारतीय शास्त्रीय संगीत हो या लोक संगीत।

दोस्तों, 90 के दशक और उसके बाद के दौर में भी सुरेश वाडकर का सफर बिना रुके चलता रहा। जब विशाल भारद्वाज ने संगीत की दुनिया में कदम रखा तो फिल्म माचिस में भी सुरेश वाडकर ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा। माचिस के संगीत ने युवाओं के बीच एक नई लहर पैदा कर दी थी। इसके अलावा एआर रहमान के साथ भी उन्होंने काम किया। अपनी निजी जिंदगी में सुरेश वाडकर ने शास्त्रीय गायिका पद्मा जी से विवाह किया। उनकी दो बेटियां हैं, अनन्या और जिया। प्लेबैक सिंगिंग में इतनी सफलता हासिल करने के बावजूद सुरेश वाडकर ने कभी भी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। अपने गुरु पंडित जियालाल वसंत की स्मृति में उन्होंने मुंबई में आजीवासन नाम से एक संगीत अकादमी की शुरुआत की, जहां आज भी हजारों युवा संगीत की तालीम हासिल कर रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म माचिस से उनका और हरिहरन का गाया ये खूबसूरत गीत।

दोस्तों, सिनेमाई दुनिया के अलावा सुरेश वाडकर ने मराठी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों में भी जमकर काम किया है। सुरेश वाडकर का मराठी संगीत जगत में बहुत बड़ा और सम्मानीय नाम है। उन्होंने अपने करियर में हमेशा गुणवत्ता को मात्रा से ज़्यादा महत्व दिया है। भले ही उन्होंने गानों की संख्या कम रखी हो, लेकिन सुरेश वाडकर ने जो भी गाया वह सीधे इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। उनका रियाज और संगीत के प्रति उनकी निष्ठा आज भी वैसी ही है जैसी 80 के दशक में हुआ करती थी। संगीत के क्षेत्र में सुरेश वाडकर के इसी बेजोड़ और उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें साल 2020 में देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया। इसके अलावा उन्हें साल 2011 में एक मराठी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुका है। आइए सुनते हैं फिल्म राम तेरी गंगा मैली से उनका गाया ये गीत।

श्रोताओं, पद्मश्री और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अलावा सुरेश वाडकर को महाराष्ट्र सरकार से लता मंगेशकर पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। सुरेश वाडकर का सफ़र इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि यदि इंसान अपनी कला के प्रति ईमानदार हो और

दोस्तों, सुरेश वाडकर की सुमधुर आवाज से सजा उज्जैनी आरजे का आज का ये सफर बस यहीं तक। योर आरजे रश्मि बजाज साइनिंग आउट नाउ फ्रॉम उज्जैनी आरजे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन। नमस्कार।

0: चुचू चिड़िया बड़ी उदास, कैसे बुझाए अपनी प्यास। बहुत कम है कुएं में पानी, तालाबों की भी यही कहानी। धरती का है सूखा पेट, हैंड पंप भी उगले रेत। चुचू रोए नदी किनारे, इसका पानी कहाँ गया रे। बादल आते खाली हाथ और कह जाते पते की बात। हरे भरे मत काटो जंगल, जंगल ही तो लाता मंगल। पेड़ लगाओ तुम सब मिलकर, बरसेगा फिर पानी जमकर। नदी ताल में होगा पानी, फुर्र होगी चूचू की परेशानी।
1: आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
2: दोस्तों, कभी कभी किसी की मासूमियत और एक छोटी सी मुस्कान इंसान को इस कदर अपना बना लेती है कि खुद को भी होश नहीं रहता। रोचक कोहली की वो सुकून देने वाली धुन, मनोज मुंतशिर के लिखे वो गहरे और प्यारे एहसास, और सुनिधि चौहान की उस आवाज़ में घुली हुई मिठास जो सीधे दिल में उतर जाती है। फिल्म अय्यारी से प्यार की इसी मदहोशी को आवाज़ देता ये गीत आपके लिए।

दोस्तों, जब प्यार में किसी को अपना सब कुछ मान लिया जाए तो उसके बिना एक सांस भी अधूरी लगती है। जानी के लिखे वो बेहद जज्बाती बोल और बी प्राक का वो इंटेंस म्यूजिक, खुद बी प्राक की उस दमदार और दर्द भरी आवाज़ में फिल्म बच्चन पांडे से एक ऐसा गाना जो मोहब्बत की गहराई को एक नया मुकाम देता है।

दोस्तों, अगर दिल में मोहब्बत ने दस्तक दे दी है तो फिर उसे रोकने या छुपाने का क्या फ़ायदा। उत्तम सिंह का वो हवाओं में रोमांस घुलने वाला संगीत, आनंद बख्शी की शानदार और दिल को छू लेने वाली कलम, कुमार सानू और लता मंगेशकर की उस अमर जुगलबंदी में फिल्म दुश्मन से प्यार के इकरार का ये बेहद प्यारा सा गीत।

दोस्तों, जब आप अपना पूरा वजूद किसी के नाम कर देते हैं तो एक अलग ही सुकून मिलता है। प्रीतम की वो रूहानी और जादुई कंपोजिशन, अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे वो सच्चे और अनमोल लफ्ज़, अरिजीत सिंह की वो कशिश और शिल्पा राव की मखमली गायकी का वो बेमिसाल संगम, फिल्म लाल सिंह चड्ढा से सुनिए खुद को प्यार में पूरी तरह सौंप देने का ये खूबसूरत एहसास।

तो दोस्तों आज की इस प्यारी सी म्यूजिकल महफिल में बस इतना ही। अब आपकी दोस्त रश्मि बजाज को दीजिए कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स से इजाजत। जिंदगी की बीट्स को एंजॉय करते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन। नमस्कार।

FM 102.5 मेगा हर्ट्ज और साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 10 बज रहे हैं, अब समय है कार्यक्रम उज्जैन दर्शन का।

नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी उज्जैन के विशेष कार्यक्रम उज्जैन दर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी इस ज्ञानवर्धक यात्रा का विषय है शिप्रा नदी के उद्गम की पौराणिक कथाएं और उसका महात्म्य। आज हमारे शब्दों की नाव शिप्रा नदी की लहरों पर तैरेगी, जहां सुबह का सूरज शिप्रा के जल को अर्ध देता है और शाम की आरती अंधकार को मिटाती है। उज्जैन दर्शन की आज की शब्द यात्रा में आइए चलते हैं उज्जैन की महान संस्कृति की वाहक अमृत घट से छलकी बूंद को स्वयं में समाहित करने वाली पुण्य फलदायी मोक्षदायिनी माँ शिप्रा के अवर्णनीय वैभव के पटल पर। यात्रा के आरंभ में आइए सुनते हैं फिल्म सफर से मन्नाडे की आवाज में ये गीत।

श्रोताओं, भौगोलिक आधार पर ब्रह्मांड पुराण और वायु पुराण के अनुसार शिप्रा नदी पारियात्र पर्वत के पश्चिमी भाग से निकली है, जो विंध्यगिरी की एक शाखा है, ऐसा माना जाता है। विद्वान विमल चरण ला के अनुसार यह उद्गम महू से करीब 13 किलोमीटर दूर जानापाव की पहाड़ी से हुआ है, जो महर्षि जमदग्नि का आश्रम और भगवान परशुराम का जन्मस्थल है। इसी जानापाव पर्वत ने महर्षि जमदग्नि को आकृष्ट किया था और इसी के शीर्ष से चंबल सहित 11 नदियों का उद्गम हुआ है। धार्मिक दृष्टि से इसका उद्गम इंदौर से 11 मील दूर केवड़ेश्वर नामक गुफानुमा स्थान से बताया जाता है, जहां शिवलिंग पर बूंद बूंद जल गिरता रहता है। यह जल केवड़े के एक वृक्ष से निकलकर शिप्रा का रूप ले लेता है, लेकिन कुछ क्षेत्रीय ग्रामीण जन शिप्रा का उद्गम अरण्य कुंड से भी मानते हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं भाभी की चूड़ियां फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत।

श्रोताओं, स्कंद महापुराण में शिप्रा नदी के उद्गम की कई अत्यंत रोचक और अलौकिक कथाएं वर्णित हैं। एक कथा के अनुसार देवर्षि सनत कुमार बताते हैं

एक बार महादेव ब्रह्मा जी का कपाल लेकर भिक्षा मांगते हुए वैकुंठ धाम पहुंचे। वहां भगवान श्री हरि ने अपनी तर्जनी उंगली उन्हें प्रदान की, जिससे क्रुद्ध होकर महादेव द्वारा काट डालने से जो रक्त धारा बही, उससे महादेव के हाथ में रखा ब्रह्मा का कपाल भर गया। वह रक्तधारा पृथ्वी पर बह निकली और इसी भूपतित रक्तधारा से शिप्रा का उदय हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर पृथ्वी को वशीभूत करने वाले असुर हिरण्याक्ष का वध किया, तब उनके ही हृदय से इस सनातनी नदी का प्रादुर्भाव हुआ था। विष्णु जी ने देवताओं को महाकाल वन भेजा, जहां शिप्रा में स्नान और दान आदि प्राप्त कर उन्हें पुनः स्वर्गलोक प्राप्त हुआ। शिप्रा की शीतल लहरों को आगे प्रवाहमान करने से पहले आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में ये भजन फिल्म चित्रलेखा से।

श्रोताओं, शिप्रा के अवतरण की कुछ अन्य दिव्य कथाएं भी शास्त्रों में मिलती हैं। स्कंद पुराण के अवंती महात्म्य खंड के 60वें अध्याय के अनुसार अवंती में शिप्रा नदी को कामधेनु से उत्पन्न भी बताया गया है। इसके अतिरिक्त देवर्षि सनत कुमार द्वारा कथित एक अन्य कथा में अत्रि मुनि की तपस्या का विशेष वर्णन आता है। पूर्व काल में उज्जैनी में अत्रि नामक ब्राह्मण ने अपना एक हाथ ऊपर उठाए रखकर 3000 वर्षों तक भारी तपस्या की थी। इस महात्मा का ब्रह्म तेज ऊर्ध्व में उठा और उनके दोनों नेत्रों से तेज निकलकर दसों दिशाओं में उद्भासित करने लगा। इसी तेज से शीतल किरणों वाले सोमदेव जन्मे और इसी तेज से जल का प्रादुर्भाव हुआ, जो अमृतमयी नदी शिप्रा में प्रविष्ट हो गया। कहते हैं कि इस सोमवती शिप्रा का दर्शन करने से ब्रह्मघाती और पापी भी पाप रहित हो जाते हैं। माँ शिप्रा के महात्म्य में लगाते हैं डुबकी और सुनते हैं शर्मा बंधु की आवाज़ में फिल्म परिणय से ये भजन।

श्रोताओं, पुण्य सलीला शिप्रा की पापनाशिनी शक्ति तीनों लोकों में सर्वोपरि मानी गई है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब भागीरथी गंगा तीनों लोकों के प्राणियों के पाप धोते धोते नीले वर्ण की हो गई तो वह अत्यंत शोकातुर होकर ब्रह्मलोक पहुंची। ब्रह्मा जी ने गंगा को आत्मशुद्धि और पापों के निवारण हेतु रम्य महाकाल वन में पावनी शिप्रा के दर्शनार्थ भेजा। भगवती गंगा ने उज्जैनी के नीलगंगा क्षेत्र में प्रवेश किया और शिप्रा के प्रभाव से वह पुनः शुक्लवासा यानी श्वेत रंग की हो गई तथा उनके सारे पाप नष्ट हो गए। गंगा द्वारा यहाँ निर्मित यह आश्रम नीलगंगा कहलाने लगा और शिप्रा पापनाशिनी कहलाई। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में ये हरिधुन।

महाकाल वन पहुंचा, जहां एक सिंह के आघात से वह सुंदरकुंड के तट पर गिर पड़ा। सुंदरकुंड के जल के पुण्य प्रभाव से तत्काल उसके सभी पाप नष्ट हो गए और वह पिशाच देह त्याग कर शिवलिंग रूप में परिणित हो गया। स्कंद पुराण के अनुसार यदि मानव सर्वपित्र अमावस्या पर इस नदी में श्राद्ध करता है तो वह अपनी 101 पीढ़ी के पूर्वजों का उद्धार करता है। आइए सुनते हैं फिल्म गीत गाता चल से जसपाल और साथियों की आवाज में ये भजन।

श्रोता, मोक्षदायिनी शिप्रा नदी की महिमा की इन पावन कथाओं के साथ हमारा आज का उज्जैन दर्शन कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। किसी अन्य नई जानकारी और नए विषय के साथ पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अपनी रेडियो मित्र रश्मि बजाज को दीजिए अनुमति। अपना और अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उज्जैन दर्शन। FM 102.5 MHz पर यह आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है और आकाशवाणी उज्जैन के सभी कार्यक्रम अब आप सुन सकते हैं विश्व में कहीं भी न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए। सुबह के 10:30 हो चुके हैं। अब समय है महिला श्रोताओं के कार्यक्रम महिला सभा का और आज की सूत्रधार हैं डॉक्टर अनुभा गुप्ता।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन का महिला सभा कार्यक्रम और मैं हूं आपकी सखी डॉक्टर अनुभा गुप्ता। सखियों, आज का दिन बहुत खास है क्योंकि सावन की फुहारों के साथ आज हम मना रहे हैं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। आज का दिन हमारे उन हुनरमंद बुनकरों के नाम है जो अपने हाथों के जादू से धागे धागे में हमारी संस्कृति और परंपरा को पिरोते हैं। तो आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर और जानेंगे कि कैसे महिलाएं हस्तकला के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकती हैं। साथ ही बातें होंगी उन यादों और परंपराओं की जो सावन के झूलों से जुड़ी हुई हैं। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं प्यार भरा गीत।

का दिवस की आप सोच रही होंगी कि ये दिवस क्या है। याद कीजिए बचपन के वो दिन जब हम सिलाई कढ़ाई बुनाई तुरपाई घर में ही सीख जाया करते थे। इन्हें सीखने के लिए हमें किसी महंगी क्लास या इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। हमारी दादी नानी और मम्मी ही हमारी शिक्षिका होती थी। पीढ़ी दर पीढ़ी ये पारंपरिक कलाएं हम घरों में ही सीख जाया करते थे। गर्मियों की छुट्टियां आते ही दोपहर में आंगन में चटाई बिछ जाती थी। सुई धागा कसीदे के फ्रेम अस्तर का कपड़ा और रंग बिरंगे धागों के लच्छे निकल आते थे। हंसी ठहाकों और किस्से कहानियों के बीच कब हम सिलाई कढ़ाई और बंदेज सीख जाते थे पता ही नहीं चलता था। लेकिन आज सब कुछ रेडीमेड हो गया है। बाजार गए और सामान खरीद लिया। हमारी महेश्वरी चंदेरी साड़ियाँ बनारसी सिल्क सूती कुर्ते शॉल जूट के बने सजावटी सामान थैले हाथ की बुनी बेडशीट और दरियाँ ये सब हमारे हथकरघा का ही जादू है। हाथ के इस हुनर और स्वदेशी कपड़ों की परंपरा को सहेजने के लिए 7 अगस्त 1905 को हमारे देश में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। उसी ऐतिहासिक दिन की याद में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। सखियों क्या आप जानती हैं जब हम अपने हाथों से कुछ बनाते हैं तो उसका शारीरिक और मानसिक फायदा भी होता है। जब हम पूरी तन्मयता से एक एक टाका लगा रहे होते हैं तो हमारा ध्यान अपने आप वहीं टिक जाता है। साथ ही उंगलियों का सूक्ष्म व्यायाम भी हो जाता है। हस्तकरघा पर काम करना भी ध्यान और योग की तरह ही है। दिन भर की भागदौड़ और तनाव से हटकर मन एकदम शांत और प्रसन्न हो जाता है। जब हम हाथ से बना कपड़ा अपनाते हैं तो किसी बुनकर के घर में खुशहाली लाते हैं। सखियों यदि आप भी हथकरघा या हस्तशिल्प जैसे क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं तो बन सकती हैं। इसी विषय पर आज हम स्वास्तिक हैंडीक्राफ्ट वुमन वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्षा श्रीमती प्रीति साठे जी से चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले सुनते हैं ये खूबसूरत सा गाना।

0: सखियों, आज 7 अगस्त है और आज का दिन हमारे देश के उन तमाम शिल्पकारों और कारीगरों को समर्पित है जो अपने हाथों के हुनर से भारतीय संस्कृति में रंग भरते हैं। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। हस्तकला न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर को सहेजती है बल्कि हजारों महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त भी बनाती है। इसी सोच को जमीन पर उतारने और महिला शिल्पकारों को मंच देने का काम कर रही है स्वास्तिक हैंडीक्राफ्ट वुमन वेलफेयर एसोसिएशन। आज हमारे बीच में मौजूद हैं इस संस्था की अध्यक्ष श्रीमती प्रीति साठे जी। नमस्कार प्रीति जी, आकाशवाणी के महिला सभा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार अनुभा जी।
0: प्रीति जी, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि स्वास्तिक हैंडीक्राफ्ट वुमन वेलफेयर एसोसिएशन क्या है, इस बारे में आप हमारे श्रोताओं को विस्तार से बताइए।
1: स्वस्तिक हैंडीक्राफ्ट एक एनजीओ है और वो कपड़े पे जितना भी टेक्सटाइल का काम होता है, ब्लॉक, बटीक, टाई एंड डाई, एम्ब्रॉयडरी, उसको लेके हमने एक संस्था का निर्माण किया स्वस्तिक हैंडीक्राफ्ट। और इसका एक शॉर्ट फॉर्म है श्वास। श्वास एक महिलाओं की, हम लोग एक श्वास बनकर आए हैं ताकि महिलाएं जो भी हैंडीक्राफ्ट में काम कर रही है, छोटे छोटे लघु उद्योग बन कर रही हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाना है। और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही हम उनके लिए एक स्वस्तिक हैंडीक्राफ्ट का हम लोगों ने निर्माण किया है।
0: मैडम, जो महिलाएं इस हुनर को सीखना चाहती हैं उन्हें आप किस तरह से प्रशिक्षण देते हैं, इस बारे में आप बताइए। प्रशिक्षण कहाँ और कितने दिनों का दिया जाता है?
1: महिलाएं जो भी सीखना चाहती है वो सबसे पहले तो हमसे कांटेक्ट करती है। उन्हें पता चलता है कि श्वास इस तरह से काम कर रहा है, हमारे पास आती हैं और पूछती हैं कि हम आपसे कैसे जुड़ सकते हैं। तो उनके पहले हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहते हैं। उसमें डॉक्यूमेंट्स में पेन, आधार, जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो रजिस्टर होने के लिए ज़रूरी होते हैं। हमारी संस्था सभी डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड है, MSME, हथकरघा विभाग, लघु उद्योग निगम, भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय। हम ये सभी रजिस्ट्रेशन उन महिलाओं के करते हैं ताकि उन्हें सरकार के द्वारा जो भी योजनाएँ मिल सके उसका वो लाभान्वित हो सके।
0: प्रीति जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि आप सरकारी योजनाएं भी प्रोवाइड कराती हैं, तो आपके एसोसिएशन के माध्यम से आप कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं को आप दिलवाती हैं, क्या उन्हें किसी तरह की आर्थिक मदद भी मिलती है?
1: जी हाँ अनुभा जी, हमारे यहाँ भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, DCH की योजनाएं आती है और समय समय पर वो एक साल में उनकी 2 ट्रेनिंग्स आती है। DTDW आती है और उसके बाद मध्य प्रदेश राज्य सहकारी योजना की ट्रेनिंग्स आती है, हथकरघा की ट्रेनिंग्स आती है हैंडलूम डिपार्टमेंट की। तो इस तरह से उन महिलाओं के डॉक्यूमेंट्स जो तैयार रहते हैं, एक आर्टिजन्स कार्ड बनता है। उस आर्टिजन्स कार्ड के द्वारा उनको ये बेनिफिट मिलता है कि उन्हें TADA मिलता है, वो महिलाएँ सीख सकती हैं और अपना खुद का भी रोजगार आगे बढ़ा सकती है। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ की जो DTDW और डिजाइनिंग की जो ट्रेनिंग्स आती है उसमें महिलाओं के लिए ये बेनिफिट रहते हैं कि उन्हें पर डे का 300 रुपीज मिलता है, उन्हें 1 रुपया भी शुल्क नहीं लगता है। ये रजिस्ट्रेशन आर्टिजन कार्ड का उन्हें उपयोग मिलता है। इसके अलावा उन्हें लोन की सुविधाओं में सब्सिडी मिलती है और उन्हें काफी इसमें जो ब्याज, कम ब्याज की दर पे उन्हें लोन

0: मिलता है। इस ट्रेनिंग के दौरान जो महिलाएं बहुत अच्छे से काम करती हैं, तो उन्हें स्टेट अवार्ड और नेशनल अवार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकती हैं। इसका इन्हें बेनिफिट मिलता है।
1: प्रीति जी, अक्सर हम देखते हैं कि हुनरमंद महिलाएं बेहतरीन सामान तो बना लेती हैं, लेकिन उन्हें बाजार नहीं मिल पाता। आपका एसोसिएशन इन महिला शिल्पकारों के बनाए उत्पादों को बाजार तक पहुँचाने में कैसे मदद करता है, इसके बारे में बताइए।
0: अनुभा जी, हमारी जो संस्था है जो रजिस्टर्ड है, तो हम लोगों के यहाँ एग्जीबिशंस आती है भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय की, और वो भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय की जब एग्जीबिशन आती है, तो ये जो पार्टिसिपेशन जिनका हुआ है ट्रेनिंग प्रोग्राम में, वो सभी उसमें भाग ले सकते हैं। तो भारत सरकार के पूरे ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग जगह, दिल्ली, मुंबई, पुणे, गोवा, सभी दूर इनकी नेशनल एग्जीबिशंस लगती है, जहाँ पे ये लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम लोगों ने नेशनल एग्जीबिशन में तो पार्टिसिपेट किया ही है, लेकिन इसके अलावा इंटरनेशनल फेयर में भी हम लोगों की सहभागिता रही है। जैसे कि हम लोगों ने लघु उद्योग निगम के द्वारा हमें 3 महिलाओं को, प्रेरणा दाभाड़े, प्रीति साठे और वैशाली साठे, हम लोगों ने मिलान में एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया। ये 15 दिन का मेला था और ये सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा फैशन शो था, जहां हम लोगों ने भाग लिया। और ये लघु उद्योग निगम के द्वारा हमें भेजा गया, एमएसएमई के द्वारा साउथ अफ्रीका B2B में भाग लिया, और उसके अलावा इटली में बारी, रोम और मैक्सिको, दुबई में हमने सहभागिता की।
1: मैम, जो महिलाएं घर में रहते हुए हस्तशिल्प में काम कर रही हैं और स्वरोजगार शुरू करना चाहती हैं, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगी?
0: मैं उन सभी हस्तशिल्पी महिलाओं को यही सलाह देना चाहूंगी कि वे जिस भी कला में पारंगत हो, जैसे कि बंदेज, ब्लॉक, बाटिक, एम्ब्रॉयडरी, पेंटिंग, टाई एंड डाई, जरी जरदोजी, वो सभी महिलाएं अपने आप की कला को भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय DCH इंदौर में रजिस्टर करे, ताकि उन्हें अपने आर्टिजन कार्ड का फायदा मिल सके और प्रदर्शनियों में भाग लेने का मौका मिल सके, क्योंकि ये प्रदर्शनियां निशुल्क है। उन्हें अपनी पहचान और अपनी कला को पहचानने का मौका मिलेगा और वे अपनी कला के माध्यम से आत्मनिर्भर भी बन सकती है।
1: प्रीति जी, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर मैं सभी श्रोताओं से यही कहना चाहूँगी कि भारतीय हस्तशिल्प केवल एक कला ही नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, विरासत की अमूल्य धरोहर है। तो हमें इन्हें आगे वाली, आने वाली जो पीढ़ी है, उन्हें भी सिखाएं इस हस्तशिल्प को, उन्हें अवगत करवाएं और इसको जीवित रखें।
1: सखियों, हमें उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से आपको एक नई दिशा और प्रेरणा जरूर मिली होगी। प्रीति जी, आपने हमारे श्रोताओं के साथ हस्तशिल्प पर इतनी अच्छी जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सखियों, अभी आपने स्वास्तिक हैंडीक्राफ्ट वुमन वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्षा श्रीमती प्रीति साठे जी से विशेष चर्चा सुनी। आइए अब चलते हैं सीधे सावन की उन पुरानी और सुहानी यादों की गूंज में, जहां सावन के झूले पड़ चुके हैं और सावन की रुत अपने पूरे शबाब पर है। सुनिए लता मंगेशकर जी की मखमली आवाज में रचा बसा ये सदाबहार गाना।

सखियों, ये गाना सुनकर तो सचमुच पुरानी यादें ही ताजा हो गई। याद है आपको, सावन का महीना शुरू होते ही आम, बरगद, नीम, इमली के पेड़ों पर रस्सी और लकड़ी की पटरी से झूले बंधे जाते थे। नवविवाहिताएं अपने मायके आती थी। सावन सोमवार या तीज पर सखियों की टोलियां हाथों में मेहंदी रचाए, रंग बिरंगी लहरियां पहनकर, सज सवर कर शिव मंदिर जाती थी। सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेम और पुनर्मिलन का प्रतीक माना जाता है। इस महीने में महिलाएं सुख समृद्धि, अखंड सौभाग्य और प्रेम की कामना के लिए झूले झूलती हैं। झूला झूलने की परंपरा महिलाओं के लिए रोजमर्रा की गृहस्थी के काम से अलग हंसने गाने और अपने दिल की बातें साझा करने का एक सहज जरिया बनता था। झूलों के साथ साथ गाए जाने वाले लोकगीत याद हैं आपको? इन गीतों में प्रकृति का सौंदर्य ही नहीं बल्कि प्रियतम के घर लौटने की प्रतीक्षा, मायके की यादें और सखियों की आपसी ठिठोली भी होती थी। लेकिन आज के समय में भागदौड़ भरी जिंदगी में ये परंपरा हम भूल ही गए हैं। अब ना तो सावन के झूले दिखते हैं और ना ही शहरों में वो बाग बगीचे बचे हैं। बदलते वक्त के साथ साथ सावन के झूलों का स्वरूप भी बदल गया है। अब महिलाएं सोसाइटी के मंदिर और पार्कों में इकट्ठा होती हैं और सावन पर थीम पार्टी आयोजित करती हैं। कुछ सखियां घर के मंदिर में लड्डू गोपाल के लिए प्यारा सा हिंडोला सजाकर उन्हें भाव से झुलाती हैं। धार्मिक मान्यता भी है, द्वापर युग में जब सावन में घटाएं घिर आती थी तो स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी कदंब की डालियों पर झूला झूलते थे और गोपियां मधुर गीत गाती थी। यही परंपरा आज भी वैष्णव मंदिरों में हिंडोला उत्सव के रूप में देखने को मिलती है। इन दिनों मंदिरों में कई तरह के हिंडोले के दर्शन होते हैं। कभी मोगरा, गुलाब, जूही के फूलों से बना पुष्प हिंडोला, कभी नीले, गुलाबी, काले कपड़ों से सजा घटा हिंडोला, तो कभी सूखे मेवों से सजा हिंडोला, और जब मंदिर में ढोलक की थाप पर झूलन चलिन कान्हा के संग गूंजता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे कान्हा हमारे सामने ही मंद मंद मुस्कुराते हुए झूला झूल रहे हैं। सखियों, बातें आगे और भी होगी, लेकिन उसके पहले सुनते हैं प्यार भरा गाना।

सखियों समय हो गया है आपसे विदा लेने का। जाने से पहले बस इतना ही कहना चाहूंगी, सावन के झूले हमें जिंदगी का बहुत बड़ा सबक देते हैं। झूला जब पीछे जाता है तो हमें पता होता है कि वो आगे भी आएगा। जिंदगी में अगर कभी कोई दुख या परेशानी हमें पीछे की तरफ धकेले तो घबराइए मत, यकीन रखिए कि बहुत जल्द ही सुख आपको आगे लेकर जाने वाला है। सखियों, आप सावन कैसे मनाती हैं? सावन से जुड़ी आपकी कौन कौन सी यादें हैं? आप हमें लिख सकती हैं। आपके पत्रों को हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। हमारा पता है, कार्यक्रम महिला सभा, निर्देशक आकाशवाणी उज्जैन, विद्यापति नगर उज्जैन। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र डॉक्टर अनुभा गुप्ता को दीजिए जाने की अनुमति। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला सभा FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। श्रोताओं, आपको याद दिला दें, आज शाम 5 बजे युवाणी में होगा सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें आप फोन लगाकर अपने विचार हमारे श्रोताओं के साथ साझा कर सकते हैं। फोन लगाने के लिए हमारा फोन नंबर है 0734054191 0734054191। आइए अब सुनते हैं फिल्म दिल से ये गीत, जिसे गाया है अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर ने। संगीत आनंद मिलिंद का है और गीत के बोल लिखे हैं समीर ने।

श्रोताओं, अगला गीत है फिल्म मासूम से। आवाज़ भूपिंदर और सुरेश वाडकर की है, संगीत आर डी बर्मन का है और गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने।

श्रोताओं, FM 102.5 MHz पर हम आकाशवाणी के उज्जैन केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:10 होने को हैं। अब हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

सांस्कृतिक केंद्र के सभागार में 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। आज का यह समारोह भारत की समृद्ध वस्त्र परंपरा, बुनकरों की अद्भुत कला और हमारी सांस्कृतिक विरासत को समर्पित है। इस गरिमामयी अवसर पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती

0: द्रौपदी मुर्मू। देशभर से चयनित उत्कृष्ट हथकरघा बुनकरों और शिल्पकारों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। इसका विवरण देने के लिए मैं हूं शोएसियार खान और मेरे साथ हैं कौशिक राय। नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आपका।
1: नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर डियर लिसनर्स ट्यून्ड इन, एंड वी एक्सटेंड आवर हार्टिएस्ट ग्रीटिंग्स ऑन द 12th नेशनल हैंडलूम डे। The Ministry of Textiles, Government of India, is celebrating the 12th National Handloom Day today with the national function at the Rashtrapati Bhavan Cultural Centre, New Delhi. The function celebrates India's rich handloom heritage and recognises the contribution of the handloom weaving community to the nation's cultural and economic development. The Honourable President of India, Srimati Draupadi Murmu, will grace the occasion as the chief guest. The function will also be attended by the Union Minister of Textiles, Shri Giriraj Singh, Union Minister of State for Textiles, Shri Pavitra Margarita, Srimati Neelam Shami Rao, Secretary Textiles, and Dr. M. Bina, Development Commissioner, Handlooms. The celebrations will also be attended by Sant Kabir Handloom Awardees and National Handloom Awardees and their family members. Handloom weavers from across the country, members of the Award Selection Committee, eminent personalities associated with the handloom sector, senior government officials, media representatives, and other distinguished guests. A major highlight of the celebrations is the presentation of the Sant Kabir Handloom Awards and the National Handloom Awards for the year 2025. A total of 22 awards comprising 3 Sant Kabir Handloom Awards and 19 National Handloom Awards will be conferred upon outstanding handloom weavers for their outstanding craftsmanship, innovation and contribution to the preservation of India's handloom traditions. The function will also witness the release of 4 commemorative postage stamps celebrating India's rich and diverse handloom weaving traditions. 2 publications will also be unveiled by the Honourable President: Earth, Root, Thread, All Dyed Handloom Textiles of Central India, and the Handloom Awards Book 2025 will be unveiled during the function. An exhibition showcasing award-winning handloom products has been organized on the sidelines of the events. Visitors here will have the opportunity to witness live demonstrations of traditional kani weaving and wall hanging weaving, providing a glimpse into the diversity and craftsmanship of India's handloom traditions.
0: Mananiya Rashtrapati Srimati Draupadi Murmu, aaj राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के दौरान प्रतिष्ठित हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस समारोह में केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह, वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति, हथकरघा उद्योग के प्रतिनिधि, मास्टर बुनकर, डिजाइनर, निर्यातक, कारीगर और अन्य विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। भारत की समृद्ध हथकरघा परंपराओं के संरक्षण, संवर्धन और विकास में असाधारण योगदान के लिए कुल 22 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा, जिनमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार विजेता और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार विजेता शामिल है। वस्त्र मंत्रालय ने संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा की है। ये पुरस्कार हथकरघा क्षेत्र में बुनाई, नवाचार, डिजाइन विकास, विपणन, स्टार्टअप उद्योगों और उत्पादक कंपनियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देते हैं। ये पुरस्कार राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के हथकरघा विपणन सहायता घटक के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं और हथकरघा क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय मान्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के दौरान ये पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किए जा रहे हैं जिन्होंने भारत की हथकरघा विकास को मजबूत करने और घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस कार्यक्रम में देशभर से संसद सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग विशेषज्ञ, शैक्षणिक संस्थान, निर्यातक, डिजाइनर और हथकरघा बुनकर

0: हो रहे हैं। हथकरघा पुरस्कारों का उद्देश्य हथकरघा क्षेत्र में उत्कृष्टता, नवाचार और निरंतर प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करना है। ये पुरस्कार उत्कृष्ट शिल्प कौशल, पारंपरिक कौशल को संरक्षित करने हेतु आधुनिक तकनीकों को अपनाने, उत्पाद विविधीकरण, डिजाइन नवाचार और बुनकर समुदायों के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान को मान्यता देते हैं। अगर बात करें संत कबीर हथकरघा पुरस्कारों की, तो ये उन हथकरघा बुनकरों के लिए देश का सर्वोच्च सम्मान है जिन्होंने असाधारण शिल्प कौशल और भारत की बुनाई परंपराओं को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए आजीवन समर्पण दिखाया है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का चयन असाधारण तकनीकी कौशल, नवाचार, इस क्षेत्र में निरंतर योगदान, पारंपरिक बुनाई के तरीकों को बढ़ावा देने, कारीगरों को मार्गदर्शन देने और समुदाय के विकास के लिए प्रयासों के आधार पर किया जाता है। ये जो संत कबीर हथकरघा पुरस्कार है, इसमें शामिल है एक सोने का सिक्का, तामपत्र, शॉल, प्रमाण पत्र और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार। राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार उन हथकरघा बुनकरों और हितकारकों को सम्मानित करता है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट रचनात्मक गुणवत्ता, नवाचार और उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है। ये पुरस्कार कारीगरों और संस्थानों को भारत की विविध हथकरघा परंपराओं को संरक्षित करते हुए शिल्प कौशल, उत्पाद विकास और बाजार में पहुंचने वाले मानकों को लगातार बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। बुराई श्रेणी के पुरस्कार विजेताओं का चयन जोनल, मुख्यालय और केंद्रीय स्तर की चयन समितियों के माध्यम से एक कठोर बहुस्तरीय मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है और इन समितियों में अनुभवी पेशेवर तकनीकी विशेषज्ञ और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं जो निर्धारित पात्रता मानदंडों और मूल्यांकन मापदंडों के आधार पर नामांकनों का आलंकन करते हैं। डिजाइन विकास, विपणन, स्टार्टअप उद्यमों और उत्पादक कंपनियों से संबंधित श्रेणियों के लिए नामांकन को अंतिम स्वीकृति के लिए मुख्यालय समिति और केंद्रीय स्तर की समिति द्वारा एक व्यवस्थापित मूल्यांकन के द्वारा गुजरना पड़ता है। थोड़ी देर में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ये 12वें राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार का वितरण करेंगी।
1: Yes, you are absolutely right. The National Handloom Day is observed every year on the 7th of August to commemorate the Swadeshi movement which launched on the 7th of August 1905 that gave renewed impetus to indigenous industries and India's handloom sector. The observance recognizes the enduring contribution of handloom weavers to the country's cultural heritage and socio-economic development. Since its inception in 2015, National Handloom Day has served as an occasion to celebrate the artistry, skill and dedication of India's handloom weavers while reaffirming the government's commitment to the preservation, promotion and sustainable development of the handloom sector. India's handloom sector continues to be one of the country's largest source of sustainable rural employment, supporting livelihoods of more than 35 lakh persons, with women constituting over 70% of the workforce. Besides its economic significance, the sector remains a custodian of India's rich textile traditions and an important contributor to environmentally sustainable production practices. In the 136th episode of Mann Ki Baat on the 26th of July, the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi had said that on the 7th of August, our country will celebrate National Handloom Day. On this occasion, quote the Prime Minister, "We celebrate the skills and creativity of our weaver brothers and sisters. These friends of ours are carrying forward traditions that have been passed down through generations," unquote, the Honorable Prime Minister. Every handloom garment tells the story of a specific region or community and the countless people associated with it. These are people who are proudly dedicated to preserving India's cultural heritage. The Honorable Prime Minister has urged every citizen to honor our weaver friends by encouraging handloom crafts. This will further strengthen the spirit of being vocal for local. Since 2015, the way handloom has been promoted in the country, it has improved the lives of a large number of people. The saris of Pochampalli and from Kuthampalli and Kutch, these saris have enriched many individuals and touched many groups, infusing new energy and identified into our glorious handloom traditions. These are carrying forward the beautiful tradition, while others are engaging women weavers to create wool products. People are preserving their traditional arts and providing employment to our sisters. And this also brings to mind that our handlooms indeed are a rich tapestry of what India has to offer to the world. The Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, in just a short while from now, will present the National Handloom Awards and the Sant Kabir Handloom Award to the winners of the National Handloom Awards 2025 at the Rashtrapati Bhavan Cultural Center.
0: Mananiya Rashtrapati Srimati Draupadi Murmu, 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र सभागार में ये हथकरघा पुरस्कार देंगी। इसमें शामिल है संत कबीर हथकरघा पुरस्कार, राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार, कमला देवी चट्टोपाध्याय हथकरघा पुरस्कार, हथकरघा उत्पादों के डिजाइन विकास स्टार्टअप उद्यम और प्रोड्यूसर कंपनी का विपणन हेतु राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार वर्ष 2025। आपको बता दें, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1905 में स्वदेशी आंदोलन को नई दिशा मिली थी। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने के संकल्प ने भारतीय हथकरघा उद्योग को नई ऊर्जा प्रदान की। उसी ऐतिहासिक विरासत के सम्मान में वर्ष 2015 से हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र का वातावरण बहुत ही गर्मीमय और अत्यंत भव्य दिखाई दे रहा है। सभागार को देश के विभिन्न राज्यों की पारंपरिक हथकरघा कलाकृतियों, रंग बिरंगे वस्त्रों और पुष्प सज्जा से सुसज्जित किया गया है। देशभर से आए बुनकर, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, वस्त्र मंत्रालय के अधिकारी, डिजाइन विशेषज्ञ और अनेक विशिष्ट अतिथि इस समारोह में उपस्थित है। भारत की पहचान उसकी विविधता में निहित है और यही विविधता हमारे हथकरघा उद्योग में भी दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश की बनारसी साड़ी विश्वभर में अपनी महीन जरी बुनाई के कारण प्रसिद्ध है। तमिलनाडु की कांजीवरम साड़ियां अपनी शुद्ध रेशमी बुनाई के कारण एक विशेष स्थान रखती हैं। वहीं मध्य प्रदेश की चंदेरी और महेश्वरी साड़ियां अपनी हल्की बनावट और उत्कृष्ट डिजाइन के लिए जानी जाती है। तेलंगाना की पोचमपल्ली इकट, गुजरात का पटोला, पश्चिम बंगाल की बालूचरी और जामदानी, असम का मूंगा रेशम और कश्मीर का पश्मीना, ये सभी भारतीय बुनकर की अद्भुत कला के जीवंत उदाहरण है। हथकरघा उद्योग भारत में कृषि के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने वाले सबसे बड़े पारंपरिक क्षेत्रों में से एक है। देशभर में लाखों परिवार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस उद्योग से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि देशभर के सभी जो हमारे महिलाएं हैं, वो कताई, रंगाई, बुनाई, डिजाइनिंग और विपणन, हर स्तर पर महिलाओं का योगदान इस क्षेत्र में दिखाई देता है। वहीं भारत का वस्त्र मंत्रालय हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रहा है। राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, बुनकर सेवा केंद्र, डिजाइन विकास, कौशल उन्नयन और डिजिटल विपणन तथा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से बुनकरों को नई संभावनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इंडिया हैंडलूम ब्रांड जैसी पहल भारतीय हथकरघा उत्पादों की गुणवत्ता और प्रमाणिकता का प्रतीक बन चुकी है। थोड़ी देर में माननीय राष्ट्रपति 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में ये पुरस्कार प्रदान करेंगे।
1: यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एंड टुडे द ऑनरेबल

0: for the year 2025 to one awardee, and it is indeed a proud moment for them. And these awardees will also interact with the Honorable President, and in just a short while from now we shall be taking you over to the Rashtrapati Bhavan Cultural Center, where the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, will confer the Sant Kabir Handloom Awards 2025 and the National Handloom Award 2025. We take you over to Rashtrapati Bhavan Cultural Center.
1: Namaskar, Maninye Rashtrapati Ji, Evam Manch Par Biraje Vishisht Atitigan. Aaj 12ve Rashtriya Hatkarga Divas Samaroh Ka Shubharam Hum Sarvapratham Deep Prajwalan Ke Saath Karenge. मैं माननीय राष्ट्रपति जी से विनम्रता पूर्वक आग्रह करती हूं कि वे दीप प्रज्वलित कर इस समारोह का शुभारंभ करें एवं मंच पर विराजे सभी माननीय अतिथिगण, वस्त्र मंत्री जी, आदरणीय विदेश एवं वस्त्र राज्य मंत्री जी, वस्त्र सचिव एवं विकास आयुक्त हथकरघा से भी अनुरोध करती हूं कि वे कृपया दीप प्रज्वलन में शामिल हों।

0: धन्यवाद। और अब इस समारोह का आविर्भाव करते हुए मैं सर्वप्रथम श्रीमती नीलम शमी राव, सचिव वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार से अनुरोध करती हूं कि वे कृपया अपना स्वागत भाषण दें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए।
1: माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल्स एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, डिस्टिंग्विश्ड अवॉर्डीज, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, मेंबर्स ऑफ द हैंडलूम फ्रेटर्निटी, इंडस्ट्री लीडर्स, डेवलपमेंट पार्टनर्स, देवियों और सज्जनों, मैं इस 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर माननीय राष्ट्रपति जी का स्वागत करती हूं। मैं स्वागत करती हूं देश के सभी बुनकर भाइयों और बहनों का। इट इज अ प्रिविलेज टू जॉइन यू ऑल in celebrating the 12th National Handloom Day, an occasion that honors the extraordinary contribution of India's weaving community and reaffirms nation's collective commitment to strengthen the spirit of Swadeshi. The handloom sector, a custodian of our civilizational heritage, Grameen रोजगार का साधन, महिलाओं के आगे रखे हुए डेवलपमेंट का सूत्रधार और सस्टेनेबल प्रोडक्शन की धुरी, यह 35 लाख वीवर्स और उससे जुड़े हुए लोगों को सपोर्ट करता है। मंत्रालय अपनी एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ में हैंडलूम डेवलपमेंट की दो तरीके की ऑब्जेक्टिव्स पर काम करता है, जहां पर प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशन के साथ साथ कॉम्पिटिटिव, रेजिलियंट और फ्यूचर रेडी हैंडलूम इकोसिस्टम की भी हम बातचीत करते हैं। नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम और रॉ मटेरियल सप्लाई स्कीम के माध्यम से हम लाखों बुनकरों
2: कब्स। हेलो हेलो, देख रहे हो
3: आपको बता दें, राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक गेन सभागार में 12वें राष्ट्रीय हैंडलूम पुरस्कार

0: समझे जा रहे हैं।
1: 1.5 lakh viewers have been onboarded onto the India Handmade e-marketplace. Handloom Hearts, Cottage, Kunj have been repositioned as a professionally curated year-round platforms to reach out to the consumers and bring the best of handlooms and handicrafts to the world. The formation of 200 handloom producer companies across the country has enabled weavers to work together professionally, access markets more effectively, and achieve economies of scale. Weave the Future ke tahat mein artificial intelligence enabled design tools, unke dwara banaye gaye traditional motifs ko reimagine karne ki cheshta, और ग्लोबल बाजार के अनुरूप तैयार किए गए डिजाइंस, वाइल डिजिटल कैटलॉगिंग एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आर कनेक्टिंग लूम्स इन रिमोट विलेजेस डायरेक्टली टू कस्टमर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। क्यूआर बेस्ड ऑथेंटिकेशन वुड प्रोवाइड ट्रेसेबिलिटी, एंश्योरिंग दैट द स्टोरी, स्किल एंड हेरिटेज बिहाइंड ईच वीव reaches with complete transparency and trust. Institutional partnerships remain essential to this journey. Initiatives like Weave the Future are positioning India's handloom tradition as a global leader in sustainability, championing circularity, responsible production, innovative designs, and the slow fashion. Our collaboration with organizations such as UN Women, academic institutions like IITs, design schools, NIFT, and research bodies has enabled new approaches. The growing recognition of more than 100 geographical indicators tagged handloom products has also provided larger, distinct, and unique identity. In the vision of Viksit Bharat 2047, the handloom sector stands as a shining tradition and progress, with technology as an enabler and weavers at the heart of journey. It is building a future where this legacy of handloom leads the world. Aaj is Rashtriya Hatkarga Divas par, main aap sabhi ko apna sincere एप्रिसिएशन देती हूँ, राज्य सरकारों को भी, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज को भी, डेवलपमेंट पार्टनर्स और इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स को भी, पर सबसे ज़्यादा उन बुनकर बहनों और भाइयों को जिनके बुने हुए ताने बानों से हमारा जीवन रंगीन, जीवंत और एक मेमोरी के साथ जुड़ा रहता है। आई वंस अगेन वेलकम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैडम and everybody on this occasion of the 12th Handloom Day. Thank you. Jai Hind.
2: Thank you, ma'am, for this warm welcome address. अब मैं भारत सरकार के माननीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी से निवेदन करती हूँ कि वे माननीय राष्ट्रपति महोदय का स्वागत एवं सम्मान करें। आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मिनिस्टर श्री गिरिराज सिंह टू काइंडली फेलिसिटेट द ऑनरेबल प्रेसिडेंट।
0: और अब केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह माननीय राष्ट्रपति का शॉल पहनाकर सम्मान कर रहे हैं। तालियों के साथ सबने उसका अभिवादन किया।
2: धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी। और अब हम बढ़ते हैं आज के समारोह के इस महत्वपूर्ण भाग पर, जो है संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और वर्ष 2025 के राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कारों की ओर। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार उन कुशल बुनकरों और कारीगरों को सम्मानित करते हैं जिनकी लगन, इन्वोकेशन और कलात्मकता ने हमारी राष्ट्र की हथकरघा विरासत को अत्यंत समृद्ध बनाया है। मैं माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन करती हूं कि वे संत कबीर हथकरघा पुरस्कार, जिसमें 3 पुरस्कार जिसमें पदक और ताम्रपत्र शामिल है, और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार, ये कुल 21 पुरस्कार हैं जिसमें ताम्रपत्र शामिल है, इनके विजेताओं को अपने कर

0: द्वारा सम्मानित करें।
1: और अब 12वें राष्ट्रीय
0: सर्वप्रथम शुरुआत करेंगे संत कबीर हथकरघा पुरस्कार 2025 के साथ।
1: माननीय राष्ट्रपति
0: बुनकर वर्ग से आ रहे हैं ओडिशा से श्री राम मेहर, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आपके उत्पाद का नाम है विजित पार खादी साड़ी। मेडल और ताम्रपत्र के साथ संत कबीर हथकरघा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जा रहा है श्री राम मेहर। हमारे अगले विजेता हैं बुनाई वर्ग से ही असम से आई श्रीमती रुनिमा चेतिया चौधरी। आपका विशेष उत्पाद है मूंगा सिल्क साड़ी।

0: हमारे अगले विजेता हैं उत्तर प्रदेश से बुनाई वर्ग से ही जनाब शाह मोहम्मद अंसारी, आपका विशेष उत्पाद जरबख्त श्वेतांबरी अवध जामदानी साड़ी। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 की ओर। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बुनाई वर्ग के लिए ही तमिलनाडु राज्य से आए अन्नामलाई मारीमुतो, आपका विशेष उत्पाद है कांचीपुरम रेशमी साड़ी और ये जॉइंट अवार्ड है। और इसी जॉइंट अवार्ड के दूसरे विजेता हैं कुमारन बलरामन, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, आपका भी विशेष उत्पाद कांचीपुरम रेशमी साड़ी। हमारे अगले विजेता बुनाई वर्ग से ही तेलंगाना से आए श्री गंजी वेंकटेश, आपका विशेष उत्पाद इक्कत साड़ी। बुनाई के लिए ही अगले विजेता आंध्र प्रदेश से श्री मरकला नटराज, जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए कॉटन टसर हाफ और हाफ जामदानी साड़ी, आपका विशेष उत्पाद। अगले विजेता उत्तर प्रदेश से बुनाई के लिए जनाब नसीम अंसारी, आपका विशेष उत्पाद इश्कत गुलदस्ता जामदानी साड़ी। जम्मू और कश्मीर से हमारे अगले विजेता बुनाई वर्ग से ही ये भी एक जॉइंट अवार्ड है, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जनाब फयाज अहमद वानी, आपका विशेष उत्पाद चांददार कानी शॉल। और इसी जॉइंट अवार्ड के दूसरे विजेता जनाब मंजूर अहमद हजाम, हमारे अगले विजेता हैं मध्य प्रदेश से बुनाई के लिए श्री कमल गौड़, आपका विशेष उत्पाद महेश्वरी साड़ी। पश्चिम बंगाल से आए हमारे अगले विजेता हैं श्री अभिनवा बसक, फॉर 500 काउंट मजलिन खादी जामदानी साड़ी।
1: आपको बता दें राष्ट्रपति भवन के सभागार के सांस्कृतिक केंद्र में इस वक्त राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 का वितरण किया जा रहा है माननीय राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू के कर कमलों द्वारा।
2: Yes, you are absolutely right, and the Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu, has already conferred the Sant Kabir Handloom Award to two awardees, Shri Ram Meher from Odisha for weaving, and the handloom product was Bichitpar Khadi Sadi, and to Shri Shah Mohammad Ansari of Uttar Pradesh on the category Languishing Weaves, and the product was Zarbaft Shwetambari Tissue Jamdani Sadi. The Kamala Devi Chattopadhyay Sant Kabir Handloom Award 2025 was conferred upon Shrimati Runima Chetia Choudhury of Assam for the category Weaving, and her product was Natural Dyed Muga Silk Sadi. The National Handloom Awards 2025 are being conferred upon 12 awardees, Shri Annamalai Marimuthu of Tamil Nadu for weaving the Kanchipuram Korvai silk sari, and this award jointly was also conferred upon Shri Kumaran Balaraman. Shri Ganji Venkatesh of Telangana got the National Handloom Award for Ikat Sari, Shri Murukala Nataraju of Andhra Pradesh for his product Cotton Tasar Half and Half Jamdani Sari, Shri Naseem Ansari of Uttar Pradesh for the Ikat Guldasta Jamdani Sari, Shri Manzoor Ahmed Hajam and Shri Fayyaz Ahmed Wani of Jammu and Kashmir for the Chand Dar Kani Shawl, and Shri Kamal Gaud of Madhya Pradesh for the Maheshwari Sari, Shri Abhinav Boshak of West Bengal for the Khadi Muslin Jamdani Sari, Shri Prafullo Kumar Sahu of Odisha for the Jagat Singhpur Sari, Shri Bariga Ram Ram of Rajasthan, a young weaver, for the Pattu Sari. And Shri Vankar Keshabhai from Uttar Pradesh for the Tangalia Dupatta. And the Honorable President is conferring the various awards to the awardees on the National Handloom Day 2025. And she is conferring the National Handloom Awards 2025.
0: Marketing training se hi agle vijeta hain Tamil Nadu se. Messrs. 31 Kovilwadi Hatkarga Bunkar Sahkari Samiti. और आज का आखिरी पुरस्कार असम से स्टार्टअप उद्यम यानी निर्माता कंपनी के लिए मेसर्स मार्वेला एसोसिएट्स. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट कंक्लूड्स आवर अवार्ड्स प्रेजेंटेशन. विद दैट वी कंक्लूड द अवार्ड्स लिस्ट. आपके उत्कृष्ट कार्य संपूर्ण हथकरघा समुदाय और राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत है. सभी पुरस्कार विजेताओं को हमारी हार्दिक बधाई. आज हम मध्य भारत के आले से रंगे हथकरघा वस्त्र नामक एक विशेष कॉफी टेबल बुक का अनावरण भी यहां पर होने जा रहा है. इसका शीर्षक है धरती यानी अर्थ, जड़ यानी रूट्स और धागा यानी थ्रेड. मैं माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन करती हूं कि वे अपने कर कमलों द्वारा इस कॉफी टेबल बुक का अनावरण करें.

0: धन्यवाद। ये प्रकाशन हमारे हथकरघा कारीगरों के कौशल, रचनात्मकता और दृढ़ता के लिए एक स्थायी श्रद्धांजलि के रूप में कार्य करेगा। और अब हम हथकरघा पर आधारित चार स्मारक डाक टिकटों के विमोचन की ओर अग्रसर हैं। इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं श्री जितेंद्र गुप्ता, महानिदेशक डाक सेवाएं। आपसे अनुरोध है, कृपया मंच पर आएं और माननीय राष्ट्रपति जी को हथकरघा पर जारी स्मारक डाक टिकट की प्रथम एल्बम विमोचन हेतु भेंट करें।
1: And the Honorable President of India is being presented with this special commemorative postage stamps, and the Honorable President is releasing these commemorative postal stamps, which have been unveiled by the Department of Post, Government of India. These are all rupees 5 postal stamps, which depict the rich heritage of India's handlooms.

0: India presented Sant Kabir Handloom Awards 2025 to two awardees from Odisha and Uttar Pradesh. The Kamala Devi Chattopadhyay Sant Kabir Handloom Award 2025 to Srimati Runima Chetia Choudhury.
1: All right, Assam. Time to get and one NRI task done.
0: Weaving.
1: What?
0: And
1: you thought I'm going out?
0: There were 12 awardees for the National Handloom Award 2025 from Tamil Nadu, which went jointly to Sri Annamalai Marimuthu and Sri Kumaran Balaraman for their Kanchipuram Kurvai silk sari. Sri Ganchi Venkatesh of Telangana bagged the National Handloom Award 2025 for the Ikat Sadi. Sri Murakala Nataraju of Andhra Pradesh got the Katan Tushar half and half Jamalani Sadi. Sri Naseem Ansari of Uttar Pradesh for the Ikat Guldasta Jamdani
2: Sadi.
0: And we have the Union Minister of State for Textiles, Sri Pavitra Margarita.
2: पद तक आपकी प्रेरणादायी यात्रा आपकी सादगी संवेदनशीलता और जनसभा के प्रति समर्पण 140 करोड़ देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। As we gather here today, we remember 7th of August 1905 when the Swadeshi movement became a symbol of India's resolve for self-reliance. More than a century later, under the visionary leadership of Paramadriniya Pradhan Mantri Sri Narendra Modi ji, that spirit continues through the vision of Atmanirbhar Bharat, vocal for local and local for global, creating new opportunities for our weavers and artisans. Maniya Rashtrapati ji, पिछले वर्ष राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार समारोह के अपने संबोधन में आपने जीआई टेक के महत्व पर भी विशेष बल दिया था और अधिक से अधिक पारंपरिक उत्पादों को जीआई पहचान दिलाने का आह्वान किया था। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए दो दिन पहले ही जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 समिट का सफल आयोजन किया गया, जिसने जीआई इकोसिस्टम को और मजबूत बनाने की भी दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। साथ ही ये बताते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष 2014 के बाद हथकरघा एवं हस्तशिल्प श्रेणी में जीआई पंजीकरणों में 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। द ट्रू क्रेडिट फॉर द एंड्यूरिंग लेगेसी एंड ग्रोइंग ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ इंडियास हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट ट्रेडिशंस बिलोंग फर्स्ट to our generations of weavers and artisans who have preserved this priceless heritage for thousands of years. Under the constant guidance of Honorable Union Minister of Textiles, Sri Giriraj Singh Ji, and through the dedicated efforts of the Secretary Textile, DC Handlooms, and the entire Ministry of Textile team, this legacy continues to reach the new heights. As I conclude, I would like to extend my heartfelt congratulations to all the recipients of Sant Kabir Handloom Awards and the National Handloom Awards for your craftsmanship, innovation and dedication. You continue to preserve our weaving traditions while inspiring future generations. Antata, aiye hum sab milkar ye sankalp lein ki hamare bunkaron ko samman पहचान और नए अवसर निरंतर मिलते रहे तथा हमारे बुनकरों द्वारा बुना गए प्रत्येक धागा विकसित भारत के सपने को और अधिक सशक्त करे। धन्यवाद। जय हिंद।
3: धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपके ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी भाषण के लिए आपका धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूं श्री गिरिराज सिंह जी को। माननीय वस्त्र मंत्री भारत सरकार, आपसे अनुरोध है कि भारत के हथकरघा क्षेत्र के भविष्य के लिए अपना संबोधन और दृष्टिकोण साझा करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए।
4: भारत माता की बंदे बंदे। आज 12वें हस्तकरघा दिवस के अवसर पर देश के राष्ट्रपति, हम लोगों के आन बान शान भारत की संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक और हमारे हैंडलूम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आज हम पूरे देश और दुनिया में आपका नाम लेता हूं, आपका मैं स्वागत भी करता हूं। मैं जब मंच पर बैठे हमारे सहयोगी राज्य मंत्री मानवर मार्गरेटा जी पवित्रा, हमारी सचिव नीलम शम्मी राव जी, हमारी डीसी हैंडलूम श्रीमती एम बीना जी और सभी यहाँ आए हुए हमारे विजेता बुनकर भाइयों, अधिकारी, प्रेस मीडिया, सभी का मैं सम्मान करता हूं। जब मैं 12 में हस्तकरघा दिवस की बात करता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने अपने अतीत को खो दिया, क्योंकि धन्यवाद मैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को देता हूं, जिन्होंने 14 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके मन में लगा जो हैंडलूम हमारे आजादी के पहले से हजारों वर्ष से हमारे सभ्यता और संस्कृति का एक महान कृति है, उसको शायद नजरअंदाज किया गया। नजरअंदाज इस क्यों किया गया मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जब हमारे सहयोगी मित्र कह रहे थे 1905 की बात, उसी 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन के दिन को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 7 अगस्त को ये पुनर्स्थापित करने का काम किया, क्योंकि ये भारत के विकास को विरासत के साथ जोड़ के देखते हैं। ये हमारी ऐसी विरासत जिसे हम याद करते हैं कि भारत की विरासत में खादी और हैंडलूम एक अंगूठी से बंगाल का मुस्लिम मसलिन पूरे पास हो जाता था, लेकिन विदेशी आक्रांताओं ने, अंग्रेजों ने इस पे प्रहार किया हमारी टेक्नोलॉजी को, तो हम लोगों ने स्वदेशी आंदोलन, हमारे पूर्वजों ने मैनचेस्टर के कपड़े को बहिष्कार करके और इन्हीं बुनकर भाइयों के कृति पर हम पूरे देश को एक जन आंदोलन में बदलने का काम किया।
0: एंड वी आर ब्रिंगिंग यू द नेशनल हैंडलूम अवार्ड्स फ्रॉम द राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर। The Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu, conferred the National Handloom Award 2025 to the awardees. And now the Minister for Textiles, Shri Giriraj Singh.
4: जब 10 साल बाद आता तो 43 लाख और जब उसके बाद 10 लाख आता तो 35 लाख, आखिर क्यों? आज मैं कुछ नौजवान भाइयों को देखा, मेरे अंदर वो प्रसन्नता जो मैं कह नहीं सकता। और मेरा लक्ष्य है कि भारत के बुनकर भाइयों के लड़के और लड़की इस पेशा में कैसे आए, ये मेरी चिंता है। और मेरी चिंता है ये तब होगा जब मैं इनके संतति को, इनको अच्छी रकम मिले। ये तो संत कबीर हैं, ये हैंडलूम अवार्ड है, अवार्डी के कपड़े को तो मैडम मैं बीड भी कर रहा हूं, जिससे बुनकर भाइयों से पूछता हूं संत कबीर इस साड़ी

का कीमत कितना लेंगे? तो 1,90,000, और कॉटेज में लोग लेकर के जाते हैं। लेकिन आम बुनकरों की पीड़ा, चाहे उड़ीसा हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे गुजरात हो, जिस देश का ले, वो आज उनकी पीड़ा को कहना उचित नहीं लगता। लेकिन जो संकल्प मोदी जी के नेतृत्व में लिया है, क्योंकि जब हम सूती कपड़े को देखते हैं तो बाजार में जाता है तो लोग उसे पावर लूम से कंपेयर करते, फिर उसकी कीमत देखते। हमने तय किया है आने वाले दिन में हम निश प्रोडक्ट बनाएंगे और जीआई जो प्रोडक्ट है उसको हम प्रमोट करेंगे। केवल निश प्रोडक्ट बनाएंगे नहीं, हमने गुवाहाटी में हम लोगों ने विभाग ने हमने मॉडल को स्थापित करने का काम किया है। हमारे देश में 29 बीवर सर्विस सेंटर है, 3 एक्सटेंशन है, 11 राज्य और केंद्र मिला के IIST है और 20 निफ्ट का कैंपस है। मैं सबों को लेकर के, लेकिन फर्स्ट फेज में मैं सर्विस सेंटर को, IIST को, एक्सटेंशन को, कि किसी भी बुनकर भाइयों की आमदनी मिनिमम 50,000 रुपया मासिक से कम नहीं हो। यह मोदी जी की पीड़ा है, ये गरीबों का, और ये होगा, ये करना शुरू कर दिया हूं गुवाहाटी से, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। दूसरा आपसे निवेदन करता हूं, इसमें हम अपस्किलिंग करते हैं। अपस्किलिंग करने के बाद अगर लूम नहीं है तो लूम हम देते हैं, लूम अगर है उनको सूता देंगे, उनको डिजाइन देंगे, उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग जो नहीं कर पाएंगे उनकी मार्केटिंग भी करेंगे। अगर ये हमारे बुनकर भाइयों को ठीक लगता है तो मुझे तालियों की गड़गड़ाहट से सब विभाग को एक दें। और ये शुरू कर दिया है, अभी 25,000 से 30,000 रुपये गुवाहाटी विभिन्न सर्विस सेंटर क्या दे रहे हैं, 6 राज्यों में इसको फर्स्ट फेज में, और लक्ष्य है 2030-31 तक कोई ना बचे। दूसरा तय किया, आज तक इनकी पहचान कार्ड नहीं था, मुख्य कानून 6 था, जो कह दिया सर्वे में वही हम लिख लेते थे। लेकिन अब हम लोगों ने 2025 के जनवरी से हमने इनका पहचान कार्ड बनवाया, 35 लाख आए। लेकिन जो नई गतिविधि हुआ है, हम उस पहचान को ऑनलाइन छोड़ा है, और केवल ऑनलाइन नहीं छोड़ा है बल्कि हर दिन वो, और मुझे खुशी है अब 65 लाख से हम 35 लाख पहुंच गए, अब 35 से हम 65 रिवर्स में जाएंगे, लगभग 1 लाख नए बीवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये हमारा संकल्प है। हमारा दूसरा संकल्प है कि बीवर भाई अपने बच्चों को IIST में दें, पढ़ाएं, फिर निफ्ट में उसको हम प्रमोट करेंगे, और ये 2 लाख रुपया इनके बच्चों की पढ़ाई के लिए भारत सरकार टेक्सटाइल डिपार्टमेंट देने का काम करेगा। इसलिए ये पीड़ा है। आज कई युवक जब IIST से पढ़ करके निफ्ट जाते हैं, अपना कारोबार करते हैं, वो 150 लोगों को रखते हैं। मेरा उद्देश्य है मास्टर बीवर यानी बिचौलिया।

0: मास्टर बीभर से बीभर का मुक्ति दिलाना, उसके लिए ई कॉमर्स रखा है, उसके लिए विदेशों में ईपीसीएच से के साथ जोड़ करके अभी शुरुआत की है 50 हैंडलूम 50 हैंडीक्राफ्ट, क्योंकि इस बार जो योजना हम बना रहे हैं वो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट दोनों को मिला करके हैंडलूम की साड़ी बन गई, अगर उस पर पैच वर्क हुआ तो वो हैंडीक्राफ्ट हो जाता। तो हमने तय किया है दोनों को मिला करके एक नए तरह से हम बीभर भाइयों के जिंदगी में परिवर्तन करेंगे। अभी राष्ट्रपति महोदया अभी आईआईटी दिल्ली से एमओयू किए हैं, केवल एमओयू नहीं किए हैं, अभी 100 बीभर से जस्ट शुरू किया है एक एप्लीकेशन मोबाइल के थ्रू, उसमें हम कार्बन फुटप्रिंट कितना कैप्चर कर रहे हैं वो उनको दिखाई देगा, बीभर को दिखाई देगा कि उनकी एफिशिएंसी कितना आज के काम का है, उनको दिखाई देगा। एआई टूल्स भी लगा रहेगा, उनके सिस्टम में कोई गड़बड़ी होगा तो एआई टूल उसको रोकेगा। इस तरह से टेक्नोलॉजी का सहारा, टेक्नोलॉजी का सहारा हम इनके जो लूम है लूम को परिवर्तित करेंगे। आसाम का एक शिवसागर जो जिला है वहां एक रिटायर्ड इंजीनियर ने लूम बनाया, अभी वो 70 से 80 पीपीएम पर जा रहा है। उसने मुझे कहा है कि हम 180 पीपीएम पर जाएंगे, पर मिनट 180 पिक जाएगा। लोगों ने कहा ये तो पावर लूम की तरह होगा, हम कहा टेक्नोलॉजी तो इसी को कहते हैं, जब टेक्नोलॉजी होगा तभी हम ये करेंगे, हम मैकेनिकल चेंजेज लाएंगे। मैं इतना ही आपको वादा करता हूं कि टेक्स्ट
1: आपको बता दें 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र के सभागार में ये समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें माननीय राष्ट्रपति ने हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। और आपको बता दें ये कई अलग अलग क्षेत्रों में ये पुरस्कार प्रदान किए गए। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं।
0: और जो मेरा लक्ष्य है 5 लखिया भाई और बहन बनाना, 10 लखिया बनाना, इस संकल्प को पूरा करेंगे आपके नेतृत्व में, मैं यही कह रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, आपके उत्साहवर्धक संबोधन और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने और मजबूत करने में आपके सटीक नेतृत्व के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवी और सज्जनों, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि मैं माननीय राष्ट्रपति जी को 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया सभा को अपना संबोधन दें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए।
3: बैठे बैठे, मैं कुछ कहने से पहले मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहती हूँ और भारत की सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ। टेक्सटाइल डिपार्टमेंट अच्छे लोगों को दिया है, अच्छे एक मंत्री को दिया गया। मुझे लगता है टाइम का पाबंदी है, टेक्सटाइल ऊपर में बातें करने के लिए उनको एक दिन दिया जाए तो शायद कम होगा। इस समारोह में उपस्थित भारत सरकार में मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स श्री गिरिजाराज सिंह जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल्स श्री पवित्र मार्गरेटा जी, सेक्रेटरी टेक्सटाइल्स श्रीमती

0: नीलम स्वामी राव जी, डेवलपमेंट कमिश्नर डॉक्टर एम बीना जी, गणमान्य अतिथियों, सभी अवार्डीज और सभी बुणाकार, डिजाइनर, देवियों और स्वजन, सभी को नमस्कार। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत आनंदित महसूस हो रही है। मैं देश के प्रतिभाशाली बुनाकारों, डिजाइनरों, उद्यमियों, विद्यार्थियों और भारत के हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हजारों वर्ष से हथकरघा भारत के प्रकृति पोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। जब हम यहाँ पे इधर आ रहे थे, एग्जीबिशन हम देखे, इतने सारे वैरायटीज देख के मुझे लगता है, मुझे कोई ने बोले मैडम आपका महिलाएं थोड़ा कम है, केवल 5 लोगों को दिया जाता है। मैंने बोली नहीं नहीं, हम लोग 100 लोगों को दिए नहीं, केवल 24 लोगों को दिए, हम सबको दिले 50 तो जरूर महिलाओं को मिलता है। इसने हमारे क्षेत्रीय विशेषताओं के संरक्षित भी किया है। हथकरघा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है। हमारे ग्रामीणों और जनजातियों समाज ने प्रकृति के साथ सामंजस्य से जीने की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सदियों तक संजोय है। हथकरघा उस परंपरा का एक सशक्त उदाहरण है। प्रकृति के अनुरूप जीने की पद्धति की उपयोगिता आज समूची विश्व में स्वीकृति जा रही है। देवियों और स्वजनों, हथकरघा क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। मुझे बताया गया है कि इस क्षेत्र में देश की 35 लाख से भी अधिक आबादी संलग्न है। विशेष बात यह है कि इसमें 25 लाख से अधिक महिलाएं हैं, 35 से 25 महिलाएं हैं। उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें लगभग 2/3 कारीगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित है। इस प्रकार ये क्षेत्र आजीविका सृजन के साथ साथ समावेशी विकास का भी एक सशक्त माध्यम बना है। देश इंडिपेंडेंट होने के कुछ साल बाद में धरती पे आई, स्कूल गई, जो असहयोग आंदोलन के टाइम महात्मा गांधी ने जिस बात गांव-गांव घूम के बोले थे, हम जो स्कूल में 15 अगस्त और 26 जनवरी में हम घूमते थे, प्रभात फेरी करते थे, वही गाना हम गाते थे। हम तो ओडिया में पढ़ाई की है, तो मैं थोड़ा ओडिया के 2 पंक्ति बोलना चाहती हूँ। आजि आसिअछि नुआ जुगान्तर, गांधी कहिछन्ति बुली बारबर, खाओ भात मुठे घर ढेंकी कुटा, पिंधो लुगा खंडे हाते काटी सूता। इट मीन्स आज नया युग आ गया है। इसीलिए जितने जमीन है, जमीन में खेती करो, अनाज उगाओ और अपना खाओ, अपना करो अपना खाओ। और कर्पास इतने उत्पादन होता है, इसीलिए वहां से थ्रेड निकालो और बुनाई करो और खुद का पहनो। आज भी मैं जो 7 क्लास तो पढ़ती थी, पर कितने साल हो गया है, लेकिन वो 2 पंक्ति मेरे दिल में है, अभी भी मुझे याद है। इसीलिए आज जो देखती हूँ, केवल वो वाला मोटे वाला सूत नहीं, आज इतने फाइन फाइन कपड़ा बनाते हैं, कोई 1 लाख 2 लाख 5 लाख तो थे, तो यहीं पे तो शॉप है। हम विदेशों में नज़र क्यों डालें। देवियों और स्वजनों, संत कबीर हथकरघा पुरस्कार से आज सम्मानित हुए वरिष्ठ बुनाकार विशेष बधाई के पात्र हुए। इन सभी ने ही आपने दशकों के कामकाजी जीवन में केवल अपने कौशल को ही नहीं संवारा, बल्कि उन्होंने सैकड़ों बुनाकारों को प्रशिक्षित और प्रेरित भी किया है। बुनाकारों की नई पीढ़ी तैयार करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार पाने वाले सभी प्रतिभाशाली और कर्मठ बुनाकारों को भी मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर सुदूर दक्षिण तक देश के अनेक राज्यों की हथकरघा शैलियों के बेजोड़ उदाहरण का सर्जन उन कर्मठ बुनाकारों को किया है। इनके उत्साह और कौशल की मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ। हथकरघा का हमारी स्वतंत्रता संग्राम के गहरा जुड़ाव है। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक शुभारंभ हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुए इस आंदोलन का उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं, स्वदेशी उद्योगों और विशेष रूप से देश।
1: आपको बता दें, राष्ट्रपति भवन के जो सांस्कृतिक सभागार है, इसमें माननीय राष्ट्रपति पुरस्कार वितरण के बाद संबोधित कर रही हैं।
0: मनाने जा रहे आ रही है। अब ये एक औपचारिक वार्षिक आयोजन भरी नहीं रहा, ये उत्सव है। हमारे देश की सांस्कृतिक एकता की इंद्रधनुष विविधता है। ये अवसर है सरकार और बुनकर समाज के उन साझे प्रयासों का याद करने हैं जो भारत के हथकरघा सेक्टर को प्रीमियम क्वालिटी की छवि दे रहे हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि हथकरघा क्षेत्र में के बहुआयामी विकास के लिए सरकार ने विभिन्न हितधारकों के सक्रिय योगदान से अनेक योजनाओं और अभियान पिछले एक दशक से चली आ रही है। इसके सुपरिचालना आप सामने आने लगा है। मुझे ये भी बताया गया है कि हाल ही में भारतीय हथकरघा उत्पादों के एक विशिष्ट कलेक्शन को विश्व सूत्र वेबर्स ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड के रूप में वैश्विक ऑडियंस के सामने एक नए ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इससे भारतीय हैंडलूम को डिजाइन की एक नई विधा मिली है। देवी और स्वजनों, हमारे हथकरघा सेक्टर में भारत की रूरल प्रीमियम इकोनॉमी का सबसे सुंदर और मानवीय उदाहरण बनने की संभावनाएं बलवती हुई है। महत्वपूर्ण हैंडलूम क्लस्टर्स को आधुनिक प्रौद्योगिकी और सामूहिक प्रशिक्षण विधियों से जोड़ा जा रहा है। बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पारदर्शी उपाय सरकार ने हाथ में लिए हैं। बुनाकारों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ सीधे मिलने के रास्ते खुले हैं, जो माननीय मंत्री में ने हम लोगों के सामने उल्लेख किया। भारतीय हथकरघा सेक्टर की अंतर्राष्ट्रीय छवि निखर रही है। उसे और तेजी देते हुए इसे वेरीफाइड कल्चरल इकोनॉमी बनाने के लिए सरकार प्रयास लगातार बढ़ा रहे हैं। गृहसज्जा और होम टेक्सटाइल क्षेत्रों में हैंडलूम को विशेष आर्थिक बढ़त मिलने की संभावनाएं बन रही है। वोकल फॉर लोकल अभियान के द्वारा भी भारतीय हथकरघा को स्थानीय सीमाओं से निकालकर वैश्विक मंच पर, जैसे कि ग्लोबलाइज करने के लिए सोचा जा रहा है। इससे हमारे बुनाकारों और शिल्पकारों को आर्थिक समृद्धि के नए अवसर भी मिल रही है और विश्व के समक्ष भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उत्कृष्ट शिल्प कौशल की प्रतिष्ठा भी बढ़ रहे हैं। टेक्निक और नवाचारी डिजाइन के साथ अनेक प्रतिभाशाली युवा उद्यमी इस क्षेत्र में आने लगे हैं। सराव और कौशल से इस सेक्टर की बहुआयामी सफलता की लंबे उम्र सुनिश्चित हो सके। युवाओं एंटरप्रेनर्स, डिजाइनर्स और स्टार्टअप्स

0: पारंपरिक शिल्प को नए ट्रेंड्स, ब्रांड्स और ग्लोबल वैल्यू चेन से जोड़कर इस क्षेत्र में नए अवसरों का सृजन कर सकते हैं। भारतीय हस्तकर्ता प्रौद्योगिकी संस्थान और व्यवहार सर्विस सेंटर्स के अंतर्गत कार्यरत डिजाइन रिसर्च सेंटर्स युवाओं को इस क्षेत्र से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि युवाओं को आधुनिक तकनीकों के प्रशिक्षण करने के साथ साथ उनके नवाचार के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस क्षेत्र के सतत विकास के लिए नई टेक्नोलॉजीज का उचित उपयोग आवश्यक है। आधुनिक डिजिटल सॉल्यूशंस के माध्यम से बाजार तक पहुंच को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। साथ ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारतीय हथकरघा उत्पादों की पहुंच वैश्विक बाजारों तक और अधिक सशक्त बनाया जा सकती है। मुझे विश्वास है कि ये क्षेत्र देश के समावेशी विकास एवं आत्मनिर्भरता का सशक्त आधार बनेगा। मैं हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और सभी पुरस्कार विजेताओं को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: The Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu, was speaking at the Rashtrapati Bhavan Cultural Center on the occasion of the 12th National Handloom Day. The Honorable President also conferred the National Handloom Awards 2025 to the winners under the category of Sant Kabir Handloom Awards 2025 to two awardees, the Kamala Devi Chattopadhyay Sant Kabir Handloom Awards 2025 to one awardee and the National Handloom Awards 2025 to 12 awardees, the Kamala Devi Chattopadhyay National Handloom Award 2025 to two awardees and the National Handloom Awards for Design Development for the year 2025 to two awardees, the National Handloom Award for Marketing of Handloom Products for 2025 to two awardees and the National Handloom Award for Startup Producer Company for the year 2025 to one awardee. And she also released commemorative postage stamps, and the Honorable President of India also released two publications, Earth, Root, Thread, All Dyed Handloom Textiles of Central India and the Handloom Awards Book 2025.
2: आज का ये समारोह केवल पुरस्कार वितरण नहीं बल्कि भारत की उस सांस्कृतिक चेतना का उत्सव है जिसने सदियों से अपनी परंपराओं को जीवित रखा है। जब हम हाथ से बुना हुआ भारतीय वस्त्र धारण करते हैं तब हम केवल एक परिधान नहीं पहनते बल्कि एक बुनकर की मेहनत, उसके परिवार की आशा और भारत की सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देते हैं। राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र के सभागार नई दिल्ली में 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के इस विशेष समारोह से आप सजीव विवरण सुन रहे थे। मैं शोएसियार खान अपने साथी कमेंटेटर कौशिक राय और कार्यक्रम प्रभारी प्रमोद कुमार के साथ आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

लता मंगेशकर की आवाज में अगला गीत आनंद बख्शी की रचना है, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम अपना बना लो।

0: रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय,
0: वो कॉमिक क्रिएटर है।
3: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
3: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
3: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
0: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और आज हम याद कर रहे हैं फिल्मकार जे ओम प्रकाश को, क्योंकि आज है उनकी पुण्यतिथि, उनकी याद का दिन। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं आशिक हूं बहारों का, इस फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर हैं, आनंद बख्शी की रचना, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सखी सहेली।
2: शोक अदाओं के साथ थिरकते कदम
3: चलते रे, इश्क भी बढ़ जाते
2: पूरे दबंग अंदाज में, और दोस्तों की महफिल सजी हो तो
4: ओ केटिको बर्फ बदन है।
2: लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन यादगार गीतों की धड़कनों को नृत्य की परिभाषा किसने दी?
5: मेरा काम यह है कि जो मेरे मास्टर कोरियोग्राफी मेरे ऊपर कर रहे हैं उसे मैंने 200% निखार के उनको दिखाना है। तो मेरा जब एक्टर मुझसे सीखेगा
2: जी,
5: वो एक्टर को पता होना चाहिए कि मैंने इतना करना है।
2: तो मिलेंगे बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान से, जानेंगे उनके सफर की

0: अनसुनी कहानियाँ, पर्दे के पीछे के दिलचस्प किस्से और उन गीतों के बनने की दास्तान जिन पर झूम उठा पूरा हिंदुस्तान।
1: मैं निकला गड्डी लेके
0: 8 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज में सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन पर शोक अदाओं के।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
0: एक आवाज जिसमें है जोश।

0: 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे
1: ब्रेक से पहले आपने सुना था आसपास फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आनंद बख्शी के बोल थे। अब आपको सुनवाते हैं अर्पण फिल्म का ये गीत। लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया है, आनंद बख्शी के ही बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप गीत सुन रहे थे अर्पण फिल्म से। इसी गीत के साथ कार्यक्रम यादों की महफिल आज यहीं संपन्न होता है। आज हमने आपको सुनवाए फिल्मकार जे ओम प्रकाश की फिल्मों के गीत, क्योंकि आज था उनकी याद का दिन। अब दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

आप सुन रहे हैं देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर बस थोड़ी ही देर में लेकर हाजिर होंगे।

लीजिए श्रोताओं, सुरीला सफर कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हो गए हैं। आप सभी विविध भारती सुनने वालों को पूजा नारायणिया का प्यार भरा नमस्कार।

श्रोताओं, इस सफर की सबसे खास बात यही है कि गीतों का चयन भले ही हमने किया हो, लेकिन उन्हें पहचानने का खूबसूरत सा खेल आप सभी के साथ गीतों के साथ हम खेलते हैं। फेसबुक पर हम कुछ छोटे छोटे शब्दों और संकेतों यानी इबारत के जरिए आज के गीतों की झलक साझा आपसे करते हैं और फिर आपकी टिप्पणियां इस सफर को और भी दिलचस्प बना देती है। ये है इस सफर की खास बात। कोई बिल्कुल सही गीत पहचान लेता है तो कोई अपने अंदाज से यादों का नया पन्ना खोल देता है। तो आइए आज भी देखते हैं कि हमारे श्रोताओं ने इन संकेतों से किन किन गीतों का अंदाजा लगाया है। पढ़ेंगे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स, करेंगे उनसे जुड़ी बातें और सुनाएंगे मधुर सुरीले गीत जो हर सफर को सचमुच सुरीला बना देते हैं। सबसे पहले पढ़ देते हैं आज की इबारत यानी टेक्स्ट। सावन के झूले पड़े भीगी भीगी रातों में भी पिया अनजान है सपनों की सूखी फुलवारी, तन में पिया दिन भर मुझे यूं सताए, दो नयन ख्वाबों की महफिल सजाए, दर्पण में देखूं जिसे वो सपने सच्चे लगने लगे, शाम सवेरे दिल में तू रहता है, तुझसा दिल का हंसी पहले देखा कहां, दिल ने कहा नहीं माना और एतबार कर लिया, यानी कहा ना माना और दिल ने एतबार कर लिया, बेखुदी में आ गए पास हम और अब ना होंगे जुदा। तो ये थी हमारी आज की इबारत। इनसे जुड़े कई कमेंट्स हमें आ गए हैं। एक श्रोता कहते हैं कि सावन के झूले पड़ चुके हैं लेकिन प्रेमी पिया अनजान है और दिल के सपनों की सूखी फुलवारी ने उम्मीद और अरमान को निराशा से भर दिया है, फिर भी दो नैनों ने जो ख्वाबों की महफिल सजाई है उसमें प्यार की रोशनी धीरे से जगमगाई है जिससे दिल को एतबार हो गया कि अब वो फिर से जुदा नहीं होंगे। सूखी फुलवारी यानी निराशा के बावजूद नए सपने सजाना, यानी कि मन में आशा रखना, मन की अदम्य प्रेम भावना को दर्शाता है। वहीं अनजानेपन के बाद भी दिल का एतबार करना प्रेम की सहज और पवित्र प्रकृति को उजागर करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा है। ऐसे ही हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि सावन की बारिश का एक अजीब सा स्वभाव है, यह हमेशा बाहर नहीं बरसती, अक्सर भीतर भी भिगाती रहती है। झूले डलते तो हैं पेड़ों पर लेकिन झूलता मन है, दर्पण में चेहरा अपना दिखाई देता है मगर आंखें किसी और की परछाई ओढ़ लेती है, ख्वाब भी बड़ी खामोशी से आकर दिल के आंगन में बैठ जाते हैं और एक अनकहा नाम पूरे दिन सांसों में गूंजता रहता है। फिर एक दिन दिल बिना किसी दलील के यकीन कर लेता है कि मोहब्बत का रास्ता मंजिल से नहीं इंतजार से होकर गुजरता है। सावन हर साल लौट आता है यह याद दिलाने के लिए कि कुछ रिश्ते बारिश की तरह होते हैं, उन्हें छूने से ज्यादा महसूस किया जाता है। कितनी सुंदर बात आपने कही है। एक और श्रोता कहते हैं कि ये सावन जो है ऋतु नहीं, हृदय की वह अवस्था है जहां हर बूंद किसी अनकहे नाम का उच्चारण करती है। झूलों की रुनझुन, भीगी रातों की नमी, दर्पण में उभरती छवि और आंखों में सजती ख्वाबों की महफिल, सब मिलकर उस प्रेम की कहानी कहते हैं जो पहले एहसास बनकर उतरता है फिर विश्वास बनकर दिल में ठहर जाता है। यहाँ विरह भी मधुर है, प्रतीक्षा भी सुंदर, क्योंकि प्रेम का सबसे उजला रूप उसी धैर्य में जन्म लेता है जहां मिलन से पहले स्मृतियां साथ निभाती हैं। अंततः यह इबारत बताती है कि सच्चा प्रेम शब्दों से नहीं भीतर धीरे धीरे बरसते सावन से पहचाना जाता है, एक ऐसा सावन जो जीवन को भीगने के साथ साथ महकाता भी है, यानी कि महकना सिखा देता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो श्रोताओं, सबसे पहला गीत आ रहा है सफर का आपके लिए जुर्माना फिल्म से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत बद किया है आर डी बर्मन ने।

0: जो पहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जयो कहा।
3: वो कॉमिक क्रिएटर है।
4: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
3: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
4: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
3: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
4: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
3: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: गीत के साथ हमने आपको संदेश भी सुना दिए हैं। श्रोताओं, आज हमारी जो इबारत यानी टेक्स्ट जो था वो बड़ी ही सरलता के साथ आपके सामने आज हमने रख दिया था। इसमें गाने पहचानना शायद बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहा होगा, है ना? सावन की झूले पड़े ये गीत अभी आपने सुना। सचमुच सावन का नाम आते ही मन जैसे अपने आप गुनगुनाने लगता है। झूलों की पिंगे हो, सखियों की हंसी ठिठोली हो, या फिर अपने प्रिय के आने की मीठी सी प्रतीक्षा, सावन हर एक एहसास को और भी गहरा बना देता है। इसलिए इस मौसम में प्रेम का भी तो महत्व अधिक बढ़ जाता है ना। प्रेम का रूप इस मौसम में और भी हरा हो जाता है, यानी खिल जाता है, हरियाली छा जाती है। तो प्रेम सिर्फ शब्दों में नहीं, मुस्कानों में, आंखों की चमक में और गीतों की मिठास में भी महसूस होने लगता है। सावन दिलों को एक दूसरे के और भी करीब ले आता है। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि सावन के झूले और भीगी भीगी रातों की बातें आज के सुरीले सफर से भाव विभोर करने वाली है, लेकिन बादल हैं कि बरसना ही नहीं चाहते। सुना है पुराने समय से मेघ मल्हार गाते थे और बादल बरस जाते थे। उम्मीद है कि आज की गीतावली यानी सुरीला सफर की गीतावली से ही आज सावन की फुहार बरसेगी। क्यों ना उन्हीं फुहारों का मजा लिया जाए। क्या बात है, बिल्कुल ऐसा ही कुछ करना होगा। और हमारे अगले श्रोता कहते हैं कि आज सुरीला का सफर झूले में बैठकर सुनने का दिल कर रहा है, लेकिन हमारे फ्लैट में झूला नहीं है और हमारे शहर जामनगर में बारिश भी नहीं हो रही। ओहो, तो रात भीगी भीगी कहां से नसीब होगी। बिल्कुल हम समझ सकते हैं, लेकिन आज दोपहर में विविध भारती पर सुरीले और सदाबहार गीतों की बारिश होगी, तो तय है कि सुरीले सफर में भीगने का बेसब्री से इन्हें इंतजार है। क्या बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। गीतों को सुनते हुए ही सावन का आनंद आप उठा रहे हैं। ऐसी ही हमारी अगली श्रोता कहती है कि सावन आता है तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है, फिर मन इस हरियाली से कैसे अछूता रह पाता। यह महीना ढेर सारी यादें लेकर आता है, झूले, चूड़ियां और मेहंदी के रंग में रंगा। यह मौसम तब और भी खिल उठता है जब प्रियतम आने को हो, गीतों की फुहार के साथ कुछ पिंगे झूले की उड़ा ले आती है। श्रोताओं, आप बताइए कि क्या आपके गांव, मोहल्ले या आंगन में भी कभी सावन के झूले पड़ते थे, या कि अब शहरों में भी आप ऐसा किया करते हैं? क्या आपको भी याद है कि वो दिन जब बारिश की पहली फुहार पड़ते ही मन यूं ही बाहर निकल जाने को मचल उठता था, या फिर कोई ऐसा गीत जिसे सुनते ही आपको अपना बचपन, अपनी सहेलियां, अपने कोई लोग, कोई बहुत खास पल याद आ जाता हो? तो ये सब हमें आप संदेश के माध्यम से बताइए। तो आइए सावन के महीने में आज के कार्यक्रम में अपने मन को टटोलते हुए खोलिए उन यादों का पिटारा। बता दीजिए कि आज का कौन सा गीत आपकी प्यारी याद को ताजा करता है। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अनजाना फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में आनंद बख्शी के बोल हैं।

अब देखिए सावन की भीगी भीगी रातें प्रेम की दिल में दस्तक दे रही हैं। ये दस्तक सुनकर किसी का साथ याद आने लगता है तो कभी किसी से हुई प्यारी सी मुलाकात याद हो आती है। हमारे एक श्रोता कहते हैं, आज का सुरीला सफर ऐसे लग रहा है जैसे किसी खुली गाड़ी में हवाओं के साथ बातें करते हुए फर्राटा भरते हुए चले जा रहे हों। गानों के मुखड़ों को इबारत के रूप में हमारे सामने रख दिया गया है, इसमें दिमाग कुछ लगाना ही नहीं है, गाने सबके सामने रखे हुए हैं, बस इन गानों के बजने का इंतजार था। जी बिल्कुल, ये गाने हमने आपको सुनाना शुरू कर दिया है। इतना जरूर है कि सभी गाने सभी के पसंद के होंगे, तो आज गाने सुनने का दिन है। बिल्कुल, एक श्रोता कहते हैं कि पिछले कुछ दिनों से सुरीला सफर में सावन छाया हुआ है, हो भी क्यों नहीं, क्योंकि सावन सभी मौसम का राजा है। गर्मी की तेज जलन से तन मन जब व्याकुल हो जाता है तब मन ठंडक और बारिश की कामना करता है, और बारिश की पहली फुहार से तन मन प्रफुल्लित हो उठता है। चारों ओर मानो धरती ने हरियाली की चादर ओढ़ ली है ऐसा लगता है, और ऐसे में हम जैसे संगीत प्रेमियों के मन में सावन के कई गीत उमड़ने लगते हैं। तो इन्होंने एक गीत लिखा है, सावन का मेरा प्रिय गीत है, रिमझिम के गीत सावन गाए। क्या बात है, अभी तो ये गीत हमने आपको सुनवाया। एक श्रोता कहते हैं कि लगता है कि घटाओं से सजे मेघालय में रिमझिम फुहारों वाली गीतों की मालाओं से हो रही है आज हमारी मुलाकात। पिया मिलन की उत्कंठा और मनमीत की प्रतीक्षा करने वाले गीतों की चमकीली बूंदें इबारत में दिखाई दे रही हैं, और उन्होंने कुछ गीत भी हमें लिखे हैं। एक श्रोता कहते हैं कि प्रेमिका कह रही है, सावन के झूले पड़े तुम चले आओ, लेकिन पिया अनजान है कि कभी जल सकता है जिया भीगी भीगी रातों में। ये तो पता तब पता चलेगा जब दो नयन ख्वाबों की महफिल सजाएंगे, तब वो भी गुनगुनाने लगेंगे, नैनों में दर्पण है दर्पण में कोई, देखूं तुझे जिसे सुबह शाम, ऐसे ही कुछ कहता है ये सावन। क्या कहता है, यही कि शाम सवेरे दिल में तू रहता है, फिर क्या बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम आ गए पास हम। दोपहर एक बजे सुरीला सफर में जुड़ जाने का समय होते ही पास आ गए हम। क्या बात है, एक और श्रोता है जिन्होंने हमारी ही इबारत को अपने अंदाज में लिख दिया है, और सावन में रिमझिम फुहारों की बूंद में जब पिया की याद आती है और हसीन ख्वाबों में डूब जाते हैं, मिलन की आस जाग उठती है कि तुम आ जाओ और फिर जुदा ना होंगे। एक और श्रोता कहते हैं कि सावन के सुहावने मौसम में रिमझिम फुहारों के बीच पिया मिलन की आस और उनसे जुदाई का एहसास दिल को बहुत तड़पाते हैं, और हर पल अपने पिया के पास होने की इच्छा और तीव्र हो जाती है, जिससे दो दिलों की दूरियां दिल में बेचैनी और तड़प को और बढ़ा देती है, जिससे बारिश की बूंदें मन में ठंडक की बजाय सुरीली उदासी से भर देती है। सावन के सुहावने मौसम में अपना पिया मिलन की पुरानी यादों को ये मौसम जगाता है, जिससे भीगी हुई धरती और उमड़ते घुमड़ते काले बादल मन को अत्यधिक भावुक बना देते हैं। बिल्कुल, ये मौसम है ही प्यार का। श्रोताओं, जो सवाल हमने आपसे पूछे थे उन्हें याद रखते हुए आप हमें संदेश भेजते रहिए, हमें आपके संदेशों का बेसब्री से रहता है इंतजार। आपकी ये अनमोल यादें हम तक उस वक्त की भीनी भीनी सौंधी सी खुशबू पहुंचा रही है, सावन की फुहारों के साथ।

0: इसी गीत के साथ लेते हैं कुछ संदेश।
1: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं,
1: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था -10।

0: के लिए नहीं रह गया है।
1: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आए हाय
2: श्रोताओं, प्रेम की कोमल अनुभूतियों को हम शब्दों में कह नहीं पाते, पर ये गीत सब कुछ कह जाते हैं। गीत कितना अच्छा माध्यम है ना प्रेम को व्यक्त करने का। अच्छा बताइए, अगर गीत ना होते तो कैसा होता जीवन, प्रेम का इजहार कैसे होता? और सावन के मौसम में गीत ही नहीं सुने सुनाए जाते तो कैसा होता सावन, ये बताते चलिए। फिलहाल हम लेते हैं हमारे श्रोताओं के संदेश। एक श्रोता कहते हैं कि आज अनूठे पद्यांश को पिया मिलन की आस के साथ पिरोया गया है। सावन की रिमझिम फुहारों के बीच जब पिया मिलन की आस जागती है तो मन का हर कोना पुलकित हो उठता है। प्रकृति जहां ठंडी बूंदों से भीग रही होती है, वहीं प्रेमी का मन मिलन की उत्कंठा में सुलग रहा होता है। बरसती बूंदों में छुपा है सदियों का इंतजार। बाहर सावन की फुहार है, भीतर विरह की आग। ये कजरारी रातें और ये रिमझिम सा सावन, सावन तो आ गया बस तुम रह गए हो जाने कहां, क्या बात है। ऐसे ही अगले श्रोता कहते हैं कि आज की इबारत एक गजब इबारत है। कभी सावन से पिया अनजान है, तो कभी भीगी रात तो कभी सूखी फुलवारी। इस तरह से उन्होंने हमारी ही इबारत को अपने शब्दों में पिरोया है। और हमारे और श्रोता जो कह रहे हैं कि दिलचस्प संदेशों से सजे विविध भारती के सबसे लोकप्रिय सुपरहिट सुरीला सफर कार्यक्रम ये चल रहा है। और एक श्रोता ने इतनी प्यारी बात कही है कि मेरी प्यारी प्यारी विविध भारती को किसी की नजर ना लगे चश्मे बद दूर, यूं तो हमने लाख चैनल सुने हैं विविध भारती सा नहीं सुना। ये बारिश तो सिर्फ 4 महीने होगी, क्या बात है। बस सावन के गीत आपको विविध भारती पर सुनने को मिलते ही रहेंगे, है ना।

हमारे एक श्रोता कहते हैं कि सावन का मौसम बड़ा अनोखा होता है, बाहर पेड़ों पर झूले पड़ते हैं तो मन भी यादों और ख्वाबों के झूलों पर झूलने लगता है। कभी कोई अपना याद आता है, कभी दर्पण में कोई सपना मुस्कुरा देता है, दिल बार बार उसी का नाम लेता है जिससे शायद अभी तक कुछ कहा भी नहीं गया। यही तो पुराने फिल्मी गीतों की खूबसूरती है, वे हमारे मन की उन अनकही भावनाओं को भी सुर दे देते हैं जिन्हें हम अक्सर शब्दों में नहीं कह पाते। क्या बात है।

हमारे कुछ श्रोता ये भी कह रहे हैं कि रिमझिम की फुहार बरस रही है और रिमझिम के बीच में अपनी कविता आपसे साझा करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आप कविता पढ़ेंगे। अच्छा, तो कविता तो बहुत बड़ी है, हम शायद इसे नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन हम इसे देख जरूर रहे हैं।

विविध भारती का सुरीला सफर है, कैसा सफर, हर कोई जाना है, हर कोई माना है, होती रहती है बातें, प्यार मोहब्बत भरी, मौसम पहाड़ों नदियों से भरी, बातें जब होती लगती हैं खूब सुंदर न्यारी, होती है बड़ी सुहानी सुरीली, सुनकर दिल को होती है तसल्ली, ये श्रोता कह रहे हैं। एक श्रोता कहते हैं कि गांव हमारा बहुत सूखा पड़ा था, फिर कुछ ही दिनों में बरसात की फुहार आई और फिर जमकर बरसा सावन, फिर हम मन हमारा खुशी से झूम उठा और बोल पड़ा आया सावन झूम के, फिर सावन के झूले पड़े और झूले देखकर होंठ गुनगुनाने लगे कि सावन के झूलों ने मुझको पुकारा, मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। क्या बात है? लेते हैं अब अगला गीत, भोला भाला, इस फिल्म से लता मंगेशकर ने और किशोर कुमार ने इस गीत को गाया है। आनंद बख्शी के बोल हैं, आरी बर्मन का संगीत, सुनिए ये गीत।

हमारी एक श्रोता कहती हैं कि मुझे लगता है कि आज की इबारत का मुख्य रंग सावन, प्यार, ख्वाब, दिल और मिलन है। क्या बात है, आपने बिल्कुल सही पहचाना है। और एक श्रोता कहते हैं कि इस वक्त हम बाबा अमरनाथ कश्मीर के पवित्र स्थान के बेस कैंप में हैं। और ठीक है, आप ये हमें बता रहे हैं। एक श्रोता कहते हैं कि बारिश में भीगना हमारे लिए कष्टकारी होता है, इसलिए हम तो वर्षा का आनंद घर के अंदर बैठकर ही लेते हैं, विशेषकर अपने टेरेस के झूले पर गर्मा गर्म चाय और पकौड़ों के साथ। क्या बात है। एक श्रोता कहते हैं कि हमें तो कॉलेज का समय याद आता है, हम सब दोस्त कैंटीन में गर्म गर्म समोसे पैटीज खाया करते थे। ओह, एक और श्रोता कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो पापा यही सब सॉन्ग सुनते थे तो मुझे बहुत गुस्सा उठता था, लेकिन आज बड़ा होने के बाद यही सब सॉन्ग मुझे दिल को सुकून दे रहे हैं। क्या बात कही है आपने। पुराने गीत इतने सुकून भरे होते हैं, सुनना जरूर चाहिए आज की जनरेशन को भी। देखिए, हमारे अगले श्रोता कहते हैं कि बचपन में हमारे गांव से थोड़ी दूर हरा भरा वन था और वहां शिवजी का मंदिर था, वहां सावन की अमावस को मेला लगता था, वहां वड़ का बहुत ही विशाल वृक्ष था, वड़ की लंबी डाली लटकी हुई रहती थी, उसी डाली को लटक कर हम झूला झूलते थे और बहुत ही आनंद आता था। बिल्कुल आता रहा होगा। एक और श्रोता कहते हैं कि सावन की पहली बारिश में जवान होते थे तब भीगने का मजा और ही था, लेकिन अब इस उम्र में अंगूर खट्टे हैं, सिर्फ याद ही काफी है। हमारे एक श्रोता और कहते हैं कि सावन की फुहार और प्रेम का संबंध प्रकृति और मनुष्य के बीच का सबसे कोमल समझौता है। बारिश धरती को सींचती है और प्रेम दिल को, दोनों ही बिना मांगे आते हैं और जब चले जाते हैं तो कुछ गीला कुछ यादगार छोड़ जाते हैं। सावन, अगर बारिश हो तो भीगने से मत डरना, और अगर कोई याद आए तो उसे भी भीगने देना है ना, लेकिन अपनी सेहत का जरूर ख्याल रखिए, क्योंकि अगर उम्र ज्यादा है तो और छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा हमें देखभाल करनी ही होती है, थोड़ा बच के ही भीगना होगा, है ना। श्रोता ने ये कहा था कि और अगर कोई याद आए तो उसे भी भीगने देना, क्योंकि सावन का असली जादू यही है कि वह सब कुछ गीला कर देता है और गीले दिल सबसे ज्यादा महसूस करते हैं। एक और श्रोता कहती है कि धड़कनों में बस गया है सांवरा, रूह में तन्हाई की राहें सजाया है, हर लम्हा उसकी यादों का पहला, दिल ने ख्वाबों में उसे अपना बनाया है, अब तो शाम सवेरे बस एक ही दुआ, प्यार के सफर में भी वो ही मिले। एक और श्रोता कहते हैं कि बाहर चल रही सावन की बरसात, साथ में विविध भारती का संग, हाथ में गरम कॉफी का कप, सामने प्लेट में गर्मा गर्म पकौड़े। क्या बात है। आप तो असल मजा ले रहे हैं इन गीतों को सुनते हुए सुरीले सफर का। क्या बात है। एक और श्रोता कहती है कि हमें तो सावन इसलिए अच्छा लगता है, एक तो चारों तरफ हरियाली और फूल बहुत ही प्यारे खिल जाते हैं, छोटे छोटे सब रंग के फूल और पक्षी भी इतने खुश नजर आते हैं। एक और श्रोता कहते हैं कि सावन का पावन महीना, विविध भारती, मुंबई की मेरी दीवानगी और आज सुरीला सफर प्रोग्राम, और मैं हूँ कश्मीर में। क्या बात है, वहीं से आप सुन रहे हैं, सुनते रहिए बिल्कुल, और वहां पर है सुहाना मौसम, ऐसा भी वो बता रहे हैं। एक और श्रोता कहते हैं कि सफेद कागज पर काली स्याही से मैं लिखी हुई दास्तान हूं, मैं वो गुजरे जमाने की एक राह हूं, दूर पहाड़ों पर मैं कभी खिला कभी मुरझाया फूल हूं। फिलहाल आपको सुनवाने जा रहे हैं अगला गीत चश्मे बद्दूर फिल्म से, येसुदास और हेमंती शुक्ला की आवाज में, इंदु जैन का लिखा गीत, राजकमल का संगीत।

हमारे एक श्रोता ने कहा कि बहुत सालों बाद भोला भाला फिल्म का गाना सुना, क्या बात है, यह VBS पर ही संभव है। शुक्रिया। अब सुनिए ये गाना।

हमारे एक श्रोता कहते हैं कि पूजा जी, हमारे भोपाल में तो केवल बादल छाए हुए हैं, पानी तो सावन के महीने में भी तरसा रहा है, अब तो केवल विविध भारती का ही सहारा है। एक श्रोता कहते हैं कि वह क्या बात है, लता दीदी की सुरीली आवाज में मेरी पसंद का एक सदाबहार बेमिसाल गीत यहाँ बज गया है। उस समय हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता जब कार्यक्रम में अधिकतर गीत हमारी पसंद के आ जाते हैं। जी धन्यवाद। एक और श्रोता कहते हैं कि सावन आते ही मन मयूर नाचने लगता है, फूलों पर पानी की बूंदें ऐसी लगती हैं जैसे शबनम की बूंदें गिर रही हैं। ऐसे माहौल में काम करने में भी दिल नहीं लगता, दिल करता है बस ऐसे मौसम को देखते ही रहें। एक और श्रोता कहती हैं कि मौसम की पहली बारिश अपने साथ पुरानी स्मृतियों की एक पूरी किताब खोल देती है। वह चेहरा, वह बातें और उनके साथ बिताए हुए पल जो वक्त की धूल के नीचे छिप गए थे, अचानक धुले धुले से साफ नजर आने लगते हैं। बूंदों की छुअन उस स्पर्श की याद दिलाती है जो कभी रूह को छू गया था। यह याद कितनी गहरी होती है कि इंसान चाहकर भी इससे मुंह नहीं मोड़ पाता। यह महज एक इत्तेफाक नहीं है, सदियों से सावन को प्रेम, विरह और मिलन का महीना माना गया है। हम चाहे अपनी मसरूफियतों में कितने भी आगे निकल चुके हों, दिल के किसी कोने में आज भी वह मोहब्बत और उसकी कसक उतनी ही महफूज है। श्रोता कहती हैं कि सावन की ठंडी बौछारें जब जिस्म को छूती है तो रूह में सुलगती हुई किसी की यादें ताज़ा हो जाती हैं। बरसात का यह हसीन मौसम जहां एक तरफ प्यार की बेताबी बढ़ाता है, वहीं दूसरी तरफ महबूब की दूरी सीने में एक मीठा मगर गहरा दर्द जगा देती है। एक और श्रोता कहते हैं कि बहुत सुंदर गीत स्वामी फिल्म से, क्या बात है, आपको अच्छा लगा, ये बहुत ही बढ़िया है। एक और श्रोता कहते हैं कि सावन के महीने में ऐसा लगता है जैसे कहीं मोर नाच रहे हो, पंछी चहचहा रहे हो। ऐसे मौसम में दिल करता है कि कागज और कलम उठाएं और कोई कविता लिखें। ठंडी ठंडी हवाओं में कलम रुकती ही नहीं है, क्या बात। एक और श्रोता कहते हैं कि 50 बरस पहले की बात होगी, गांव में झूले पर झूलते सब मस्ती में कजरी गा रहे थे कि झूला टूटा और दूसरी ओर बैठे दो लोग कीचड़ में गिरे जो पहचान भी नहीं आ रहे थे, और इस ओर के 3 लोग नीचे इधर गिरे और चोटिल हो गए। सावन का मजा किरकिरा हो गया। लीजिए अब आपको सुनवा देते हैं अगला गीत, समाधि फिल्म से आशा भोसले की आवाज में, मजदूर सुल्तानपुरी के बोल, आर डी बर्मन का संगीत।

हमारे एक श्रोता कहते हैं कि फिल्म अनजाना का यह रिमझिम के गीत सावन गीत में सावन की रिमझिम और दिल की तड़प एक साथ बोलती है। राजेंद्र कुमार की सादगी और बबीता की मासूम अदा इसे और भी खूबसूरत बना देती है। जी हाँ, प्यार जब बरसात में भीगता है तो हर बूंद एक गीत बनकर बन जाती है, वही बूंद रिमझिम के गीत सावन गायिका जादू बिखेर देती है। बिल्कुल सही। एक और श्रोता कहते हैं कि इस बरसात के मौसम में तो चाय और पकौड़े का स्वाद बढ़ जाता है और आपके प्रोग्राम सुरीला सफर का स्वाद भी और बढ़ जाता है। दिल करता है कि गीत आते ही रहें और सावन की झड़ी लगी हुई रहे। एक और श्रोता कहते हैं कि पुरानी फिल्मों में सावन पर बने गाने बहुत ही सुमधुर होते थे। बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं। सावन के गीतों में सबसे पसंदीदा गाना उनका आया आया सावन झूम के। एक श्रोता कहती हैं कि मुझे आज भी याद है कि मैं और मेरा भाई स्कूल से लौट रहे थे और बहुत जोर की बरसात आ गई। वह पूरी सड़कों पे पानी पानी भर गया और हमें घर आने में बड़ी दिक्कत हुई। हाँ, बरसात के मौसम में ये दिक्कतें तो हमें देखना ही होती। एक श्रोता कहते हैं कि हमारे नागपुर में पिछले हफ्ते बहुत बारिश हुई लेकिन अब रुक गई है तो फिर से गर्मी बढ़ गई है। एक श्रोता कहते हैं कभी कभी मैं सोचता हूं अगर मैं कोमा में चला जाऊं और कुछ भी सुनाई ना पड़े तो मुझे लगता है यही वो गाना है माँ सरस्वती का होगा जो मुझे होश मिला सकता है। अरे अरे, ऐसे तो नहीं कहिए। एक श्रोता कहते हैं कि फिल्म जुर्माना का यह गीत सावन के झूले पड़े तुम चले आओ आनंद बख्शी द्वारा रचित, और जी हाँ, ये तो हमने आपको बता दिया है, एक अमर गीत है जो राग पहाड़ी पर आधारित है और यह गीत सावन के मौसम में प्रेयसी के अकेलेपन और अपने प्रेमी के प्रति अघात प्रेम व पुकार को बेहद खूबसूरती से बयां करता है। क्या बात है, वाह क्या बात है। लता दीदी की सुरीली आवाज में मेरी पसंद का सदाबहार बेहतरीन गीत शानदार है। बहुत धन्यवाद इस गीत को सुनवाने के लिए। आपका भी बहुत धन्यवाद संदेश के लिए। तुम चले आओ, तुम जो चले गए हो तो होगी बड़ी खराबी। यादों की महफिल कार्यक्रम में इस मजेदार गीत के लिए आप सभी का धन्यवाद। विविध भारती को ये धन्यवाद दे रहे हैं। एक श्रोता कहते हैं ये मौसम आया है इतने सालों में, आजा के खो जाएं ख्वाबों ख्यालों में। फिल्म का जय ओम प्रकाश जी के सुपरहिट गाने आज उन्होंने सुने यादों की महफिल में और उन्हें बड़ा आनंद आया। एक और श्रोता कहते हैं कि पिया का नाम आते ही सांसों में एक सरगम सी बजने लगती है। बेचैनी और सुकून का मिला जुला रूप इस पल को जादुई बनाता है। पल के बिछाए रास्ते को देखना और हर आहट पर यह सोचना कि प्रिय आ गया है, इस रुत की सबसे हसीन सच्चाई है। जब सावन की यह रुत आती है तो प्रकृति भी श्रृंगार करती है। ठंडी हवाएं, खिले हुए फूल और फिजा का नशा प्रेमियों के दिल की धड़कन बढ़ा देता है। लंबे इंतजार के बाद प्रेमी से मिलने की घड़ी जब पास आती है तो मन का कोना कोना खुशी से झूम उठता है। क्या बात है, इसी बात पे आपको सुनवा रहे हैं अगला गीत। आरोप फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में माया गोविंद का लिखा गीत है। भूपेन हजारिका का संगीत बजाया।

हमारे एक श्रोता कहते हैं कि आज अपने सुरीली धड़कन के सुरीला सफर कार्यक्रम में प्रस्तुत गद्य पद्यमयी इबारत की जो बात समझी है इन्होंने कि चल रहे ऋतु चक्र के अनुरूप सावन की ही बातें हैं, और इस दृष्टिकोण से आज की इबारत सराहनीय है, ऐसा वो कह रहे हैं। साथ ही हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं कि बहुत दिनों के एक नई उम्मीद है सावन के, दिल की बात घर से दूर, प्यार की मंजिल ये मोहब्बत की आवाज़, हर गीत मोती की माला, सभी सॉन्ग कुछ यादें ताज़ा हो गई है उनकी, ऐसा वो बता रहे हैं।

हमारी श्रोता कह रही है कि आज की सुंदर सी इबारत, सावन की रूमानी फुहारों, झूलों की मस्ती, किसी अपने की याद, आंखों में बसे सपनों और प्रेम के अटूट विश्वास का सुंदर चित्र प्रस्तुत करती हैं। इसमें प्रकृति और प्रेम का ऐसा संगम है जो हर दिल को भीगा भीगा सा एहसास देते हैं, और उन्होंने ये गीत लिखा है। अब आपको सुनवा देते हैं।

श्रोताओं, समय की कमी रहते हुए कार्यक्रम अब समाप्त होने की ओर है, तो ये गीत हम आपको पूरा नहीं सुनवा पा रहे हैं, लेकिन इन्हीं गीतों के साथ आज का सुरीला सफर कार्यक्रम अब यहीं संपन्न करने की दीजिए आज्ञा पूजा नारानिया को। लेती हूँ आपसे विदा। जी नमस्कार।

0: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। उमर इनायत के स्वर में गीत सुनेंगे फिल्म जय वीरू से। गीत लिखा उमर इनायत ने, संगीतकार बप्पी लहरी।
1: That's right. Pump it up.

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हथकरघा क्षेत्र केवल आजीविका का साधन ही नहीं बल्कि समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। आज नई दिल्ली में 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हजारों वर्षों से हथकरघा भारत की संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न हिस्सा रहा है। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार भी प्रदान किए। पेश है
1: हमारे हथकरघा सेक्टर में भारत की रूरल प्रीमियम इकोनॉमी का सबसे सुंदर और मानवीय उदाहरण बनने की संभावनाएं बलवती हुई। महत्वपूर्ण हैंडलूम क्लस्टर्स को आधुनिक प्रौद्योगिकी और सामूहिक प्रशिक्षण विधियों से जोड़ा जा रहा है। बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पारदर्शी उपाय सरकार ने हाथ में लिए है। बुनकरों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ सीधे मिलने के रास्ते खुले हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। समारोह में 587 पीएचडी शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक स्नातक छात्रों को डिग्री प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित उच्च प्रदर्शन सुपर कम्प्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज छिंदवाड़ा से राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 2026 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं के जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन और सुशासन को सुदृढ़ बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान एक मील का पत्थर साबित होगा। अभियान के अंतर्गत मंत्रालय से लेकर जिले तक के सभी अधिकारी प्रत्येक शुक्रवार को दफ्तर छोड़कर फील्ड में जनमानस के सामने होंगे। जन विश्वास अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में जाकर जनता से सीधा संवाद और जुड़ाव, शिकायतों और समस्याओं का शत प्रतिशत निराकरण करना है। अभियान के तहत रीवा जिले का पहला शिविर आज ग्राम पंचायत सुरवार में आयोजित किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में चल रहे ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन का आज तीसरा दिन है। इसमें ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देशों के संस्कृति मंत्री शामिल

0: हो रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भोपाल में 5 अगस्त से शुरू हुए ब्रिक्स कल्चर ट्रैक 2026 के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रम में आज मंत्री स्तरीय बैठकों का दौर शुरू होगा। आज ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधि मंडलों के बीच द्विपक्षीय बैठकें होंगी। इन बैठकों में सांस्कृतिक सहयोग, विरासत संरक्षण और आपसी साझेदारी को मजबूत करने से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। आज दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के संस्कृति मंत्री भी भोपाल पहुँच रहे हैं। वहीं अन्य सदस्य देशों की ओर से उनके राजदूत, उपमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि बैठकों में भाग लेंगे। मिस्र का प्रतिनिधिमंडल वर्चुअल माध्यम से जुड़ेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से मैं विपिन मिश्रा।
0: कल शनिवार को भारत की अध्यक्षता में तीसरी ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। अगले 3 दिनों में प्रदेश के उत्तरी हिस्से के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज श्योपुर, मुरैना, शिवपुरी, गुना, टीकमगढ़, छतरपुर और सागर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और शहडोल संभागों के कई जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा मिशन शक्ति तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत एक पेड़ बेटी के नाम अभियान चलाया जा रहा है। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर के वैज्ञानिकों ने कल आगरमालवा जिले के विभिन्न गांवों में सोयाबीन फसल का निरीक्षण कर कीट रोग प्रबंधन की जानकारी दी। जबलपुर में आज मध्य प्रदेश पर्यटन क्विज 2026 का आयोजन पीएम श्री एमएलबी स्कूल में किया गया। ये प्रतियोगिता विद्यार्थियों को मध्य प्रदेश के इतिहास, सांस्कृतिक विरासत, पर्यटन स्थलों और प्राकृतिक संपदा से परिचित कराने के उद्देश्य से आयोजित की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए में नए शामिल हुए सांसदों से मुलाकात की। संसद में बार बार होने वाली बाधाओं पर चिंता व्यक्त की। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति पर चर्चा की। दोनों पक्ष सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। देश के कई उत्तरी हिस्सों में मूसलाधार बारिश। शतरंज में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्स का पहला खिताब जीता और रक्षिता रामराज तथा अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से सोमवार को मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने भी आज इस विधेयक को पारित कर दिया। एक रिपोर्ट।
1: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा पक्षों की दलीलें पूरी होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर निर्णय देने का प्रावधान है। यदि कोई मामला 6 महीने से अधिक समय से लंबित है तो आपूर्तिकर्ता को तय की गई राशि का कम से कम 50% भुगतान करना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति पंजीकरण के लिए जानबूझकर गलत जानकारी देता है तो पहली बार उसे चेतावनी दी जाएगी। इसके बाद दोबारा गलती करने पर 1,000 रूपए से लेकर 50,000 रूपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इससे पहले पहले सदन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन संबंधी विधेयक सदन में पेश किया। विधेयक के अनुसार सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को एमएसएमई से खरीदे गए सामान और सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन की कार्यवाही चलाने का प्रयास किया और प्रदर्शन कर रहे सदस्यों से सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। उन्होंने लगातार हो रहे व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्ष के रवैये पर चिंता जताते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह संसद सत्र के दौरान नियमित रूप से सदन में आते हैं और देर रात तक संसद में मौजूद रहते हैं। लगातार हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी। अब सदन की अगली बैठक सोमवार दिन में 11 बजे होगी। इससे पहले सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यसभा में भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारतीय रेलवे हर वर्ष लगभग 58 करोड़ पैकेट भोजन परोसता है और भोजन की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों की संख्या नगण्य है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री वैष्णव ने बताया कि पिछले 3 वर्ष में भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता संबंधी शिकायतों पर IRCTC ने कड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत 5 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया, 54 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, 6 अनुबंध समाप्त किए गए और नियमों का उल्लंघन करने वाले लाइसेंस धारकों को प्रतिबंधित भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हाल ही में शामिल हुए विभिन्न सांसदों से मुलाकात की। इनमें नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI और शिवसेना के सांसद भी शामिल थे। बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में शिवसेना सांसद ज्योति सावित्री नागनाथ वाघमारे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मानना है कि लगातार हंगामे के कारण नवनिर्वाचित और प्रतिभाशाली सांसदों को सदन में अपने विचार रखने का अवसर नहीं मिल पाता। एनसीपीआई सांसद शताब्दी रॉय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में सांसदों की प्रभावी भूमिका और उनके जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की तथा इस दिशा में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया।
2: वेलकम के साथ जो जो है और उसके बाद उन्होंने बताया जो क्या करना है, हम लोग को कैसे आगे बढ़ाना है, राष्ट्रीय हित के लिए हम लोग एक साथ कैसे काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का उद्घाटन करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हथकरघा क्षेत्र केवल आजीविका का साधन ही नहीं बल्कि समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। नई दिल्ली में आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हथकरघा भारत की संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न अंग है।
3: हजारों वर्ष से हथकरघा भारत के प्रकृति पोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। हथकरघा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र से 35 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं जिनमें लगभग 25 लाख महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि हथकरघा देश की अद्भुत सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सरकार ने हथकरघा क्षेत्र से जुड़े लोगों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पहले की हैं।
3: हमारे हथकरघा सेक्टर में भारत की रूरल प्रीवियन इकोनॉमी का सबसे सुंदर और मानवीय उदाहरण बनने की संभावनाएं बलवती हुई। महत्वपूर्ण हैंडलूम क्लस्टर्स को आधुनिक प्रौद्योगिकी और सामूहिक प्रशिक्षण विधियों से जोड़ा जा रहा है। बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पारदर्शी उपाय सरकार ने हाथ में लिए हैं। बुनकरों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ सीधे मिलने के रास्ते खुले हैं।
0: राष्ट्रपति ने हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं दी।
3: मैं देश के प्रतिभाशाली बुनकरों, डिजाइनरों, उद्यमियों, विद्यार्थियों और भारत के हथकरघा क्षेत्र से

0: जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।
1: इस अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार हथकरघा को टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल वस्त्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में हथकरघा उत्पादों की मांग बढ़ने की संभावना है और सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि इस बढ़ती मांग का लाभ सीधे बुनकरों तक पहुँचे।
2: 7 अगस्त को ही प्रधानमंत्री ने हैंडलूम दिवस को स्थापित करने का काम किया, बुनकर भाइयों को एक संदेश दिया, आपके नेतृत्व में भारत का वस्त्र बुनकरों के आमदनी को भी एक ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प लेता हूँ।
1: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। कुल 22 पुरस्कार दिए गए, जिनमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार शामिल हैं। ये पुरस्कार बुनकरों को उनकी उत्कृष्ट शिल्पकला, नवाचार और भारत की हथकरघा परंपरा के संरक्षण में योगदान के लिए प्रदान किए गए। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपराओं को समर्पित 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह के एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित लेख को साझा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस लेख में हथकरघा को देश की सबसे बड़ी सभ्यतागत परंपरा में से एक बताया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और चीन ने कल नई दिल्ली में आयोजित भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र की 36वीं बैठक में वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों के बीच सीमा निर्धारण, सीमा प्रबंधन, संस्थागत तंत्र को मजबूत करने और सीमा पार सहयोग से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। दोनों पक्षों ने इस बात पर बल दिया कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशिया मामलों के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया, जबकि चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग की महानिदेशक हो यानची ने किया। दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लंबित मुद्दों के समाधान तथा किसी भी प्रकार की गलतफहमी और गलत आकलन से बचने के लिए मौजूदा राजनयिक और सैन्य संवाद तंत्र का उपयोग जारी रखने पर सहमत हुए। इनमें कार्यतंत्र के स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य सहमत तंत्र शामिल हैं। भारतीय पक्ष ने सीमा पार नदियों से संबंधित विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र की अगली बैठक जल्द आयोजित करने की आवश्यकता दोहराई। साथ ही चल रही परियोजनाओं से संबंधित तकनीकी जानकारी साझा किए जाने के महत्व पर भी बल दिया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची बाजपेयी।
1: केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बावजूद झारखंड सरकार ने छात्रों की चिंताओं के समाधान के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार की तलाश के दौरान अनेक परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।
4: इसमें कितने बड़ा करप्शन हुआ है, कितनी माताएं ऐसी हैं जिन्होंने अपना गहना बेच दिया, कितने पिता ऐसे हैं जिन्होंने अपना जमीन बेच दिया, कि एक लिस्ट होनी चाहिए कि क्या क्या सितम जो है पिछले 7-8 साल से युवाओं और छात्राओं पर ढाया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैंने कहा है कि 13 तारीख तक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट सेशन जब खत्म होगा, यदि तब तक उसका फैसला नहीं होगा, 13 तारीख के बाद मैं वहां आमरण अनशन करूंगा।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा की आवास से कथित रूप से बरामद नकदी के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और अदालत की निगरानी में जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। श्री यशवंत वर्मा के आवास से कथित तौर पर जले हुए नोटों के बंडल मिलने के बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर महाभियोग की कार्यवाही शुरू हुई थी। उन्होंने पिछले वर्ष अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी हिस्सों में आज कई स्थानों पर तेज बारिश दर्ज किया। दिल्ली के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया गया है और मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में 12 अगस्त तक लगातार बारिश जारी रह सकती है। वहीं ओडिशा, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा में बाढ़ के बाद राहत और पुनर्वास कार्य जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कुछ हिस्सों में हुई बारिश से बाढ़ की आशंका फिर बढ़ गई है।
5: जलका नदी मथानी में खतरे के निशान 6.5

भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज का खिताब जीत लिया है। प्रज्ञानानंद ने उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जावोखिर सिंदारोव के साथ ड्रॉ खेला। उन्होंने टूर्नामेंट में 35 में से 23 अंक हासिल किए। बैडमिंटन में भारत की रक्षिता रामराज और अश्मिता चालिहा ने दक्षिण कोरिया के आसन में कोरिया मास्टर्स के महिला सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में रक्षिता ने अपने ही देश की तन्वी शर्मा को और अश्मिता ने जापान के हिना अकेची को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए में नए शामिल हुए सांसदों से मुलाकात की। संसद में बार बार व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। देश के कई उत्तर हिस्सों में मूसलाधार बारिश। और रक्षिता रामराज तथा अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से बोल रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आरजू फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज है। इस गीत की रचना की है हसरत जयपुरी ने और तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे
1: शोक अदाओं के साथ थिरकते कदम
2: चलते रे इश्क में पड़ जाते
1: पूरे दबंग अंदाज में और दोस्तों की महफिल सजी हो तो
3: ओ केटिको बर्फ बदन है।
1: लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन यादगार गीतों की धड़कनों को नृत्य की परिभाषा किसने दी?
4: मेरा काम यह है कि जो मेरे मास्टर कोरियोग्राफी मेरे ऊपर कर रहे हैं उसे मैंने 200% निखार के उनको दिखाना है। तो मेरा जब एक्टर मुझसे सीखेगा
1: जी,
4: वो एक्टर को पता होना चाहिए कि मैंने इतना करना है।
1: तो मिलेंगे बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान से, जानेंगे उनके सफर की अनसुनी कहानियाँ, पर्दे के पीछे के दिलचस्प किस्से और उन गीतों के बनने की दास्तान जिन पर झूम उठा पूरा हिंदुस्तान।
5: मर निकला ओ गड्डी लेके
1: 8 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज में सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन पर।
6: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में, भीगी रात फिल्म का गीत है। मजरू सुल्तानपुरी के बोल है, रोशन का संगीत।

अपना देश इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में। आनंद बख्शी की रचना है, आजी बर्मन की बनाई धुन पर।

0: आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय,
0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
3: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। वो कॉमिक क्रिएटर है।
4: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
4: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
4: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
0: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। अगला गीत दो बदन फिल्म से, आशा भोसले की आवाज है, शकील बदायूनी की रचना, रवि का संगीत।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन संघर्ष अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जयो कहां से हुजूर।
3: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
4: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहां से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहां बिजली नहीं
3: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
4: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।

0: प्रतिष्ठा चटर्जी सेल्यूलॉइड के सितारे 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: सावन की घटा फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज में, एसएच बिहारी के बोल ओपी नैयर का संगीत।

0: विविधा में इस रविवार 9 अगस्त 2026 को सृजन भारती के अंतर्गत विविध भारती में आयोजित विशेष ऑडियो विजुअल शो भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम, इसके संपादित अंश।
1: वंदे
0: सहभागी विशेषज्ञ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता मिलिंद प्रभाकर सबनीस।
2: वंदे मातरम का जो संगीत प्रवास है वो बहुत बहुत ही लंबा है, रविंद्रनाथ से लेकर आज के AR रहमान और अजय अतुल तक अभी भी वो चालू है।
0: सुनना न भूलिए विविधा, रविवार 9 अगस्त दिन में 11 बजे।
3: सदाबहार नगमी की ये आखिरी प्रस्तुति है। लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत है आया सावन झूम के। इस फिल्म से आनंद बख्शी की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हेलो सहेली कार्यक्रम का कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: सभी सखियों को मुंशी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। सावन मनभावन मौसम जिसका हम सभी बेसब्री से इंतजार करते हैं। सावन झूम के गाता इकलाता सबको अपने रंगों में रंग देता है। अपने साथ लाता है उमंग उत्साह से भरे पर्व तीज त्योहार। हरियाली तीज कजरी तीज और प्रेम का बंधन रक्षाबंधन जिसमें बसी होती है भाई बहन के प्यार की सुगंध। सावन में झूला झूलना कजरी गीतों के मीठी तान। सावन में लगते हैं मेले जहां जाते नहीं हम अकेले। संग होती हैं सखियां सहेलियां यादों वादों और मायके जाने का मौसम जहां से जुड़ी बचपन की हर याद ताजा हो जाती है। बहनों के सजने सवरने श्रृंगार करने का मौसम। आप इस मौसम में क्या खास तैयारी करती हैं और क्या करती हैं मेलों से खरीदारी। हेलो सहेली में अपनी यादों को साझा कीजिए हमारे साथ। फोन की घंटी बज उठी और देखते हैं कौन सी सखी होंगी जो करेंगी हमसे आज अपने मन की बात। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली नमस्ते।
0: नमस्ते, आप कौन बोल रही हैं और कहां से बोल रही हैं?
1: मैं बियामा मुल्ला बात कर रही हूं मैडम
0: जी।
1: पहलगाम जिला गोकाक तालुक
0: जी
1: गांव कुंदरगी से
0: जी।
1: और मैं कर्नाटका से बात कर रही हूँ मैडम।
0: अरे वाह, आप कर्नाटका से बात कर रही हैं। वहाँ की तो बहुत खास बात है, वहाँ पर बहुत घूमने वाली जगह है, बहुत अच्छी सी जगह है ना वहाँ पर?
1: बहुत अच्छी है मैडम, हरियाली वगैरह।

0: बहुत है यहाँ, आप आएंगी तो बहुत मजा आएगा।
1: आपको क्या क्या अच्छा लगता है वहां पर कर्नाटक की खास चीजों को घूमना देखना?
0: यहाँ गार्डन वगैरह है ना मैडम, वो हिड़कल बोल के गांव है,
1: जी
0: और बेलगाम भी हमारा बहुत अच्छा है, वहाँ हम घूमने जाते हैं साल में एक मरतबा या दो मरतबा।
1: जी दिया जी, देखिए ना, सावन का जो मौसम चल रहा है, सावन आ गया है, झूम कर इठलाता बलखाता, तो सावन की कुछ यादें आपके पास हैं तो वो हमें बताइए, सुनकर बहुत अच्छा लगेगा।
0: सावन की यादें मैडम बहुत अच्छा है, बरसात है, रिमझिम बारिश है,
1: और सावन में झूला झूलना, ये कैसा लगता है आपको?
0: बहुत मजा आता है मैडम। हमारे इधर मेला लगता था ना मैडम साल में एक बार,
1: हाँ जी
0: तो हम अपने सखियों के साथ झूला झूलते थे और
1: अच्छा, और
0: बहुत मजा आता था।
1: जी अच्छा, मेले में आप जब जाती हैं ना, सावन के जो मेले होते हैं, वहां पर क्या क्या चीजें खरीदती हैं?
0: वहां मैडम मैं और मेरी कानों की बाली और मेरा मेकअप का सामान।
1: अच्छा, दिया जी आप बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
0: मैं रंग फिल्म से सुनना पसंद करूंगी मैडम, तुम ही देखिए मेरी आंखें।
1: चलिए आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार, बताइए आपका क्या नाम है?
1: मैं वी पूनम नायडू बोल रही हूँ,
0: कहाँ
1: से? प्रेम झील धनोरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से।
0: बहुत प्यारा सा नाम है पूनम जी आपका, बिल्कुल आपकी आवाज भी इतनी मीठी है कि लग रहा है कि पूरी चांदनी बिखर गई है हमारे प्रोग्राम में जी।
1: थैंक यू मैडम जी।
0: बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा बोला आपने। तो देखिए, सावन का जो ये प्यारा सा मौसम चल रहा है, तो सावन की कुछ यादें आपके पास हैं तो वो हमें बताइए।
1: जैसे सावन महीना हो गया आ गया, तो मैडम जी आपको त्योहार वर्त

0: वो सब तैयारियां कर रहे हैं हम लोग, अभी तो स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन जैसे ही सावन आ जाता है तो एक मन में उमंग और तरंग आ जाता है मैडम जी, एक खुशी सी छा जाती है सभी के दिलो दिमाग में और बहुत ही अच्छा लगता है।
1: तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
0: फिल्म का नाम है मंजिल
1: जी,
0: उसमें लता मंगेशकर जी का गाया हुआ एक बहुत ही प्यारा गीत है मेरे जी, यदि आप इजाजत दे तो थोड़ा मैं गुनगुना सकती हूँ।
1: बिल्कुल आप गा के सुनाइए।
0: गुनगुन ये रे सावन तुलक तुलक जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन, ला ला ला ला ला ला ला जी।
1: बहुत प्यारा सा आपने गीत गाया, तो चलिए आपको सुनवाते हैं पूनम जी आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं अंबिका विजय मारवाड़ी बोल रही हूँ। मैं शिरपुर जैन से बोल रही हूँ।
0: अंबिका जी, आपका हेलो सहेली कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि आप रेडियो सुनती हैं?
1: हाँ,
0: अंबिका जी, आपके और क्या क्या शौक हैं?
1: मैं रसोड़ा चलाती दीदी।
0: ये क्या होता है?
1: रसोड़ा चलाती, उसे खाना पकाना, रोटी पकाती।
0: अच्छा,
1: दाल सब्जी चावल खाने को 10-20 आदमी आते खाने को,
0: जी जी जी
1: वो चलाती।
0: अच्छा, तो आपके परिवार में और कौन कौन है?
1: मेरा बेटा, मैं, तीन जन है। हम बेटी की शादी हो गई।
0: अच्छा, ये बताइए कि आप कभी मेले घूमने गई हैं?
1: मेले घूमने में जाती ना, वो नांदेड़ जाती।
0: अंबिका जी, ये बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: चंदा मामा से प्यारा वो करते हुए पिक्चर में।
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली में अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, हम इंदौर से बोल रहे हैं, शीतल भाटी।
0: शीतल जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। शीतल जी, क्या आपने कभी सावन के मेलों को जा करके देखा है?
1: जी जी बिल्कुल देखा है, पर अभी नहीं। जैसे हम छोटे छोटे थे, हमारे मम्मी वगैरह हमको मेले में ले जाया करती थी। सावन के यहाँ पर झूले डलते थे, सावन के जो आज भी डलते हैं, पर अभी काफी टाइम से हमने देखा नहीं है। और जो पहले डलते थे उस प्रकार के अब नहीं डलते।
0: तो आप झूलती थी झूला?
1: जी जी मैं बहुत छोटी थी।
0: अच्छा, तो ये बताइए और आप क्या करती हैं, क्या शौक हैं आपके?
1: जी मैं तो अभी फादर का बिजनेस है, वो संभालते हैं।
0: जी, बहुत अच्छा लगा कि आप अपने पिताजी के साथ उनके काम में हाथ बटा रहे हैं और बचपन की यादें भी आपने थोड़ी सी बताई हैं। तो बताइए, आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: आज हमारी मम्मी का फेवरेट सॉन्ग सुनना चाहेंगे हम, आया सावन झूम के।
0: चलिए आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: हेलो, मैं नांदेड़ से बात कर रही हूँ, प्रगति मुड़े।
0: प्रगति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली कार्यक्रम में। बताइए, आप क्या करती हैं?
1: मैं गृहिणी हूँ।
0: गृहिणी हैं? तो गृहिणी हैं तो इसमें बहुत सारे काम भी होते हैं, जिम्मेदारियां भी बहुत होती हैं गृहिणी होने में। तो आपको सबसे अच्छा क्या लगता है कि सबसे पहले हम कौन सा घर में काम कर लें?
1: काम हम तो सभी रोज करते हैं, खाना बनाना, कपड़े धोना, साफ सफाई, झाड़ू पोछा, वो तो करते ही है।
0: जी, अच्छा ये बताइए प्रगति जी, जैसे सावन का जो महीना चल रहा है, तो आपको किस रंग की साड़ियां पहनना पसंद है, खासकर सावन के मौसम में?
1: सावन के मौसम में हरी।
0: हरी? वाह क्या बात है, यानी कि हरी साड़ी, हरी हरी मेहंदी हाथों में लगाती होंगी, हरी चूड़ियां, है ना, बालों में गजरा।
1: हाँ,
0: किस तरह के फूलों का गजरा आपको अच्छा लगता है बालों में लगाना?
1: मोगरा।
0: क्या बात है, मोगरे की खुशबू तो बहुत अच्छी होती है ना।
1: हाँ,
0: और आपको कौन कौन से फूल अच्छे लगते हैं?
1: गुलाब, मोगरा, जाई जुई।
0: क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे तो लग रहा है सखी सहेली जो है आज मोगरे के फूलों से महक गया है ना प्रगति जी?
1: हाँ,
0: अच्छा बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगी?
1: हम आपके हैं कौन में से हम आपके हैं कौन, ये वाला गाना सुनना चाहूंगी।
0: क्या बात है, तो चलिए प्रगति जी, हम आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत, हम आपके हैं कौन फिल्म से।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: शांति भाई बोल रही हूँ भोपाल से। सहेली
0: शांति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली कार्यक्रम में। ये बताइए कि आप विविध भारती सुनती हैं, उसके कौन कौन से प्रोग्राम सुनती हैं?
1: सब प्रॉब्लम अच्छा लगता है, जो भी आता है ना वो सब अच्छा लगता है।
0: अच्छा शांति जी, हम बात करने वाले हैं सावन के बारे में। ये बताइए
1: हाँ
0: कि बचपन में आपने कभी झूला झूला?
1: हाँ झूला ना,
0: जी
1: बहुत झूला झूला बचपन में, तो इतना झूला झूला के वो ही चेंज बता ही नहीं सकते।
0: आपने अपनी सखियों के साथ जब झूला झूला, तो उसकी कुछ यादें हो तो बताइए आप मुझे।
1: बहुत अच्छा लगता था, सखियों के साथ रहती थी, हर चीज की नॉलेज होती थी और बहुत साथ में रहती थी, ऐसा लगता था कि जीवन भर साथ में रहे तो अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल, सखियों का साथ ऐसा होता ही है कि हम साथ में रहें। अच्छा, मेले में बहुत सारी दिखती ना चीजें, कि हरी हरी चूड़ियां, लाल हरी चूड़ियां दिखती
1: हाँ
0: हैं,
1: हाँ
0: है ना?
1: दिखती थी ना, जो पसंद आती थी हरी चूड़ी ज्यादा पहनते थे, क्योंकि हरी हरी टाइम रहती है ना,
0: जी।
1: तो हरियाली में वो ही अच्छी लगती थी।
0: अच्छा ये बताइए शांति जी, आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
1: झिल मिल सितारों का आंगन होगा, यही मेरे को गाना सुनना है अब।
0: शांति जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत, झिलमिल सितारों का आंगन होगा।

0: अंतराल के बाद सखियों से बातें करने आ गई है मंजरी वर्मा। कार्यक्रम चल रहा है हेलो सहेली। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं, अपना नाम बताइए।
1: हेलो सहेली, मैं सुचिका सुमित तटानी बोल रही हूँ, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से।
0: सुचिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली में। नमस्कार, कैसा लग रहा है? आपने आज फोन लगाया है तो आपको कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आपका प्रोग्राम सुनती भी रहती हूँ और बहुत प्यारी प्यारी बातें, मीठी बातें, कुछ यादें, कुछ खट्टी कुछ मीठी,
0: जी
1: तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है।
0: आप रेडियो बहुत ध्यान से सुनती हैं लगता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बचपन की आदत है ना, हम लोग 1970s वाले हैं ना,
0: क्या बात
1: तो
0: है, मतलब 1970s
1: रेडियो
0: की तो बहुत प्यारी प्यारी सी यादें भी होंगी आपकी।
1: बिल्कुल रेडियो तो उस टाइम के ऐसा है कि स्कूल सुबह विविध भारती से पूरा सुनना और स्कूल जाना वापस आना, अलग अलग पिक्चरों का गाना सुनना, रात तक देखना और वो लाइव क्रिकेट मैच का जो टेलीकास्ट होता था और 26 जनवरी का परेड,
0: जी
1: तो एक बहुत प्यारी मतलब एक अटैचमेंट तरीके का है रेडियो से।
0: जी तो बहुत अच्छी सी यादें आपने साझा करी। और ये बताइए कि सुचिका जी, हम बात करने वाले हैं आज सावन के बारे में कि सावन का जो मौसम चल रहा है तो इसमें आप क्या क्या खास तरह से करती हैं घर में तैयारियां, और जो सावन के जो मेले लगते हैं ना, उनको देखा है आपने कभी जा करके?
1: बिल्कुल बिल्कुल, गुड़िया का मेला तो बचपन में, मतलब ये तो हमारे घर के बाहर ही, हम लखनऊ के बिलोंग करते हैं नरही से,
0: जी
1: तो बहुत बड़ा हमारे घर के बाहर ही गुड़िया का मेला लगता है और वो अनरसी की गोली तो मतलब बचपन को तरोताजा कर देती है। आज भी बिल्कुल सब कुछ नया नया लगता है और वो झूले पेंगे मिट्टी के खिलौने, सौंधी सौंधी खुशबू और मेरे बाबा का चीजें लाना,
0: जी
1: क्योंकि हम लोग ज्वाइंट फैमिली में से है
0: जी
1: तो बहुत मजा आता था। इतने भाई बहन, वो बात ही अलग है, छत पे सोना, बारिश में खेलना,
0: क्या बात,
1: अलग ही मजा है वो।
0: और सावन में जो झूला झूलते हैं उसकी भी बड़ी यादें, जब पैंग दिया जाता है, पैंग दे देकर झूलते हैं, तो आपने कभी इस
1: बिल्कुल
0: तरह के झूलों को झूला है कि पैंग दी हो आपने?

0: भर भर के।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हमारे घर के बाहर ही एक बहुत बड़ा पार्क होता था, हम लोग जितनी भी सहेलियां होती थी झूला लगाते थे, और बिल्कुल जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना उसको, फूलों से सजाकर और एक एक करके पेंग लगाते थे इस तरीके से, और भीड़ बाहर होती थी, मम्मी मेरे माँ लोग चाची लोग उन लोग सब हरी हरी चूड़ियां
0: जी
1: और साड़ी तैयार, और सब सावन का सेज हरा लाल, मतलब एक अलग ही छवि उभर के आती है।
0: क्या बात है, आपने इतनी अच्छी सी बातें करी, जो सावन के झूले की बात करी आपने कि फूलों से सजा होता था, तो बिल्कुल राधा और कृष्ण का वो झूला याद आ गया है ना।
1: कुछ कुछ वैसे ही हम लोग करते थे एक्चुअली,
0: जी
1: सारी बदमाश लड़की लड़कियां सब भाई बहन मिलके मोहल्लों के बच्चे जो खेलते थे, क्योंकि
0: जी
1: तब तो ये गैजेट्स और ये सब तो होता नहीं था, तो वही आनंद और कि आज शाम को मिलेंगे तो आज ये, और सावन में जो ब्रेक होता था हम लोग की छुट्टियां भी होती थी, तो बहुत मजा, और रेनी डे तो शायद आपने भी इंजॉय किया
0: जी
1: होगा,
0: बिल्कुल, हमने भी
1: मतलब
0: इंजॉय किया है रेनी डे का।
1: बिल्कुल, तो बहुत मतलब आपने ऐसा टॉपिक लिया है कि मैं तो बोलती ही जा सकती हूँ।
0: अच्छा भी लग रहा है कि आप इतनी सारी बातें, इतनी यादें ताज़ा कर रही हैं। तो जो सावन में बहुत सारे त्यौहार होते हैं, हरियाली तीज, कद्री तीज, और बाद में रक्षाबंधन आता है, तो भाई
1: हाँ
0: बहन से जुड़ा ये प्यारा सा त्यौहार होता है, तो आप क्या तैयारी करती हैं, अभी से तैयारी करेंगी या जब रक्षाबंधन आएगा उसके पहले कुछ दिन पहले तैयारी करेंगी, अपने हाथ से राखी बनाएंगी भाई के लिए या
1: बिल्कुल
0: खरीदेंगी?
1: बिल्कुल, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे और हमारे जॉइंट फैमिली में कजन शब्द बोलना मना है, मतलब हमने कभी यूज नहीं किया, तो हम
0: जी
1: लोग टोटल 13 भाई बहने हैं,
0: क्या बात है।
1: और आप सोच नहीं सकते, और मेरी एक लौती बुआ होती थी वो दिल्ली से आती थी, पूरा पकवान बनता था मतलब, और हम लोग सब साड़ी पहनते थे और खाना बनता था, पूरा सजाया जाता था,
0: क्या
1: राखियां
0: बात है।
1: हमने रेशम के धागों से, वो गाना नहीं है रेशम
0: जी
1: के धागों से,
0: हाँ जी
1: तो उसी में प्यार पिरो के भाइयों के लिए हम सारी बहने बनाते थे राखियां,
0: जी
1: और हमारे जो सबसे बड़े ताऊजी थे वो कंपटीशन करते थे कि किसका बेस्ट राखी होगा, तो
0: क्या
1: उसको
0: बात है,
1: प्राइज मिलता था।
0: क्या बात है।
1: हम लोग एक डाइनिंग टेबल के ऊपर मिनी कॉन्सर्ट भी करते थे, आप यकीन नहीं करोगे, डांस होता था, प्रोग्राम होता था, बच्चों हम लोग सारे जो चिल्लर पार्टी होते थे।
0: क्या बात है, यानी कि बचपन की आपने इतनी सारी यादें ताजा कर दी कि मेरी भी यादें ताजा हो गई हैं। अच्छा सा माहौल बन जाता है जब सब लोग एक साथ होते हैं परिवार में, जब बड़ा
1: बिल्कुल,
0: परिवार होता है तो उसकी रौनक ही अलग होती है।
1: बहुत बहुत
0: जी
1: मजा आता था, क्योंकि हमारे बाबा लोग 7 भाई और एक बहन, तो आप सोच सकती है क्या धमाल होता होगा।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर, क्योंकि आजकल तो परिवार सिमटते से जा रहे हैं, छोटे से होते जा
1: हाँ
0: रहे हैं। सुचिका जी ये बताइए कि आपके घर में कौन कौन है?
1: मेरे घर में ससुराल में 7 ससुर हैं,
0: जी
1: और देवर देवरानी उन लोग अभी दिल्ली में, मतलब वो भी गाजियाबाद की तरफ ही रहते हैं, तो बस हम लोग 4-5 जो ना, मेरा बेटा है वो अभी लॉ
0: जी
1: कर चुका है, अभी अभी हाल ही में कृपा है ठाकुर जी की नौकरी पे लगा है,
0: क्या बात
1: तो बस
0: है,
1: छोटा सा प्यारा सा परिवार है।
0: बहुत अच्छा लगा सुन करके। अच्छा बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: मैं सावन के महीने में सजना को याद ना करूं ऐसा तो हो नहीं सकता,
0: नहीं बिल्कुल,
1: और
0: आप याद
1: सावन है
0: कीजिए।
1: तो सजना भी है और उनके लिए निखरना भी है,
0: जी
1: तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आपको अनुरोध करूंगी, सजना है मुझे साजन के लिए, ये वाला गाना आप चला दीजिए।
0: सजना है मुझे सजना के लिए, फिल्म सौदागर का ये गाना।
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: चलिए आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत, आप ऐसे ही अपने सजना के लिए सजती संवरती रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं अर्चना गुप्ता बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रही हूँ।
0: अर्चना जी, आपने हेलो सहेली कार्यक्रम में फोन लगाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपका फोन लगा?
1: अरे आपको तो मैं जनवरी से ट्राई कर रही हूँ। मैं सोची थी मैं विश करूंगी हैप्पी न्यू ईयर,
0: जी
1: उससे करते करते सावन आ गया, अब तो पलका मिल ही गया।
0: मिल गई ना। तो देखिए, सावन चल रहा है ना, तो पहले तो हम लोग एक दूसरे को सावन की ही शुभकामनाएं देते हैं, है ना?
1: आपको भी, जी जी
0: तो अर्चना जी,
1: आपको भी बहुत बहुत बधाई हो सावन की।
0: अर्चना
1: जिंदगी हरी भरी रहे आपकी।
0: जी, अर्चना जी, ऐसी ही बहुत प्यारी सी शुभकामनाएं आपने मुझे दी, और हम भी देना चाहेंगे कि आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में हरी भरी खुशियां रंग बिखेरे तरह तरह के, और बहुत सुखमय जीवन हो आपका। बताइए अर्चना जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: मैं हाउस वाइफ हूँ और घर से मैं थोड़ा सा मिक्सचर, नमकीन और गुजिया इसका काम करती हूँ,
0: अच्छा,
1: जो बहुत अच्छा चलता है।
0: बहुत
1: अभी फेस्टिव सीजन है ना, तो अभी मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। ये रक्षाबंधन से शुरू होकर दिवाली तक मैं बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ, बाकी समय तो चलता ही है, बट अभी त्योहार बहुत ज्यादा रहते हैं ना, तो स्पेशली गुजिया का मेरा बहुत डिमांड रहता है।
0: अच्छा, तो गुजिया आप किस तरह की बनाती हैं, सूजी की या मावे की?
1: नहीं नहीं मावे की,
0: उसमें कुछ भी मिलाती नहीं है, सूजी भी नहीं मिलाती ना?
1: नहीं कुछ नहीं, सिर्फ शक्कर, मावा और ड्राई फ्रूट्स रहता है।
0: क्या बात है। जो आप नमकीन बनाती हैं, उसमें कौन सी खास नमकीन आप बनाती हैं जो आपको बहुत अच्छी लगती है और सबसे ज्यादा लोग उसे पसंद करते हैं?
1: चाकोली है, वो बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि मेरा थोड़ा डिफरेंट रहता है
0: जी,
1: तो वो बहुत ज्यादा चलता है, पसंद किया जाता है।
0: ये खाना जो बनाने का शौक है, ये आपको बचपन से था या बाद में आपको हुआ?
1: अरे नहीं, मैं तो किस उम्र से खाना बना रही हूँ मेरे को ये भी नहीं मालूम। मेरी मम्मी बचपन से ही काम करवाती थी, तो वो आदत पड़ गया था, और खाना खाने का शौक और बनाने का बहुत ज्यादा शौक था, तो वो फिर हमारी हॉबी बन गई।
0: क्या बात है। यानी देखिए,
1: बड़े हो गए हैं उसके बाद मैंने ये काम शुरू किया है, और भगवान की दया है कि बहुत अच्छा चल रहा है।
0: देखिए, माता पिता का जो भी सिखाया हुआ होता है ना काम, बच्चों को जो बचपन में सिखाते हैं, वो अपनी बेटियों को सिखाते हैं कि शादी होगी, दूसरे घर जाएंगी, तो वहां पर उनको किसी काम में दिक्कत ना हो। तो देखिए, उनका जो सिखाया हुआ था आपको हुनर, वो आज आपके काम आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है।
1: काम आ रहा है ये चीज।
0: तो आपने अपने परिवार में अपने बच्चों को भी इस तरह की शिक्षा दी?
1: नहीं, बच्चे तो भी पढ़ रहे हैं, पर हाँ अभी जैसे गुजिया का टाइम है, तो मेरी बेटी मेरी बहुत हेल्प करती है, क्योंकि उसमें जब तक दो तीन लोग नहीं लगेंगे ना, तो नहीं हो पाता। एक एक दिन में 10 किलो 15 किलो बनाना रहता है।
0: बिल्कुल सही बात
1: है। हाँ, दो लेडीज भी हैं, तो मेरी बेटी मेरी बहुत हेल्प करती, मेरे हस्बैंड हेल्प करते हैं।
0: क्या बात है। यानी सावन में आपने गुजियों की याद दिला दी, महक हमारे यहाँ तक आ गई है उड़ करके। अर्चना जी, बड़ा अच्छा लग रहा है, और
1: मेरा तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग की आवाज इतनी मीठी लगती है ना
0: जी,
1: कि मैं क्या बोलूँ, ये पूछिए मत।
0: धन्यवाद। अच्छा ये बताइए अर्चना जी, सावन की कौन कौन सी यादें हैं जो आप मुझे बताना चाहेंगी?
1: ऐसे तो बहुत सारी हैं, पर हमको अपने शादी के बाद का पहला सावन याद है, जब मैं मायके गई थी, अपने हाथ से भाई को राखी बांधी थी। 30 साल शादी को हो गए, उसके बाद ये चांस दोबारा नहीं मिला, तो वो यादगार रहा है मेरे लिए।
0: जी, आप फिर से वापस अपने मायके जाइए और अपनी यादों को फिर से ताजा कीजिए, तो वो बहुत ही अच्छी सी यादें होती हैं, है ना?
1: वो यादें होती हैं, पर अभी बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों को देखना है, तो हो नहीं पाता है।
0: जी बिल्कुल, हम समझ सकते हैं ये चीज। तो सावन में जब मेले लगते हैं, वो मेले आपने जाकर देखे हैं?
1: बहुत देखे हैं, बहुत मजा आता है। उसके लिए तो स्पेशली समय निकालती हूँ कि नहीं मेरे को जाना है। उसमें जाने से ऐसा लगता है मेरा बचपना आ गया वापस।
0: और वहाँ पर
1: और कुछ नहीं रहता था, तो मेला देखना है, कोई भी मेला लगाओ, कहीं भी लगाओ, तो जाना है देखने, मेला देखने जाना है, प्रदर्शनी देखने जाना है। वो जो झूले वगैरह रहते थे, झूलने का जो आनंद आता था ना, वो सब चीजें तो अब याद करके ही रह जाते हैं, पर लगता है तो मैं तो जरूर जाती हूँ।
0: अच्छा, मेले में जो दुकानें लगती है, वहाँ बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें मिलती हैं, जो घरों में उपयोग की जाती, बच्चों के खिलौने होते हैं, श्रृंगार का सामान होता है, हार माले चूड़ियां सब होती हैं। तो आप उनमें से क्या क्या चीजें ज्यादा खरीदा करती थी उस समय?
1: मैं किचन का सामान ज्यादा देख दिखती थी, ध्यान उसी पे ज्यादा जाता
0: क्या
1: था।
0: क्या बात है, हम समझ सकते हैं कि आपका शौक बचपन से जो किचन में आपने काम किया है तो
1: हाँ, जी क्या है क्या नहीं है, अच्छा इस बार ये चीज नया आया है पकड़ कर, वो जो पहले तो बड़े बड़े हम लोग के यहाँ अदरक वगैरह घिसने वाले आते थे, अब ये छोटे छोटे मिलने लगे हैं, तो वो सारी चीजें जैसे मेले में दिखती थी ना तो तुरंत खरीदते थे। और अभी भी किसी भी मेले में जाएंगे तो कुछ मैं नहीं देखूंगी, सबसे पहले गुजिया का सांचा ढूंढती हूँ।
0: क्या बात है, यानी डिजाइनर सांचे आप ढूंढती हैं गुजिया बनाने के लिए, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल, सबसे ज्यादा ध्यान उसी पे जाता है।
0: बड़ा अच्छा लगा अर्चना जी आपसे बातें करके, खूब सारी यादें ताजा हो गई। तो चलिए बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
1: बरसात मूवी का, बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में।
0: बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपने चुना है मौसम के अनुरूप, तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, कौन बोल रहा है और कहाँ से बोल रहा है? अपना नाम बताइए।
1: हेलो सहेली, मैं पूनम जैन बोल रही हूँ, जयपुर से बोल रही हूँ।
0: पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए पूनम जी, आपके कौन कौन से शौक हैं?
1: म्यूजिक मेरा सबसे पहला शौक है, मुझे
0: जी
1: गाने गाना सुनना बहुत पसंद है, साथ में मुझे कुकिंग में भी बहुत इंटरेस्ट है।
0: क्या बात है। और पूनम जी, आपको रेडियो सुनना पसंद है?
1: जी बिल्कुल, बहुत पसंद है।
0: और आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे दो बेटे हैं, दोनों लॉयर हैं,
0: जी
1: मेरे हस्बैंड, और बड़े बेटे की शादी हो चुकी है, एक बिटिया है, मेरी
0: क्या
1: डॉटर इन लॉ।
0: जी, क्या बात है। पूनम जी, ये बताइए, जो सावन का महीना है, इसकी यादें आपके जीवन में किस तरह से जुड़ी हुई हैं?
1: सावन का महीना मेरे लिए सिर्फ महीना नहीं है, ये भावनाओं का त्योहार है।
0: जी
1: चारों तरफ हरियाली, झूले, मेहंदी, गीत और भगवान शिव की भक्ति।
0: जी
1: सावन के आते ही मन में उमंग भर जाती है। जैसे अब तो खैर नहीं होता, लेकिन पहले सावन में हमेशा प्रेयर जाती थी, वहाँ पर सबके साथ, मम्मी पापा भाई बहनों के साथ मिलकर बहुत अच्छा लगता था।
0: और जयपुर में किस तरह से सावन आप सभी सखियां मिलकर के मनाती हैं?
1: सावन का महत्व मतलब झूले की तरह है, झूला सावन की पहचान है। कहते हैं ना, झूला झूलने से मन हल्का होता है, प्रकृति से जुड़ाव होता है,
0: जी।
1: पेड़ों पर रंगीन झूले और उन पर सहेलियों के साथ गाना, यही तो सावन की खूबसूरती है।
0: और वहाँ की क्या खास डिश होती है जयपुर की?
1: खरीद के तो जैसे हम घेवर लाते हैं, यहाँ के फेमस है सावन में घेवर और गुलाब जामुन, पूरे खीरे बनती है, और घर में हम दाल बाटी चूरमा बनाते हैं। सावन मतलब दाल बाटी चूरमा का बहुत है जयपुर के अंदर ना, दाल
0: जी।
1: बाटी चूरमा बहुत फेमस।
0: दाल बाटी चूरमा जो है, जो बाटी होती वो तो कई तरह की बनती है ना?
1: हाँ, मसाले वाले बाटी बनती है, आलू की बाटी बनती है, सादा बाटी बनती है
0: जी, और मेवे वाली बाटी भी तो बनती है वहाँ पर?
1: हाँ बिल्कुल, अंदर ड्राई फ्रूट डाल के, मेवा डाल के वो भी बनती है।
0: जी। पूनम जी, आपने कभी वहाँ पर जो मेले लगते हैं वहाँ पर जाके आपने देखा, एंजॉय किया सखियों संग?
1: जी बिल्कुल, यहाँ पर जयपुर में तीज माता की सवारी निकलती है
0: जी,
1: और भव्य सवारी निकलती है, बिल्कुल एक फेस्टिवल की तरह, तो उसको हम देखने जाते हैं सिटी में।
0: क्या बात है, उसकी खूबसूरती देखते बनती होगी, है ना?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: बताइए पूनम जी, आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
1: ये गीत सुना दीजिए, अब के सजन सावन में, ये मुझे बहुत पसंद है।
0: पूनम जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।
2: आपके

0: खक्खियों से बातें करते हुए वक्त तो पंख लगाकर उड़ गया और दे गया बहुत सारी यादें। चलते चलते आपको बता देते हैं कार्यक्रम संबंधी जानकारी। प्रत्येक मंगलवार को सुबह 11 से 12 बजे तक रिकॉर्डिंग होती है। प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 3 बजे हेलो सहेली कार्यक्रम प्रसारित होता है, तो सुनना ना भूलिएगा हेलो सहेली कार्यक्रम। आप हेलो सहेली के लिए इन बताए गए नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं। फोन नंबर है 4002466 2, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी 4002466 2, एसटीडी 022। अब इसका दूसरा नंबर भी नोट कीजिए। फोन नंबर है 2867-0288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी 28670288, एसटीडी कोड है 022। जिन बहनों की कॉल आज नहीं लग पाई वो निराश नहीं हो, अगली बार प्रयास कीजिएगा। और जिनकी कॉल आज लग गई है उनसे अनुरोध है कि अगले 2 माह तक कॉल नहीं लगाएं। हेलो सहेली कार्यक्रम से विदा लेते हुए आपको ये बता दें कि आपने आज का सफर तय किया मंजरी वर्मा के संग। हमें सहयोग दिया रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग ने और संपादन सहयोग नम्रता टिकोड़े ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो अब दीजिए कार्यक्रम से अनुमति, स्वीकार कीजिए मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, गीतों भरी कहानी, बस कुछ ही पलों के बाद। गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए विनीता अस्थाना की लिखी कहानी दिल की गिरह।
1: स्वाति की सुबह हमेशा जैसी सुंदर थी। जाते हुए भादो ने उसे सुबह की सैर पर भिगो दिया था। उसके पसंदीदा मौसम के आखिरी कुछ दिन बचे थे, जिसे वो अगली बारिश तक खुद में समेट लेना चाहती थी। भीगी भीगी स्वाति जब अपने कॉलोनी के अंदर पहुंची तो बहुत देर हो चुकी थी। टाइम देखकर वो हड़बड़ा गई। बच्चों की बस आने वाली होगी, देर हो गई आज, सोचती हुई वो घर के अंदर घुसी और सीधे ही किचन में जाकर बच्चों का टिफिन पैक करने लगी। कान्हा और वृंदा को अभिनव ने पहले ही तैयार कर दिया था। टिफिन भी उसकी महाराजिन मंजू बना चुकी थी। हर काम अपने समय से हो चुका था, लेकिन मां का दिल है ना, जब तक खुद काम में हाथ न लगाए उसे चैन ही नहीं पड़ता। बच्चों को भेजकर वो भी गुनगुनाती हुई नहाने चल पड़ी। टाइम पर ऑफिस भी तो पहुंचना था। क्या बात है, आज तो कोई मूड में लग रहा है। आईने के आगे संवरती स्वाति के गीले बालों में तौलिया बंधा था। उसे गुनगुनाते देखकर अभिनव ने उसे बाहों में भर लिया। अभी देर हो जाएगी यार, छोड़ो मुझे। अभिनव को प्यार से झिड़कती हुई स्वाति के चेहरे पर एक लालिमा तैर गई। एक तो इस घर में प्राइवेसी कम मिलती है, उस पर तुम हो कि मौके का फायदा भी नहीं उठाने देती, अभिनव ने शिकायत की। अच्छा जी, 10 साल की शादी है और आप अब भी नौशे मियां बने हुए हैं। अभिनव को चिढ़ाती हुई स्वाति तैयार हो चुकी थी। हाँ भाई, पुराने पति की किसको परवाह होती है, चलो तुम्हारा नया प्रेमी बन जाता हूं। अभिनव ने नई पेशकश की। ये सही आइडिया है, पुरानी शादी में नए प्यार का तड़का। स्वाति हंसती हुई घर का ताला बंद करने लगी। रोज ही दोनों साथ में ऑफिस के लिए निकलते थे। स्वाति पहले अभिनव को उसके ऑफिस पर ड्रॉप करती, फिर अपने ऑफिस चली जाती। रोज की तरह दोनों साथ निकले और अपने अपने ऑफिस चले गए। दिन की शुरुआत जितनी अच्छी थी, ऑफिस पहुंचते ही स्वाति का उतनी ही बुरी खबर से सामना हुआ। बीती रात उसका एक सहकर्मी आलोक नशे की हालत में ऑफिस की बालकनी से नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई थी। ऑफिस में पुलिस और मीडिया का जमावड़ा था, सबके बयान लिए जा रहे थे। मीडिया वाले भी हर किसी से बात करने की कोशिश कर रहे थे। अचानक हुई इस दुर्घटना से स्वाति स्तब्ध रह गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि जो आलोक कल दिनभर अपनी तरक्की को लेकर खुश था, जो अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था, उसके साथ ऐसा कैसे हुआ होगा। वो न सिर्फ दुखी थी बल्कि बहुत बेचैन भी थी। इसी उधेड़बुन में वो गलती से लाइव न्यूज करते रिपोर्टर्स के फ्रेम में आ गई। हड़बड़ाई हुई स्वाति ने संकोच में खुद को लेडीज बाथरूम में बंद कर लिया। आलोक ने ऑफिस में नशा कैसे किया, आखिर कौन था उसके साथ, उसके मन में सवाल बढ़ते जा रहे थे। इन्हीं सवालों के जवाब बाहर मीडिया और पुलिस भी ढूंढ रही थी। जिंदगी किसी भी पल बदल सकती है, इसका वाकई कोई भरोसा नहीं।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: स्वाति ने अपने चेहरे को धोया और बाहर की तरफ बढ़ी कि उसके फोन की घंटी बजने लगी। उसने फोन उठा लिया। हेलो, तुम ठीक हो? कौन? स्वाति? स्वाति वत्स बोल रही हो ना? हाँ, मैं स्वाति ही बोल रही हूं। आप कौन? पहचाना नहीं? मैं निमिष राठौड़। निमिष? दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले निमिष? बिल्कुल सही, तो तुम्हें याद हूं मैं। कैसी बात कर रहे हो, हम फेसबुक पर जुड़े हुए हैं। अरे ऐसे जुड़ने का क्या फायदा जब बस जन्मदिन और नए साल की शुभकामना ही देती हूं। आलोक की मौत का सदमा स्वाति को कई दिन तक रहा, लेकिन निमिष के रूप में उसे उस वक्त एक फौरी आराम मिल गया। निमिष और स्वाति ने 15 साल पहले साथ में ही यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। दोनों के बीच कभी ज्यादा दोस्ती नहीं थी। फेसबुक के आने के बाद सभी लोगों ने अपने पुराने दोस्तों और सहपाठियों को ढूंढ लिया था, और तभी से स्वाति और निमिष भी वहां जुड़े थे। निमिष एक नामी न्यूज चैनल का हेड था और स्वाति को अपने चैनल की लाइव न्यूज के फ्रेम में देखकर ही उसे कॉल किया था। हालांकि कॉलेज में भी दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं थी, लेकिन स्वाति को कॉलेज में भी उसका इंटेलिजेंस अच्छा लगता था। उसकी वाणी और स्वभाव में हमेशा ही नरमी रहती। कुछ देर निमिष से बात करके उसका दिमागी बोझ थोड़ा हल्का हुआ। अब जबकि निमिष ने स्वाति के चेहरे की परेशानी कुछ सेकंड्स के वीडियो में ही समझ ली थी, तो उसे निमिष की परवाह अच्छी लग रही थी। शायद ये परवाह भी उसके स्वभाव का ही हिस्सा थी। कुछ दिन के बाद लगभग हर हफ्ते 10 दिन में निमिष का फोन आता या वो उसे कॉल करके आलोक के केस के बारे में पूछ लेती। धीरे धीरे पुराने सहपाठियों के बीच उनके वर्तमान की जानकारी साझा होने लगी। दोनों ने अपने अपने पार्टनर्स के बारे में एक दूसरे को बताया। भाई, तुम्हारी और अभिनय की लव मैरिज है? निमिष ने पूछा। उससे भी बढ़िया, हमारी फ्रेंडशिप मैरिज है, स्वाति ने उसे नया टर्म बताया। यानी तुम्हें किसी से अब तक प्यार नहीं हुआ? निमिष ने उत्सुकता से पूछा। स्वाति ने गर्व से कहा, मित्रता प्रेम की पराकाष्ठा होती है। और ये किस महापुरुष ने कहा है? निमिष ने झट से पूछा। ये एक महान स्त्री ने कहा है, स्वाति ने खिलखिला के जवाब दिया। हाँ, होगी कोई तुम जैसी स्त्री जिसने प्रेम को सही से जाना ही नहीं। निमिष संपादक था, शब्दों के जाल को बुनना उसे खूब आता था। अच्छा, सबकी प्रेम की परिभाषा अलग भी तो हो सकती है। मुझे अभिनव जैसा जीवन साथी मिला जिसने मुझे सहज रहने दिया, कभी बदलने की कोशिश नहीं की, उससे प्रेम अपने आप होता चला गया। अच्छा, और तुम्हें कैसे पता वो दोस्ती नहीं प्रेम है? निमिष ने फिर से सवाल किया। अब स्वाति ने चिढ़कर कहा, तुम्हारी प्रेम कहानी और शादी अमर रहे, इतना ही मानवता के लिए काफी है। भाई, मेरी तो अरेंज मैरिज है, निमिष ने बताया तो स्वाति ने झुंझला के कहा, वाह, और ये प्रेम पर तब से ज्ञान दे रहे हैं? नहीं, प्रेम बार बार नहीं होता। निमिष कुछ बोलते बोलते चुप हो गया। मतलब तुम्हें किसी और से प्यार, तो शादी क्यों नहीं की? स्वाति ने उत्सुकता से पूछा। हां, किया था, पर उससे कह नहीं पाया। कई साल उसे ढूंढा, उसका इंतजार किया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। उम्र निकल रही थी, फिर पूजा का रिश्ता आया और पेरेंट्स ने पक्का कर दिया। इसलिए समझता हूं कि बिना प्यार की शादी कैसे होती है। उसकी शादी को 3 साल हुए थे, जबकि स्वाति की शादी को 11 साल होने को थे। स्वाति आगे पूछना चाहती थी, लेकिन अपने रिश्ते की मर्यादा में उसके और उसकी पत्नी के विषय में कुछ पूछ न सकी। लेकिन उसका दिमाग अब यह जानना चाहता था कि निमिष को किससे प्रेम हुआ था। क्या वो उस लड़की को जानती है? कहीं साथ में पढ़ने वाली कोई लड़की तो नहीं थी?

हफ्ते 10 दिनों में होने वाली कॉल अब रोज होने वाली बातों में बदल गई। निविश को सही सवाल पूछना आता था। स्वाति बेखटके हर जवाब देती। उसके मन की हर परत अब निमिष को पता थी। निमिष कम बोलता था। जब भी स्वाति खुद से पूछे सवाल का रुख उसकी तरफ कर देती तो वो उदास हो जाता। ऐसा लगता था जैसे उसकी शादी बस एक बंधन, एक जिम्मेदारी हो। उल्टे स्वाति और अभिनव की शादी और सामंजस्य वो सराहता, लेकिन बूझे स्वर में। ऐसे में स्वाति ने उससे अपने पति और रिश्ते की बात करना बंद कर दिया। अब वो बाकी विषयों पर बातें करते, जैसे राजनीति, देश, दुनिया, फिल्म, गाने और खाना भी। स्वाति और निमिष के बीच फोन पर बातों का सिलसिला बढ़ता जा रहा था। जब निमिष अपने ऑफिस के लिए निकलता था, उस वक्त तक स्वाति अपने ऑफिस पहुंच चुकी होती थी। वो जब घर से निकलता तो उसे फोन मिला लेता और जब तक अपने ऑफिस पहुंचता तब तक स्वाति से बात करता रहता। कई बार तो वो रास्ते में ही होती और निमिष का फोन आ जाता। स्वाति ने अभिनव को निमिष के बारे में बता दिया था। उससे बात करके जो भी पुराने यादें लौटती, उनकी कहानी वो अभिनव को रोज सुनाती। अभिनव को स्वाति के दोस्तों से कभी कोई दिक्कत नहीं थी। कॉलेज के दिनों की पुरानी बातें हों या रोजमर्रा की बातें, निमिष और स्वाति के बीच अब कोई पर्दा नहीं था। एक दिन निमिष ने स्वाति को बताया कि जितनी बातें वो उससे करता है, उतनी बातें उसने कभी भी किसी और से भी नहीं की है, ना अपने परिवार में, नहीं ही पत्नी के साथ। सच में यार, पति पत्नी की क्या बात कर रही हो? मुझे तो लगता है मैंने कभी भी किसी से इतनी बातें नहीं करी जितनी मैं तुमसे करता हूं। कभी सोचा है कि कैसे तुमसे इतना सहज हूं कि बिना किसी लाग लपेट के हर बात कह पाता हूं? निमिष जानना चाहता था कि स्वाति उसकी जिंदगी में अपनी खास जगह को पहचान रही है या नहीं। अच्छा, लेकिन मैं तो हमेशा से इतनी बातूनी हूं। मैं तो रोज की बात रोज ना करूं तो पेट में दर्द होने लगे। वो हंसने लगी। स्वाति तो स्वाति थी, अल्लड़ और हिंट न देने वाली। हां, तुम तो कॉलेज के जमाने से ऐसी ही हो, लेकिन तुम्हारी संगत मुझे बदल रही है, वरना मैं अपने मन की बात किसी से नहीं बांटता। उसने एक बार फिर से अपनी जिंदगी में स्वाति की अहमियत और बदलाव को रेखांकित किया। घुटन नहीं होती? स्वाति ने उससे अचानक पूछा। निमिष तैयार नहीं था। उसे लगा कि स्वाति पूछेगी कि ऐसा क्यों है कि निमिष उसके साथ इतना सहज है, या शायद ये कि उसकी संगत के निमिष पर और क्या असर हो रहे हैं। लेकिन उसने पूछा उसके ना बात करने की घुटन के बारे में। सवाल से निमिष ने यह तो जाना कि स्वाति को उसके स्वभाव को लेकर उत्सुकता भी है और उसकी चिंता भी। उसने थोड़ा सोच के जवाब दिया। आदत है सब अपने अंदर रखने की, खुशी हो या परेशानी, सब बस हमेशा अंदर ही रहा। इसीलिए मैं तुम्हारे जैसा एक्सप्रेसिव नहीं हूं। चलो तुम्हारे बंद ढक्कन को खोलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या निकलेगा। स्वाति ने पूरे जोश से निमिष की जिंदगी के बारे में जानने और उसके अकेलेपन को दूर करने का बीड़ा उठा लिया। उस रोज एक लंबी मुस्कान ने निमिष की आंखों को प्रदीप्त कर दिया। स्वाति को अब स्पेशल फील हो रहा था। निमिष वाकई मितभाषी था और वो अपने मन की बात कभी किसी से नहीं कर पाता था, जबकि स्वाति के साथ वो हर बात बिना किसी तकल्लुफ के साझा कर लेता था। उसे खुद पर थोड़ा नाज हुआ, लेकिन जब भी निमिष इस बात पर जोर देता, स्वाति ऐसा दिखाती जैसे यह कोई खास बात नहीं है। दिल ही दिल में उसे यह एहसास था कि उन दोनों के बीच कुछ तो बदल गया था। आखिर उनका आपस में गजब का सामंजस्य था। इतने सालों के बाद वो संपर्क में आए थे। सिर्फ फोन और चैट पर बात करते हुए कुछ ही हफ्तों में वो दोनों बिना कहे एक दूसरे की बात, यहां तक कि भाव भी समझ जाते। स्वाति को जो

तक रोमांचक लग रहा था वो अब उसे अजीब लगने लगा। वो जानना चाहती थी कि क्या यह वाकई अटपटा है या स्त्री कंडीशनिंग है जो उसे ये आत्मीयता और अंडरस्टैंडिंग गलत लग रही है। वो जानना चाहती थी कि क्या उसकी तरह निमिष को भी उनका मेलजोल इतनी तेजी से बढ़ना अटपटा लग रहा है। लेकिन निमिष ने उसे फिजूल बातों पर मंथन करने से मना किया। वो किसी भी रूढ़िवादी सोच के चलते अपने रिश्ते को खोना नहीं चाहता था।

निमिष जानता था कि स्वाति के प्रति बढ़ता लगाव दरअसल उसका खोया हुआ प्रेम ही है। वो स्वाति को कॉलेज के जमाने से पसंद करता था, लेकिन संकोच में उसे बता नहीं सका। ग्रेजुएशन के बाद स्वाति आगे पढ़ने दूसरे शहर चली गई और वो कभी उसे ढूंढ नहीं सका। 8 साल बाद जब फेसबुक पर स्वाति मिली तो उसकी शादी हो चुकी थी और परिवार में एक बेटी भी थी। फेसबुक पर स्वाति से इतनी बात करने की उसकी हिम्मत भी नहीं हुई। उस दिन घबराई हुई स्वाति को अपने चैनल की स्क्रीन पर देखा तो उसे रहा नहीं गया और उसने कॉलेज ग्रुप से लिए हुए उसके नंबर पर पहली बार कॉल किया था। उसे पता नहीं था कि बातों का सिलसिला उसके अंदर की चाहत को फिर भड़का देगा। उससे अब सब्र नहीं हो रहा था। सुनो, मुझे तुमसे मिलना है, निमिष ने कहा।

0: अचानक ठीक तो हो? स्वाति को चिंता हुई। बोलो ना, मिलोगी? उसने विनती के स्वर में पूछा। हां क्यों नहीं, इस इतवार को घर पे आ जाओ। स्वाति ने सहज ही निमंत्रण दे दिया। घर पर नहीं, निमिष ने साफ मना कर दिया। क्यों, अभिनव से नहीं मिलना, बल्कि पूजा को भी लेते आना, स्वाति ने फिर से समझाया। नहीं यार, तुमसे मिलना है, किसी और से नहीं मिलना। अभी परिवार को दोस्ती के बीच में मत लाओ ना, निमिष ने झुंझला कर कहा। अच्छा ठीक है, पहले हम दोनों मिलते हैं। स्वाति उसकी मनोस्थिति समझना चाहती थी। करीब 6 हफ्ते फोन पर बात करने के बाद निमिष और स्वाति कॉलेज के बाद पहली बार रूबरू मिले। निमिष आज भी वैसा ही था, जबकि कॉलेज के जमाने में सीख सी दिखने वाली स्वाति अब भरी पूरी महिला हो गई थी। उसका वजन उस पर फबता था, उनका साथ कपूर और आग जैसा था। स्वाति की हंसी की खनक और बातों की खुशबू से निमिष का मन महक रहा था। स्वाति से मिलकर वो जान गया था कि अपने दिल की बात बताना या पुरानी चाहत का राज खोलना स्वाति को दोबारा खो देने जैसा होगा, क्योंकि वो जितनी बात करती उसमें आधे से ज्यादा बातें या उदाहरण उसके पति अभिनव के बारे में होते। स्वाति अभिनव के साथ खुश थी। निमिष उसके दिल में अपनी छोटी सी जगह को खोना नहीं चाहता था। उनकी बातचीत की तरह उनके मिलने का सिलसिला भी बढ़ता गया। कभी निमिष उसके ऑफिस की तरफ आ जाता और उसके साथ कॉफी पी लेता, कभी लंच पैक करवा के साथ ही ले आता और दोनों गाड़ी में ही बोलते बतियाते लंच करते। ऐसा लग रहा था कि अपनी भावनाओं और परिस्थितियों दोनों पर अब उनका कोई बस न रह गया हो। जितनी देर वो स्वाति के साथ रहता उसके चेहरे की मुस्कान और आंखों की चमक कायम रहते। उसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि वो पूरी तरह से स्वाति के प्यार में डूबा है। दूर से देखने वाले भी उनके बीच का स्पार्क महसूस कर सकते थे। ऐसे में ये बात उन दोनों को खुद महसूस न हो रही हो, ये संभव नहीं था। बकौल निमिष, वो इस अनाम से प्यारे रिश्ते में कोई सवाल नहीं चाहता था और अपने बीच तेजी से बदलती भावनाओं को वो जानबूझकर अनदेखा करने लगा। स्वाति को निमिष की आंखों का प्यार और आकांक्षाएं साफ दिख रही थीं। मजाक मजाक में वो उसे कई बार प्यार में न पड़ने की चेता चुकी थी। निमिष भी उसकी चेतावनी को हर बार काश ऐसा ही हो जाए बोलकर हंसी में उड़ा देता। वो जानता था कि स्वाति को जिस प्यार के होने का डर सता रहा था वो पहले से ही उसके जीवन का सच था। शायद उसे खुद भी प्यार में पड़ जाने का डर हो।
1: गीतों भरी कहानी जारी रहेगी एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: आप सुन रहे हैं गीतों भरी कहानी। इस श्रृंखला में आज विनीता अस्थाना की लिखी कहानी दिल की गिरह। आइए सुनते हैं आगे की कहानी।
1: निमिष का शक सही था। स्वाति समझ रही थी कि दोस्ती और उनके वर्तमान समीकरण के बीच बहुत फर्क आ चुका।

चुका है, और ऐसा सिर्फ निमिष की तरफ से नहीं था। उसने स्वयं भी यह समझ लिया था कि अब उनके बीच सिर्फ दोस्ती नहीं है, बल्कि एक दूसरे के प्रति बढ़ता उनका आकर्षण भी है। ऐसे में वो इस बढ़ती लत को यहीं रोक देना चाहता।

0: रहा है। यार तुम सोचती बहुत ज्यादा हो, अगर दोस्ती से ज्यादा है तब भी ये कोई चीटिंग नहीं है, हमें भी खुश रहने का हक है। अपने पसंदीदा इंसान के साथ समय बिताना अगर किसी को धोखा लगे तो लगा करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। निमिष, ये दोस्ती नहीं है, ये जो तुम्हारी आंखों में दिखता है उससे मुझे घबराहट होती है। मैं अभिनय को धोखा नहीं दे सकती, बात को समझो, हमें मिलना फौरन बंद करना होगा। प्यार व्यार में पड़ जाओगे तो बस, हमें बात भी कम करनी चाहिए। स्वाति के लहजे में चिंता थी। तुम्हें मुझसे प्यार हुआ क्या? नहीं ना, क्या ही फायदा तब इतना सोचने का। निमिष कह नहीं रहा था बल्कि पूछ रहा था। फिर भी यह ठीक नहीं है, किसी से मानसिक लगाव भी इमोशनल चीटिंग ही है। स्वाति ने अपना स्टैंड क्लियर किया। पागल मत बनो स्वाति, ये जो वक्त मैं तुम्हारे साथ जीता हूं वो मेरे पूरे दिन की खुराक है। मुझे नहीं पता तुमसे मिलने से पहले मैं कैसे जिया, मुझे बस इतना पता है कि मेरे नीरस जीवन में जो भी रंग है उसकी वजह यही समय है जो मैं तुमसे बात करते हुए, तुम्हें देखते हुए बिताता हूं। निमिष ने कातर आंखों से स्वाति से उसका चैन न छीनने की गुजारिश की।
1: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरा होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

स्वाति समझ रही थी निमिष उससे अपने प्यार का इजहार कर देना चाहता है, लेकिन स्वाति से दूर होने का डर उसे रोक रहा था। उस रोज स्वाति जब उससे मिलकर अपने घर के लिए निकली तो उसने निमिष को कोई वादा नहीं किया, बल्कि उसे सांत्वना देकर चली गई। धीरे धीरे उसने निमिष के कॉल उठाना कम कर दिया। जब भी वो मिलने को कहता, स्वाति कोई न कोई बहाना बना देती। वो ऑफिस तक आ जाता, तब भी वो मीटिंग का बहाना करके उससे नहीं मिलती। ऐसा नहीं था कि उसके इस व्यवहार से सिर्फ निमिष दुखी था, दुखी तो वो खुद भी थी, लेकिन उसे पता था कि उसकी ही तरह निमिष भी शादीशुदा है। वो जितना अपने और निमिष के रिश्ते को पड़ताल करती, उसे अपना कदम सही लगता। स्वाति अभिनव से प्यार करती थी, उनके जीवन में कोई कमी नहीं थी और वो साथ में खुशहाल भी थे। फिर क्यों उसने निमिष को इतना आगे बढ़ने दिया? मुझे न प्यार की तलाश है न प्रेमी की, कैसे संभव है एक इंसान के प्रेम में होते हुए किसी दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाना? क्या मैं आकर्षित हूं या मुझे भी निमिष से प्रेम हो रहा है? वो जितना खुद को मथ रही थी, उतने ही अलग अलग जवाब उसके जहन में आ रहे थे। नहीं, मुझे निमिष से प्यार नहीं है, मुझे बस ये एहसास अच्छा लग रहा है कि कोई मेरी परवाह करता है। निमिष मुझसे बात करता है और मुझे अपने जीवन की

0: प्राथमिकता मानता है, मुझे सिर्फ इस एहसास से प्यार है। उसे लगा कि जब से निमिष ने अपने और अपनी पत्नी पूजा के बीच के संबंधों के विषय में बताया, तब से उसे निमिष की ज्यादा फिक्र होने लगी थी। निमिष और पूजा के संबंध किसी बुजुर्ग जोड़े से भी ज्यादा नीरस थे। उनके बीच न तो संवाद था न ही दैहिक संबंध। कम से कम निमिष का तो यही कहना था। उसके जीवन के बारे में सुनने के बाद स्वाति को उससे सहानुभूति होने लगी थी। उस जैसा सुलझा हुआ और प्यारा इंसान अपने जीवन में हर खुशी का हकदार था, प्यार का भी। स्वाति अपनी सोच की परतों से खुद ही घबरा रही थी। कोई भी तर्क, कोई भी वजह इस बात को सही नहीं ठहरा सकती कि मैं एक खुशहाल शादीशुदा जीवन जी रही हूं, और ऐसे में अपने 15 साल पुराने एक सहपाठी के लिए मेरा दिल पिघल रहा है। स्वाति ग्लानि से भर गई और उसने निमिष से हर संवाद खत्म करने का फैसला लिया। उसे निमिष के साथ बिताया हुआ हर पल अभिनव के साथ की हुई बेवफाई लग रहा था। वो अभिनव से कुछ छुपाती नहीं थी, लेकिन निमिष के बदले हुए व्यवहार को उसने अभिनव के सामने जाहिर नहीं किया था। वो जानती थी कि अभिनव पजेसिव या कंट्रोलिंग पति नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसे पूरी बात बता न सकी। ये भी उसके अपने मन का चोर था शायद। वो निमिष को दिए हुए समय की भरपाई अभिनव के साथ अच्छा वक्त गुजार के करना चाहती थी। स्वाति ने दीपावली की पुरानी लाइट्स को स्टोर से निकाल के अपनी हरी भरी बालकनी में लगाया। सुनहरी लाइट्स में पौधों की खूबसूरती और निखर गई। बेत के सोफे पर नए चढ़ाए कुशन कवर सज रहे थे। अभिनव घर में घुसा तो स्वाति ने तैयार होकर उसका स्वागत किया। अभिनव के लिए ये सुखद आश्चर्य था। बालकनी में गर्मा गर्म कॉफी के मग उसका इंतजार कर रहे थे।
1: क्या बात है, अभी से दिवाली की सजावट शुरू हो गई।
0: हट, शादी के कई साल बीत जाएं तो यही होता है, स्पेशल फील कराने की कोशिश का अंजाम तो देखो जरा। उसने झूठ मूठ का गुस्सा दिखाया।
1: सॉरी बाबा, मजाक कर रहा था। जीवन में रस बना रहे उसके लिए प्यार में ये सब छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं।
0: देर रात तक दोनों वहीं बैठकर बातें करते रहे। घर और नौकरी की भागदौड़ में दोनों को आपस में बातें करने का मौका कम मिलता था। हालांकि स्वाति अपने हिस्से की बात रोज अभिनव से बोल ही देती थी, लेकिन वो एक तरफा संवाद था। अभिनव ने डिसाइड किया कि अब से हर शाम वो दोनों साथ में कॉफी पिएंगे और हर हफ्ते में कम से कम एक बार साथ में अपने दफ्तर से अलग कहीं जाएंगे। स्वाति को अब हल्का महसूस हो रहा था। हवा में घुले संगीत के साथ उसके जहन में एक चेहरा बार बार उभर रहा था, लेकिन उसने खुद को कड़ाई से रोक लिया और अभिनव को निहारने लगी। कितनी समानता है अभिनव और निमिष में। दोनों कम बोलते हैं, दोनों को मेरी परवाह है। काश हम दोस्त बन के रहते, काश उसे मुझसे प्यार न होता। मुझे उसकी कमी कितनी खल रही है, लेकिन निमिष ने मुझसे संवाद की अपनी कोशिश कुछ दिनों में ही बंद कर दी। प्यार तो नहीं ही रहा होगा उसे, शायद बस पसंद हो या बस आदत हो गई हो बात करने की। शायद कल किसी और की आदत हो जाएगी उसे।
1: स्वाति सोच ही रही थी कि अभिनव ने पूछा, अरे सुनो, वो तुम्हारे ड्राइव टाइम कॉल का क्या हाल है?
0: अभिनव ने उससे निमिष का हाल पूछा था, लेकिन उसकी आवाज के साथ ही स्वाति के दिल में कुछ झन्ना के बिखर गया। क्या मैं सिर्फ उसकी ड्राइव टाइम कॉल थी?

इन सब से दूर निमिष ने अपने दिल के शोर को न्यूज रूम के शोर में दबा दिया। अब वो पहले से ज्यादा खामोश, पहले से ज्यादा अकेला था। प्यार का इजहार न करके वो इतना अकेला तब भी नहीं था जब 15 साल पहले स्वाति चली गई थी। उसको ढूंढना, अपने दिल में बुने सपनों में खोए रहना उसका पसंदीदा काम था। फेसबुक पर स्वाति का मिल जाना उसके लिए किसी त्योहार जैसा बड़ा दिन था। वो उसे वर्चुअल दुनिया में देखकर खुश रहता। इन दिनों उसकी हर पोस्ट दसियों बार पढ़ता और उसकी तस्वीरों को अपने फोन के फोल्डर में छुपा के रखना उसके प्रिय शगल थे। निमिष के हाथ कीबोर्ड पर तेजी से चल रहे थे। उसके चैनल की टीआरपी ने उसे फिर से नंबर वन बना दिया था। न्यूज रूम में जश्न जैसा माहौल था। पूरे साल हर हफ्ते नंबर वन रहना आसान नहीं था, लेकिन निमिष ने यह जीत हासिल की थी। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे कि निमिष का अधीनस्थ प्रोड्यूसर राकेश उसके पास आया। सर, इस साल आपको यूरोप की कपल ट्रिप के वाउचर मिलने वाले हैं, उसने निमिष को बताया। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? निमिष ने ऐसे जताया जैसे उसे कुछ मालूम ही नहीं। सर, अंदर की खबर है। आप अपने साथ किसे ले जाएंगे? राकेश ने हिम्मत करके पूछा। क्यों? निमिष ने आंखें उचका के पूछा। सर, मुझे ले चलिएगा ना, इस बार आप किसी को वाउचर दीजिएगा मत। राकेश ने फिर से खुशामद की। तुम क्या मेरे जीवन साथी बनने की फिराक में हो? निमिष ने हंसते हुए उसकी मौज ली। नहीं सर, आप कपल वाले ट्रिप, कॉन्सर्ट टिकट, मूवी और डिनर वाउचर सबको बांट देते हैं। इस बार चलिए ना, साथ चलते हैं। राकेश ने अपनी अर्जी का कारण स्पष्ट किया। जाओ अपना काम करो, निमिष ने उसे ठेल के वापस उसके डेस्क पर भेज दिया। राकेश को उसके 2-3 साथियों ने घेर लिया। अबे तुम क्यों जाओगे? हम जाएंगे, एक ने कहा। अरे भाई, मेरी ना शादी हुई है, मेरा हनीमून हो जाएगा, मुझे और मेरी बीवी को जाने दो, दूसरे ने विनती की। अरे यार, तुम्हारे हनीमून का खर्चा चैनल थोड़ी ना देगा, राकेश ने उसको डपटा। राकेश भाई, तुम उनसे कह दो ना कि तुम्हें गोद ले ले, पहले ने सुझाव दिया। ये सही है, निमिष सर को पापा बना लो, उनके जीवन में नौकरी के सिवा कुछ है भी नहीं, एक रेडीमेड बेटा ही मिल जाएगा। सर सिंगल हैं? नई एंकर नैना ने अचरज से पूछा। तुमको नहीं पता? सब कहते हैं सर अपने जमाने के दिल जले आशिक है, शायद प्रेमिका मिली नहीं या मर गई हो, क्या पता, दूसरे ने बताया। कितना गॉसिप करते हो यार, जाओ अपना काम करो सब। राकेश ने अपने डेस्क से भीड़ को भगाया और ग्लास केबिन में काम करते शांत निमिष की ओर देखा और सोचने लगा। कोई कह सकता है कि ये इतने अकेले हैं? शायद तभी पूरा पूरा दिन ऑफिस में रहते हैं, छुट्टी नहीं लेते, घूमने नहीं जाते। बीच में कुछ महीने चेहरे की रंगत बदली थी, खुश रहते थे, अब फिर से पहले जैसे बुत बन गए हैं। कांच की दीवार के उस पार निमिष सोच रहा था कि स्वाति से बात शुरू हुई तो वो खुद नहीं जानता था कि पुरानी भावनाएं उस पर यूं हावी हो जाएंगी। किसी को प्यार से दूर करना कितना आसान था, न जवाब का इंतजार, न रूठने का खौफ। ग्रेजुएशन के 3 साल मिलाकर करीब 18 सालों से उसने स्वाति को चाहा था। इतने सालों में उसने इस तड़प को कभी महसूस नहीं किया था। पिछले 1 महीने से स्वाति से उसकी बात बंद है। स्वाति के पीछे भागते 2 हफ्तों में उसने तिरस्कार को समझा था। वो समझता था कि स्वाति अभिनव से ही प्रेम करती है और उसे अपने बारे में आश्वस्त रखने के लिए ही तो निमिष ने पूजा के नाम का झूठ गढ़ा था। वो स्वाति की जिंदगी में अपनी छोटी सी जगह से खुश था। शायद उसे अपनी आकांक्षाओं का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था, काश दोस्ती ही बनी रहती, लेकिन पीछे लौटना संभव नहीं था। इसलिए उसने स्वाति से कोई संपर्क न रखने का निश्चय किया और उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया ताकि भूले से भी वो उसकी जिंदगी में झांकने ना जाए।

बातों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे विनीता अस्थाना की लिखी कहानी दिल की गिरह, वाचन स्वर जयंत पात्रिकर का, संपादन सहयोग स्नेहल भिसे, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं।
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी, यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
4: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
3: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
5: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
3: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से।
7: FM 102.5 MHz, न्यूज़ ऑन ए

यार मोबाइल एप्लीकेशन और लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन का प्रसारण। शाम के 5 बजे हैं। आज आपके साथ हूँ मैं प्रणाली। समय है कार्यक्रम युववाणी का। आइए सुने लाइव फोन इन प्रोग्राम युववाणी।

0: नमस्कार। महाकाल की पावन नगरी के सभी ऊर्जावान श्रोताओं का आकाशवाणी उज्जैन के आपके अपने सबसे चुलबुले एनर्जेटिक और पसंदीदा प्रोग्राम युववाणी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका रेडियो मित्र आशुतोष
1: और मैं हूं आपकी दोस्त अंकिता। वैसे आशुतोष, आज स्टूडियो में कदम रखते ही मुझे लग रहा था कि आज की हमारी शाम बहुत ही प्रैक्टिकल और हर घर से जुड़ी हुई होने वाली है। आज का हमारा टॉपिक इतना रिलेटेबल है कि हर माता पिता के दिल को सीधे छू जाएगा, है ना?
0: बिल्कुल सही कहा अंकिता। बच्चों की मासूमियत और उनकी खिलखिलाहट से पूरा घर गुलजार रहता है, लेकिन जब वही बच्चे अपने किसी बात पर अड़ जाते हैं तब शुरू होती है असली कशमकश। इसीलिए दोस्तों, आज के इस लाइव फोन इन कार्यक्रम का हमारा बेहद विचारणीय और दिलचस्प विषय है, बच्चों की हर जिद पूरी करना, कितना सही कितना गलत।
1: वाह आशुतोष, कितना प्रासंगिक और आज के दौर का सबसे बड़ा मुद्दा है ये। आज के समय में जब बच्चों के पास स्क्रीन, खिलौनों, जंक फूड और नए नए गैजेट्स के ढेर सारे ऑप्शंस हैं, ऐसे में पेरेंट्स के सामने बहुत बड़ी चुनौती होती है कि वे बच्चों की कौन सी जिद पूरी करें और किसे प्यार से मुस्कुराकर टाल दें।
0: बिल्कुल सही कहा अंकिता। कई बार हम प्यार प्यार में या बच्चे को रोता न देखकर उसकी हर जिद तुरंत पूरी कर देते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि तुरंत जिद पूरी करने की यह आदत आगे चलकर बच्चे के स्वभाव को जिद्दी और गैर जिम्मेदार भी बना सकती है? क्या इससे उनमें ना सुनने और सब्र करने की क्षमता कम हो जाती है?
1: और वहीं दूसरी तरफ अगर हम हर बात पर बच्चे को डांट कर मना कर दें तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनमें उनके मन में कुंठा या जिद्दीपन और ज़्यादा बढ़ जाए? इसलिए तो आज हम अपने प्यारे श्रोताओं से, पेरेंट्स से और खुद युवाओं से उनके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सुनना चाहते हैं कि वे अपनी फैमिली में इस बैलेंस को कैसे संभालते हैं।
0: बिल्कुल अंकिता, हम जानना चाहते हैं कि जब आपका बच्चा मॉल में किसी महंगे खिलौने के लिए जमीन पर लेट जाता है या पढ़ाई छोड़कर मोबाइल के लिए जिद करता है, तब आप एक पेरेंट के तौर पर सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं? क्या आप प्यार से समझाते हैं, कोई रिवॉर्ड सिस्टम बनाते हैं या फिर कोई और स्मार्ट तरीका अपनाते हैं?
1: बिल्कुल, तो फिर देर किस बात की दोस्तों, उठाइए अपना फोन और सीधे हमारे साथ लाइव जुड़िए। अपनी पेरेंटिंग की अनमोल टिप्स, अपने किस्से और अपने विचार हमारे साथ शेयर कीजिए।
0: फोन लाइंस आप लोगों के लिए पूरी तरह से खुल चुकी हैं। हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए हमारा दूरभाष क्रमांक है 4054191, साथ ही उज्जैन का STD कोड है 0734।
1: एक बार फिर मैं नंबर दोहराती हूँ, 0734405-4191। आशुतोष, जब तक हमारे प्यारे श्रोता डायल पैड पर नंबर घुमा रहे हैं और कॉल्स कनेक्ट हो रही हैं, क्यों ना माहौल को थोड़ा और संगीतमय और खुशनुमा बना दिया जाए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

0: आइए बात करते हैं हमारे अगले श्रोता से। नमस्कार।
1: लगता है किसी टेक्निकल कारण के हमारा कॉल नहीं जुड़ पाया है। आशुतोष, हम बात कर रहे थे बच्चों की ज़िद के बारे में, और आज के मॉडर्न पेरेंटिंग दौर में सबसे बड़ी बात यह है कि हम बच्चों पर सिर्फ अपने फैसले ना थोपे, बल्कि उनके साथ एक दोस्ताना संवाद कायम रखें। जब बच्चा किसी चीज़ की ज़िद करता है तो तुरंत गुस्सा या डांटने के बजाय उसकी बात के पीछे की वजह समझना बहुत ज़रूरी है। अक्सर बच्चे केवल अपना ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए भी कोई अनपेक्षित मांग करते हैं।
0: बिल्कुल पते की बात कही अंकिता। जब हम बच्चों की बात को ध्यान से सुनते हैं और उन्हें प्यार से सही और गलत का अंतर समझाते हैं, तो वे खुद को सम्मानित और सुरक्षित महसूस करते हैं। संवाद से बना यह भरोसा बच्चों को मानसिक रूप से समझदार बनाता है, जिससे अवांछित जिद की गुंजाइश अपने आप कम हो जाती है।
1: बिल्कुल आशुतोष, लगता है हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं।
0: नमस्कार। आकाशवाणी उज्जैन की कार्यक्रम युवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंकिता, शायद किसी टेक्निकल कारण से हम हमारे श्रोता से बात नहीं कर पा रहे हैं। आइए हम सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: हंसना सीखो। आइए बात करते हैं हमारे अगले श्रोता से। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन के कार्यक्रम युवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन और कहां से बोल रहे हैं?
1: मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जेठालाल।
0: रणवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप?
1: जी बढ़िया, आप सुनाइए सर।
0: बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। आपके यहाँ मौसम कैसा है?
1: मौसम सुहाना हो रहा है आपके गाने सुन के सर।
0: जी रणवीर जी, रणवीर जी आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो हमारे रोजमर्रा के जीवन से, हमारे परिवार से बहुत ही खास तरीके से जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं बच्चों के बारे में, और बच्चे जो हमारे आजकल जिद बहुत करने लग गए हैं, या कहीं ना कहीं जो छोटी मोटी शरारतें करते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो
1: आप बहुत बड़ी बड़ी
0: जी रणवीर जी, तो आपके बच्चे हैं?
1: जी छोटे हैं।
0: छोटे हैं, तो जैसे कि वो उम्र में छोटे हैं तो वो जिद भी काफी करते होंगे, तो आप हर दिन किस प्रकार की जिदों से सामना कर रहे हैं उनकी?
1: उसमें क्या सर, जैसे है ना, एक कदम में ये नहीं खाऊंगा, एक कदम में वो नहीं खाऊंगा
0: जी।
1: अब हम तो यही कहते हैं चलो अब जैसे आपकी मर्जी हो। अब भाई कभी हम भी बच्चे थे सर, है या नहीं है?
0: जी रणवीर जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: जब हम जिद करते थे तो अब ये भी जिद करेंगे सर।
0: तो आप किस प्रकार से उनकी जिदों का सामना करते हैं? कैसे समझाते हैं उन्हें कि कोई चीज खाना बुरा नहीं होता या हरी सब्जियां खाना चाहिए? आप उन्हें कैसे समझाते हैं?
1: नहीं सर, हम तो यही कहते हैं कि इनसे देखो जो जो अपने सही लगे वो अपने खाओ।
0: जी रणवीर जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई। और रणवीर जी, इसी के साथ हम ये भी जानना चाहते हैं आपसे कि जैसे आप भी जब छोटे थे, आपने जब बताया कि आपका भी बचपन था, आप भी जिद करते थे, तो आप किस प्रकार की जिद किया करते थे अपने माता पिता से?
1: हम तो सर जीत पड़ जाते थे
0: जी।
2: तो जब आप छोटे थे तो आपकी सारी जिदें मान ली जाती थी या आपको भी समझाया जाता था रणवीर जी?
1: नहीं मान ली जाती थी, हम सब में आखिर में थे ना, आखिरी नूर नजर से।
0: अरे भाई, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई रणवीर जी। और आपसे बात
1: जी
0: आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा रणवीर जी। आकाशवाणी उज्जैन में फोन लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। गाना नहीं सुनवाएंगे सर?
0: जी बिल्कुल सुनवाएंगे ना, आप कॉल रखिए, हम आपको गाना सुनवाते हैं।
1: ओके नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: वाह आशुतोष, बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। और

0: जिद की बात करें आज दोस्तों, बच्चों को बचपन से ही ज़रूरत और महज एक चाहत के बीच का बारीक फर्क समझाना एक आधुनिक और व्यवहारिक पेरेंटिंग की पहचान है। जब बच्चा बाजार में किसी आकर्षक चीज़ को देखकर तुरंत उसे देखकर खरीदने की जिद करे तो उसे डांटने के बजाय प्यार से पूछना चाहिए कि क्या उसके लिए ये वाकई ज़रूरी है या बस एक पल का आकर्षण है। आशुतोष,
1: सही बात है अंकिता। जब बच्चे खुद अपनी प्राथमिकताओं को समझना शुरू करते हैं तो उनमें सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। यह छोटी सी समझदारी भविष्य में उन्हें एक जिम्मेदार, संतुलित और आर्थिक रूप से जागरूक नागरिक बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। इसी के साथ श्रोताओं, आइए बात करते हैं हमारे अगले कॉलर से। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन के कार्यक्रम युवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन और कहाँ से बोल रहे हैं?
2: जी भैया, हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ से।
1: योगेश जी, कैसे हैं आप?
2: बढ़िया है, अच्छे हैं।
1: योगेश जी, मौसम कैसा है आपके यहाँ आज?
2: अभी तो ये थोड़ा थोड़ा सा बारिश हो रहा है।
1: जी योगी जी, योगी जी, हम आपको बता दें, आज हम जिस मुद्दे पर बात करें, जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, वो हमारे दैनिक जीवन से, हमारे घरेलू जीवन से बहुत ही खास तरीके से जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं बच्चों की और जो बच्चे आजकल जिद बहुत करते हैं उसके बारे में। तो योगेश जी, आपके बच्चे वगैरह कोई हैं?
2: हाँ जी, है ना भैया।
1: और उनकी उम्र क्या है?
2: एक तो अभी 11 साल का है और एक 5 साल की।
1: जी योगी जी, तो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, और जितने वो छोटे हैं उम्र में उतनी ही बड़ी उनकी जिदें होती हैं। तो ऐसी कौन सी जिद है जो वो रोज आपसे करते हैं?
2: अब ज्यादा जिद तो मोबाइल के लिए करते हैं भैया।
1: जी योगी जी, ये वाकई आज कल के समय में बहुत बड़ी समस्या बन चुका है, स्क्रीन टाइम, मोबाइल। और अक्सर बच्चे आजकल देखा जाता है कि खाना खाते वक्त मोबाइल की ही स्क्रीन देखते हुए खाना खाते हैं, ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है। तो आप इससे कैसे निपटते हैं?
2: अब यही है भैया, थोड़ा बहुत तो डांट भी लगाना पड़ता है, क्योंकि बिना डांट लगाए वो आसानी से देते नहीं।
1: जी योगी जी,
2: और जैसे हमारा मांग लिए तो दादा दादी का मोबाइल मांग लेगा, ऐसे ऐसे शरारत है बच्चों में।
1: जी योगी जी, होते भी वे बेहद लाड़ प्यार के हैं, होते हैं हमारे जो दादा दादी होते हैं, वो अपने पोता पोती पे, नाती नातिन पे काफी अपना प्यार लटाते हैं, तो वो उस शरारत में फंस जाते हैं। योगी जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे आजकल के जो और भी कई प्रकार के बच्चे हैं, जो हमारे कुछ ऐसी जिदें करते हैं जिन्हें पूरा नहीं किया जा सकता, जो कि बहुत ही या तो कठिन होती है या उनके लिए ही बहुत अच्छी नहीं होती है, तो ऐसे माता पिताओं के लिए या ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं?
2: एक बार और बोलेंगे भैया।
1: जी योगी जी, जैसे कि आजकल कितने अलग अलग प्रकार की जिद कर रहे हैं बच्चे, और बहुत सारी ऐसी जिदें होती हैं जो उनकी उम्र के हिसाब से ठीक नहीं होती या उसे पूरा नहीं किया जा सकता, तो उसे आप किस प्रकार से समझाना चाहेंगे?
2: अब यही है भैया, थोड़ा सा वैकल्पिक व्यवस्था भी मतलब देखना पड़ेगा, जैसे बच्चों को थोड़ा टाइम भी देना पड़ेगा, खेल कूद है या थोड़ा बहुत घुमाना फिराना है, तो उन लोगों का ध्यान थोड़ा सा बांटना पड़ेगा जो परमानेंट जैसे एक जगह एक स्क्रीन में टाइम व्यतीत कर रहे हैं, तो उसके लिए मतलब कुछ अलग खेल कूद वगैरह से ध्यान मतलब लगाना होगा।
1: जी योगेश जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात बताई कि किस प्रकार से हमारे जो माता पिता हैं, अगर वो अपना थोड़ा सा वक्त अपने बच्चों को दें तो वो उनकी जो स्क्रीन टाइम, मोबाइल और उनकी जो अलग अलग जिदें हैं उनसे दूरी बना पाएंगे।
0: योगेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और बड़ा ही अच्छा लगा आपसे बात करके। आशा है आपसे फिर बातचीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष, बड़ा अच्छा लगा योगेश जी से बात करके, और जैसे इन्होंने कहा कि स्क्रीन टाइम की इन्होंने बात की, आज के डिजिटल युग में बच्चों की सबसे बड़ी जिद मोबाइल, टीवी और ऑनलाइन गेम्स को लेकर होती है। आशुतोष, एक आधुनिक अभिभावक के दौर पर तकनीक पर पूरी तरह पाबंदी लगाना व्यवहारिक नहीं है, बल्कि उसकी उपयोग की एक निश्चित और स्वस्थ समय सीमा तय करना ही असली समझदारी है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा अंकिता। तकनीक के साथ साथ बच्चों को मैदानी खेल, किताबें पढ़ने और रचनात्मक गतिविधियों के लिए प्रेरित करना जरूरी है। जब हम स्क्रीन टाइम का सही और मजेदार विकल्प देते हैं, जैसा कि हमारे श्रोता योगेश जी ने भी बताया, तो बच्चा बिना जिद किए अपनी ऊर्जा को सही और सकारात्मक दिशा में लगाना सीख जाता है। इसी के साथ श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आइए बात करते हैं हमारे अगले श्रोता से। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन के कार्यक्रम युवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन और कहां से बोल रहे हैं?
4: जी नमस्कार, मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
3: राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप?
4: जी बढ़िया है, और हमारे यहाँ बारिश हो रही है।
3: अरे वाह राकेश जी, तो बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे मौसम सुहावना होता जा रहा है, और जो गर्मी जी थी जी, वो भी थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। बहुत अच्छा मौसम है। राकेश जी, आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो है बच्चों के बारे में, और बच्चे जो आजकल इतनी जिद करने लगे हैं उनके बारे में। राकेश जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे आजकल के जो बच्चे होते हैं और वो कई प्रकार के अलग अलग जिद करते हैं, तो आपके अपने या आपके आसपास जो बच्चे हैं वो किस प्रकार की जिद करते हैं और उनसे आप कैसे डील करते हैं?
4: जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे घर में भी बच्चे हैं। मेरे घर में एक छोटी बीवी है 5-6 साल की।
3: जी,
4: तो ये जो बच्चे जो जिद करते हैं, बच्चे सिर्फ अक्सर दो चीजों की जिद करते हैं। लेकिन पहले जमाने की हम बच्चे थे, तो हम पहले कई चीजों की जिद करते हैं, हमारे को खिलौना चाहिए, ये चाहिए। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं, दो चीजों की जिद करते, या जंक फूड हो गया, या मोबाइल फोन की जिद करते कि हमारे पास मोबाइल फोन चाहिए, अगर आप मोबाइल फोन देंगे तब हम खाना नहीं खाएंगे। लेकिन ये जो जिद है ये बच्चे करते हैं, तो उन बच्चों को बड़ी मुश्किल से हैंडल करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम जितना भी, अगर आज की डेट में ऐसा भी है, बच्चे अगर डांटते थे तो पहले बच्चे डरते थे, लेकिन आज जितना मारेंगे उतना ही क्या बोलते, बच्चे चुप नहीं होते। लेकिन बड़ी दिक्कत से जो है सामना करना पड़ता है बच्चों को, क्या बोलते हैंडल करने का।
5: बिल्कुल सही कहा आपने राकेश जी, के डांट नहीं सकते आप, प्यार से ही समझाना पड़ता है। तो आप उन्हें कैसे समझाते हैं? वो सुन लेते हैं एक बार में, या फिर आप उन्हें बार बार बार बार समझाते हैं?
4: जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बार बच्चों को प्यार से समझाने से

0: सुनते नहीं है, लेकिन बड़ी मुश्किल से समझाना पड़ता है। कई बार बच्चों को ये समझाए कि हम आपको आप हमारी बात नहीं मानोगे तो ठीक है, तो हम आपको छोड़ के जा रहे हैं, तो फिर रहना अकेला, फिर आपको ले ले जाने पर जाएंगे तो तुम्हारे को बेचेंगे इधर करके ऐसे करके, फिर बच्चों को समझाना पड़ता है कि जब हम मानोगे चलो ठीक है, बोलो आज पर बोलो तुम हमारी बेटी नहीं है, हमारा बेटा नहीं है, आप बेटी नहीं है, आज पर हम कभी बात करेंगे।
1: बच्चों को कई तरीके से समझाना बहुत जरूरी होता है राकेश जी, बिल्कुल सही कहा आपने।
2: इसी के साथ राकेश जी, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, जैसा कि आपने हमें बताया कि आप भी जब अपने बचपन में थे, छोटे थे, तो अलग अलग प्रकार की जिद किया करते थे, तो कोई ऐसी जिद आपने कभी की हो और आपके माता पिता ने उसको किसी प्रकार से पूरा किया हो, तो आप हमें हमारे साथ बैठिए।
0: जी जी जी, तो मेरे जिद थी जो बचपन में जो 50-60 रुपए की जो बंदूक आती थी सल वाली,
2: जी
0: सल, तो मैं उसकी जिद किया करता था कि मुझे बंदूक चाहिए। कई बार फादर किसी कारणवश नहीं लाते तो फिर मैं क्या बोलते बड़ी जिद करता था कि मुझे ये चीज नहीं लाई, मुझे ये चीज नहीं लाई, और क्या बोलते मुझे ये चीज चाहिए सब क्या बोलते, तो फिर मम्मी समझती कि जब अभी बस वो कोई प्रॉब्लम थी इस कारण बस न, पर दूसरी बार पक्का लाएंगे, तो फिर पहले हम मान जाते थे। लेकिन आज कल के बच्चे अगर हम बोलेंगे कि मैं आज कान बनती आपको ले नहीं ला पाए, फिर बच्चे क्या करते तो फिर रोना शुरू कर लेते, लेकिन पहले हम बड़ी मुश्किल थोड़ी मुश्किल हो जाती थी, फिर बच्चे मान नहीं जाते थे पहले आखिरकार।
2: जी राकेश जी, आपने बहुत ही मजेदार किस्सा हमें सुनाया और आकाशवाणी उज्जैन में फोन लगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: वाह, बड़ा अच्छा लगा आशुतोष इनसे बात करके, और जिद की जैसे कि मैं बात करी, इन्होंने भी बात की कि हम डांट फटकार के नहीं समझा सकते, बहुत सारी तरीक़ों से हमको समझाना पड़ता है। और मॉडर्न पेरेंटिंग में डिलेड ग्रेटिफिकेशन यानी किसी इच्छा के लिए थोड़ा इंतज़ार करने की आदत डालना बेहद आवश्यक है आशुतोष। अगर बच्चे की हर मांग तुरंत पूरी कर दी जाए तो उसमें सब्र करने का धैर्य खत्म हो जाता है, जब किसी खिलौने या गैजेट के लिए उसे थोड़ा इंतज़ार कराया जाए तो उसके मन में ये वस्तु की थोड़ी बढ़ जाती है।
2: बिल्कुल सही कहा अंकिता, सब्र करने की यह प्रक्रिया बच्चों में भावनात्मक मजबूती लाती है, वे यह सिखाती है कि जीवन में हर इच्छा तुरंत पूरी नहीं होती, यह आदत उन्हें भविष्य की बड़ी चुनौतियों, असफलताओं और कठिन परिस्थितियों का डरकर सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार करती है। इसी के साथ आइए बात करते हैं हमारे अगले कॉलर से। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन के कार्यक्रम युवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप कौन और कहाँ से बोल रहे हैं?
3: हृदय से धन्यवाद सर, मैं गुजरात से धीरज रबारी आपका नियमित श्रोता बात कर रहा हूँ।
2: धीरज जी कैसे हैं आप?
3: हम अच्छे और आकाशवाणी उज्जैन परिवार और युवाणी की टीम सब कुशल होगी।
2: जी धीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धीरज जी, आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो है बच्चों के बारे में। हम बात कर रहे हैं कि बच्चे जो आजकल अलग अलग प्रकार की जिद करते हैं और कई बार वो जिद पूरी कर पाते हैं, हम लोग कई बार नहीं कर पाते हैं, तो क्या आपके आसपास या आपके अपने जो बच्चे हैं वो ऐसी कोई जिद कर पाते हैं जो दिन भर में आप कभी पूरी कर पाते हैं कभी नहीं कर पाते हैं?
3: मौका ही नहीं मिलता अभी बच्चों को जीत रखने का, क्योंकि सुबह उठ के उसको स्कूल बस में बिठा दो, वहाँ चले जाएंगे केजी या सीनियर केजी या जूनियर केजी, फिर वहाँ के आगे उसको लेसन करवा दो तो बेचारा जीत कहाँ करेगा। और लेकिन करते हैं, कई बच्चे करते हैं, जैसे उनको कोई खिलौना है, कोई यानी कोई गेम है, ऐसी यानी कई डिमांड करते, तो उनके लिए हमें हो सके तो जो हमारे अगले श्रोता जो योगी जी ने बताया कि उनको थोड़ा पर्याय में खेल कूद ऐसा उनको वातावरण खड़ा करना चाहिए, तो ये अपनी जिद में थोड़ा नरम पड़े और अपना जो मगज है माइंड वो यानी डाइवर्ट हो और वो बच्चा अपनी जिद यानी जिद को वो यानी शांत करे और दूसरे खेल कूद में उसमें उसका दिमाग चला जाए सर।
2: जी जी धीरज जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। और धीरज जी, हम आपके से ये भी जानना चाहते हैं कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके बच्चों ने कोई ऐसी चीज आपसे मांगी हो, ऐसी बहुत ही मासूम सी चीज हो जिसको देखकर आपको ऐसा बहुत प्यार आया हो, बहुत लाड़ आया हो, पर वो किसी कारण से पूरी नहीं की जा सकती हो, अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपने उन्हें कैसे समझाया?
3: कई ऐसे सर वाक्य हुए हैं, कई बार उनकी जिद पूरी कर पाए, कई बार नहीं पूरी कर पाए, क्योंकि कई ऐसी बातें होती है जो पूरी नहीं हो सकती जिद, लेकिन बच्चे कई बार समझ जाते हैं, तो बच्चे को अगर डाइवर्ट करना है तो उसको थोड़ा बहुत दूसरा प्रलोभन देते हैं तो आप वो बच्चे का मन डाइवर्ट हो जाता है, और कभी कभार बच्चों का मन डाइवर्ट नहीं होता, वो अपने मार्ग पर अड़े रहते हैं, तो अड़े रहने के बाद उनको कभी कभार

0: आया कि जो बच्चे हैं आजकल उस प्रकार की फरमाइशें नहीं कर पाते हैं, उस प्रकार की जिद नहीं कर पाते हैं, वो सुबह उठते ही स्कूल चले जाते हैं, उनका अपना स्कूल में व्यस्तता होती है, लेसन होता है, तो ये अपने आप में आज एक बहुत ही गंभीर समस्या भी बनता जा रहा है कि बच्चों को खेलने कूदने का या अपने लिए समय बिताने का समय नहीं मिल रहा है। छोटे से बच्चों को भी आजकल स्कूल में काफ़ी प्रेशर मिल रहा है, तो इस पर आपका क्या विचार है, आप क्या कहना चाहते हैं?
1: सर, ये बहुत गंभीर विषय है और ये गंभीर विषय में एक अकेली सरकार नहीं इसका हल निकाल पाएगी। इसमें हमारे जो माँ बाप है, उसके जो वड़ील है, उनको सोचना पड़ेगा। बच्चों के लिए स्कूल यानी केजी, सीनियर केजी, जूनियर केजी स्कूल है यानी हाई स्कूल है, वहाँ जाने से पहले उनको कई ऐसा समय है, उनको अलग यानी खेलकूद में भी उनको समय देना चाहिए, अपने दादा दादी के पास उसको बैठने का समय देना चाहिए, अपने माँ बाप को भी उनको समय निकल के उसके उसकी बातें सुननी पड़ेगी। ये कई कई ऐसी बातें हैं तो बच्चे को उसके डेवलप में, उसके विकास में बहुत काम आती है। सर, हम अकेले उसको सीनियर केजी, जूनियर केजी में भेज देते, फिर बाद में उसको ट्यूशन कराते, तो उसका पूरा दिन बेचारे वो कंटाल जाता है। तो उसको कंटाल नहीं जाए ऐसी प्रवृत्ति में उसको उसको रुचि करने की हमें आदत डालनी पड़ेगी और इसके लिए हमें समय निकालना पड़ेगा। सर
0: जी, धीरज जी, आपने बहुत बहुत अच्छी बात हमें बताई। आकाशवाणी उज्जैन में फोन लगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बड़ी अच्छी बात कही धीरज जी ने और बिल्कुल सही बात है ये जो प्रेशर की हम बात कर रहे हैं। बच्चे छोटी उम्र से ही उनको स्कूल में प्रेशर दिया जाता है। आजकल बच्चे अक्सर अपने दोस्तों के पास मौजूद महंगी चीज़ों को देखकर वैसा ही सामान पाने की भी जिद करने लगते हैं। ऐसे में माता पिता को बच्चों को ये समझाना चाहिए कि हर परिवार की स्थिति और प्राथमिकताएं अलग होती हैं और दूसरों से अंधी तुलना करना बिल्कुल सही नहीं होता है।
0: बहुत बहुत अच्छी बात कही अंकिता। जब हम बच्चों में यह आत्मविश्वास जगाते हैं कि उनकी अपनी एक विशिष्ट पहचान है और उन्हें दूसरों की नकल करने की आवश्यकता नहीं है, तो वे हीन भावना से मुक्त होते हैं और जीवन में सादगी व स्वाभिमान का असली महत्व सीखते हैं। इसी के साथ आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: आइए श्रोताओं, जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन के कार्यक्रम युवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन और कहां से बोल रहे हैं?
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूं, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: प्रेम सिंह जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा हूं, और आपको नमस्ते।
0: नमस्ते नमस्ते प्रेम सिंह जी, कैसा है मौसम आपके यहाँ आज?
1: मौसम काफी अच्छा है, और मैं तो आज उज्जैन आया था और आपसे मिलने का चाहता था, लेकिन थोड़ा सा काम ज्यादा था तो वापस करा गया।
0: प्रेम सिंह जी, हम मिल ही लिए हैं लगभग हमारे रेडियो फोन के जरिए।
1: जी जी, मोबाइल ऐप पे कार्यक्रम सुनते तो मिल ही जाते हैं, लेकिन जब सामने मिलकर बात होती है ना सर, तो और भी अच्छा लगता है।
0: बहुत बहुत अच्छी बात बताई प्रेम सिंह जी।
1: आपको बताऊं, जब नेक्स्ट टाइम आऊंगा ना, तो जरूर आऊंगा आकाशवाणी केंद्र।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं हैं। प्रेम सिंह जी, इसी के साथ हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसा कि आज का हमारा विषय है, हम बात कर रहे हैं बच्चों के बारे में, बच्चों की जिद के बारे में। और आप हमें कई बार बता भी चुके हैं कि आपके जो नन्हे उस्ताद हैं कृष्णा जी, वो भी काफी जिद करते होंगे आपसे कभी कभी कुछ चीजों की। तो प्रेम सिंह जी, किस प्रकार की जिद करते हैं वो आज के समय में आपसे, और आप कैसे उसे पूरी कर पाते हैं?
1: जी बताना चाहेंगे, इस मामले में तो मैं काफी लकी रहा हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे जिद नहीं करते हैं, कि एक दो बार बोल देते हैं वो कि पापा हमें इस चीज की जरूरत है तो आप दिला दीजिए, या फिर मुझे नहीं बोलते, उसके बाद में उसको मम्मी को बोल देते हैं। और ऐसे मतलब आपको बताऊं, अभी पिछले हफ्ते उन्होंने बोला कि वो अभी 9th में पढ़ाई कर रहा है, और उसे स्कूटी की जरूरत थी। यहाँ से हमारा गांव से मतलब 3 किलोमीटर दूर स्कूल है, तो उसने 2-3 बार बोला कि पापा हमें एक स्कूटी चाहिए ताकि हम अकेले जाके वापस घर आ जाए, आपका भी काम में थोड़ा व्यवधान नहीं आएगा और हम सीख भी जाएंगे। तो वो पहले से चलाना तो आता था उसे, गाड़ी बिंदिया और दोनों को आता है, और उन्होंने कहा कि चलो, मैंने भी कहा कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, वो बोल रहे हैं कि आना जाना वो खुद कर लेंगे, तो फिर मैंने उनको कल लाके स्कूटी भी दिलाई।
0: अरे वाह प्रेम सिंह जी, बहुत
2: प्रेम जी, आपने जैसे कहा कि आप लकी हैं, लेकिन आपके बच्चे भी बहुत लकी हैं, क्योंकि आपकी इसी इतनी अच्छी पेरेंटिंग रही है कि वो जिद नहीं करते हैं। आप जब छोटे थे तो
1: हाँ, एक बात है, मैं बताऊँ ना, मैं तो काफी जिद्दीला इंसान था उस समय पे, जब बचपन मेरा गुजरा ना, कोई भी चीज हो किसी के भी पास में, अगर मैं देख लेता था तो वो चीज कैसे भी करके अपनी मम्मी पापा से जीत करके पूरी करवाता ही करवाता था।
0: जी प्रेम सिंह जी, पर कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे मम्मी पापा वो चीज जो हम मांग रहे हैं वो नहीं दिला पाते हैं, पर हम किसी प्रकार से अपने मन को समझा लेते हैं। बाल मन को समझाना वैसे आसान नहीं होता है। तो प्रेम सिंह जी, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज की जिद की हो और वो पूरी नहीं कर पाए हो, पर जिस प्रकार से आपका जो बालक है कृष्णा वो अपने आप को समझा लेता है, आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो?
1: हाँ जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे। एक बार की बात है, मैं उस समय से शायद 9th या ऐसे छोटी क्लास में ही था, कंफर्म तो याद नहीं है, लेकिन मुझे एक ऐसा बैग पसंद आया था उस समय स्कूल का, उसकी काफी प्राइस थी। मेरे पापा उस समय पे मतलब दिला तो सकते थे, लेकिन घर की परिस्थितियां कुछ ठीक नहीं थी। मुझे वो बैग काफी पसंद आया, मुझे खरीदना था, पापा को बोला मुझे यही बैग खरीदना है। उन्होंने कहा कि इस साल तुम इस बैग से काम चला लो, अगले साल तुम्हें दिला दूंगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, इतना जिद्दीला इंसान था उस समय पे, मुझे काफी मतलब गुस्सा भी आता और हंसी भी आती है कि मैंने अपने मम्मी पापा को इतनी जिद क्यों करी किसी चीज के लिए। फिर उन्होंने मतलब समझाया मुझे, फिर भी मैं नहीं माना, फिर उन्होंने कैसे भी करके फिर मुझे वो बैग दिलाया।
0: जी प्रेम सिंह जी, बहुत ही मजेदार किस्सा आपने सुनाया।
1: और हाँ, एक बात और, एक और मैं आपको अपनी जिद के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरी मम्मी उस समय से मामा जी के यहाँ जाने वाली थी, और मुझे भी उनके साथ में जाना था, बट स्कूल की छुट्टी भी नहीं मिल रही थी, और मैं तो इतना रोया उस समय, इतना रोया सर, आपको क्या बताऊं, मुझे वो अभी भी अच्छी तरह से याद है, मतलब नीचे गिर के रोने लगा मैं। लेकिन फिर भी मुझे स्कूल की वजह से मुझे नहीं ले जाना पड़ा, लेकिन फिर मेरी मम्मी भी उसके समय पे ऐसे वहां पे नहीं गए, वो खुद घर पे रुक गए।
0: जी जी प्रेम सिंह जी, आपने बहुत बहुत ही मजेदार किस्सा सुनाया। ये वाकई एक बाल मन के लिए बहुत ही बड़ी बात हो जाती है कि जब हमारा स्कूल या किसी भी ऐसी वजह से हम अपनी मम्मी के साथ कहीं ना जा पाए, ये वाकई छोटे बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है।
1: उनको जाना जरूरी था, लेकिन मैं जाना चाहता था उनके साथ में, मुझे स्कूल की छुट्टी नहीं मिल रही थी, फिर उन्होंने मेरे खातिर जाना कैंसिल किया। मुझे उस बात का आज भी बताओ अफसोस होता है कि मैंने इतनी जिद क्यों करी।
2: जी लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है प्रेम जी के जो उस जिद हुई उसके कारण आपको बड़ी बहुत सारी आपकी मेमोरीज बन गई, और अब आपको वो सब चीजें याद आती हैं। और
1: जी
2: जी प्रेम जी, और बहुत बहुत धन्यवाद
0: प्रेम सिंह जी, हम आपसे एक अंतिम सवाल ये करना चाहेंगे कि हमारे जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं, जितने युवा हमें सुन रहे हैं, जितने माता पिता हमें सुन रहे हैं, एक बहुत ही बड़ा सवाल आज के समय में चल रहा है कि इच्छा और जिद के बीच का फर्क। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें कई बार ये बात समझ नहीं आती है कि क्या जरूरी है और क्या बस हम ऐसे ही दोस्तों को देख कर मांग लेते हैं कि हमें तो ये चाहिए। तो आप हमारे श्रोताओं को इस विषय में कोई सुझाव, कोई संदेश देना चाहें।
1: जी बिल्कुल बताना चाहेंगे, जैसे कि हमारे पास में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो यूज के लिए मतलब नहीं होती है, पड़ी रहती है और बच्चे ऐसे जिद करते रहते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, दूसरे बच्चे के पास में ये है हमें भी चाहिए। तो बच्चों को समझाना चाहिए कि बेटा ये उसके इस काम की ये चीज इसलिए उसने ये खरीदी है, हमारी ये चीज अगर हम खरीदेंगे तो हमारे किस काम की नहीं रहेगी, पड़ी रहेगी। इस तरह से अगर बच्चे को समझाया जाए तो बच्चा समझ भी जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल प्रेम सिंह जी, आपने बहुत बहुत अच्छी बात बताई। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आकाशवाणी उज्जैन में फोन लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी थैंक यू सो मच। ओके, जय श्री महाकाल।
0: जय श्री महाकाल।
2: बड़ा अच्छा लगा आशुतोष प्रेम जी से बात करके। और जैसे प्रेम जी ने भी कहा कि सिर्फ देखने के लिए हम चीज़ें ना लें, अगर ज़रूरत हो तभी लें। और जब बच्चा किसी बात पर जिद करके रोता है या गुस्सा दिखाता है तो उस समय पर उस पर चिल्लाना स्थिति को और बिगाड़ देता है। आशुतोष, मॉडर्न पेरेंटिंग कहती है कि पहले बच्चे को शांत होने दें, उसकी भावनाओं को समझें और फिर शांत माहौल में बातचीत करके व्यवहारिक समाधान निकालें।
0: बिल्कुल सही बात कही आपने अंकिता। बच्चे के गुस्से के पीछे कोई ना कोई अनसुलझी भावना या थकान हो सकती है। जब माता पिता संयम रखकर उसकी बात सुनते हैं तो बच्चा खुद को सुरक्षित महसूस करता है और उसमें अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करने का हुनर आता है। इसी के साथ आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: आइए श्रोताओं, बात करते हैं हमारे अगले कॉलर से। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन के कार्यक्रम युवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन और कहां से बोल रहे हैं?
1: हेलो सर, नमस्ते, गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग, अपना शुभ नाम बताइए और आप कहां से बोल रहे हैं?
1: जी सर, मैं पिंकी बात कर रही हूँ, जगदीशपुर शिवगर दीवानों के शहर लाइब्रेरी से।
0: बिल्कुल पिंकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप?
1: हम बहुत अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं और आपकी पूरी टीम कैसी है?
0: बहुत अच्छी है पिंकी जी, आपकी शुभकामनाएं हमारे साथ हैं। पिंकी जी, आप कॉलेज में हैं, आप पढ़ती हैं?
1: नहीं सर, हमने इंटर फाइनल किया है, इसके बाद सर घर पे रहते हैं।
0: ठीक है पिंकी जी, जैसा कि आज का हमारा विषय है, हम बात कर रहे हैं बच्चों के बारे में और बच्चों की जिदों के बारे में। तो पिंकी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके घर में, आपके परिचित में, आपके आसपास में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो किस प्रकार की जिद करते हैं और आप उनका सामना किस प्रकार से करती हैं?
1: जी सर, वैसे तो सर मैं बताना चाहूंगी, मेरे घर में मैं ही सबसे छोटी हूँ, और लेकिन मेरी दीदी की एक छोटी सी बिटिया है
0: जी।
1: तो सर वो तो काफी अच्छी लड़की।

0: है, लेकिन कभी कभी ऐसी जिद करती है कि सर हम तो परेशान हो जाते हैं, उसको संभाल ही नहीं पाते। लेकिन जब उसको प्यार से समझाते हैं कि बेटा ऐसा करना गलत बात है, इतनी जिद नहीं करते, तो सर वो मान जाती है।
1: जी पिंकी जी, और पिंकी जी साहब, आपने कहा कि घर में आप सबसे छोटी हैं, तो जब घर में कोई छोटा बच्चा रहता है तो उसकी सारी जिदें पूरी की जाती है, तो ऐसा है, आपकी सारी बातें मानी जाती है घर में?
0: देखिए मैम, पहले तो जब छोटे थे तब तो मुझे पता नहीं, लेकिन जब से थोड़ा सा बड़े हो गए तो थोड़ा सा समझदार हो गए, क्योंकि जिद करना कोई अच्छी बात नहीं होती मैम। जो चीज अच्छी लगती है वो हम अपने भाई से बोलते हैं, तो हमारे भाई हमें दिला देते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल पिंकी जी, बड़ी अच्छी बात कही
0: और
1: आपने।
0: मैम मैं ये कहना चाहूंगी कि बच्चों को तो मैम फोन से बिल्कुल दूर रखना चाहिए। और मैम बच्चों को जैसे कविता है, कहानियां हैं, जैसे पुराने समय में हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग लोग होते थे तो बच्चों को कहानियां वगैरह सुनाते थे, और मैम अपने बाग बगीचे में घूमने के लिए ले जाया जाता था, तो मैम वैसे करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चों को देखो फोन में लगे रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए।
1: जी पिंकी जी, आपने बहुत बहुत अच्छी बात हमें बताई, ये वाकई एक सीख की तरह हमारे लिए काम करेगी, हमारे श्रोताओं के लिए काम करेगी। और इसी
0: जी, क्योंकि
1: सीख
0: सर जो
1: जी
0: लोग शहर में रहते हैं तो बच्चे गांव में आते हैं ना तो बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं कि मुझे गांव से शहर नहीं जाना, मुझे गांव में ही रहना है।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है पिंकी जी। और इसी के साथ हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे आप भी युवा हैं और इस उम्र में हम अक्सर जो पैसों का जो लेन देन होता है और जो पैसों की बचत होती है, सेविंग्स जो होती है, उसके लिए थोड़े से समझदार बनने की दिशा में होते हैं, तो जैसे कि हमारी जो जिदें होती हैं कई बार हम खुद भी पूरी कर सकते हैं अगर हम सही तरीके से पैसे बचाएं। तो आप हमारे सभी सुनने वाले युवा श्रोताओं को इस विषय पर क्या संदेश देना चाहती हैं?
0: सर मैं तो यही कहना चाहूंगी, मैं अगर सर मतलब जैसे मेरे भाई मुझे पैसे देते हैं किसी काम के लिए, या फिर बोलते हैं कि आप अपने पास रख लो, जब आपको कोई जरूरत लगे तो आप मतलब अपने जरूरत की वस्तुएं खरीद लेना, तो सर
1: जी
0: हम अपने हिसाब से ही और अपने बजट से ही मतलब बजट के हिसाब से ही खरीदते हैं, कि मतलब हमारा बजट और हमारी जो चीज है जिसे हम खरीदना चाहते हैं वो हमारे हिसाब से ही हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल पिंकी जी, आपने बहुत अच्छी बात हमें बताई, आपसे जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। आकाशवाणी उज्जैन में
0: जी
1: फोन
0: सर,
1: लगाने
0: और
1: जी
0: आपसे बात करके हमें भी बहुत अच्छा लगा सर, मैं आपके चैनल की नई श्रोता हूँ, आज मेरी दूसरी बार कॉल लगी है सर। जी
1: बहुत अच्छी बात है पिंकी जी, उम्मीद है आपसे आगे भी इसी प्रकार से बात होती रहेगी। आकाशवाणी
0: सर,
1: उज्जैन में
0: मेरी भी उम्मीद है कि आकाशवाणी उज्जैन से ऐसे ही प्यार मिलता रहेगा सर। सर
1: बिल्कुल बिल्कुल पिंकी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, फोन लगाने के लिए बहुत
0: हमें भी
1: बहुत
0: बहुत
1: धन्यवाद।
0: अच्छा लगा, आपको भी थैंक यू और दीदी को भी थैंक यू।
1: थैंक यू पिंकी जी, बड़ा अच्छा लगा पिंकी जी से बात करके। और जैसे हमने कि फाइनेंशियल लिटरेसी की हम बात करें बच्चों में, तो बच्चों को कम उम्र से ही पैसों की कद्र और बचत का महत्व सिखाना एक बहुत बहुत ही दूरदर्शी पेरेंटिंग स्टेप है आशुतोष। उन्हें एक पिगी बैग देकर या अपनी पॉकेट मनी का हिस्सा रखने को कहकर हम उनमें वित्तीय अनुशासन और समझदारी का बीज बो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने अंकिता, जब बच्चे खुद पैसे जोड़कर अपनी किसी छोटी इच्छा को पूरा करते हैं तो उन्हें पैसों के पीछे की मेहनत का एहसास होता है। यह आदत उन्हें भविष्य में फिजूल खर्ची से बचाती है और एक संतुलित व आत्मनिर्भर नागरिक बनाती है। इसी के साथ श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: आइए श्रोताओं, बात करते हैं हमारे अगले कॉलर से। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन के कार्यक्रम युवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन और कहां से बोल रहे हैं?
1: जी, मैं स्वाति तिवारी बात कर रही हूँ उज्जैन से।
0: स्वाति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम युवाणी में। कैसी हैं आप?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं?
0: बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे हैं स्वाति जी। स्वाति जी, आज हम बात कर रहे हैं बच्चों के बारे में, और जो बच्चे आजकल बहुत जिद करने लग गए हैं, जो छोटी छोटी सी बातों के लिए अड़ जाते हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या आप, आपके
1: जी,
0: आसपास कोई ऐसे बच्चे हों जिनसे आपको रोज डील करना पड़ता हो, आप कैसे करते हैं?
1: हाँ, बच्चे आजकल के थोड़े से, मतलब अगर मैं ऐसी बात करूं कि हम जब बच्चे थे तो हम शायद उतनी जिद नहीं करते थे, और पेरेंट्स की मजबूरियों को शायद थोड़ा बहुत समझते थे। लेकिन आजकल के बच्चे, मुझे लगता है कि जिनको हमने वो जेंजी वाला नाम दे दिया है
0: जी।
1: तो वो काफी जिद करते हैं, और कई जिदें उनकी मतलब ऐसा बोलना चाहिए कि नाजायज होती है, कि भाई ये अब हम नहीं कर सकते पूरी या कुछ ऐसा है। तो उसमें थोड़ा सा पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए, और उन्हें डांट के या ऐसे कुछ करके चुप कराने के बजाय थोड़ा प्यार से अगर हम उनको हैंडल करेंगे तो हर बच्चा इतना मासूम होता है कि अगर माँ बाप चाहे ना तो उसे कैसे भी घुमा फिरा के अपने उस पे ले ला सकते हैं। तो
0: जी स्वाति
1: जी, लगता कि
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई।
1: और हर, मतलब मुझे ये लगता है कि हर माँ जो है और अपने बच्चे को बहुत अच्छे से जानती है, तो अगर बच्चा किसी भी चीज की जिद कर रहा है तो वो उस एट अ मोमेंट अगर हम उसे उससे समझाने की कोशिश करेंगे तो शायद वो नहीं समझेगा, लेकिन हम उसको थोड़ा सा टाल दें कि हाँ बेटा चल ये कल करते हैं, अपन कल करेंगे, और कल अगर हम उसे वो बात फिर वापस से समझाएं कि क्या ये वाकई जरूरी है, तो मुझे लगता है वो बच्चा भी थोड़ी से धीरे से बातों को समझने लगता है। तो हर मदरहुड और बच्चों के बीच में यही बोलना चाहूंगी कि ये कैसा संबंध है जहाँ पे माँ को भी पता है कि उसको अपने बच्चे को कैसे हैंडल करना है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने स्वाति जी, कि हर माँ जानती है कि उसके बच्चे की क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, और उसके लिए क्या सही है और क्या बुरा है, माँ बहुत अच्छे से जानती है। स्वाति जी, कई बार क्या होता है, जैसा आपने बताया कि हम बच्चे को समझा देते हैं, पर कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बच्चे जो आप जब माएँ ना करती हैं तो बच्चे बहुत पोलाइटली उसे ले नहीं पाते हैं। तो ऐसी किसी कंडीशन में आप क्या करती हैं कि उन्हें ना भी कहना है और बच्चे उसे किसी गलत तरीके से भी ना लें?
1: नहीं, वो आती है, वैसे सिचुएशन भी आती है जबकि बिल्कुल बच्चा उस एक जिद पे अड़ी जाता है कि नहीं उसको चाहिए। तो मतलब जैसे मेरे साथ ये हुआ था कि मेरा बेटा जो था वो जैसे कॉलेज में पहुंचा तो उसको एक जिद थी कि मुझे कंप्यूटर चाहिए, तो मैंने कि नॉर्मल सिस्टम ले लो कंप्यूटर का, लेकिन उसको कुछ हाई फाई कंप्यूटर गेमिंग के उससे चाहिए था। तो जो जो मेरा बजट कम था वो उसको वो डबल बजट में मुझे वो बता रहा था, लेकिन फिर उसकी जो मैंने रिक्वायरमेंट को समझा, और फिर एक एज ग्रुप से भी मैटर करते हैं कि वो बहुत छोटा बच्चा किस जिद कर रहा है, कि एक टीनेजर जिद कर रहा है, या एक जो बच्चा आगे अपनी ग्रोथ देख रहा है उस उसके उससे जिद कर रहा है। तो हर जिद जो है वो उसको एक पेरेंट को वो भी एनालिसिस करना पड़ता है कि भाई हाँ ये तेरे फ्यूचर के लिए ही तू जो जिद कर रहा है वो जरूरी भी है, अगर मैं तुझे ये लेके दूंगी तो यू विल प्रूव योर सेल्फ। तो वहां पे फिर मैंने उसकी वो जिद पूरी भी करी आउट ऑफ द वे जाके।
0: जी
1: स्वाति
0: जी,
1: ऐसा भी होता है।
0: बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि कई बार जब हम अपने बच्चों के रिक्वायरमेंट समझ जाते हैं और ये समझ जाते हैं कि वाकई उसे वो चीज चाहिए है और उसी उसे उसकी वो जिद पूरी करने पर उसका ही भला होगा, उसके ही इम्प्रूवमेंट के लिए होगी। इसी के साथ जी
2: स्वाति जी, एक और मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं या बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि अगर हम बच्चों को छोटे छोटे डिसीजंस अगर लेने दें हमारे घर में तो उन्हें आत्मनिर्भर होने में बड़ा फायदा होता है आगे जाकर, तो इस पर आपका क्या कहना है?
1: नहीं, फायदा होता है, मतलब एक्चुअली मैम मुझे आपकी आवाज पूरी अच्छे से आई नहीं, आप प्रश्न रिपीट कर सकते हैं?
2: जी जी स्वाति जी, मैं ऐसा कह रही हूँ कि जो बच्चे होते हैं हमारे घर में अगर वो छोटे छोटे डिसीजंस ले पाए उनके लिए या किसी के भी लिए, तो वो उनके लिए आगे जाकर आत्मनिर्भर होने के लिए उनके काफी फायदा होता है, उन्हें पता होता है कि हाँ डिसीजन मेकर बन सकते हैं आगे जाकर।

0: आपका क्या कहना है?
1: जी हाँ, मतलब ये तो देखिए पेरेंट्स के ऊपर ही निर्भर करता है। और फिर है ना, कई बार कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें कई बार हम आता है कि बच्चे ने जिद करी और हमने उसे वो चीज दिला दी, तो उसकी उसको वैल्यू की, अच्छा मैं मम्मी से मांगूंगा और मुझे मिल जाएगी, तो उन बच्चों के लिए शायद उस चीज की वैल्यू भी कम होती है। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को है ना, उसको वो जो चीज मांग रहा है पहले उसकी इम्पोर्टेंस भी फील करवाओ, और उसे ये पता होना चाहिए कि बेटा तेरी ये जिद थी लेकिन हमने ये तुझे दिलाया, तो अभी आप इसको अच्छे से यूज करोगे इस चीज को, या जो भी जिद है। मतलब अब जिद का तो कोई वो नहीं है, किसी एक छोटे खिलौने की भी जिद हो सकती है, मतलब एक अपनी मर्जी की शादी की भी जिद हो सकती है, बच्चे उस तरह की भी जिद करते हैं जिस एज में अभी मैं हूँ जैसे, तो ये अलग अलग चीजें की जिद होती है, तो उसको भैया टैकल करना ये एक अपना ही माँ बाप की अपनी एक वो है, फील्डिंग है जो उसको करना पड़ेगा।
2: बिल्कुल बिल्कुल स्वाति जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई हमें। और स्वाति जी, आज के जो युवा हैं, जो माता पिता हमें सुन रहे हैं, जो हमारे श्रोता हैं, उन्हें आप इस संदर्भ में क्या संदेश देना चाहेंगी?
1: नहीं, मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि बच्चे बहुत ही मतलब मासूम होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, जिद करते हैं, हमने भी ये बहुत जिद की है, तो जेन्युइन जिदों को पूरा करिए और कोशिश करें कि उन्हें प्रेम से अच्छे से चीजों को समझाएं, और चीज जो भी जिद है उसको उसकी पहले वैल्यू बच्चे से ये होना चाहिए।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: अगर आपको कोई जिद है तो इसके पीछे का क्या व्यू है, क्या तेरी सोच है, क्या आप चाहते हो, तो वो थोड़ा सा अगर हम उसको एक बैठ के एक पेज पे आएंगे तो वो बड़े अच्छे से हो जाएगा।
2: बिल्कुल स्वाति जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आकाशवाणी उज्जैन में फोन लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
1: सर। मेरा
0: बड़ा अच्छा लगा आशुतोष, और आशुतोष समय कितनी तेजी से भागता है ना, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारे आज का स्पेशल फोन इन कार्यक्रम का एक घंटा इतनी जल्दी बीत गया। सच में आज हमारे श्रोताओं ने पेरेंटिंग जैसे संवेदनशील मुद्दे पर जो दिलचस्प और व्यवहारिक बातें साझा की है उससे दिल जीत लिया है ना।
2: बिल्कुल सही कहा अंकिता, आज का कार्यक्रम सचमुच बहुत ही एनर्जेटिक और सीख से भरा था। हमारे श्रोताओं के कॉल्स ने यह साबित कर दिया कि आज के अभिभावक बच्चों को केवल दुलारना नहीं जानते बल्कि उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाना भी बखूबी जानते हैं।
0: बिल्कुल एकदम सही आशुतोष। प्यारे श्रोताओं, बच्चों को अपनी आपकी महंगी चीजों से ज्यादा आपके वक्त, सही मार्गदर्शन और अनुशासन की जरूरत होती है। आज जितने भी श्रोता हमसे लाइव जुड़े और जो लाइन्स व्यस्त होने के कारण बात नहीं कर पाए, आप सभी की इस एक्टिव सहभागिता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अब समय आ गया है आप सभी से विदा लेने का। सुनते रहिए आपका पसंदीदा रेडियो स्टेशन आकाशवाणी उज्जैन और हमारा यह चुलबुला मंच युवाणी, जो कि फिर लौटेगा कुछ और नई तरंगों, मजेदार विषयों और उमंगों के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने बच्चों के साथ प्यार भरा संतुलन बनाए रखिए। हम थे आपके साथ आपके रेडियो मित्र आशुतोष
0: और अंकिता, लेते हैं आपसे विदा।
2: नमस्कार।

श्रोताओं, ये था लाइव फोन इन प्रोग्राम युववाणी FM 102.5 MHz, प्रसार भारती के अधिकृत मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम पर यह है आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र। शाम के 6 बजे हैं, आइए शामिल होते हैं भजनों की श्रृंखला के कार्यक्रम भजन संध्या में। श्रोताओं, श्रावण माह या सावन का महीना शुरू हो गया है। चारों तरफ खासकर भगवान शिव, महादेव, महाकाल के शहरों में ये धूमधाम से मनाया जाता है। इन पावन पवित्र दिनों में ईश्वर की भक्ति जितनी की जाए उतनी कम है। इन्हीं पावन दिनों के आज के इस भजन संध्या के कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत कर रही हूँ मैं, प्रणाली। स्वीकारें नमस्कार और प्रणाम। शुरुआत में सुनिए ये मधुर भजन।

श्रोताओं, ज़िंदगी में आने वाले हर प्रकार के हालात ही हमें निर्भीक होने का मौका देते हैं और ये समझाते हैं कि वो ईश्वरीय परम शक्ति हमेशा हमारा ख्याल रखेगी, हमारी रक्षा करेगी, प्रभु की दिव्य शक्ति। आइए अब सुनवाते हैं आपको एक और भजन।

0: श्रोताओं, भजन संध्या के इस कार्यक्रम में अभी आपको और भी गीत सुनवाएंगे इस संदेश के बाद।
1: पानी की हर बूंद है अनमोल,
2: बहने ना दें इसे बेमोल।
1: आओ मिलकर सच कर दें हम धरती माँ का सपना।
3: चुचू चिड़िया बड़ी उदास, कैसे बुझाए अपनी प्यास। बहुत कम है कुएं में पानी, तालाबों की भी यही कहानी। धरती का है सूखा पेट, हैंड पंप भी उगले रेत। चूचू रोए नदी किनारे, इसका पानी कहाँ गया रे। बादल आते खाली हाथ और कह जाते पते की बात। हरे भरे मत काटो जंगल, जंगल ही तो लाता मंगल। पेड़ लगाओ तुम सब मिलकर, बरसेगा फिर पानी जमकर। नदी ताल में होगा पानी, फुर्र होगी चूचू की परेशानी। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
4: प्रदूषित पानी पीने से हम हो सकते हैं बीमार,
5: फैल सकती है महामारी, खतरे में पड़ सकती है जिंदगी,
4: छीन सकती है खुशियाँ हमारी। इसलिए पानी के स्रोत को रखें हम साफ,
5: फैलाएं नहीं गंदगी उसके आसपास।
4: पानी को रखें हम हमेशा ढककर,
5: और उसको पिएं छान कर उबाल कर।
4: पीने के पानी में हम हाथ नहीं डालें,
5: लंबी डंडी वाले बर्तन से पानी निकालें।
4: आओ मिलकर करें प्रयास,
5: शुद्ध पानी हो सबके पास।
0: जन संदेश के बाद में आपका फिर एक बार पुनः स्वागत है कार्यक्रम भजन संध्या में, जो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन से। श्रोताओं, गिव एंड टेक रूल हमें सिखाता है कि जब हम किसी को कुछ देते हैं, शेयर करते हैं, तो हमें भी उनसे कुछ मिलता है। किसी के साथ कुछ बांटने से हम भी पूर्ण होते हैं। दूसरों के प्रति सद्भाव, प्रेम भाव रखने, उनकी मदद करने से हम अपने आप को एक सकारात्मक बदलाव

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भजन संध्या। दोस्तों जीवन में जब हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं और लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते तो एक रोमांचक विकल्प सदैव हमारे सामने होता है कि इसे छोड़ दें या फिर से प्रयत्न करें। तब हमें बार बार प्रयास करना चाहिए, तब तक जब तक हम अपनी मंजिल पर पहुंच नहीं जाते। ईश्वर को भी ऐसे प्रयास करने वाले और मेहनती सच्चे भक्त ही प्रिय होते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं अगला भजन।

0: चले रास्ता।
1: सड़क पर पैदल चलते समय रखें हम कुछ बातों का ध्यान।
2: हमेशा सड़क के किनारे बनी पटरियों पर ही चलें।
1: सड़क पार करने के पूर्व दाएं और बाएं अवश्य देख लें।
2: तेज गति से आ रहे वाहन के सामने से निकलने की भूल ना करें।
1: सड़क पार करते समय मोबाइल पर बात ना करें।
2: चौराहे पर हमेशा ज़ेब्रा क्रॉस से ही सड़क पार करें।
1: हम रहेंगे अगर सावधान, राह हो जाएगी आसान।
0: एक भाई जरा देख।

ईश्वर कहते हैं कि भरोसा विश्वास खुद पर रखें तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमज़ोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब हमेशा याद रखते हैं। इसलिए ईश्वर परमात्मा इष्ट प्रभु पर सदैव अपना अटूट विश्वास बनाए रखें। जीवन की रणभूमि में वही मार्गदर्शक भी हैं, प्रेरणा भी हैं और वही पालनहार और हमारी नैया के खेवैया भी हैं। इसी विचार के साथ, प्रण के साथ आज की भजन संध्या यहीं समाप्त करने की दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे भजन संध्या। ये आकाशवाणी उज्जैन है। शाम के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है पावस और सावन पर केंद्रित विशेष मालवी कवि गोष्ठी। इसमें प्रतिभागी कलाकार हैं माया मालवेंद्र बेदका, राजेश रावल सुशील, कमलेश व्यास कमल और संदीप कुमार जैन सृजन। आइए सुनते हैं ये मालवी कवि गोष्ठी।
1: आकाशवाणी उज्जैन

0: रजन जी हमारा बीच में है मालवा से, और वे भी आज अपनी कविताओं गीतों का माध्यम से हमारा बीच में काव्य पाठ करेगा। और हूँ राजेश रावल, उज्जैन से आपका बीच में हूँ, और मैं भी हमारी जो हमारा मन की बात है वह इन कविताओं का माध्यम से रखवा को प्रयास करूँगा। सबसे पहला मैं काव्य गोष्ठी की शुरुआत करूँ तो हमारा बीच में वरिष्ठ कवि, गीतकार, गजलकार, दोहाकार आदरणीय कमलेश व्यास जी हमारा बीच में है। मैं उनसे आग्रह करूं कि भी मालवी की कविता हमारा बीच में बरसात के लेके या सावन के लेके हमारा बीच में रखे। आदरणीय कमलेश व्यास जी।
1: धन्यवाद रावल साहब। एक गजल पेश करना चाहता हूं, उसके पहले चार लाइनें।
0: स्वागत।
1: बारिश में भी धन कटीरिया, अब के बरस उणाला सा।
0: वाह।
1: बारिश में भी धन कटीरिया, अब के बरस उणाला सा। झाड़ का सब काटी डालिया, झूला कटने डाला सा।
0: क्या बात।
1: झाड़ का सब काटी डालिया, झूला कटने डाला सा। पखवाड़ा तक पानी गिरतो, अब धन भर भी मुश्किल है। पखवाड़ा तक पानी गिरतो, अब धन भर भी मुश्किल है। ताल तलैया उथला हो गया, बासे गंदा नाला सा। ताल तलैया उथला हो गया, बासे गंदा नाला सा। गाड़ी गायब, बेल भी गायब, गायब पानी कुआ से।
0: क्या बात।
1: गाड़ी गायब, बेल भी गायब, गायब पानी कुआ से। गौ माता के छोड़ी के, अब घर घर कुत्ता पाला सा। गौ माता के छोड़ी के, अब घर घर कुत्ता पाला सा। और एक मालवी गजल प्रस्तुत करता हूँ।
0: स्वागत।
1: मतला दिखेगा। टप टप टप टप आख्या बरसे सावन में, टप टप टप टप आख्या बरसे सावन में। घर वाला रे गोरी तरसे सावन में।
0: क्या बात।
1: तन भी गीलो, मन भी गीलो गोरी को। तन भी गीलो, मन भी गीलो गोरी को। आंसू है या बूंदा परसे सावन में। परसे का मतलब स्पर्श से है। तन भी गीलो, मन भी गीलो गोरी को। आंसू है या बूंदा परसे सावन में। खेता में हरियाली छाई सोया की। सोया यानी सोयाबीन
0: की।
1: खेता में हरियाली छाई सोया की। टक टक देखे पंछी हिरसे सावन में।
0: वाह वाह वाह।
1: टक टक देखे पंछी हिरसे सावन में। और कहीं पे बादल फाटे दुखड़ा का। और कहीं पे बादल फाटे दुखड़ा का। जैसे कोई झरनो झरसे सावन में। जैसे कोई झरनो झरसे सावन में। पानी आवे रिमझिम फर फर गुपचुप सो। पानी आवे रिमझिम फर फर गुपचुप सो। और कदी तो यूं ही गरजे सावन में। और कदी तो यूं ही गरजे सावन में। बिलपत्तर ने खूब धतूरा चढ़ाई रिया। शिव जी का भी महीना है सावन। बिलपत्तर ने खूब धतूरा चढ़ाई रिया। भोले नाथरा भगत भी हरसे सावन में।
0: वाह वाह वाह।
1: भोले नाथरा भगत भी हरसे सावन में। और ककड़ी भुट्टा भजिया खावा हिल मिल के। ककड़ी भुट्टा भजिया खावा हिल मिल के। ऐसो मौसम सबके सर से सावन में।
0: सावन में
1: ऐसो मौसम सबके सर से सावन में। धन्यवाद।
0: बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छी कविता हमारा बीच में
1: धन्यवाद
0: व्यास जी ने भी पढ़ी। और निश्चित रूप से उन्होंने मालवा की जो छवि है उके अपनी कविता में लावा को प्रयास करियो। अगला क्रम में हूँ आदरणीय वरिष्ठ की मालवी कवित्री आदरणीय दीदी श्रीमती माया मालवेंद्र बदिका जी सहरज करूँ के भी अपनी मालवी में वानगी रखे ने अणी काव्य गोष्ठी के ऊंचाई प्रदान करें।
2: आभार राजेश भाई। उज्जैन आकाशवाणी केंद्र से सगला मालवी प्रेमी हूँ उनके। माया की राम राम। मैं पहला गणपति और शारदा जी के नमन कर ला।
0: स्वागत दीदी।
2: नमन करूं गणेश ने, नमन करूं माँ शारदे। झोली भर दे मारी दई दे ज्ञान की पोटली। पोथी लिखूं पोथी बाँचूं, पोथी में रमई जाऊं माँ। वागेश्वरी माता थारा खोला माए समय जाऊं माँ। थारा बिन मारी वाणी में मिठान किस्तन आएगा। नवो रोपो हूँ मैं थारी माता, थारा रुखड़ा की हूँ कोपली। भर दे ज्ञान की पोटली।
0: क्या बात।
2: मैं आपके एक अभी अपने सावन की यह गोष्ठी है तो आपके सावन का सेहरा

0: गड़गड़ तो आयो रे तू कई जबर करे धरती के तरसायो।
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
0: मत डर जे मारी धरा, मत डर जे मारी धरा, थारी शक्ति

0: जैके बात में भरली जो,
1: क्या बात है दीदी, बहुत बढ़िया।
0: ठेर ठेर सुड़ारी धार, वाट देखे थारी रे, तमने मांडी के सीरार, भावेनी तीज त्योहार, वाट देखे थारी, थारो बदलियो कई व्यवहार।
1: बहुत बढ़िया,
0: धन्यवाद।
1: बहुत बढ़िया गीत दीदी ने हमारा बीच में अभी रखियो। अपन सब कहाँ की गरजे उबरसे को नहीं तो वह बात भी दीदी ने अपनी कविता में लाओ को प्रयास करियो। आणि इस क्रम में हूँ बुलाना चाहूँ हमारा युवा रचनाकार मालवी का अने हिंदी का भी रचनाकार संदीप सृजन जी, मैं उनके आमंत्रित करूँ कि भी आए ने अपनी वानगी कविता का माध्यम से बरसा पर रखे। आदरणीय संदीप जी,
2: आज की इन मालवी काव्य गोष्ठी में मैं संदीप सृजन आप सभी के प्रणाम करूँ हूँ। और चूँकि या वर्षा ऋतु पावस ऋतु पे केंद्रित आज की गोष्ठी है तो एक वर्षा गीत आपका बीच में रखवा की कोशिश करूं।
3: स्वागत है।
2: कि मोती टपके आसमान से, मोती टपके आसमान से, धरती

0: बहुत बढ़िया।
1: और प्रकृति के दृश्य को कहने की कोशिश कि हरियाली ही हरियाली है जहाँ तक नजर जावे है, हरियाली ही हरियाली है जहाँ तक नजर जावे है, जंगल में मंगल हुई रो है प्रकृति सबके भावे है, जंगल

आसमान से मोती टपके, आसमान से धरती हुई गई न्याल। नदी नाला झूमी रहा है, उछली रो है ताल। और एक दृश्य जो सावन का विशेष रूप से रहता है त्योहारों का, उसको कहने की कोशिश करी है कि गई असाड़ी सावन अयो तेवारा की आस जगी, गई असाड़ी सावन अयो तेवारा की आस जगी, भोला शंकर जी का दर पे भक्ति की अरदास लगी, भोला शंकर जी का दर पे भक्ति की अरदास लगी। सात दिवासो नाग पंचमी, सात दिवासो नाग

से मोती टपके आसमान से, धरती हुई गई न्याल, नदी नाला झूमी रहा है, उछली रो है ताल। और एक स्थिति समाज की और ग्रामीण क्षेत्र की कहने की कोशिश करी है कि खुश है सब किसान बेपारी, खुश है शहर निगाँव, खुश है सब

और जगैरियो, पानी आइरियो और जगैरियो, सबका मन में आल, नदी नाला झूमी रहा है उछली रियो है ताल, नदी नाला झूमी रहा है उछली रियो है ताल, मोती टपके आसमान से, मोती टपके आसमान से, धरती हुई गई न्याल, नदी नाला झूमी रहा है उछली रियो है ताल। और एक दृश्य उज्जैन को लेकर कि उज्जैनी

काल। मोती टपके आसमान से धरती हुई गई न्याल, मोती टपके आसमान से धरती।

0: उचलीर हो हे ता।
1: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा।
0: अब इस क्रम में मैं आगे आज के हमारी गोष्ठी के संचालक और संयोजक डॉक्टर राजेश रावल सुशील जी को आमंत्रित करता हूँ, वे आए और अपना काव्य पाठ करें। डॉक्टर
1: स्वागत
0: राजेश रावल सुशील।
1: स्वागत है भैया।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संदीप सृजन जी, हमारे भी काव्य पाठ का अवसर आपने दियो। आकाशवाणी उज्जैन के यानी मालवी काव्य गोष्ठी में अभी बहुत सारी बातें वर्षा के लई के, बारिश की उमंग के लई के, प्रकृति के लई के हमारा कवि मित्रों ने रखी। मैं एक अलग अंदाज के गीत आपका बीच में बारिश के लई के रखूं, क्योंकि वर्षा कम हुई रही है और जब बारिश कम हुई तो बहुत सारी समस्या ना किसान का लिए भी और आम जन का लिए भी बहुत सारी समस्या रहे, उके लई के गीत लिखवा का प्रयास करें आपका बीच में रखूं। थारा भरोसे खेत बोई ने बैठी गया किसानिया। दो प्रकार की बोनी होए, पहला बोनी किसान की होए और बाद में बान्या उनकी बोनी होए, क्योंकि किसान के पास माल रहे तो बान्या की बोनी होनी तो नहीं हो पाए। कि थारा भरोसे खेत बोई ने बैठी गया किसानिया और खोली गांठड़ी हाट लगई ने बैठी गयाई बाण्या। तो एक बोनी करवाई, एक तो करवा दी आपने, एक

सी कानी बरसी। अब के बोनी ऐसे वीरी के कहा बोनी हुई कि आधा गांव में आधा गांव में बोनी जनी हुई कि कहा बरसी कानी बरसी या कसी बादली काली, कहा बरसी कानी बरसी या कसी बादली काली, आधा गांव में होली वहीगी आधा में दिवाली। तो यो उनाड़ू राखा के श्यालू, पहला पानी नहीं पड़ता तो खेत उनाड़ू छोड़ देता कि यो उनाड़ू राखा के श्यालू खेत बतई जा रे, नवरो क्यों गाजे आवे तो सीधो आई जा रे। सावन में जो कांवड़िया निकले उनके लिए एक बंद लिखियो कि जेठ सरी को तपीरियो सावन नीमालम कहीं थारे, जेठ सरी को तपीरियो सावन नीमालम कहीं थारे, ने कांवड़िया अड़वाना चली रिया थोड़ी शर्म तो खारे, जेठ सरी को तपीरियो सावन।

ठंडी कर झरमर झारिया बरसारे। नवरो क्यों गाजे आवे तो सीधो आई जा रे। अभी हमारा गांव में उज्जैनी भाई आखिरी बंद उन पे लिखियो मैंने कि दाल बाटी अन कड़ी चूरमा खेते खेत बनाया। दाल बाटी अन कड़ी चूरमा खेते खेत बनाया। ने करी उज्जैनी आखा गाम ने नेवद भोग जिमाया। दाल बाटी अन कड़ी चूरमा खेते खेत बनाया। करी उज्जैनी आखा गाम ने नेवद भोग लगाया। तो तू सुशील आस था को इवड़े तू सुशील आस

0: बहुत तो
1: बहुत
2: बढ़िया,
0: बहुत बहुत धन्यवाद,
1: बहुत अच्छा।
0: अब मैं दूसरा अनुक्रम में हम चावा के वापस में हमारा मालवी का वरिष्ठ कवि आदरणीय कमलेश व्यास कमल जी से अनुरोध करूं कि वे आए न अपनी वर्षा पर वानगी रखें। कमलेश व्यास जी।
3: धन्यवाद रवाल साहब। एक गीत की कुछ पंक्तियां। हर बरस घटा तो छाए पण वह पेला जैसी बात कठे।
0: वाह।
3: हर बरस घटा तो छाए पण वह पेला जैसी बात कठे, बारिश तो अब भी होए पर वह रिमझिम सी सौगात कठे।
0: वाह वाह वाह।
3: बारिश तो अब भी होए पर वह रिमझिम सी सौगात कठे। बंद देखिए। टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी पे फिसलन की बात निराली थी। टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी पे फिसलन की बात निराली थी, रास्ता भर झाड़ों की हर एक डाली तक देखी भाली थी।
0: क्या बात।
3: रास्ता भर झाड़ों की हर एक डाली तक देखी भाली थी, कुछ झाड़ों पर लटकी अटकी बेलों की लट घुंघराली थी। कुछ झाड़ों पर लटकी अटकी बेलों की लट घुंघराली थी, पन सड़का बन जाने से वी झाड़ कटे वी पात कटे।
0: वाह वाह वाह वाह।
3: बारिश तो अब भी होए पर वह रिमझिम सी सौगात
0: सौगात कटे।
3: दूसरो बंद देखो।
2: स्वागत।
3: वो फूस कवेलू की छत से, वो फूस कवेलू की छत से, अब तो गांव में भी नहीं रही हो।
0: बिल्कुल।
3: वो फूस कवेलू की छत से जो टप टप पानी गिरतो थो, वो टप टप गिरता पानी में बर्तन को तबलो बचतो थो। सब बर्तन मांडी देता था अपन। वो फूस कवेलू की छत से जो टप टप पानी गिरतो थो, टप टप गिरता पानी में बर्तन को तबलो बचतो थो, सूखी जगह के चुन चुन के घर भर को बिस्तर बिस्तो थो, बूंदा का छीटा से तन के जो लगतो थो आघात कठे, बारिश तो अब भी होए पर वह रिमझिम से सौगात कठे।
2: बहुत बढ़िया।
3: एक बंद और देखो।
2: स्वागत।
3: झूला की पेंगा सावन में, अल्हड़ अटखेली आंगन में, पनघट पर बतियाती हंसके दुख दर्द छुपा के दामन में।
0: क्या बात।
3: राखी पे लेने आवेगा भैया आपके भी सावन में, दिल में मिट्टी सो सोधोपन, दिल में मिट्टी रो सोधोपन, सौहार्द भरियो जज्बात कठे, बारिश तो अब भी होए पर वह रिमझिम से सौगात कठे।
0: बहुत बढ़िया।
3: और अंतिम बंद देखो।
0: स्वागत।
3: लुकतो छुपतो सूरज अक्सर पखवाड़ा तक गायब रहतो, लुकतो छुपतो सूरज अक्सर पखवाड़ा तक गायब रहतो, कुछ सालों से अब यूं ही गयो सूरज दिन भर जब तब रहतो, गीली सड़का गीलो आंगन अब चार पहर भी कतरियो, गीली सड़का गीलो आंगन अब चार पहर भी कब रहतो, जो एक जैसी दिन रात गिरे वो बारिश का दिन रात कटे।
0: वाह।
3: बारिश तो अभी होए पर वह रिमझिम सी सौगात कटे।
0: क्या बात।
3: हर बरस घटा तो छाए पन वह पेला जैसी बात कटे, बारिश तो अब भी होए पर वह रिमझिम सी सौगात कटे। धन्यवाद।
0: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कविता हमारा बीच में अभी व्यास जी ने रखी कि वह पेला जैसी बात कटे।
3: धन्यवाद।
0: अपन सब जाना चीज के कि पेला में आज में बहुत परिवर्तन है, ये नेवाणी परिवर्तन के हम भी अपनी कविताओं में लावा को प्रयास करा। अनिज पावस गोष्ठी में हमारा बीच में वरिष्ठ मालवी कवित्री श्रीमती माया मालवेंद्र बद्दिका, जिनने पहला भी अपनी एक अच्छी प्रस्तुति हमारा बीच में रखी। मैं उनसे फिर से आग्रह करूं कि वे हमारा बीच में वापस से एक मालवी गीत लेके आए। माया मालवेंद्र बद्दिका जी।
4: आभार राजेश भाई। हम जिन्हें देश में रह रहे उस स्वतंत्र देश है और जिसका कारण हम रह रहे हैं, उन नवी पढ़ने के मैं सावन की व्यथा सुनाई।
0: स्वागत दीदी। स्वागत।
4: के कई कही रही है कि लेर लेर निकली गयो सावन, कई कुमार पे कई बीती, जस सोले श्रृंगार करूं तम आओगा रण जीती, धन धन भाग महाराज जो तम भारत माँ का लाल हो, कई करूं शत्रु द्वेष को जब भारत की तम ढाल हो। या रण पे गया साइबर से नवी पढ़नी हुई कही रही है, तो चार पंक्ति और छोटो सो एक गीत है। सावन झर मर गाजे पियू जी परदेश विराजे।
0: बहुत बढ़िया।
4: सावन

0: सावण आयो साहिबा तम वेगा वेगा ओ
1: बहुत बढ़िया
0: सावण आयो

झूला तम माने मत तरसाओ। सावण में झूला झूला तमरण पे जई के भूलिया। सावण में झूला झूला तमरण पे जई के भूलिया। नेणन में नीर भराए मर चितड़ो डुग।

0: परदेश विराज आखी रात डली वीती जाए मारी पगारी पे जनवाजे। धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी माया मालवेंद्र बदिका जी के। आप अभी आकाशवाणी उज्जैन की मालवी काव्य गोष्ठी में आपने उनके गीत सुने। मैं अनिक्रम में अगला क्रम में बुलाना चाहूँ हमारा मालवी का युवा रचनाकार आदरणीय संदीप सृजन जी से कि वे आए और अपन गीत प्रस्तुत करें। संदीप सृजन जी।
2: धन्यवाद डॉक्टर राजेश रावल सुशील जी। बरसात की गोष्ठी है तो एक मालवी गजल आपका बीच में बरसात का पानी में रखने की कोशिश कर रही हूँ।
3: स्वागत।
2: के भीजी गयो है बदन, भींजी गयो है बदन बरसात का पानी में, भींजी गयो है बदन बरसात का पानी में, और हरसई गयो है मन बरसात का पानी में। भींजी गयो है बदन बरसात का पानी में, हरसई गयो है मन बरसात का पानी में, और माटीरी सोंधी सुगंध सांस में बसीरी, माटीरी सोंधी सुगंध सांस में बसीरी, छांटे है अंतर गगन बरसात का पानी में, छांटे है अंतर गगन बरसात का पानी में, और शिव नाम री गूंज उठी मन का मंदरिया में, शिव नाम की गूंज उठी मन का मंदरिया में, आखो गाम करे है भजन बरसात का पानी में, आखो गाम करे है भजन बरसात का पानी में। और दर्शन मेरा प्रिय विषय रहा है तो कुछ शेर दर्शन पे कहने की कोशिश करिए इसमें।
3: स्वागत।
2: के चढ़े है वो पड़े भी है, चढ़े है वो पड़े भी है समझ इन्हीं बात के तू, चढ़े है वो पड़े भी है समझ इन्हीं बात के तू, कर ले थोड़ो मनन बरसात का पानी में, कर ले थोड़ो मनन बरसात का पानी में, और सांझ पड़ी तो याद आयो दियो ओसारा को, सांझ पड़ी तो याद आयो दियो ओसारा को, हवा का झोंका में है हवन बरसात का पानी में, हवा का झोंका में है हवन बरसात का पानी में, और प्रेम की बाता लिखी सृजन ने कदी, प्रेम की बाता लिखी सृजन ने कदी, आज है मन में मगन बरसात का पानी में, आज है मन में मगन बरसात का पानी में, भींजी गयो है बदन बरसात का पानी में, हरसई गयो है मन बरसात का पानी।
4: बहुत बढ़िया।
2: अब मैं इस गोष्ठी में आज का संचालन कर रहे डॉक्टर राजेश रावल सुशील जी को पुनः आमंत्रित करता हूँ, वे आए और अपना काव्य पाठ करें। डॉक्टर राजेश रावल सुशील।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सृजन जी। अभी अपन सब ने बहुत सारा गीत इन गोष्ठी में प्रस्तुत करिया। मैं एक बच्चा उनके लिए एक छोटी कविता जिके अपन बाल कविता का वह रखवा को प्रयास करूं।
3: स्वागत।
1: सावन आयो।
2: स्वागत।
1: सावन आयो, सावन आयो महीनो घणो सुहावन आयो, रिमझिम रिमझिम बरसे पानी, छोरा हूं खेले गुड़धानी, छोड़ी गुल्ली डंडा बंगड़ी खेले भंवरी कंचा लंगड़ी, छोड़ी गुल्ली डंडा बंगड़ी खेले भंवरी कंचा लंगड़ी, झूलो बंध्यो लीम की डाल और लई हिचकोला करे धमाल, झूलो बंध्यो लीम की डाल लई हिचकोला करे धमाल, सावन सेरा झड़ी लगी रिया धरती माँ की प्यास बुझी रिया, सावन सेरा झड़ी लगी रिया धरती माँ की प्यास बुझी रिया, फसला सब फूले धुनीरी, फसला सब फूले धुनीरी किरसानी आख्या गुनीरी, फसला सब फूले धुनीरी किरसानी आख्या गुनीरी, गुंजी रियो पपिया को सोर बादल गरजे नाचे मोर, गुंजी रियो पपिया को सोर बादल गरजे नाचे मोर, और ऊपरे बादली काली काली चारी मेर छैरी हरियाली, ऊपरे बादली काली काली चारी मेर छैरी हरियाली, तलई तलाव सगला हरसई रिया, तलई तलाव सगला हरसई रिया, गीत खुशी सबेज गई रिया, तो रहीमन की वाणी के गुण सुशील बिन पानी सब सुन, सुशील बिन पानी। आकाशवाणी उज्जैन से प्रसारित आणि मालवी काव्य गोष्ठी में सगला श्रोताओं के मारी राम राम, और आप सब ने हमारे ध्यान से सुनियो इकाली, आप सबको घनो घनो धन्यवाद बधाई अने पुनः एक बार सबको धन्यवाद,
4: राम राम।
5: अभी आपने सुनी मालवी कवि गोष्ठी। प्रतिभागी थे माया मालवेंद्र बदेका राजेश रावल सुशील, कमलेश व्यास कमल और संदीप कुमार जैन सृजन। FM 102.5 मेगा
4: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा है कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाता सम्मेलन में आज ये बात कही।
6: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
4: भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के संबंध में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता की आवश्यकता वाले लोगों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी।
6: भारत सरकार का इस प्रेस वार्ता में कोई भूमिका नहीं थी। यह प्रेस वार्ता एक निजी मीडिया संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सरकार उस मंच से कहे गए जो भी शब्द थे उसका समर्थन नहीं करती है, खासकर वो शब्द जो वहां के सरकार के बारे में कही गई।
4: पाकिस्तान और सोमालिया के बीच हाल ही में हुए रक्षा समझौते पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत

0: इन घटनाक्रमों पर लगातार नजर रखे हुए है। उन्होंने बताया कि भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन आयोजित करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज डॉ. जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। हंगामा जारी रहने पर लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने कॉरपोरेट जगत और वित्तीय पेशेवरों को बॉस स्कैम के प्रति आगाह किया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऐसी शिकायतों में तेज वृद्धि हुई है। इनमें खाता विवरण और नियामक संचार के बहाने पेशेवरों और कारोबारियों के व्हाट्सएप खाते को हैक किया जा रहा है। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान सहित कई राज्यों में एक ही तरह की घटनाएं सामने आई हैं। भारत अगले वर्ष पहले ग्लोबल साउथ फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा। मुंबई में आज ब्रिक्स वेव्स बाजार के दौरान इसकी घोषणा की गई। फिल्म और मनोरंजन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने के लिए कई समझौतों की भी घोषणा हुई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा सरकार के अरावली के संरक्षण और वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। श्री यादव ने कहा कि हरियाणा सरकार ने विशेष रूप से गुरुग्राम और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को जन भागीदारी का अभियान बनाकर उल्लेखनीय कार्य किया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज उधमपुर और रियासी जिलों में पेयजल आपूर्ति और सीवरेज प्रबंधन को मजबूत करने के उद्देश्य से 140 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली दो प्रमुख परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं में अमृत के दूसरे चरण के तहत उधमपुर शहर के लिए 124 करोड़ से अधिक की जल आपूर्ति संवर्धन योजना सहित 16 करोड़ से अधिक की जल प्रबंधन परियोजना शामिल है। केरलम के चार जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कोझिकोड, कन्नूर, वायनाड और कासरगोड जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा चार अन्य जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में रक्षिता रामराज और अश्मिता चालिया ने महिला सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अश्मिता और रक्षिता सेमीफाइनल में कल आमने सामने होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.5 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये उज्जैन केंद्र है। अब कार्यक्रम विवरण में पहले सुनिए आज के शेष मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी।

आज शाम 7:21 से सुन सकेंगे कार्यक्रम माटीरी बात, जिसमें होंगे मालवी समाचार और कुछ निमाड़ी लोकगीत। रात्रि 8 से संसद समीक्षा दिल्ली से और 8:15 पर सुर्खियों में कार्यक्रम भोपाल से रिले किया जाएगा। और रात्रि 10 से अनुप्रसारित होगा भोपाल से गीतों का गुलदस्ता। फिल्म संगीत सुन सकेंगे रात्रि 8:30 से उज्जैन से और रात्रि 9:45 से भोपाल केंद्र से। रात्रि 9:30 से भोपाल से रिले होगा खेल पत्रिका और भोपाल से ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी रात्रि 10:30 से। अब सुनिए कल के मुख्य कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। हमारी प्रातःकालीन सभा प्रतिदिन सुबह 5:50 पर संकेत धुन के साथ आरंभ होती है। वंदे मातरम और मंगल ध्वनि के बाद विविध भारती से प्रसारण होता है। तत्पश्चात सुबह 7 महाकाल वंदन उज्जैन से होता है। 7:05 पर

कार्यक्रम विवरण प्रस्तुत किया जाता है। सुबह 7:20 से सुप्रभात उज्जैन, 8:30 पर उज्जैनी आरजे और 9:30 से बॉलीवुड बीट्स का प्रसारण होता है। सुबह 10 से सुन सकेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश, जो श्रोताओं के पत्रों पर आधारित होता है।

सुबह 11 बजे से आप सुन सकते हैं विविध भारती मुंबई का प्रसारण और रंग बिरंगे विविध कार्यक्रम। दोपहर 2 बजे भोपाल केंद्र से फिल्म संगीत सुन सकेंगे। प्रतिदिन शाम को 5 बजे होता है युवाओं का कार्यक्रम युववाणी। 6 बजे से भजन संध्या में मधुर भजनों की श्रृंखला का आनंद और फिल्म संगीत रात्रि 8:30 पर। शाम 6:30 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल, और मालवी कार्यक्रम मालवी गीतारी गूंज, मालवी समाचारों और लोकगीतों के साथ शाम 7:21 से उज्जैन से। कार्यक्रम इस सप्ताह संसद में रात्रि 8 से और चित्र भारती रात्रि 9:30 से दिल्ली से अनुप्रसारित होंगे। कार्यक्रम सुर्खियों में रात्रि 8:15 से और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात्रि 10 से भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कार्यक्रमों में परिवर्तन संभावित है और सभी समाचार बुलेटिन अपने नियत समय पर होंगे। ये था कार्यक्रम विवरण।

ये आकाशवाणी उज्जैन है, FM 102.5 MHz पर। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार भोपाल से ले होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हथकरघा भारत की संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न हिस्सा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज छिंदवाड़ा से राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 2026 का किया शुभारंभ। राजधानी भोपाल में चल रहे ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव 2000

0: 26 का आज समापन और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के गुना शिवपुरी सहित 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हजारों वर्षों से हथकरघा भारत की संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न हिस्सा रहा है। आज नई दिल्ली में 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र ने देश की समृद्ध विरासत को संरक्षित रखने के साथ साथ रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला, संस्कृति और प्रकृति के प्रति प्रेम को भी बढ़ावा दिया है। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने वर्ष 2025 के संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपराओं को समर्पित 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अपने संदेश में कहा है कि हथकरघा हमारी समृद्धशाली सांस्कृतिक विरासत, कौशल और आत्मनिर्भरता का सशक्त प्रतीक है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज छिंदवाड़ा से राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान 2026 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं के जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन और सुशासन को सुदृढ़ बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान एक मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा,
1: छिंदवाड़ा में हमने इस जन विश्वास अभियान का शुभारंभ किया और अलग अलग प्रकार से एक जिले के अंदर सब प्रकार की चेतना जागृत करते हुए हमारी जन सुविधाएं, विकास की अवधारणाएं, जन भागीदारी और भविष्य का रोडमैप समान रूप से राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के साथ मिलकर चले। इस अवसर पर जब हमने अलग अलग इसके आयाम भी तय किए, एक तरफ हम पुरानी पेंडेंसी शिकायतों की खत्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी शासन की योजनाओं के जो टारगेट है उस टारगेट की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं।
0: इस अभियान के अंतर्गत मंत्रालय से लेकर जिले तक के सभी अधिकारी प्रत्येक शुक्रवार को दफ्तर छोड़कर फील्ड में जनमानस के सामने होंगे। जन विश्वास अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में जाकर जनता से सीधा संवाद, जुड़ाव, शिकायतों और समस्याओं का शत प्रतिशत निराकरण करना है। प्रदेश के रायसेन, बैतूल, आगरमालवा, गुना, राजगढ़, शिवपुरी, खंडवा और छतरपुर सहित अन्य जिलों में भी अभियान के तहत शिविरों का आयोजन किया गया। राजधानी भोपाल में चल रहे ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन का आज शाम को ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव 2026 के आयोजन के साथ समापन हो रहा है। इस बारे में पेश है एक रिपोर्ट।
2: भोपाल में 5 अगस्त से जारी ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक 2026 के कार्यक्रमों के क्रम में आज 2 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव का समापन हो रहा है। समापन समारोह में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि संस्कृति विभिन्न देशों और समाजों को जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम है, साथ ही मध्य प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों का उल्लेख करते हुए राज्य की सांस्कृतिक पहचान और वैश्विक महत्व को रेखांकित किया। कार्यक्रम में संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल सहित ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के सदस्य शामिल थे। मंत्री के संबोधन के बाद विभिन्न देशों के कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शुरू हुई। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से मैं विपिन मिश्रा।
0: सम्मेलन में कल केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की औपचारिक बैठक भी होगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास देश की युवा शक्ति को आत्मनिर्भर बनाने का सबसे सशक्त माध्यम है। आज छिंदवाड़ा के शासकीय आदिवासी महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षु छात्राओं से संवाद में मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षुओं के उत्साह और प्रतिबद्धता से प्रभावित होकर कहा कि उनकी जिम्मेदारी केवल अपना जीवन बेहतर बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने कौशल और ज्ञान से समाज तथा अन्य लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की भी है। सीहोर में आज बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने छिंदवाड़ा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में सहभागिता की। किसानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने, उत्पादन बढ़ाने और आत्मनिर्भर खेती की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। भारत अगले वर्ष पहले ग्लोबल साउथ फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा। आज मुंबई में ब्रिक्स वेव्स बाजार के दौरान इसकी घोषणा की गई। फिल्म और मनोरंजन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से कई समझौतों की भी घोषणा हुई। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार सहित कई संस्थानों ने

ब्राजील, रूस और वियतनाम जैसे देशों के सहयोगी संस्थानों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। दो दिवसीय वेव्स ब्रिक्स बाजार आज शाम समाप्त हो रहा है। अगले तीन दिनों में प्रदेश के उत्तरी हिस्से के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान गुना, शिवपुरी, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, अशोकनगर, दमोह और सागर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, रीवा, जबलपुर, शहडोल संभागों के कई जिलों में बारिश होने की भी संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खरगोन जिले के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 11 अगस्त को जिला रोजगार कार्यालय में युवा संगम मेले का आयोजन किया जाएगा। जबलपुर जिले में टीबी के खिलाफ चल रहे अभियान में पिछले 7 माह में 3,800 टीबी मरीजों की पहचान कर उनका उपचार शुरू किया गया है। राजगढ़ जिला मुख्यालय की सांदीपनी विद्यालय, पुलिस विभाग और शिक्षा विभाग के संयुक्त कार्यक्रम जन सुरक्षा युवा सृजन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीहोर में बिना वैध वीजा और पासपोर्ट के वर्षों से रह रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को जिला अदालत ने 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी द्वारा कल दोपहर 2 बजे संस्कृति भवन भोपाल में जिला समन्वयकों की वार्षिक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। DBT के माध्यम से 1,44,767 रुपया हमको मिला है। अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसे मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।

FM 102.5 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र। प्रस्तुत है कार्यक्रम माटी री बात।

राम राम सा आकाशवाणी उज्जैन से। आकाशवाणी उज्जैन का इन्हीं खास कार्यक्रम ग्राम सभा का माटीरी बात में मैं हूँ ऋषि योगी। महारा मालवा का सगला भाई बहनों काका बाबूसा ने माँ बुआ सा को घणो घणो स्वागत करूँ हूँ। आज अपन माटीरी बात में वाता करांगा पशुपालन की ने मालवा का एक मेहनती किसान का साथ एक छोटी सी भेंट वार्ता भी करांगा ने निमाड़ी लोकगीत का आनंद का साथ है जानांगा उज्जैन में कृषि उपज मंडी में फसलों का भाव के। तो दोस्तों कार्यक्रम में आगे बढ़वा से पहला सुनो मालवी में आज का समाचार।

आज का समाचारों की खास बुलेटिन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोली है कि हजारों सालों से हथकरघा भारत की संस्कृति ने सभ्यता को हिस्सोरियो है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज छिंदवाड़ा से राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 2026 को शुभारंभ कियो। भोपाल में चली रियो ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन का तीसरा दिन आज सांजे ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव 2026 को आयोजन हुई रियो है। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोली है कि हजारों सालों से हथकरघा भारत की संस्कृति ने सभ्यता को हिस्सोरियो है। आज नई दिल्ली में 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिन का अवसर पे हुआ कार्यक्रम में भी बोली है कि इना इलाका ने देश की समृद्ध विरासत के संरक्षित रखने का साथ ही साथ रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति ने प्रकृति का लिए प्रेम के भी बढ़ावो दियो है। इन अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साल 2025 का संत कबीर हथकरघा पुरस्कार ने राष्ट्र हथकरघा पुरस्कार दिया। इन अवसर पे हथकरघा बुनाई परंपरा पे डाक टिकट भी जारी कियो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रीय हथकरघा दिन की शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज छिंदवाड़ा से राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 2026 को शुभारंभ कियो। 7 जनवरी तक चलने वालों इन अभियान का अंतर्गत मंत्रालय से लेने जिला तक का सभी अधिकारी प्रत्येक शुक्रवार के दफ्तर छोड़ीने फील्ड में जनमानस का जैसा रहेगा। जन विश्व अभियान को उद्देश्य इलाका में जैने लोगों से सीधे बातचीत करने समस्याओं को निराकरण करेगा। राजधानी भोपाल में चली रियो ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन का तीसरा दिन आज शाम के ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव 2026 को आयोजन हुई रियो है। यह महोत्सव भारत ने सदस्य ब्रिक्स देशों का मान्या हुआ संगीतकार ने कलाकारों के एक साथ लाने वाला एक खास रूप से तैयार किया गयो सहयोगात्मक संगीतमय कार्यक्रम है। सम्मेलन में काल शनिवार के भारत की अध्यक्षता में तीसरा ब्रिक्स सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक रहेगी। मंत्री ब्रिक्स सदस्य ने भागीदार देशों का बीच सांस्कृतिक विरासत संग्रहालयों, रचनात्मक अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक आदान प्रदान, क्षमता निर्माण ने लोगों से लोगों का बीच जुड़ाव का इलाका में सहयोग के मजबूत करने पे विचार विमर्श करेगा। अब बात मौसम की। अगला तन दन में प्रदेश का उत्तरी हिस्सा का गंज जिलाओं में भारी बारिश को अलर्ट जारी किया गयो है। मौसम विभाग ने अगला 24 घंटा का दौरान गुना, शिवपुरी, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, अशोकनगर, दमोह ने सागर जिलाओं में भारी बारिश को अलर्ट जारी कियो है। इसका अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा ने शहडोल संभागों का गंज जिलाओं में हल्की बारिश हुआ की संभावना है। यह था आज का हमारा मालवी में समाचार।

समाचार का बाद अब टेम है अपना हिवड़ा में बसवा वाला निमाणी लोकगीत को, तो सुनो यो मधुर निमाणी लोकगीत।

0: वार्ता के जिनकी 3 पीढ़ी पशुपालन को कार्य करता एरिया है।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज गांव चंदेश्वरी से हमारे साथ एक मेहनती किसान जुड़ रहे हैं, बलराम चौधरी जी। नमस्कार सर।
2: नमस्कार
1: जी। आप अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं।
2: पशुपालन का काम है अपना गांव चंदेश्वरी में। बढ़िया, अच्छे 10-12-13 भैंस रखते हैं अपन। उनकी देखभाल अच्छी रखनी पड़ती है, खान पीन सब अच्छा बढ़िया, सब जो जनी हुई है, दूध कम ज़्यादा देने में, जो कम दूध देती है उनकी देखभाल ज़्यादा करनी पड़ती है।
1: इनका खान पान का कैसा क्या है बलराम जी?
2: खान पान का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। खान पान में जैसे जनी हुई भैंस अच्छा चारा वारा या अच्छा हरा चारा खिलाओ तो उससे अच्छा दूध देती है। और खली अच्छी खिलानी पड़ती है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
2: हाँ, चना चूरी बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं इनको खिलाने से अच्छा ध्यान रह पाता है इनका।
1: मतलब इनको किसी प्रकार की बीमारी वगैरह से ही बचा के रखना पड़ता है, मतलब
2: बिल्कुल बिल्कुल बीमारी से भी बहुत बचा के रखना पड़ता है। कई प्रकार की बीमारियाँ, बीमार बुखार उखार आता है, कई प्रकार की आती है बीमारियाँ भी, सब डॉक्टर की सलाह लेके सब देखभाल करना पड़ता है।
1: सारी भैंसे एक ही जैसा मतलब दूध देती है, मतलब कि
2: वो तो देखभाल के ऊपर है। सारी भैंसे अलग अलग प्रकार की है, जनी रहती है ताजी तो दूध ज़्यादा निकलता है।
1: जी जी।
2: ग्याबन रहती है 4-5 महीने की लगे उनका दूध कम निकलता है। सब अलग अलग प्रकार की है।
1: जिनका मतलब बच्चा होता है, जिनका हो गया है, उनको वो अच्छा देती है,
2: वो दूध ज़्यादा ज़्यादा निकालती है।
1: जी जी।
2: जिसका भी बच्चा देती है जब दूध ज्यादा निकालती है 4-5 महीने तक अच्छा दूध निकालती है।
1: जी। इसके अलावा भी आप मतलब कुछ खेती वगैरह करते हैं?
2: हाँ, खेती भी है, थोड़ी बहुत खेती भी करते हैं। इनकी चरी वरी, ये बाजरा ज्वार चरी बोने के लिए खेती 1-2 बीघे में तो लगानी पड़ती है।
1: जी जी जी।
2: हरा तो खिलाना ही पड़ता है, हरा लचका है, बरसी है, ये जरूरी है।
1: ये बरसी होता क्या है?
2: बरसी हरा चारा रहता है ये।
1: जी जी जी।
2: हाँ,
1: और मतलब खेती में और गेहूं वगैरह सोयाबीन करते हैं?
2: गेहूं सोयाबीन भी करते हैं, थोड़ी गेहूं सोयाबीन, गेहूं का भूसा भी खिलाते हैं जानवरों को।
1: अच्छा।
2: हाँ,
1: मतलब जो गेहूं जब हो जाती है फसल, उसके बाद
2: काट के निकालते हैं फसल को, उससे जो भूसा निकलता है वो उनको जानवरों को खिलाने में काम आता है भूसा।
1: इनका भी मतलब पानी वानी का भी समय फिक्स होगा कि
2: पानी का? हाँ, पानी भी दिन में 2 या 3 बार पानी पिलाना पड़ता है। 3 बार तो सुबह, दोपहर और शाम को 3 बार पानी का भी ध्यान रखना पड़ता है। बराबर है, पानी की भी कमी नहीं हो पाए इनको।
1: जी जी जी। और मतलब अभी
2: सोयाबीन बो रखी है, और जानवरों के लिए ज्वार और बाजरा की चरी लगा रखी है, और मक्का की।
1: ये कितने समय में फसल तैयार हो जाएगी?
2: ये 25 दिन या 30 दिन में अपन एक कटाव काट सकते हैं इसका, मतलब खिलाना स्टार्ट कर सकते हैं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
2: हाँ,
1: मतलब ये जो मार्केट में जो गाय भैंस का खाने का मिलता है, वो जो अपन खेत में उगाते हैं, उसमें फ़र्क रहता है?
2: हाँ, बहुत फर्क है। जो अपन ताज़ा जो बो के अगर खिलाएं वो तो बहुत अच्छा गुण करता है जानवरों को।
1: जी जी।
2: हाँ, बाहर से लाया हुआ कम ही गुण करता है।
1: जी जी।
2: कई प्रकार की चीज़ें हैं जो बाहर से भी ला के खिलानी पड़ती है, खली है, चना चूरी है, ये तेल गुड़ उड़ सब खिलाना पड़ता है।
1: जी जी। मतलब इनके पाचन तंत्र का भी मतलब पूरा ध्यान रखना पड़ता है?
2: वो भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। समय पे हर 3 महीने में एक गोली आती है पेट के कीड़े के लिए, इनके लिए वो भी देना रहती है।
1: अच्छा।
2: हर 3 महीने में तो इनका पाचन हमेशा एक जैसा लीवर वीवर सब बना रहे।
1: जी जी। मतलब एक जैसे छोटे बच्चे की देखभाल करते हैं उसी प्रकार से इनकी भी
2: देखभाल करनी पड़ती है।
1: आपने अभी मतलब भैंस के साथ में गाय भी है आपके पास?
2: हाँ, जरूर गाय भी रखते हैं।
1: तो गाय और भैंस मतलब दूध का फर्क रहता है?
2: बिल्कुल, गाय का दूध ज़्यादा निकलता है।
1: अच्छा अच्छा।
2: हाँ, इनकी गाय की भी देखभाल ज़्यादा करनी पड़ती है। इनका खाने में ज़्यादा है, गाय ज़्यादा खाती है।
1: हाँ, भैंस के मुकाबले
2: गाय ज़्यादा खाती है तो दूध भी ज़्यादा निकालती है।
1: और उसकी देखभाल भी फिर उस प्रकार से ज़्यादा
2: रखनी पड़ती है।
1: और मतलब ये ग्याबन मतलब कितने टाइम में हो जाती है?
2: 3 महीने बच्चा देने के बाद 3 महीने बाद
1: ग्याबन होती
2: है। अच्छी देखभाल से।
1: ये आपके पास जो भैंसे हैं और ये गाय हैं, मतलब कितने सालों से आपके पास?
2: ये कई वर्षों से यही काम कर रहे हैं हम।
1: अच्छा।
2: हाँ, कई वर्षों हो गए।

0: मतलब आपकी कई पीढ़ियां लगी हुई है इस
1: हाँ लगी
0: गाड़ी
1: हुई
0: में।
1: है, दो पीढ़ी तीन पीढ़ी हो गई है।
0: जी। और मतलब इनका गाय भैंसों से और क्या फायदा होता है? मतलब
1: गाय भैंसों के गोबर से गोबर गैस का भी उपयोग कर सकते हैं अपन चूल्हा जलाने में, और कंडे भी बना सकते हैं, और गोबर का खाद भी खेतों में डालने में बहुत महत्वपूर्ण रहता है।
0: गोबर गैस कैसे क्या बना सकते हैं? मतलब
1: गोबर गैस, गोबर घोल के गड्ढे में इकट्ठा उसका बनता है वो गोबर, उससे चूल्हा भी जलता है गैस से। अब तो बना हुआ था पहले अपने पास
0: कंडे का तो
1: उस।
0: उपयोग सभी को पता है, कोपले
1: हाँ
0: जो जिनको बोलते हैं, मतलब
1: हाँ
0: बाटी वगैरह।
1: हाँ वो उसी से बनती है।
0: और खाद, खाद
1: हाँ खाद
0: में बड़ा
1: तो,
0: रोल निभाता होगा
1: हाँ
0: आपका।
1: खाद में तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है गोबर का खाद तो खेतों में,
0: इसको
1: फसल
0: सुखाने
1: के
0: के बाद
1: लिए।
0: देना पड़ता होगा।
1: हाँ फसल के लिए बहुत उपयोग रहता है।
0: क्या बात है। और जो मतलब जो जैसे कि इन्हें कहीं बाहर मतलब थोड़ा टहलाने के लिए भी ले जाते
1: हाँ
0: हैं?
1: नहीं घुमा, बाहर भी बांधना पड़ती है ना, निकालना पड़ती है अंदर से, बाहर भी निकालना पड़ती है, थोड़ी हवा लग जाए, खुली हवा में बांधना पड़ता है, 2-4 घंटे बाहर भी बांधना पड़ती है इनको, खुली
0: अच्छा, धूप
1: हवा में जरूरी है बांधना।
0: धूप वगैरह में
1: हाँ
0: भी?
1: धूप हवा, ठंड के समय में बाहर बांधना जरूरी है, धूप
0: हर
1: में नहीं
0: मौसम
1: बांध,
0: में मतलब अलग अलग
1: सब
0: प्रकार से
1: सब
0: देखभाल
1: अलग
0: करना पड़ती
1: अलग
0: है।
1: अलग प्रकार से, गर्मी में छाँव में बांधना पड़ती है।
0: जी। धन्यवाद सर, आपकी गाय भैंसे और पशुपालन का कार्य ऐसे ही चलता रहे। फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।
1: जय श्री महाकाल।
0: अभी आपने सुनी भेंट वार्ता के, जो कि है मालवा का एक मेहनती किसान जिनकी 3 पीढ़ी लगातार पशुपालन को कार्य करते रही है। अब तुम्हारी बारी, तुम बताओ तुमने अभी कौन सी फसल की है, ने तुम्हारे अभी कई परेशानी ही रही है, तो चिट्ठी लिखो। हमारो पतो है केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र, विद्यापति नगर, नाना खेड़ा, उज्जैन। हमारो पिन कोड है 456-0-1-0। हाँ तो किसान भाइयों, कार्यक्रम में आगे बढ़ा उससे पहला मौसम का साथ है आनंद लीला, एक और निमाणी लोकगीत को।

वाह भैया वाह, मालवी गिटारी गुंज हो या माटीरी बात, भैया मालवी या निमाड़ी इन लोकगीत का बिना अधूरी है। हाँ तो किसान भाइयों, मालवा में तो सदियों से कहावत चली आई दी है कि खेती और पशुपालन एक दूजा की जान है, क्योंकि बिना पशुओं के ना तो हमारी खेती पूरी होए है ना ही किसान का घर परिवार समृद्ध बने हैं। केवल फसलों का भरोसे रहने की बजाय अगर हम उन्नत नस्ल की गाय भैंस बकरी या मुर्गी पालन को अपनावा तो बारिश कम ज़्यादा होने या फसल खराब होने पे भी दूध घी ने ऐसा गंज उत्पादों से हर दिन हाथ में नगद पैसा आवे रहेगा। हाँ, गाय ढोर से मिलने वालों गोबर ने गोमूत्र हमारा खेत का लिए सबसे अच्छो ने जैविक खाद को काम करे है, जिससे रासायनिक खादों को खर्च घटतो रेवे है ने जमीन की ताकत बनी रेवे है। गाय ढोर का अच्छा स्वास्थ्य का लिए उनके केवल सूखो भूसो देने के बजाय साइलेज यानी हरो चारो संरक्षण वालों ने अजेलो जैसी प्रोटीन से भरपूर खुराक दो, जिससे दूध उत्पादन तुरंत बढ़े है ने गाय ढोर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत हुई है। इसका अलावा तो आइए पारंपरिक तरीका की ओर बढ़ी ने पशुपालन को एक आधुनिक ने फायदा को व्यापार बनावा। कार्यक्रम में आगे बढ़वा से पहला आनंद लैला अपना हिवड़ा में बसवा वाला एक और निमाड़ी लोकगीत को तो सुनो यो मधुर निमाड़ी लोकगीत।

कई बात है। अरे भाई आनंद ही आइयो। हाँ तो किसान भाइयों ने बहनों, अगर आप भी खेती का साथ साथ दूध उत्पादन को काम बढ़ाने अपनी आय में बड़ो इजाफो करना चाहो तो मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना, हाँ मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना आपका लिए एक बेहतरीन वरदान समान अवसर है। इन योजना का अंतर्गत पशुपालकों के मुर्रा नस्ल की दो उन्नत भैंसे मिले हैं। सबसे खास बात यह है कि इन योजना में पशुओं की खरीद का साथ ही साथ उनका 3 साल को बीमो ने परिवहन को पूरा खर्च भी अनुदान राशि में शामिल रहे हैं, ताकि अपने अपनी जेब से कैसा भी अतिरिक्त बोझ नहीं उठानो पड़े। तो फिर देर किन बात की, आज ही अपना बाजू का पशु चिकित्सा केंद्र में जाओ ने पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करी ने योजना को फॉर्म भरो। उन्नत नस्ल का पशु पाल कर दूध को उत्पादन बढ़ानो है ने मालवा के समृद्ध बनानो है। हाँ तो दोस्तों कार्यक्रम में आगे बढ़ा उससे पहला एक और निमाड़ी लोकगीत को आनंद लेला।

वाह भाइयों, अब टेम है उज्जैन मंडी में, आज फसलों को मिजाज कई है, जरा नजर डालिला। हाँ तो गेहूं को आज को भाव लगभग 2,500 रुपए प्रति क्विंटल से 3,000 रुपए प्रति क्विंटल रियो। लहसुन को आज को भाव 5,414 रुपए से 6,200।

रुपये प्रति क्विंटल रियो। प्याज को आज को भाव 1800 से 1971 रुपये प्रति क्विंटल रियो। सोयाबीन को आज को भाव 5850 से 5950 रुपये प्रति क्विंटल रियो। मक्का को आज को भाव लगभग 1500 से 2000 रुपये प्रति क्विंटल का बीच रियो। तो भाइयों, आज की ग्राम सभा का माटीरी बात में अब बस इत्रोई। समय तो पानी की तरह बह गयो। आज अपन ने बात की पशुपालन की, ने मालवा का किसान का साथे एक छोटी सी भेंट वार्ता भी करी, जिनकी तीन पीढ़ी पशुपालन को काम करता आई रही है, ने मालवी में आज का समाचार भी सुनिया, ने आनंद उठायो निमाणी लोकगीत को। तो श्रोताओ, तम मस्त रहो, तमारी फसल मस्त रहे, इन्हीं आशा का साथे हूँ ऋषि योगी आज की ग्राम सभा का कार्यक्रम माटीरी बात के अठेज विराम दू हूँ। राम राम सा, सुनता रिजो आकाशवाणी केंद्र उज्जैन।

दोहराते हुए नारा लगाने लगे। श्री बिड़ला ने भारत छोड़ो आंदोलन के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान का उल्लेख करते हुए विपक्षी सांसदों से उनसे प्रेरणा लेने को कहा। अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान को भारत ही नहीं पूरी दुनिया मानती है और उनसे प्रेरणा लेती है। उन्होंने कहा कि जब आप सब भी उनसे प्रेरणा ले और देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करने के लिए चर्चा संवाद करें तथा अपने विचारों को अभिव्यक्त करें। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है और उसे चलने देना चाहिए। श्री बिड़ला ने कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर का मानना था कि देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है। उन्होंने कहा कि वे हर बार आप सबसे आग्रह करते हैं लेकिन उनका आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं होता है। अध्यक्ष ने कहा कि आपको इस पर विचार करना चाहिए। इसके बाद हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित कराने के लिए सदन की पटल पर रखा। इस दौरान विपक्ष के सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर लगातार नारेबाजी कर रहे थे। हंगामे के बीच ही सदन ने विधेयक को चर्चा के बिना पारित कर दिया। राज्यसभा में ये विधेयक सोमवार को ही पारित हो चुका है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये लोग आज भी सवेरे से मंत्री का नाम ले लेकर नारे लगा रहे हैं और हंगामा करके गायब हो जा रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह सुबह सुबह संसद में आते हैं और देर रात को ही वापस जाते हैं। वे दिन भर संसद में ही रहते हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि जिस दिन यहां चर्चा होगी गृहमंत्री अमित शाह जब यहां जवाब देंगे तो आप लोग सुन नहीं पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नियम के अनुसार जो विधेयक होता है उसी से संबंधित मंत्री को सदन में आना होता है। उन्होंने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि आप यहां निर्देश नहीं दे सकते कि कौन से मंत्री आएंगे और किसको जवाब देना है। वे सरकार और आसन तय करते हैं। पीठासीन दिलीप सैकिया ने विपक्षी दलों के सदस्यों से कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया और कहा कि आप मन बनाकर आए हैं कि सदन चलने नहीं देंगे, ये सही नहीं है। इसके बाद उन्होंने कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण आज लगातार 15वें दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 के कारणों तथा उद्देश्यों में कहा गया है कि एमएसएमई आर्थिक विकास के मुख्य कारक है, रोजगार सृजन करते हैं और नवाचार को बढ़ावा देते हैं। ऐसी इकाइयां सकल घरेलू उत्पाद और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देती है। ये देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसमें कहा गया है कि पिछले कुछ समय के दौरान तकनीकी बदलाव, सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित प्रणालियों के बढ़ते प्रयोग और बदलते विधिक परिदृश्य के कारण मूल अधिनियम में बदलाव की आवश्यकता है। इस विधेयक के माध्यम से 2006 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान है। विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि एमएसएमई के निशुल्क और स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म अधिसूचित किया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि एमएसएमई की तरलता के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए इन इकाइयों से वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद के मामले में केंद्र के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों को उनके इनवॉइस के निस्तारण व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली प्लेटफॉर्म के माध्यम

2025-26 के दौरान पात्र लाभार्थियों के लिए लगभग 4 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए। अस्पताल में भर्ती होने के लगभग 3 करोड़ मामलों को मंजूरी दी गई और योजना के अंतर्गत 5,000 से अधिक अस्पतालों को सूची में शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने इस योजना को लागू करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साल के दौरान 8,400 करोड़ रुपए से अधिक जारी किए गए। एक अन्य प्रश्न के जवाब में श्री नड्डा ने कहा कि 31 जुलाई 2026 तक देश में लगभग 96 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते आभा बनाए गए थे, जिनमें से 5 करोड़ से अधिक खाते गुजरात में बनाए गए। उन्होंने कहा कि आभा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का एक अहम घटक है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक है पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण आज भी गतिरोध बना रहा। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। उच्च सदन की बैठक पूर्वाहन 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आगामी 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ का जिक्र करते हुए कहा कि करो या मरो के नारे के साथ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी के लिए जो संघर्ष किया, उसकी वजह से ही आज हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि करो या मरो के आह्वान ने लाखों देशवासियों को सभी बाधाओं से ऊपर उठकर एकजुट होने और राष्ट्र की स्वतंत्रता के साझा लक्ष्य के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। सभापति ने कहा कि गंभीर दमन, जेल और अनेक कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद स्वतंत्रता सेनानियों ने अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प और देश की आजादी के प्रति अटूट प्रतिबद्धता दिखाई। उनके निस्वार्थ बलिदान और दृढ़ इच्छा शक्ति ने स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत किया तथा 1947 में देश की आजादी का मार्ग प्रशस्त किया। बाद में सदस्यों ने स्वतंत्रता संग्राम के वीरों के सम्मान में कुछ क्षण के लिए मौन रख उन्हें श्रद्धांजलि दी। सभापति ने इसके बाद जैसे ही शून्यकाल की कार्यवाही शुरू की, तभी विपक्षी सदस्यों ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मॉनसून सत्र के दौरान संसद में गृहमंत्री की लगातार अनुपस्थिति का मुद्दा उठाया। श्री खड़गे ने कहा कि सरकार सभापति की टिप्पणियों का सम्मान नहीं करके सदन का अपमान कर रही है। कल सभापति राधाकृष्णन ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से कहा था कि वे विपक्ष के भावनाओं को गृह मंत्री तक पहुंचाएं और सदन में उनकी मौजूदगी की मांग पर विचार करें। विपक्षी दल 20 जुलाई को संसद की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री से सदन में बयान देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि श्री रिजिजू ने कहा कि सभापति की ओर से इस मामले में कोई निर्देश नहीं दिया गया है और विपक्ष के नेता सदन को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब सत्र चलता है तब गृहमंत्री पूरे दिन सदन में मौजूद रहते हैं और मंत्री अपने मंत्रालयों के एजेंडे के अनुसार संसदीय कार्यवाही में हिस्सा लेते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष ये तय नहीं कर सकता कि कौन सा मंत्री कब सदन में आएगा। श्री रिजिजू ने कहा कि सभापति ने केवल टिप्पणी की थी लेकिन कोई निर्देश नहीं दिया था। संसदीय कार्य मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करते हैं और फिर संसद से बाहर चले जाते हैं। उन्होंने इस व्यवहार की निंदा की। हंगामे के बीच ही सभापति ने सदस्यों से शून्यकाल में लोकहित के मुद्दे उठाने के लिए कहा। बीजू जनता दल के सुलता देव ने पखाला भात की विशिष्टता और ओडिशा की परंपरा में इसके महत्व को रेखांकित करते हुए इस व्यंजन को जीआई टैग देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पखाला भात केवल एक भोजन नहीं बल्कि राज्य की संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने सरकार से इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने की मांग की।
भाजपा के प्रकाश चिक बाराइक ने उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में युवाओं की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक अत्याधुनिक स्टेडियम बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की कमी नहीं है, लेकिन उन्हें उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण अपनी प्रतिभा को निखारने में कठिनाइयों का सामना

0: करना पड़ता है। भाजपा के अमरपाल मौर्य ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या, प्रयागराज और बुंदेलखंड क्षेत्र के धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए इन क्षेत्रों को जोड़ने वाले राम दर्शन रेल पथ गलियारे के निर्माण की मांग की। उन्होंने कहा कि अयोध्या, प्रयागराज और बुंदेलखंड क्षेत्र भारत की आध्यात्मिक विरासत और धार्मिक परंपराओं के प्रमुख केंद्र रहे हैं तथा इन क्षेत्रों का संबंध भगवान राम के जीवन और उनसे जुड़ी आस्थाओं से है। उन्होंने कहा कि यदि राम वन गमन मार्ग से जुड़े प्रमुख स्थानों को एक ही रेल गलियारे के माध्यम से जोड़ दिया जाए तो इससे श्रद्धालुओं को काफी सुविधा मिलेगी। जब ये सदस्य अपने मुद्दे उठा रहे थे तो विपक्षी सदस्य लगातार नारेबाजी और हंगामे कर रहे थे। हालांकि सभापति ने उनसे सदन की कार्यवाही चलने देने की कई बार अपील की, लेकिन इस अपील का कोई असर न होते देख उन्होंने 11:30 पर बैठक को दोपहर 12 तक स्थगित करने की घोषणा की। दोपहर 12 बजे बैठक पुनः शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा। उन्होंने समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन से पूरक प्रश्न पूछने को कहा। सुमन ने ट्रेनों में कवच और सिग्नल प्रणाली लगाए जाने से संबंधित विषय पर पूरक प्रश्न पूछने के बजाय कहा कि सदन में गतिरोध कायम है और विपक्ष अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा चाहता है। सभापति ने सुमन को अपनी बात पूरी करने का मौका दिए बिना ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सदस्य डॉ. एम थंबी दुरे से आज की प्रश्नावली में सूचीबद्ध से प्रश्न से संबंधित पूरक प्रश्न पूछने के लिए कहा। थंबी दुरे ने पूरक प्रश्न पूछा और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका जवाब भी दिया, लेकिन हंगामे की वजह से सदन में उनकी बात नहीं सुनी जा सकी। सभापति ने सदस्यों से शांत रहने और प्रश्नकाल चलने देने की अपील की, लेकिन उनकी अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने 12:04 पर बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।
2: सुर्खियों में
0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत इसराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अनिल वाधवा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सिद्धार्थ सिंह।
3: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम सुर्खियों में आपका स्वागत है, मैं हूँ सिद्धार्थ सिंह। भारत और इसराइल के संबंध पिछले कुछ दशकों में तेजी से विकसित हुए हैं। आज ये रिश्ता केवल रक्षा और सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नवाचार, कृषि, जल प्रबंधन, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, व्यापार और निवेश जैसे अनेक क्षेत्रों तक फैल चुका है। कल इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर चर्चा की। दोनों देशों के नेताओं ने भारत इसराइल स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में लगातार हो रही प्रगति की समीक्षा की। साथ ही दोनों देशों के परस्पर लाभ के लिए अलग अलग क्षेत्रों में आपसी सहयोग को और मजबूत करने के अपने संकल्प को दोनों देशों ने दोहराया। इससे पहले फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसराइल यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को एक नई ऊंचाई देते हुए शांति, नवाचार और समृद्धि के लिए विशेष रणनीतिक साझेदारी में बदलने का निर्णय लिया था। इस विशेष रणनीतिक साझेदारी के व्यापक आयामों को समझने के लिए हमारे साथ हैं भारत के पूर्व राजदूत श्री अनिल वाधवा जी। वाधवा जी, कार्यक्रम सुर्खियों में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद।
3: ऐसे में अब विशेष रणनीतिक साझेदारी का वास्तविक अर्थ क्या है? दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच फोन पर बात हुई तो इसकी प्रगाढ़ता और इसको लेकर जो सीरियसनेस है दोनों नेताओं के बीच में, तो क्या इसमें नया जुड़ाव हो रहा है?
4: देखिए, पश्चिम एशिया एक व्यापक परिवर्तन का साक्षी बन रहा है और कुछ दशक पहले तक यह क्षेत्र मुख्यतः तेल और संघर्षों के संबंध में देखा जाता था
3: जी।
4: लेकिन आज वैश्विक निवेश, डिजिटल अवसंरचना, तकनीकी नवाचार और समुद्री संपर्क और लॉजिस्टिक्स का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभर रहा है और भारत के लिए ये क्षेत्र विशेष महत्व रखता है। अब इस व्यापक परिप्रेक्ष्य में इसराइल भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बनकर उभरा है। वो इसलिए है क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से छोटा होने के बावजूद इसराइल आज विश्व के अग्रणी नवाचार केंद्रों में गिना जाता है। तो आपने खुद ही कहा, जैसे जल प्रबंधन है, कृषि है, साइबर सुरक्षा, रक्षा प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, स्टार्टअप संस्कृति और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सभी क्षेत्रों में उसकी उपलब्धियां विश्व

0: में सम्मान पूर्वक लिखी जाती है। भारत एक विशाल बाजार है, हमारे पास प्रतिभाशाली मानव संसाधन है और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, और फिर विश्व में सबसे बड़ी डिजिटल आबादी वाला भारत
1: जी
0: देश है। तो हमारी जो क्षमताएं हैं एक दूसरे के पूरक हैं, और यही इस साझेदारी की सबसे बड़ी शक्ति है। आपने प्रधानमंत्री नेतन्याहू की बातचीत का भी जिक्र किया, तो भारत इजरायली संबंधों को नई ऊंचाई देने में राजनीतिक नेतृत्व की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हम देखें, जुलाई 2017 में जब प्रधानमंत्री मोदी इसराइल के दौरे पर गए थे, उस समय से आज तक दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक मोड़ ले लिया है, और इस दौरान दोनों नेताओं ने कई बार एक दूसरे के समक्ष आत्मीयता दर्शाई है। निश्चित रूप से कूटनीति राष्ट्रों के बीच संचालित होती है, व्यक्तियों के बीच नहीं होती। फिर भी जब भी हमने देखा है, जब भी प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री नेतन्याहू मिले हैं,
1: जी
0: तो उनके बीच स्थापित विश्वास ने दोनों देशों की साझेदारी को एक नई दिशा प्रदान की है।
1: जी जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया कि भारत और इसराइल के संबंधों की चर्चा अक्सर हम डिफेंस की बात करते हैं, यानी रक्षा सहयोग के संदर्भ में इसकी चर्चा होती है, लेकिन ये साझेदारी रक्षा से बढ़कर अब तकनीकी, कृषि है, स्वास्थ्य है, नवाचार तक पहुंच चुकी है। इस बदलाव को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या भारत इसराइल संबंध अब एक बहुक्षेत्रीय साझेदारी का रूप ले चुके हैं?
0: हम रक्षा सहयोग आज भी भारत इसराइल संबंधों का सबसे सशक्त आधार है, लेकिन इसके अलावा अब हम देख रहे हैं कि आतंकवाद के विरुद्ध जो सहयोग है दोनों देशों के बीच में, और जो आर्थिक संबंध है वे भी निरंतर विस्तृत हुए हैं। उसके साथ साथ नवाचार एक नया फील्ड है,
1: जी
0: जिसमें इसराइल विश्व भर में स्टार्टअप नेशन के रूप से जाना जाता है, और भारत भी आज विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप मुल्क बन चुका है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहयोग है, साइबर सुरक्षा में दोनों देशों की साझेदारी है, और उसके साथ साथ जो भी पश्चिम एशिया में व्यापक परिवर्तन हुए हैं उसमें क्षेत्रीय सहयोग की नई संभावनाएं भारत और इसराइल के बीच में सामने आई हैं। इसके अलावा जो जल संरक्षण और कृषि उत्पादकता का भविष्य भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें इसराइल की अपनी प्राथमिकता है, और फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसमें भी भारत और इसराइल के बीच में काफी सहयोग
1: जी
0: हुआ है। उसके साथ साथ दो और इस कनेक्टिविटी के ऊपर दो बड़े मुद्दे हैं भारत और इसराइल के बीच में। एक तो भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, और
1: जी
0: जिसको कि हम IMEC बोलते हैं, और एक I2U2, जिसमें भारत, इसराइल, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड स्टेट्स शामिल हैं। तो ये दोनों जो हैं, इसके चलते कनेक्टिविटी के साथ साथ जो दूसरी फील्ड्स उभर के सामने आई हैं भारत और इसराइल के बीच में, जैसे पोर्ट्स में एक नया आयाम खुला है, और पोर्ट में भारत ने हाइफा पोर्ट में भी इन्वेस्टमेंट किया है। तो इसको अगर हम पूरी इस नजरिए से देखें, तो हम देखते हैं कि भारत का एक 2047 तक विकसित भारत का एक लक्ष्य है,
1: जी
0: उसमें इसराइल एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है जिसकी भूमिका अहम रहेगी।
1: और नई विशेष रणनीतिक साझेदारी के बारे में, जैसे कि आपने पहले भी जिक्र किया, AI की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी की बात करें, क्वांटम टेक्नीस की बात करें, और इस तरह की जितनी भी उभरती हुई प्रौद्योगिकियां हैं, उन पर इस समय पूरे विश्व का विशेष जोर है और हमारे प्रधानमंत्री भी इस पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। भारत और इसराइल की तकनीकी क्षमताओं को देखते हुए आपको कौन से क्षेत्र में सबसे अधिक संभावनाएं दिखाई देती हैं?
0: जैसे कि आपने जिक्र किया है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसको AI बोलते हैं, उसके
1: जी
0: अतिरिक्त क्वांटम प्रौद्योगिकी और सेमीकंडक्टर, और फिर बायोटेक्नोलॉजी, और फिर उन्नत सामग्री विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा, ये सभी क्षेत्र हैं जिसमें दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं, और इन क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान, वैज्ञानिक आदान प्रदान और औद्योगिक सहयोग भविष्य की साझेदारी को मजबूत नींव तैयार कर रहा है। तो अगर हम आज की दुनिया में देखें, तो कोई भी राष्ट्र की शक्ति केवल उसकी सैन्य क्षमता या प्राकृतिक संसाधनों से
1: जी
0: निर्धारित नहीं होती, बल्कि नवाचार है, अनुसंधान है, प्रौद्योगिकी है, ज्ञान और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाएं, जिसको हम उस नजर से अगर हम
1: जी
0: देखें तो ये सभी इतनी ही महत्वपूर्ण हो चुकी हैं, और भारत और इसराइल की साझेदारी इन्हीं आधारों पर विकसित हो रही है। एक ओर भारत के पास विशाल प्रतिभा है, और दूसरी ओर इसराइल के पास अनुसंधान है, नवाचार है, और आधुनिक प्रौद्योगिकी का उत्कृष्ट क्षमता है। तो यही परस्पर जो पूरकता हम देखते हैं दोनों देशों की साझेदारी को
1: जी
0: भविष्य के लिए और अधिक सुदृढ़ बनाएगी।
1: बिल्कुल, ये साझेदारी और ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ेगी। भारत और इसराइल दोनों वादवाजी, आतंकवाद और सुरक्षा

0: शा चुनौतियों का सामना करते रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग में खुफिया जानकारी, साइबर सुरक्षा और सीमा सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच किस तरह का सहयोग आगे बढ़ सकता है?
1: विरुद्ध सहयोग भी दोनों देशों के संबंधों का एक महत्वपूर्ण आयाम है। आपने जिक्र किया खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान, साइबर सुरक्षा, संगठित अपराध की रोकथाम और महत्वपूर्ण संरचना की सुरक्षा जैसे क्षेत्रों के में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ता चला आ रहा है। भारत और इसराइल दोनों इस बात पर सहमत हैं कि आतंकवाद किसी भी रूप से स्वीकार्य नहीं हो सकता और उसके विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलकर कार्य करना चाहिए। और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो राडार प्रणालियां हैं, वायु रक्षा प्रणाली है, निगरानी के उपकरण हैं,
0: जी
1: इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली है और फिर ड्रोन और एंटी ड्रोन टेक्निक्स हैं, समुद्री सुरक्षा उपकरण हैं, सीमा प्रबंधन प्रणालियां हैं, ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत और इसराइल मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो भविष्य में जो सैन्य प्रौद्योगिकियां आगे आएंगी उनका संयुक्त विकास दोनों देश कर रहे हैं।
0: इस समय पश्चिम एशिया की स्थिति को अगर हम देखें तो वादबाजी ये अत्यंत जटिल है और भारत के इसराइल के साथ गहरे संबंध हैं। वहीं दूसरी ओर भारत के अरब देशों और खाड़ी क्षेत्रों के देशों के साथ भी महत्वपूर्ण रणनीतिक और आर्थिक रिश्ते हैं। ऐसे में भारत किस तरह अपने सभी प्रमुख साझेदारों के साथ एक संतुलित संबंध बनाए रख सकता है?
1: भारत और इसराइल के संबंधों का विकास वस्तुतः भारत की विदेश नीति के विकास की भी एक कहानी है कि जैसे जैसे भारत आर्थिक और सामरिक दृष्टि से

0: न्यू एज इंडस्ट्रीज हैं, जैसे हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन है, और जो ई मोबिलिटी की तरफ जाने वाली जो टेक्नोलॉजीज हैं, भारत और इसराइल उन पर दोनों पर मिलकर काम आगे जरूर करेंगे।
1: जी
0: और फिर मशीन लर्निंग है, रोबोटिक्स है, स्वास्थ्य प्रणालियां हैं, साइबर सुरक्षा है, स्मार्ट विनिर्माण है, डिजिटल प्रशासन है, ऐसे सभी क्षेत्रों में सहयोग का अनुसंधान को दोनों देश बढ़ावा दे रहे हैं।
1: जी और वाधवा जी, अंत में यदि आप आने वाले सालों के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो भारत इसराइल जो विशेष रणनीतिक साझेदारी को आप किस रूप में विकसित होते हुए देखेंगे, बहुत ही संक्षिप्त में?
0: अगर हम भविष्य की ओर देखें तो भारत और इसराइल के बीच सहयोग की संभावनाएं पहले से कहीं अधिक व्यापक दिखाई देती हैं। हमने जिक्र किया अभी एआई का और क्वांटम प्रौद्योगिकी का और सेमीकंडक्टर्स का, साइबर सुरक्षा का, रक्षा विनिर्माण का, फिर हरित ऊर्जा, जलवायु अनुकूल कृषि, स्वास्थ्य प्रणालियां, डिजिटल अवसंरचना, इन सभी में हमारी साझेदारी की नई पहचान होगी। और फिर उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि क्योंकि इसराइल

0: की तरफ जाने वाली जो टेक्नोलॉजीज हैं, भारत और इसराइल उन पर दोनों पर मिलकर काम आगे जरूर करेंगे।
1: जी
0: और फिर मशीन लर्निंग है, रोबोटिक्स है, स्वास्थ्य प्रणालियां हैं, साइबर सुरक्षा है, स्मार्ट विनिर्माण है, डिजिटल प्रशासन है, ऐसे सभी क्षेत्रों में सहयोग का अनुसंधान को दोनों देश बढ़ावा दे रहे हैं।
1: जी और वाधवा जी, अंत में यदि आप आने वाले सालों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत इसराइल जो विशेष रणनीतिक साझेदारी को आप किस रूप में विकसित होते हुए देखेंगे, बहुत ही संक्षिप्त में?
0: अगर हम भविष्य की ओर देखें तो भारत और इसराइल के बीच सहयोग की संभावनाएं पहले से कहीं अधिक व्यापक दिखाई देती हैं। हमने जिक्र किया अभी एआई का और क्वांटम प्रौद्योगिकी का और सेमीकंडक्टर्स का, साइबर सुरक्षा का, रक्षा विनिर्माण का, फिर हरित ऊर्जा, जलवायु अनुकूल कृषि, स्वास्थ्य प्रणालियां, डिजिटल अवसंरचना, इन सभी में हमारी साझेदारी की नई पहचान होगी। और फिर उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि क्योंकि इसराइल

आकाशवाणी उज्जैन से फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं सागर फिल्म का गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार ने, लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत से सजाया है आरडी बर्मन ने।

सागर फिल्म के इस गीत के बाद अब अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मेरा गांव मेरा देश। इस फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के स्वर में, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

श्रोताओं, इसी के साथ फिल्म संगीत संपन्न होता है। ये आकाशवाणी उज्जैन है, FM 102.5 MHz और न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आकाशवाणी का ये उज्जैन केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में पहले हिंदी फिर अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पारित। इसका उद्देश्य त्वरित भुगतान और विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ संबंध केवल आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन की मांग फिर दोहराई। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और उज्बेकिस्तान में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की तितली मांझी ने रजत पदक जीता। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
2: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन को संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों में एक बार फिर कामकाज में बाधा आई। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही भोजनावकाश से पहले दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं हो सका।

0: इससे पहले भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर दोनों सदनों में स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। दोनों सदनों की कार्यवाही जल्दी ही स्थगित हो जाने के कारण गैर सरकारी सदस्यों के विधायी कार्य भी नहीं लिए जा सके। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों और आपदा प्रबंधन विभागों से आपदा प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों में नए सामुदायिक रेडियो केंद्रों को बढ़ावा देने को कहा है। लोकसभा में आज सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों के दौरान स्थानीय भाषाओं में समय पर और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने में सामुदायिक रेडियो केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज डॉ. जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। विदेश मंत्री ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने कई राजनयिक कदम भी उठाए, इनमें सिंधु जल संधि को स्थगित रखना, अटारी सीमा चौकी को बंद करना, वीजा संबंधी प्रतिबंध लगाना तथा दोनों देशों के उच्चायोगों में राजनयिक और आधिकारिक कर्मचारियों की संख्या कम करना शामिल है। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियां खारिज कर दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है।
2: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
1: श्री जायसवाल ने भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा निर्बाध व्यापार का लगातार समर्थन करता है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी।
2: भारत सरकार का इस प्रेस वार्ता में कोई भूमिका नहीं थी। यह प्रेस वार्ता एक निजी मीडिया संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सरकार उस मंच से कहे गए जो भी शब्द थे उसका समर्थन नहीं करती है, खासकर वो शब्द जो वहां के सरकार के बारे में कही गई।
1: प्रवक्ता ने पाकिस्तान और सोमालिया के बीच हुए हाल ही में रक्षा समझौते पर कहा कि भारत इन घटनाक्रमों पर लगातार नजर रखे हुए है। उन्होंने बताया कि भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन आयोजित करने का भारत इच्छुक है। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर कहा कि भारत इस घटनाक्रम पर करीबी नजर रखे हुए है। पाकिस्तान और सोमालिया के बीच हाल में हुए रक्षा समझौते पर उन्होंने कहा कि भारत इन घटनाक्रमों पर लगातार नजर बनाए हुए है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सकल व्यापार किया गया है। सार्वजनिक खरीद में प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता, दक्षता और सुशासन के माध्यम से बदलाव लाने के लिए 9 अगस्त 2016 को जेम शुरू किया गया था। जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेहर कुमार ने नई दिल्ली में बताया कि जेम प्लेटफॉर्म पर कारोबार 2016-17 में 422 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है।
3: 422 करोड़ की शुरुआत थी हमारी 16-17 में और आज हम 20 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार पोर्टल के थ्रू करा पाए हैं। तो और इसमें 25 लाख सेलर्स हमारे साथ जुड़े हैं। किसी भी समय में करीब 4 लाख सेलर हमारे साथ व्यापार करते रहते हैं। हर दिन करीब 1000 करोड़ से ऊपर का व्यापार होता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 PhD शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। भोपाल में 5 अगस्त से जारी ब्रिक्स कल्चर ट्रैक 2026 के कार्यक्रमों के क्रम में आज 2 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव का समापन हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भोपाल में 5 अगस्त से जारी ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक 2026 के कार्यक्रमों के क्रम में आज 2 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक

0: सांस्कृतिक महोत्सव का समापन हो रहा है। समापन समारोह में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि संस्कृति विभिन्न देशों और समाजों को जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम है। उन्होंने साझा संस्कृति, विरासत, आपसी विश्वास और सहयोग की भावना को आगे बढ़ाने में ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। कार्यक्रम में संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल सहित ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के सदस्य शामिल थे। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से मैं विपिन मिश्रा।
1: उड़ीसा के भुवनेश्वर में आज 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। बैठक में सर्वसम्मति से भुवनेश्वर घोषणा पत्र अपनाया गया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि घोषणा पत्र समावेशी, मजबूत और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था विकसित करने के लिए ब्रिक्स देशों की प्रतिबद्धता दोहराता है। भारत और श्रीलंका ने विद्युत क्षेत्र में सहयोग पर आज नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने किया। श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ऊर्जा मंत्री अनुर करुण थिलाके ने किया। दो दिवसीय ब्रिक्स वेब्स बाजार 2026 का मुंबई में आज समापन हो गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रिक्स के 20 सदस्य और भागीदारी देशों के 900 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और 275 से अधिक व्यावसायिक बैठकें की गईं। एक रिपोर्ट।
2: मुंबई में आज ब्रिक्स वेव्स बाजार 2026 का समापन कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग घोषणाओं के साथ हुआ। एनएफडीसी के प्रबंध निदेशक प्रकाश मकदूम ने कहा कि इस आयोजन ने ब्रिक्स देशों के बीच रचनात्मक सहयोग की अपार संभावनाओं को प्रदर्शित किया। इस दौरान एनएफडीसी ने ब्राजील की रियो फिल्मे के साथ ऑडियो विजुअल सहयोग बढ़ाने के लिए आशय पत्र का आदान प्रदान किया, जबकि एनएफडीसी और राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय ने रूस के गॉस फिल्मो फंड के साथ सहयोग जारी रखने की घोषणा की। दक्षिण अफ्रीका, रूस, थाईलैंड और कजाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने ग्लोबल साउथ फिल्म फेस्टिवल 2027 की भी घोषणा की। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। एक रिपोर्ट।
3: छात्रों का आंदोलन आज भी जारी रहा। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष ने भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी का मुद्दा उठाते हुए सरकार से परीक्षाएं रद्द करने और पूरे मामले की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि इस विषय पर सरकार सदन में सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। इस बीच रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलनरत छात्रों से मिलने आज शाम प्रशासनिक अधिकारियों की टीम पहुंची। प्रशासन ने बताया कि टीम ने धरना स्थल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उधर सरकार के साथ प्रस्तावित वार्ता के लिए छात्रों ने 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की अंतिम सूची भी जारी कर दी है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल उड़ीसा, राजस्थान और चंडीगढ़ में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरलम, माहे और कर्नाटक सहित पूर्वोत्तर भारत में भी भारी वर्षा, गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की है। उड़ीसा में बाढ़ प्रभावित लोग बाढ़ से हुए नुकसान से उबरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मौसम विभाग ने मयूरभंज के लिए रेड अलर्ट और कई अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
4: उड़ीसा में एक बार फिर भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने राज्य के लिए रेड वार्निंग जारी की है। विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे में भारी बारिश होगी और ये सिलसिला 3 दिनों तक जारी रह सकती है। सालंदी और जालका नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक और केंदुझर जिलों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। इस बीच बाढ़ से प्रभावित कई परिवार अभी भी राहत सामग्री और मवेशियों के चारे के लिए जूझ रहे हैं, जबकि फसलों को हुए भारी नुकसान ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि केरलम के 4 जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
5: केरल के उत्तरी जिलों कासरगोड, कन्नूर, वायनाड और कोझिकोड के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के 4 अन्य जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है। कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की आशंका है, जबकि शेष 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। राज्य के सभी जिलों में पिछले एक सप्ताह से तेज बारिश हो रही है। शनिवार के लिए 10 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। हालांकि रविवार से राज्य में वर्षा में कमी आने का अनुमान है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: राजधानी दिल्ली

0: में आज सवेरे से कुछ जगहों पर हल्की और कुछ जगहों पर तेज बारिश हो रही है।
1: राष्ट्रीय राजधानी में दिन के समय कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। तेज बारिश के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ और कई इलाकों में लोगों को यातायात जाम का सामना करना पड़ा। इसके अलावा मौसम विभाग ने दिल्ली में कल भी हल्की से मध्यम बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। भानु के साथ ईशानी यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज तितली मांझी ने महिलाओं के 45 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया। तितली ने स्नैच में 65 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 80 किलोग्राम भार उठाकर कुल 145 किलोग्राम वजन उठाया और ये पदक जीता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पारित। इसका उद्देश्य त्वरित भुगतान और विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ संबंध केवल आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन की मांग फिर दोहराई। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और उज्बेकिस्तान में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की तितली मांझी ने रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Parliament clears MSME Development Amendment Bill to ensure faster payments and quicker dispute resolution. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says relations with Pakistan can only move ahead in an environment free of terror, hostility and violence. New Delhi reiterates its call for safe and unhindered navigation in international waters. Government e-marketplace completes 10 years with cumulative procurement crossing 20 lakh crore rupee mark. Alert issued for very heavy rain in Haryana, Chandigarh, Delhi, Kerala and Odisha. And in Asian Youth and Junior Weightlifting Championships, Titli Maji clinches silver medal in women's 45 kg category. And now the news in detail. The Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 has been passed by the Parliament, with the Lok Sabha approving it today. The Rajya Sabha had passed the bill on Monday. The bill aims to address payment delays and simplify dispute resolution. The legislation provides that every central public sector enterprise must settle all invoices for procurement of goods or services from MSMEs on the trade receivables discounting system. As per the bill, if mediation fails in case of dispute, then the reference for arbitration must be made within 30 days from the date of termination of mediation. Both Houses of Parliament today witnessed opposition's uproar over several issues, including the alleged police action during students' protest over the NEET issue. More from our correspondent.
3: Both the Houses of Parliament once again faced disruptions following opposition uproar over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET issue. Due to the continued disruptions by the opposition members, both the Houses were adjourned for the day before lunch. Following opposition uproar, question hour could not be taken up in both the Houses. Earlier, both the Houses paid tributes to the freedom fighters to mark the 84th anniversary of Quit India movement. The Lok Sabha also completed its legislative business by passing the Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026. Rajya Sabha had passed the bill on Monday. As both the Houses were adjourned early, the private members' business could not be taken up. With Dipendra, this is Anand Kumar for Akashvani News, Delhi.
2: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India's relations with Pakistan can only move ahead in an environment free of terror, hostility and violence. In a written reply in Lok Sabha today, Dr. Jaishankar said that Pakistan continues to follow the policy of cross-border terrorism and using terrorism as an instrument of state policy against India. The minister said India withdrew most favoured nation status to Pakistan and hiked customs duty on all goods originating in or exported from Pakistan to 200% after the Pulwama terror attack. India took a number of

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। पार्लियामेंट ने एमएसएमई तरक्याती बिल को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद तेज तर अदायगी और तनाजात के जल्द इजाले को यकीनी बनाना है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में दहशतगर्दी, मुकासमत और तशद्दुद से पाक माहौल में ही पेशरफ्त हो सकती है। भारत ने बैनुल अक्वामी समंदर में महफूज और बिला रोक टोक जहाजरानी के अपने अज़्म को दोहराया है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं, जिसके दौरान मजमूई खरीदारी 20 लाख करोड़ रुपए मालियत से तजावुज कर गई है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और ओडिशा में बहुत शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और एशियाई यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप्स में भारत की तितली माझी ने उज्बेकिस्तान में खवातीन के 45 किलोग्राम के जुमरे में चांदी का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। इंतहाई छोटी, छोटी और दरमियानी दर्जे की सनअतों की फरोग के तरमीमी बिल 2026 को आज लोकसभा में मंजूरी के साथ पार्लियामेंट ने मंजूर कर लिया। इस बिल को राज्यसभा में पीर के रोज मंजूर कर लिया गया था। इस बारे में पेश है एक रिपोर्ट।
1: पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में नीट मामले पर तालिब इल्मों के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन के शोर शराबे के बाइस खलल पड़ा। अपोजिशन अरकान के जरिए जारी शोर शराबे के बाइस दोनों ऐवानों की कार्रवाई जोहराने से कबल दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन के शोर शराबे की वजह से दोनों ऐवानों में वक्फा सवालात की कार्रवाई नहीं की जा सकी। इससे कबल दोनों ऐवानों में भारत छोड़ो तहरीक की 84वीं सालगिरह के मौके पर तमाम मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज अकीदत पेश किया गया। लोकसभा की कार्रवाई इंतहाई छोटी, छोटी और दरमियाने दर्जे की सनातों की फरोग तरमीमी बिल 2026 को मंजूरी के साथ पूरी की गई। राज्यसभा ने पीर के रोज इस बिल को मंजूरी दे दी थी। चूंकि दोनों ऐवानों की कार्रवाई जल्द ही मुलतवी कर दी गई, इसलिए प्राइवेट मेंबर बिजनेस नहीं किया जा सका। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: भारत ने मुजवजा गैर मुल्की अतियात जाब्ता तरमीमी बिल से मुतालिक अमरीकी कानून साज के जरिए उठाए गए एतराजात को यह कहते हुए मुस्तरद कर दिया कि भारत के कानूनी मामलात उसके अंदरूनी मामलात हैं, जिनके लिए पार्लियामेंट के जरिए फैसले किए जाते हैं। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान इस सिलसिले में एक सवाल का जवाब देते हुए ये बात कही। जनाब जायसवाल ने वाजे किया कि अमरीका समेत बहुत से ऐसे मुल्क हैं जो गैर मुल्की फंड्स के लेन देन को मुंजम

0: सकते हैं।
1: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
0: भारतीय बहरी जहाजों और जहाजरानों के तहफ्फुज और सिक्योरिटी से मुतालिक जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत इस मामले को आला तरजीह देता है। उन्होंने कहा कि तमाम खलीजी खित्ते में भारतीय मिशन उन मालिक में जहाजरानी की वजारत और समंदरी हुक्काम के साथ मुसलसल राबते में हैं। उन्होंने कहा कि 24 घंटे सातों दिन हेल्प लाइन्स फाल हैं ताकि अगर किसी शख्स को मदद की ज़रूरत हो तो वो उन तक रसाई कर सके। ये हेल्प लाइन्स पिछले कुछ महीनों से मुसलसल फाल हैं। उन्होंने कहा कि भारत बैनुल अक़वामी समंदर में महफूज और बिला रुकावट जहाजरानी और आज़ादाना तिजारत के लिए जोर देता रहा है। भारत ने तमाम फरीकैन पर जोर दिया है कि वो शहरी ढांचे और गैर फौजी बहरी जहाज़ों और जहाजरानों को निशाना बनाने से गुरेज करें। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक एक सवाल का जवाब देते हुए जनाब जायसवाल ने इस बात को दोहराया कि भारत का उस तकरीब में कोई किरदार नहीं था।
1: भारत सरकार का इस प्रेस वार्ता में कोई भूमिका नहीं थी। यह प्रेस वार्ता एक निजी मीडिया संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सरकार उस मंच से कहे गए जो भी शब्द थे उसका समर्थन नहीं करती है, खासकर वो शब्द जो वहां के सरकार के बारे में कही गई है।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान गुज़िश्ता रात टेलीफोन बातचीत से मुतालिक वज़ारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि दोनों लीडरों ने मग़रिबी एशिया में जारी सूरत हाल और बदलते हुए हालात का जायजा लिया। उन्होंने मजीद कहा कि ये फोन इसराइल की जानिब से किया गया था। उन्होंने मजीद कहा कि भारत की इसराइल के साथ खसूसी जामे शराकत दारी है। तर्जुमान ने कहा कि दोनों लीडरों के दरमियान बातचीत के दौरान मुख्तलिफ शोबों में तआवुन को मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई माहदे से मुतालिक जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत इस सूरत हाल पर करीबी नज़र रखे हुए है। पाकिस्तान और सोमालिया के दरमियान हालिया दिफाई माहदे से मुतालिक जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत इन मामलों पर करीबी नज़र रखे हुए है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि भारत अफ्रीका फोरम चोटी कॉन्फ्रेंस मुनक़द करना चाहता है। दोनों ममालिक मौजूद तारीख तय करने के लिए एक दूसरे के रबते में हैं और ये तय करेंगे कि चोटी कॉन्फ्रेंस कब मुनक़द की जा सकती है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ भारत के ताल्लुकात सिर्फ दहशतगर्दी, मुकासमत और तशद्दुद से आज़ाद माहौल में ही आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज अपने तहरीरी जवाब में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ सरहद पार दहशतगर्दी की अपनी पॉलिसी पर अमलावरी और दहशतगर्दी का सरकारी पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल जारी रखे हुए है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत ने पुलवामा दहशतगर्द हमले के बाद पाकिस्तान को दिया गया सबसे ज़्यादा पसंदीदा मुल्क MFN का दर्जा वापस ले लिया है और पाकिस्तान में बनने वाली या पाकिस्तान से बरामद की जाने वाली सभी अशिया पर कस्टम ड्यूटी 200% बढ़ा दी है। भारत ने पुलवामा दहशतगर्द हमले के बाद सिंध आबी माहदे को मुलतवी करने, अटारी चेक पोस्ट बंद करने, वीज़ा महदूद करने और मुतालिका मिशनों में सिफारतकारों और अफसरान की तादाद को कम करने समेत मुख्तलिफ सिफारती इकदाम किए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने मजीद बताया कि पाकिस्तान और पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की फौजी कार्रवाई भी की गई है। भारत और श्रीलंका ने आज नई दिल्ली में एक मीटिंग के दौरान बिजली के शोबे में दोतरफा तआवुन का जायजा लिया। इस दौरान भारतीय वफ़द की क़यादत बिजली, हाउसिंग और शहरी उमूर के मरकजी वजीर मनोहर लाल ने की, जबकि श्रीलंका के वफ़द की क़यादत बंदरगाहों, शहरी आवाबाजी और तवानाई के वजीर अनुरा करुणा तिलक ने की। बिजली की वजारत के मुताबिक दोनों वजीरों ने मुजव्वजा श्रीलंका भारत HVDC इंटरकनेक्शन और सम्पूर शमसी बिजली प्रोजेक्ट समेत जारी दोतरफा पहलों की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। दोनों वजीरों ने सरहद पार बिजली की फरोख्त, काबिल तजदीद तवानाई, तरसील के बुनियादी ढांचे और सलाहियत साजी के शोबों में इश्तराक को वसत देने से मुतालिक इम्कान पर तबादला ख्याल किया। भारत ने टैरिफ पर मबनी मुसाबिकती नीलामी के फ्रेमवर्क के जरिए तरसील के निज़ाम को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल के तौर पर तैयार करने का अपना तजुर्बा मुश्तरक किया। ब्रिक्स वज़राए तालीम की 13वीं मीटिंग आज भुवनेश्वर में कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुई। इस दौरान इत्तेफाक़ राय से एलामिया को अपनाया गया। मरकजी वजीर तालीम प्रहलाद जोशी ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि ये एलामिया मजबूत इदारा जाती इश्तराक, सलाहियत साजी और मालूमात के इश्तराक के जरिए शमूलियाती, लचकदार और मुस्तकबिल के लिए तैयार तालीमी निज़ाम की तश्कील के लिए ब्रिक्स ममालिक की अहदबस्तगी की तौसीक करता है। वजीर तालीम ने कहा कि इस मीटिंग में ब्राज़ील, रूस, चीन, जनूबी अफ्रीका

0: इंडोनेशिया, ईरान, इथियोपिया और मुत्तहदा अरब अमारात के वुजराए तालीम ने शिरकत की। जनाब जोशी ने मजीद कहा कि ब्रिक्स और इसके हलीफ ममालिक मिलकर आलमी जीडीपी के तकरीबन 40% हिस्से और तकरीबन दुनिया की निसफ आबादी की नुमाइंदगी करते हैं। वजीर अजम नरेंद्र मोदी कल आईआईटी दिल्ली के 57वें तकसीम असनाद से खिताब करेंगे। वजीर अजम 587 पीएचडी स्कॉलर्स और अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तलबा समेत आईआईटी दिल्ली से फारिग होने वाले 3,000 से ज्यादा तलबा से खिताब करेंगे। इस बारे में आज नई दिल्ली में अखबारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर रंगन बैनर्जी ने कहा कि जनाब मोदी होनहार तलबा में सदर जमहूरिया के गोल्ड मेडल, डायरेक्टर गोल्ड मेडल, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल और परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल समेत इदारे के सबसे बावकार इनामात तफवीज करेंगे। जनाब बैनर्जी ने मजीद कहा कि वजीर अजम आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में कायम एआई से चलने वाले हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग मरकज परम प्रज्ञ का वर्चुअल वसीले से इफ्तिताह करेंगे। भारत के कौमी सरकारी खरीदारी के प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GeM ने गुज़िश्ता 10 सालों में 20 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा रकम मालियत की जामे मजमू तिजारत का निशाना हासिल कर लिया है। GeM के का आगाज़ 9 अगस्त 2016 को किया गया था। इसका मकसद टेक्नोलॉजी, शफाफियत, कारकर्दगी और अच्छी हुक्मरानी के जरिए सरकारी खरीदारी के निज़ाम की काया पलट करना था। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खिताब करते हुए GeM के CEO मिहिर कुमार ने कहा कि GeM का कारोबार 2016-17 में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर अब 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया है।
1: 422 करोड़ की शुरुआत की हमारी 16-17 में और आज हम 20 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार पोर्टल के थ्रू करा पाए हैं। तो और इसमें 25 लाख सेलर हमारे साथ जुड़े हैं। किसी भी समय में करीब 4 लाख सेलर हमारे साथ व्यापार करते रहते हैं। हर दिन करीब 1000 करोड़ से ऊपर का व्यापार होता है।
0: इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने कॉरपोरेट पेशेवर अफराद और माली शोबे के पेशेवर अफराद को बॉस स्कैम या खुद को CEO जाहिर करने वाले धोखे से खबरदार किया है। एक बयान में वजारत दाखिले ने कहा कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP पर नुकसान पहुंचाने वाली फाइलों के जरिए पेशेवर और कारोबारी अफराद के व्हाट्सएप अकाउंट हैक करने से मुतालिक वाकयात की शिकायतों में तेजी से इजाफा हुआ है। भारत ने महज 3 साल के अंदर 1000 किलोमीटर से ज़्यादा सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन हासिल कर लिया है, जो कि मुकर्रर वक्त से काफ़ी पहले हासिल कर ली गई पेशरफ्त की अक्कासी करता है। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में तीसरे इंडिया इंटरनेशनल फिनटेक फेस्टिवल से खिताब करते हुए ये बात कही। भारत के महकमे मौसमियात ने ओडिशा और राजस्थान में कल शदीद से इंतहाई शदीद बारिश के साथ गरज चमक और बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, मगरबी बंगाल, केरलम, माहे और कर्नाटक समेत शुमाल मशरक़ी भारत में कल के लिए शदीद बारिश के साथ गरज चमक और बिजली चमकने की भी पेशगोई की है। आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में गरज चमक और तुंद हवाएं चलने की भी पेशगोई की गई है। अंडमान निकोबार जजायर, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, तेलंगाना, गुजरात, वस्ती महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी कल इसी तरह की सूरत हाल रहने का इम्कान है। इस दौरान कौमी राजधानी में गुज़िश्ता 24 घंटों में अच्छी बारिश हुई है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: कौमी राजधानी के मुख्तलिफ हिस्सों में गरज चमक और बिजली चमकने के साथ साथ शदीद बारिश हुई। दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जे हरारत 23 से 26 डिग्री सेल्सियस और ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 27 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहा। बारिश की वजह से मामूल की जिंदगी में फर्क पड़ा और बहुत से इलाकों में ट्रैफिक जाम हुआ। मजीद बरां, भारत के महकमे मौसमियात ने कल के लिए हल्की से औसत दर्जे की बारिश होने के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शाहिद अबी।
0: इस दौरान केरलम के 4 जिलों में बहुत शदीद बारिश के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया गया है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
3: शिमाली केरलम के अजला कसारागोड, कन्नूर, वायनाड और कोझिकोड में रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये अजला आज दोपहर तक ऑरेंज अलर्ट के तहत थे। दीगर 4 अजला में भी शदीद बारिश के सबब ऑरेंज अलर्ट जारी है। केरलम के बकिया 6 अजला में येलो अलर्ट नाफिज है। रियासत के तमाम अजला में गुज़िश्ता 1 हफ्ते से बारिश के सबब अलर्ट जारी किए जा चुके हैं। सनीचर के रोज के लिए 10 अजला में येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। बारिश की शिद्दत में इतवार से कमी आने का इम्कान है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पलारूथी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में नौजवानों और जूनियर एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने शानदार शुरुआत की है। भारत की वेटलिफ्टर तितली माझी ने 45 किलोग्राम जुमरे में चांदी का तमगा जीता है। उन्होंने स्नैच में 65 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 80 किलोग्राम वजन उठाया। इस तरह उन्होंने कुल 145 किलोग्राम वजन उठाकर तमगा अपने नाम किया। इसी मुकाबले में भारत की परिश्मिता गोगोई ने चौथा मुकाम हासिल किया है। ये चैंपियनशिप 14 अगस्त तक जारी रहेगी। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट ने एमएसएमई तरक्याती तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद तेज तर अदायगी और तनाज़ात के जल्द इजाले को यकीनी बनाना है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में पेशरफ्त दहशतगर्दी, मुखासमत और तशद्दुद से पाक माहौल में ही हो सकती है। भारत ने बैनुल अक्वामी समंदर में महफूज और बिला रुकावट जहाजरानी के अपने अज़्म को दोहराया है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं, जिसके दौरान मजमू खरीदारी 20 लाख करोड़ रुपए मालियत से तजावुज़ कर गई है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और ओडिशा में बहुत शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और एशियाई यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत की तितली माझी ने उज्बेकिस्तान में खवातीन के 45 किलोग्राम के जुमरे में चांदी का तमगा जीता है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
4: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल जगत।

खेल जगत कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष गजपी। श्रोताओं, खेलों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। यह हमें न सिर्फ स्वस्थ जीवन प्रदान करता है बल्कि हमारी एकाग्रता को बढ़ाने में भी सहायक होता है। अगर खेलों में योग को शामिल कर लिया जाए तो यह खिलाड़ियों में सकारात्मक प्रभाव डालता है। अगर योग की बात करें तो योग को अब प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। वर्तमान में योग में असीम संभावनाएं हैं, जरूरत है उन्हें पहचानने की।

0: भारत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: सर नमस्कारम सर।
0: भारत सिंह जी, हम सरल भाषा में अगर समझना चाहे तो योग क्या है और मानव स्वास्थ्य पर यह कितना ज़्यादा प्रभावशाली है?
1: योग जैसे कि हमारी जो संस्कृति है, संस्कृति का ही एक भाग है योग, और जो 6 फिलोसोफी है इंडियन फिलोसोफी जिसमें योग को समावित किया है, तो ये एक दर्शन है जो हमारे जीवन की पद्धति को कैसे हम जिए उसके बारे में ये बताता है। तो योग को सरल भाषा में अगर हम समझें तो जीवन जीने की एक कला है जिसमें हमें एक मर्यादित ढंग से कैसे जीवन जीना वो इसमें दिखाया गया है, और योग जो है हमें जीवन जीने की एक कला प्रदान करता है, चाहे वो आसन के माध्यम से हो, चाहे हमारे यम नियम हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो योग की क्रियाएं हम अपने दैनिक जीवन में अपनाते हैं।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि योग को खेल में शामिल किया गया है?
1: योग का एक पार्ट, जैसे महर्षि पतंजलि ने 8 अंग बताए हैं योग
0: जी,
1: के
0: जी।
1: यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो उसमें से एक अंग है आसन। तो आसना का जो पार्ट है उसे स्पोर्ट्स के रूप में माना गया है। अभी 2019-20 में इसको भारत सरकार ने मान्यता दी है, मगर इससे पहले भी योग की कॉम्पिटिशन होती थी यूनिवर्सिटी लेवल पे, स्कूल लेवल पे, और इसको भारत सरकार स्पोर्ट्स का दर्जा अभी तक नहीं दिया था, मगर काफ़ी विद्वानों ने काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये सिद्ध किया कि भाई योग में भी कंपटीशन हो सकती है, क्योंकि योग के बहुत सारे पार्ट हैं, ध्यान, धारणा, समाधि। अब ये जो चीज़ें हैं ये हर कोई जज नहीं कर सकता, और उसको जज करना बहुत असंभव की बातें होती है। तो योग का जो पार्ट है आसना, तो आसना के ऊपर जजिंग हो सकती है, तो हमने केवल पार्ट रखा है आसना, और जो फेडरेशन का भी नाम रखा है जो जिन विद्वानों ने रखा, बड़ा सोच समझ के रखा, योगा आसना स्पोर्ट्स एसोसिएशन या योगा आसना फेडरेशन, तो वो बड़ा क्लियर कट है कि भाई हमने केवल योग के आसनों को महत्व दिया है और आसनों के ऊपर

0: जिससे लोग अपना रहे हैं, एक स्वास्थ्य की दृष्टि से तो वो अच्छा है ही, अगर उसको खेल के दृष्टि से भी अपना रहे तो एक लाइफ के लिए और करियर के लिए भी हम उसको देख सकते हैं।
1: जी, तो हम अपने तमाम अभिभावक को जो भी यह कार्यक्रम सुन रहा हूँ उनको यही कहना चाहेंगे कि योग में जो भी अपना भविष्य अपने बच्चों के लिए तलाश रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा खेल है। यह न सिर्फ आपको स्वास्थ्य प्रदान करेगा बल्कि आपको एक प्रोफेशनली अगर आप इसमें कुछ करना चाहें तो इसमें भी करने की बहुत सारी गुंजाइशें हैं। तो योग ज़रूर करें, इसका पालन करने से निश्चित ही आपके दिनचर्या में अवश्य रूप से सकारात्मक बदलाव नजर आएगा। अब हम आपसे ये जानना चाहें, जैसे अभी आपने बात की हमसे कंपटीशन की, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन से कॉम्पिटिशन इंडिया में होते हैं योग के।
0: पहले भी योग के कंपटीशन होते हैं और अभी भी हो रहे हैं, तो योग में जो अभी भारत सरकार ने मान्यता जिस फेडरेशन को दी है, तो एक तो वो कंपटीशन होती है जिसको हम ओपन कंपटीशन कहते हैं
1: जी।
0: तो एक ओपन कंपटीशन होती है कॉलेज स्तर पे, जो कॉलेज के विद्यार्थी होते हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी गेम्स, फिर खेलो इंडिया
1: जी,
0: नेशनल गेम्स, इन सब तमाम जो एक बड़े प्लेटफॉर्म है उन सब में योग को शामिल किया है। स्कूल गेम्स में शुरू से ही योगासना की कॉम्पिटिशन आयोजित होती रही है, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि योग का एक बहुत ही अच्छा वातावरण पूरे देश में बना हुआ है और इसको एशियाई गेमों में या एशियन चैंपियनशिप में भी शामिल किया है। ये बहुत बड़ी बात है कि क्योंकि कम समय में, मतलब 2019-20 में इसको मान्यता मिली और आज हमारे जो खिलाड़ी हैं वो एशियन चैंपियनशिप में आपको देखने को मिलेंगे
1: जी,
0: जो कि एक बहुत ही सकारात्मक चीज़ है। और जो बच्चे अपना इसमें करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि भाई हम स्वास्थ्य की दृष्टि से तो इसको अपनाएं, इसमें हम करियर भी अपना देख सकते हैं, क्योंकि जो खेल कोटा होता है उसमें भी योग को शामिल किया है। तो हर एक जगह पर जहां पर भी स्पोर्ट्स की जो जो फैसिलिटी अदर गेम को मिलती थी, ओलंपिक गेम को मिलती थी, वो हमारे जो भारतीय खेल हैं उनको भी मिल रही है।
1: क्या भविष्य में ओलंपिक में शामिल किए जाने की योग की संभावना है?
0: बिल्कुल है, जब इतनी बड़ी संख्या में जो कंट्रियां योग को अपना रही है तो आगे चल के तो नेचुरल रूप से बहुत ही आसानी से ओलंपिक में हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि मात्र 3-4 सालों में ही हमने एशियन चैंपियनशिप में इसको इंक्लूड करा दिया है
1: जी, जी।
0: तो ओलंपिक में तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा उसमें
1: जी, जी। और शायद यही वजह है कि योग का लोहा पूरा विश्व मान चुका और 21 जून को इसीलिए विश्व योग दिवस मनाया जाता है
0: जी।
1: अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि योग सीखने के लिए प्रशिक्षक की भूमिका कितनी ज्यादा अहम होती है?
0: देखिए, योग एक ऐसी विधा है जिसमें बिना गुरु के योग सीखना असंभव है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें जो है विद्यार्थियों को पता नहीं होती है। हम अगर सोशल मीडिया की बात करें कि सोशल मीडिया में या यूट्यूब पे देख के हम योग करें, तो बहुत सारी चीजें हैं जो सोशल मीडिया पे जो वीडियो बनाते हैं वो इतनी बारीकियां नहीं बता सकते उसमें, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और अपलोड नहीं होगी, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो एक योग शिक्षक का होना परम आवश्यक है, क्योंकि योग में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है डिफिकल्ट, जहाँ एक शिक्षक का होना बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि आसन में अगर आप गए और उस आसन से वापस नहीं आ पा रहे हैं या आपका शरीर वहाँ से या स्ट्रेच आपने मसल्स कर ली, तो उसके बाद आपको क्या करना है, तो वो जानना या ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसलिए योग में शिक्षक की भूमिका अहम मानी गई। और हमारे जो योग दर्शन है, चाहे पतंजलि योग हो या हठ योग प्रदीप का हो या घेरण सहित हो, उसमें गुरु का बहुत बड़ा योगदान या बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि योग की शिक्षा बिना गुरु के संभव नहीं है
1: जी। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो सबके मन में आता है वो यह है कि योग सीखने के लिए सही उम्र क्या है या क्या होनी चाहिए?
0: देखिए, योग एक ऐसी विधा है जिसमें उम्र का कहीं कोई वो नहीं है इसमें कि हम इसी एज से स्टार्ट करें। मेरे जो गुरु हैं बीएस अयंगार, उनकी 2012-13 में 100 साल से ऊपर एज थी और वो आसन वैसे कर पाते थे जो आज हमारे जो प्रोफेशनल एथलीट हैं, योगा आसना करने वाले खिलाड़ी हैं, वो भी नहीं कर सकते थे। तो उनकी इतनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी थी उस एज में। तो मैं कह सकता हूँ कि योग में कोई एज का लिमिटेशन नहीं है। फिर भी हम एक कंपटीशन के तौर पे, एक प्रोफेशनल एथलीट के तौर पे अगर हम इसमें अपना करियर बनाना चाहें तो करीब 5-6 साल की उम्र होना चाहिए ताकि बच्चा उसको करे और समझ सके।
1: जी जी जी, बहुत अच्छी बात की आपने। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे ये है कि योग करते वक्त किन नियमों का पालन करना चाहिए अगर हम ये प्रोफेशनली खेल की बात करें तो?
0: देखिए, हमारे योग शास्त्र में चाहे हठ प्रदीप का हो, या घेरण संहिता हो, उसमें यम नियम के साथ साथ उन्होंने आहार की बात कही है, वातावरण की बात कही है,

0: हमारे आहार कैसा होना चाहिए। तो जो योग के साधक होते हैं उनका आहार ऐसा आहार होना चाहिए, सुपाच्य आहार होना चाहिए,
1: जी
0: मित आहार होना चाहिए। और भगवद गीता में भी आहार के बारे में बताया है कि जो चार प्रकार के आहार होते हैं और वो आहार ऐसे हों कि जो हमारे शरीर को पुष्ट करे,
1: जी
0: है ना। और राजसिक, तामसिक और सात्विक, ऐसे तीन प्रकार के आहारों की चर्चा है जो हमारे शरीर और मन के ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो वो आहारों की एक बात हम कर सकते हैं। दूसरा, ड्रेस कोड। तो योगा आसना में हमारी मसल्स स्ट्रेच होती है, हमें बॉडी मूवमेंट करना होता है, तो हम कॉटन के कपड़े उसमें पहनते हैं, थोड़े ढीले कपड़े होना चाहिए,
1: जी जी
0: एक योगा मैट होना चाहिए। ऐसे वातावरण में करें जहाँ खुली हवा हो, सपोकेशन ना हो, गर्मी ना हो, कीट या मच्छर ऐसे आदि ना हो, तो ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए। और इसके अलावा हमें दिनचर्या अपने योग के हिसाब से अपनी बनाना चाहिए कि हमें कितने टाइम पे उठना चाहिए। योग का जो उत्तम समय माना गया है वो ब्रह्म मुहूर्त माना गया है, जिसमें हम 3:30 बजे के बाद 5 बजे से पहले अगर हम ध्यान या योगा साधना करते हैं तो वो हमारी लाइफ में भी और हमारी जो विद्या है जिसे हम सीख रहे हैं, योग सीख रहे हैं, उसको अगर हम उच्च शिखर तक ले जाएंगे तो वो जो काल होता है जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, अगर उसमें अगर हम साधना करते हैं तो वो निश्चित ही हमें ऊंचाई तक ले जाने में सहायक होगी। तो इन सब बातों का ध्यान हमें योग करते समय रखना चाहिए।
1: और प्रोफेशनली जो लोग योग को अपनाते हैं उनके लिए भी यही नियम लागू होते हैं?
0: हाँ, उनके लिए जब वो करते हैं तो ये अंतरंग योग, योग में भी दो पार्ट हैं, एक अंतरंग एक बहिरंग। अगर हम अंतरंग योग की बात करते हैं, साधना की बात करते हैं, समाधि की बात करते हैं, आध्यात्म की बात करते हैं, तो जो ब्रह्म मुहूर्त होता है वो उन साधकों के लिए बहुत ही अलौकिक और बहुत ही दिव्य समय होता है जिसमें वो साधना करें
1: जी
0: तो उनको निश्चित ही सफलता मिलेगी। और जो योग साधक हैं जो केवल आसन तक सीमित हैं, जिनको शरीर को तोड़ मरोड़ के और जो योगा कंपटीशन में जो रिक्वायरमेंट होती है उसे पूरा करना है, तो वो किसी भी समय करें। बस उनको ये ध्यान रखना है कि करीब जब योग आसन करने जाएँ तो वो खाली पेट जाएँ, एंटी स्टमक रहें, करीब 2 घंटे या 3 घंटे पहले ही जो आहार लें या भोजन करें उसका वो ध्यान रखें।
1: जी
0: और जब वो योग साधन करने जाते हैं तो कुछ थोड़ा सा फल या कोई जूस ये पीकर करें तो ज़्यादा उनको फायदा होगा,
1: जी
0: तो इस टाइप से वो करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है।
1: जी आम इंसान योग को अपना कर निश्चित एक अच्छी लाइफ अपना सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर कोई खिलाड़ी, कोई दूसरे स्पोर्ट्स में कोई खिलाड़ी है
0: जी
1: वो अगर योग को अपनाते तो क्या उससे उनके खेल पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा?
0: बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि जब हम खेल के मैदान में होते हैं तो हमारे स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है खेल का, ऐसी परिस्थिति में योग हमें बहुत हेल्प करता है। क्योंकि योग में आसन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि हम ध्यान कह सकते हैं, प्राणायाम कह सकते हैं, मुद्राएं कह सकते हैं, तो वो सब चीज़ें हमें वहाँ हम उस डिप्रेशन से, उस प्रेशर से हम लड़ सकते हैं और उससे बाहर निकल के हम एक बेहतर प्रदर्शन करने में हमें सहायक होती है।
1: जी। और जो योग है, प्रेशर हैंडल करने की क्षमता है वो
0: जी
1: आपकी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो योग को अवश्य अपनाना चाहिए, निश्चित ही से सकारात्मक बदलाव नज़र आएगा।
0: नज़र
1: भारत जी, कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या संदेश देना चाहते हैं उन लोगों को जो योग में अपना भविष्य तलाश रहे हैं?
0: मैं ये कहना चाहूँगा कि योग हमें शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य तो प्रदान करता ही है, अगर हम इसको कैरियर के रूप में भी देखते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो भी आप कॉम्पिटिशन्स खेल सकते हैं, क्योंकि एक सिविल सेवा सर्विसेज के नाम से कॉम्पिटिशन्स होती है जो पूरे देश में चलती है उसके, और उससे बहुत बड़े बड़े बेनिफिट्स भी होते हैं जो सभी को पता है। और दूसरी बात करें हम जो सर्विस में नहीं है या प्राइवेट जॉब करते हैं उनके लिए भी कॉम्पिटिशन्स हैं, क्योंकि मास्टर्स कॉम्पिटिशन्स लगातार इसकी आयोजित की जा रही है, तो हर एज की उसमें कॉम्पिटिशन होती है, चाहे 25 से 35 हो, 35 से 45 हो, या 45 से 55 हो, तो ऐसे एज ग्रुप उन्होंने रखे हैं। और उनके आसन भी इतने टिपिकल नहीं है कि हम नहीं कर सकते, उसको आम जन अगर थोड़ा सा अभ्यास करे तो वो कर सकता है, उसमें करियर अपना बना सकता है। तो एक जो बड़ी उम्र के हैं वो भी योग में आ सकते हैं, और जो छोटे बच्चे हैं जिनको अभी अपना करियर चुनना है या तलाश रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा एक मंच है जहाँ एक बड़े पवित्रता से, पूरी पारदर्शिता के साथ योग की कॉम्पिटिशन्स आयोजित की जाती है, जिसमें आपको किसी प्रकार का संदेह नहीं होता है। तो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप अपना करियर चुन सकते हैं, और आने वाले समय में ये एक फ्यूचर ओलंपिक गेम है, क्योंकि एशियन गेम्स में तो ये शामिल हो ही चुका है, वर्ल्ड चैंपियनशिप, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स इसके आयोजित होते हैं, तो इसमें बेहतर संभावना है। और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप योग को अपनाएं। योग, अगर आप योग के परम शिखर तक नहीं भी पहुंच पाए तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ पालेंगे योग से, जो आपको पूरी लाइफ में आपको बहुत हेल्प करेगा।
1: भारत जी, बहुत अच्छी बात की आपने, और हम अपने श्रोताओं को यही कहना चाहेंगे कि जीवन जीना एक कला है, और अगर आप जीवन सही ढंग से जीना चाहते हैं और आप योग को अपने दिनचर्या में शामिल कर लेंगे तो निश्चित ही आपका जीवन बहुत ही सुखमय बीतेगा, हम यही उम्मीद करते हैं। भरत जी, आप हमारे स्टूडियोज में आए और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमसे साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।

0: अभी आपने सुनी खेल और योग विषय पर योग विशेषज्ञ भरत सिंह बांगेवाल से की गई है बातचीत। इसी के साथ खेल जगत के आज के अंक से हमें इजाजत दीजिए, अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल जगत, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। चिक चिक बम बम बम चिक चिक।

मृत्यु दंड फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं। उदित नारायण और अलका याग्निक ने इसे गाया है। जावेद अख्तर का लिखा यह गीत आनंद मिलिंद ने स्वरबद्ध किया।

उदित नारायण और अलका याग्निक के गाए फिल्म मृत्युदंड के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं के पत्रों द्वारा भेजी पसंद इस कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं। पहला गीत शामिल कर रहे हैं हम कुदरत फिल्म का, लता मंगेशकर का गाया हुआ। मजरूह सुल्तानपुरी ने गीत के बोल लिखे हैं और धुन बनाई है आर डी बर्मन ने। सुनना चाहा है वसंत जी हजारे, गांधी कैंप इचककरंजी डिस्ट्रिक्ट कोल्हापुर महाराष्ट्र से, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया की। ननौरा महोबा उत्तर प्रदेश से बलराम दास अहिरवार, श्रीमती कस्तूरी, आराधना, सोनिका, उपमा और नैतिक वर्मा ने।

अगला अनुरोध शामिल कर रहे हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा की, कालका से शुभचंद बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल बजाज की, कृष्णानगर टीवी टावर सेमिनरी हिल्स, नागपुर महाराष्ट्र से नाना डोंगर दिवे, रमाताई डोंगर दिवे, सीमाताई डोंगर दिवे, रीमाताई डोंगर दिवे, दीक्षा और राहुल डोंगर दिवे की, मंगल ट्रेडर्स, शिव मंगल ट्रेडर्स और शुभलाभ कॉम्प्लेक्स पयोर जिला रायगढ़ से ये पत्र है, राजगढ़ मध्य प्रदेश से, मासूम फिल्म का गीत भूपिंदर और सुरेश वाटकर का गाया, गुलजार की शब्द रचना है और आर डी बर्मन की धुन है।

अगली पसंद शामिल कर रहे हैं कंवर कॉलोनी बढ़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति शिवानी और मीनूराज श्रीमाली की, सनावत से राजकुमार बुडाना, रानू, लक्ष्मी और यश कुमार बुडाना की, जरूर वरुण महाराष्ट्र से बाबा साहेब वाड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कानीरे, कार्तिक और युवराज की। सुनना चाहा है हमसाया फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ। शेवान रिजवी ने इस गीत लिखा, ओपी नैयर की धुन है।

अगली पसंद शामिल कर रहे हैं थाना रोड बक्सर से ज्योत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष, आयुषी और सानवी की। यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार, जितेंद्र धर्मेंद्र मालाकार की। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शुएब खान, साइमा खान, पोतरा मुश्तबा खान, पोतरी आफिया खान, रऊफ भाई और शाहिद भाई की। सुनना चाहा है चोरी चोरी फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर और मन्ना डे का गाया। हसन जयपुरी ने बोल लिखे हैं और संगीतकार शंकर जयकिशन।

मधुमति फिल्म का ये गीत था, मुकेश का गाया हुआ। गीतकार थे शैलेंद्र और संगीतकार थे सलिल चौधरी। ये फरमाइश भेजी थी गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित ने। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। भटिंदा पंजाब से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक और शोभा नायक ने। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ये पसंद अपनी भेजते हैं। अब कार्यक्रम में ये गीत है फिल्म महबूबा से, लता मंगेशकर का गाया हुआ, आनंद बख्शी ने गीत लिखा और आर डी बर्मन की धुन है। सुनना पसंद किया है दतरंगी से भागत वर्मा, गुलाबदास मानिकपुरी लेवई से, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू ने। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले ने। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया ने।

लता मंगेशकर के गाये फिल्म महबूबा के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में लीजिए सुनिए ध्रुव ज्योति घोष का सारंगी पर बजाया राग अडाना। विलंबित गत एक ताल और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। इनके साथ तबला संगतकार नयन ज्योति घोष।

अभी आप सुन रहे थे ध्रुव ज्योति घोष का सारंगी पर बजाया राग अडाना। अब कार्यक्रम में लीजिए सुनिए ध्रुव ज्योति घोष का सारंगी पर बजाया राग देस। इनके साथ तबला संगतकार हैं नयन ज्योति घोष। विलंबित ताल 3 ताल में निबद्ध है और विलंबित गत 1 ताल में निबद्ध है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब समाचार दिल्ली केंद्र से होंगे, पहले हिंदी में और फिर इंग्लिश में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
2: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज डॉ. जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। विदेश मंत्री ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने कई राजनयिक कदम भी उठाए। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियां खारिज कर दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है।
3: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पे निर्णय लेती है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत जहाजों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा निर्बाध व्यापार का लगातार समर्थन करता है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम पर पिछले 10 वर्षों में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सकल व्यापार किया गया। सार्वजनिक खरीद में प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता, दक्षता और सुशासन के माध्यम से मैं बदलाव लाने के लिए 9 अगस्त 2016 को जेम शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 PhD शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। राजस्थान के जयपुर में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की 16वीं बैठक आज सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की। बैठक में ब्रिक्स देशों के व्यापार मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व व्यापार संगठन के नियमों पर आधारित निष्पक्ष और विकासोन्मुख व्यापार व्यवस्था का समर्थन करता है। उन्होंने विकासशील देशों के खाद्य सुरक्षा हितों रक्षा पर भी जोर दिया। मौसम विभाग ने कल उड़ीसा, राजस्थान और चंडीगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरलम, माही और कर्नाटक सहित पूर्वोत्तर भारत में भी भारी

आइए इस नई सुबह के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें, प्रार्थना करें कि हमारे मन में प्रेम हो, वाणी में मधुरता हो और अपने कर्म में ईमानदारी हो और जीवन में सदा सच्चाई और सकारात्मक बनी रहे। इसी सुंदर भावनाओं के साथ अब समय है कार्यक्रम के अगले गीत का, जो इस सुहानी सुबह को ताजगी दे और भी ज़्यादा खूबसूरत बना दे।